ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने सभी को बहुत प्यार, अपनापन और शुभ भावनाएं दी। जब से बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बने, शिव बाबा ने उन्हें ये टाइटल दिया, उनको गहन स्मृति हो गई, स्वरूप बन गया, मैं प्रजापिता हूँ, सब मेरी संतान हैं, इसलिए मुझे सभी को प्यार बांटना है, सभी की पालना करनी है, सभी के दुख दूर करने हैं। हम भी अपने बाबा को फॉलो करेंगे, हमें भी सबको प्यार देना है। और ये प्यार हम तब दे सकेंगे जब हमारे अंदर ये स्वमान रहेगा कि मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देव देवी हूँ, मास्टर ब्रह्मा हूँ। सभी आत्माओं को हमारे प्यार की बहुत जरूरत है। हम सृष्टि के बड़े हैं, हमारा प्यार आत्माओं को शांत करेगा, संतुष्ट करेगा, उनकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएगा, उन्हें रिलैक्स करेगा। लौकिक में भी आप देख लें, जिन बच्चों को अपने बड़ों से प्यार नहीं मिलता, उनकी मनोस्थिति पूरा जीवन कैसी रहती है, वो उदास रहते हैं, खुशी का उनके जीवन में अभाव हो जाता है। तो हम भी इस सत्य को जानते हुए सबको प्यार की दृष्टि दें, दूर से ही दें। और प्यार की दृष्टि देने के लिए न केवल आत्मिक दृष्टि की आवश्यकता है, पर ये संकल्प करें कि सभी आत्माएं हमारे ही हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे ही परमपिता की संतान हैं, हमारे महान देव कुल के वंशज हैं। ये हम याद रखेंगे, ये एटीट्यूड रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमसे सबको प्यार की गुड फीलिंग होती रहेगी। आप सब देखते हैं, बाबा जब नीचे आते हैं तो बाबा कोई एक एक को प्यार नहीं देते हैं, लेकिन बाबा की दृष्टि ये है, उसका एटीट्यूड ये है कि मेरे ही परिवार की महान आत्माएं मेरे सामने हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्यार के वाइब्रेशन सब तक पहुंचते रहते हैं। हम भी अपने को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें और बस बाबा से प्यार लें, दूसरों को दें। देखिए, प्यार वही बांट सकता है जिसके प्यार के भंडारे भरपूर हों, और हमारा प्यार बिल्कुल निर्मल हो, निष्काम हो, वासनाओं से मुक्त हो। जिस प्रेम में वासनाएं हैं वो तो वास्तव में प्रेम रहता ही नहीं। जिस प्रेम में स्वार्थ है उस प्रेम की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जिस प्रेम में अपनापन नहीं है, केवल दिखावा है, वो भी प्रेम दूसरी आत्माओं को बल नहीं देता। तो प्रेम में भी बहुत शक्ति है, हमारा निर्मल निश्चल प्रेम आत्माओं को बल प्रदान करता है। बाबा का प्यार पाकर ही तो हम माया को जीतने में तत्पर हो गए, और अगर बाबा हमें प्यार न देता, केवल डांटता कि तुमने मेरी बहुत ग्लानी की, तुम बड़े पापी बन गए, तुम तो पतित हो, तो हमें कैसा लगता, हम शायद उसकी एक भी बात सुनने को तैयार न होते। अपने बच्चों को भी प्यार दें, सम्मान भी दें, उनका आदर करें, फिर जो कुछ आप उन्हें कहेंगे वो भी उसका सम्मान करेंगे। तो परिवारों में प्रेम का माहौल बनाने का सबको लक्ष्य रख लेना है, और ये लक्ष्य बड़ों को अवश्य रख लेना चाहिए, माँ बाप को अवश्य रख लेना चाहिए। अगर परिवार में प्यार का माहौल नहीं है तो हम अपने दृष्टिकोण को चेंज करें, उनके प्रति आत्मिक दृष्टि अपनाएं। जरा भी किसी के लिए मन में नफरत या घृणा आ गई हो उसको समाप्त करें। आज सारा दिन यही हमारा पुरुषार्थ होगा, किसी के लिए भी हमारे मन में घृणा नफरत का भाव नहीं, सब हमारे अपने हैं, सबको हमें आगे बढ़ाना है। और आज सारा दिन आत्मिक वृत्ति का अभ्यास करते हुए ये वृत्तियां हो गई, और हम दूसरों की वृत्तियों को बदलेंगे अपनी शुभ भावनाओं से, और सारा दिन सर्वशक्तिवान से किरणें लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अगर शक्तियां होंगी तो ही हमारा प्यार दूसरों का कल्याण कर सकेगा।
तो परम धाम में शिव बाबा को सर्वशक्तिवान के रूप में विजुअलाइज करेंगे, उसके स्वरूप पर अपनी बुद्धि लगाएंगे और अभ्यास करेंगे। उसकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ में आ रही हैं और फिर इन किरणों के मार्ग से ही मैं आत्मा परम धाम में जाती हूँ और बाबा के पास बैठ जाती हूँ। यही अभ्यास हर घंटे में दो बार करेंगे और आज के दिन का आनंद लेंगे। ओम।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सुस्वागतम। दोस्तों, कहाँ जाता है ना जाने वो कितना हसीन होगा, न जाने वो कितना हसीन होगा जिसके हाथ में आपका हाथ होगा। आप खुदा को चाहो यह कोई बड़ी बात नहीं, आप खुदा को चाहो यह कोई बड़ी बात नहीं, परंतु जिसको खुदा खुद चाहे वो कितना खुश नसीब होगा, वो कितना खुश नसीब होगा। जब हमारी बुद्धि हम खुदा के पास रखते हैं, ईश्वर के पास रखते हैं, भगवान को सौंप देते हैं, तब वह बुद्धि हमेशा ही अच्छा काम करती है। और फिर हमें परख शक्ति जो ज़रूरी है इस दुनिया में वो आ जाती है। इस परख शक्ति को और बढ़ाने के लिए यह बात ज़रूर है कि हमें अभ्यास करना चाहिए, या बहुत अच्छा संग जो बुद्धि को देना चाहिए, या फूड देना चाहिए, भोजन देना चाहिए, वो तो बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बुद्धि को बहुत अच्छा भोजन खिलाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग।
2: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति जी, और आपको भी और हमारे सभी श्रोतागण को। आपने जो अभी शेर सुनाया उसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जिसको भगवान चाहते हैं, जो आपने उदाहरण दिया इतना अच्छा लगा कि वो जो कहानी है वो बार बार हमने सुनी भी होगी, लेकिन वो फिर भी सुनने की इच्छा होती है।
1: बिल्कुल।
2: कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये कहानियाँ है, या कभी हम प्रसंग होते हैं उसको दोहराते रहते हैं और दोहराते हैं, और हम बोलते हैं कि हमने पहली सुनी है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में अच्छा प्रभाव डालते हैं, और बुरी चीज़ें बार बार सोचते हैं तो वो बुरा प्रभाव डालती है। बुरी चीज़ें बार बार सोचने के लिए हम कभी ये नहीं कहते अरे हमने तो ये पहले भी सोचा था, आदत पड़ जाती है और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी कहानियाँ अगर हम फिर से सुनते हैं तो सोचते हैं कि अरे हमने तो ये सुनी है। ऐसी ही एक कहानी है हनुमान जी और नारद जी की।
1: बिल्कुल।
2: जो आपने कहा था कि भगवान चाहता है, तो ये कहानी सुनी भी होगी, लेकिन फिर से मैं दोहराता हूँ क्योंकि कहानी अच्छी है। 100 में से समझो 70 लोगों ने सुनी होगी, 80 लोगों ने सुनी होगी, लेकिन 20 लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो उनको फायदा हो जाएगा।
1: और जिन्होंने 70 लोगों ने सुनी है उनको भी फायदा तो होगा ही, क्योंकि अच्छी बातें सुनने से फायदा निश्चित है।
2: बिल्कुल। तो ये कहानी ऐसी है कि एक बार भगवान विष्णु जो है वो डायरी लिखते थे। अभी भगवान विष्णु कहो, शिव कहो, शंकर कहो, भगवान तो भगवान है, और भगवान डायरी लिखते थे। और डायरी लिखते समय नारद जी वहाँ नारायण नारायण करते पहुँच गए। नारायण नारायण करते जैसे पहुँच गए और उन्होंने देखा तो भगवान जो है वो व्यस्त है, तो उनको आश्चर्य लगा। और नज़दीक से जाके कुतूहलवश उन्होंने देखा, तब देखा वो भगवान कुछ लिख रहे हैं। तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि भगवान जी आप क्या लिख रहे हो? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आप तो सब जानते हो, मैं उन मेरे भक्तों के नाम लिखता हूं जो मुझे याद करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, और वो तो नारद जी तो बड़े भक्त थे ही। तो फिर नारद जी ने उत्सुकतावश कहा, क्या मैं डायरी देख सकता हूं थोड़ी देर के लिए? तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जरूर नारद जी देख लो। और देखा तो पहला नंबर जो था, पहले नंबर में जो नाम था वो नारद जी का था। जो नारद जी भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं, नारायण नारायण, उनका जब नारद जी की बात सुनते हैं तब यही याद आता है, हमेशा वो नारायण नारायण कहते हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए और उन्होंने देखा, देखो मेरा नंबर 1 है, अहंकार मन में उत्पन्न हो गया। और वो आकाश से विचरते विचरते पृथ्वी पर आ गए और फिर उन्होंने देखा वहां हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी राम राम राम राम का जाप करते हुए बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़े आनंद से मगन हैं। तो वो नारद जी वहां गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हनुमान जी मुस्कुराए, जैसे राम ने रखा है वैसा मैं हूं, बहुत बड़ा खुश हूं। तो उन्होंने सुनाया कि मालूम है आपको, आज मैं गया था भगवान के पास और उन्होंने एक डायरी लिखी थी और डायरी में मेरा नाम जो है वो भक्तों में सबसे पहला नंबर मेरा है। तो हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा है, बधाई हो नारद जी आपको, आपका नंबर फर्स्ट आ गया। कई किलमिश नहीं है, कई द्वेष नहीं है, कई मत्सर नहीं है, खुशी है। और फिर नारद जी ने सोचा कि हनुमान जी के मन में शिकंजी

0: भी नहीं है।
1: इसका मतलब शायद मुझे लगता है कि नारद जी ने उस डायरी में ये भी देखा होगा कि हनुमान जी का नाम जो है वो बिल्कुल लास्ट में है।
0: बिल्कुल, और वो भी उन्होंने बताया हनुमान जी को कि मेरा नाम फर्स्ट है लेकिन आपका नाम लास्ट है। इतना कहने के बावजूद हनुमान जी मगन थे अपने राम जाप में। और फिर दूसरे दिन ऐसे ही फिर भगवान के पास नारद जी जब जा रहे थे तब देखा फिर से डायरी लिख रहे,
1: लेकिन वो डायरी शायद अलग थी।
0: बिल्कुल, तो जाके उन्होंने पूछा कि भगवान जी कल तो आप डायरी लिख रहे थे, कल तो हम नाम लिख रहे थे भक्तों का, आज क्या कर रहे हो? तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आज मैं इन भक्तों का, मेरे भक्तों का नाम लिख रहा हूं जिनको मैं याद करता हूं। कल जो नाम थे वो भक्त मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन आज की डायरी में जो नाम है जिनको मैं याद करता हूँ।
1: भगवान जिसको याद करे ऐसा भक्त तो मैं समझती हूँ उसके दिल में सदा रहता होगा।
0: बिल्कुल, और वही उत्सुकता वश नारद जी वहां गए और झांक के देखा तब हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम था। ये कहने का भाव ये है कि अहंकार वश कभी कभी, नारद जी जैसा मिसाल है, इतने बड़े भक्त है लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है और ये अहंकार बहुत भारी हो जाता है। और ऐसे जब अहंकार या कोई भी विकार हमारे मन में आ जाता है तब सब गड़बड़ हो जाती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि कथा ये जो है वो हमें प्रेरणादायी है, कथा ये जो है वो हमें कुछ सीख दे रहे हैं। तो ये हम रामायण की जो कथाएं सुनते हैं, सीता मैया के ऊपर जो कथाएं सुनते हैं, उसमें मुझे लगता है यही सीख है कि कभी कभी मोह जो है, माया और मोह, माया के रूप में मोह आ जाता है। जैसे कांचन मृग था वो असुर है लेकिन उसने बड़ा सुंदर रूप लिया, कांचन मृग का रूप लिया और उसने सीता मैया को मोहित कर दिया। जब तक हम पवित्र हैं, जब तक हम राम जी के साथ में हैं, तब तक हम सुखरूप हैं, तब तक हम सुरक्षित हैं। अगर हमारे मन में जो राम है उसको हमने बाहर निकाल दिया, वो राम नहीं चाहता जो बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती निकाल दिया, जैसे इस कथा में है राम जी बोल रहे थे सीता मैया उसमें मोह मत रखो, ये हिरण नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम बाहर जाएंगे और अच्छा तुम्हें दूसरा कुछ लाके दे देंगे, लेकिन सीता मैया जिद पे बैठी थी और उन्होंने राम जी को जबरदस्ती बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे मन में कभी कभी जो अच्छा राम जो है, अच्छा संकल्प है, अच्छे विचार है, और जब हमें बुरे विचार मोहित, माया के रूप में मोहित कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं, तो प्रभु रामचंद्र जी, राम का जो विचार है, श्रेष्ठ संकल्प है, अच्छे संकल्प है, वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मन जो है वो बहुत बड़ी बात है, उसका थाह लेना बिल्कुल ही संभव नहीं है। और इसीलिए मुझे ज्ञानेश्वर जी लगता है कि मंदिर शब्द जो है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि मंदिर शब्द में दो वर्ड्स एक्चुअली आते हैं, मन प्लस दर।
0: अच्छा,
1: दर का अर्थ है द्वार या दरवाजा, तो मन का दरवाजा कहे तो भी ठीक है। और जहाँ मन के दरवाजे खुले होते हैं, अपने आप खुल जाते हैं, वह स्थान है मंदिर। और आगे जाकर ऐसा कहे कि म का अर्थ है, म मतलब मैं और न मतलब नहीं, जहाँ मैंपन नहीं वह स्थान एक्चुअली मंदिर है, न कि वो पत्थर का या संगमरमर का मंदिर होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा मन ही इस मैंपन को जब छोड़ता है तब वो मंदिर बन जाता है।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: दोस्तों, आप अपने मन को मंदिर बनाना या नहीं बनाना हमारे ऊपर है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने मन में जब हम इच्छा रखते हैं तब कभी कभी वो इच्छाएं भी हमारा इस प्रकार से पीछा करती है जो हमें कहां से कहां ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इच्छाएं जो है वो परछाई के समान है, अगर आप पीठ कर दो तो वो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। ज्ञानेश्वर जी, आप जिस सीता मैया की हम बात कर रहे हैं या आप जिस भाव से हमें उनके चरित्र का कथन कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि वो इच्छाएं इस प्रकार से सीता जी के ऊपर हावी हो गई क्योंकि उन्होंने जिद पकड़ कर रखी और फिर राम जी को भी उन्होंने उसके लिए मजबूर किया।
1: बिल्कुल, और ये देखिए, राम जी को मजबूर तो कर दिया, अभी राम जी जो है वो मजबूर होते हुए घर से बाहर निकल गए, कुटी से बाहर निकल गए। अभी निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि देखो सीता मैया का ख्याल रखना।
0: इसका मतलब ये है कि राम जी को पता था कि सीता को आगे कुछ ये हो सकता है, मतलब धोखा संभावना है।
1: बिल्कुल, और देखो राम जी, ये जो रामचरित जो है या वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसमें राम जी जो प्रभु प्रभु के रूप में दिखाए हैं, तो भगवान को पता है हमारा भक्त जो है, अगर मेरा विचार, मेरा संकल्प, मेरी प्रीत मन से निकल गई तो रावण अंदर आने वाला ही है।
0: और इसीलिए वो कुछ ना कुछ हमें बचाने के लिए युक्तियां भी रचते हैं।
1: जैसे यहाँ इस कथा में उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि सीता मैया का ख्याल रखना, और वो चले गए। वो चले जाने के बाद देखो, यहाँ इतना वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि ने जो कथा लिखी है, काव्य लिखा है, महाकाव्य है, इतना आकर्षक है, इतना सुमधुर है और इतना लुभावना है कि ये कथा में, एक कथा में बड़े बड़े लोग जो होते, बड़े बड़े हस्तियां जो होती है, वो एक शब्द में अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। वैसे एक कथा में, एक प्रसंग में कितने अर्थ ध्वनित होते हैं। एक कथा है, एक प्रसंग है कि सिर्फ कांचन मृग, उसका आकर्षण पैदा होना और प्रभु रामचंद्र जी को बाहर जाने के लिए मजबूर होना, और ये जो प्लॉट है, कथानक है, आजकल के बड़े बड़े फिल्म हैं उसमें भी इतना नाट्य नहीं होगा, इतना नाट्य इसमें भरा हुआ है। और सिर्फ नाट्य नहीं है, उसमें मुझे प्रेरणा भी मिल सकती है, उसमें मुझे सीख भी मिल सकती है, उसमें मुझे कुछ पढ़ाई भी मिल सकती है,
0: अगर उस भाव से पढ़ेंगे तो।
1: बिल्कुल, उसमें श्रद्धा है, सीख है, होशियारी है, सावधानता है, भविष्य की चिंता है, भूतकाल से जो हमें लेसन लेने हैं वो भी, हर चीज है। तो रामचंद्र जी जैसे बाहर चले जाते हैं तो ये रावण जो है, रावण का जो प्लॉट है, रावण की जो चाल है वो भी तेज रहती है। कभी कभी मोह जो है वो भी इतना पावरफुल हो जाता है जो सत सत विवेक बुद्धि पर हावी हो जाता है। जैसे रामचंद्र जी गए उसके पीछे और उन्होंने तीर चलाया, रामचंद्र जी ने तीर चलाया और कांचन मृग को मार दिया, और जैसे कांचन मृग को तीर लग गया तो अपना असुर वृत्ति जो है वो ऊपर आ गई और असुर का देह प्रकट हो गया और वो असुर मरने लगा, मारीच, उनका नाम है मारीच। और फिर ये मारीच जो है मरते समय भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा, अभी वो मर रहा है, राम के हाथों मर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने राम की आवाज निकाली और वो चिल्लाए, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण दौड़ के आ जाओ, मैं संकट में हूं। ऐसे राम की आवाज निकाली और ये उतना ख्याल रखा कि ये आवाज सीता तक पहुंचे। अभी ये जब मैं कथा सुनता हूं तब मुझे लॉजिकली, अभी देखो वो इतना भाग गया, इतना दूर भाग गया कि जहां राम पहुंच गया और वो मर गया, अभी वो चिल्लाता है सीता की कुटिया कहाँ है, वो हरिहरण कहाँ है, राम ने उसको मार दिया, अगर वो आवाज के अंतर आवाज के लिमिट में अगर रहता है तो जैसे मर गया राम जी जल्दी भाग जाके तो कुटिया में आ जाते थे
0: जी,
1: खत्म हो जाता था मामला। लेकिन वो इतना दूर उनको लेके गया लेकिन आवाज उनके यहाँ तक आ गई, उसका मतलब क्या है?
0: मतलब मुझे लगता है कि हमारा मन ही है, यहाँ भी मन के अंदर वो जो शैतानी वृत्तियां है उसकी आवाज ज्यादा दूर तक पहुंचती
1: है। इसलिए हम कहते हैं मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनो, मेरी आत्मा की आवाज सुनो, ऐसे कहते हैं। अंदर का जो मन है उसकी आवाज सुनो बोलते हैं, तो आवाज मन में दोनों आती है, एक आवाज आती है राम की आती है, एक आवाज आती है वो वही उसी से हम अंतरात्मा कहते हैं, अंतर मन कहते हैं, वो आवाज है सच्चाई की।
0: लेकिन कभी कभी ज्ञानेश्वर जी सच्चाई की जो आवाज है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है,
1: क्योंकि जब बुराई की आवाज जो है, मोह की आवाज जो है, माया की आवाज जो है, वो जब हावी हो जाती है तब ये दब जाता है। अभी समझो हम रेडियो मधुबन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, अभी आज का जो प्रोग्राम है अमृत धारा, वही हमारे श्रोतागण सुन रहे, बड़े प्यार से सुन रहे हैं, और अगर कोई बाहर शोर शराबा हो गया, डीजे लग गया, ढंचिक ढंचिक ढंचिक आवाज हो गया, तो ये जो अमृत धारा की आवाज है दब जाएगी
0: बिल्कुल।
1: और फिर आप बाहर में हमारे श्रोतागण बाहर जाके देखेंगे, अरे कितनी शोर शराबा चल रहा है, आवाज कम करो। और जब तक वो आवाज कम नहीं होती तब तक ये आवाज सुनाई नहीं देगी। वैसे ही माया और मोह की आवाज जो है वो जब ऊपर ऊंची उठ जाती है तब राम की आवाज दब जाती है, राम दूर चला गया, मारीच की आवाज जो है, मोह की आवाज जो है वो सुनाई दी सीता मैया, और उसमें फंस गई। सीता मैया को जितना विश्वास था राम जी के ऊपर, मेरे प्रभु रामचंद्र जी है, शक्तिशाली है, महाशक्तिशाली है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये विश्वास जरूर था। इसका मतलब यह नहीं कि उसके ऊपर संशय था राम की शक्ति के ऊपर, लेकिन सीता मैया के मन में मोह उत्पन्न हो गया। ये मोह अनेक प्रकार के हैं, जैसे कांचन मृग का जो मोह था वो आकर्षण था कुछ पाने का, और ये जो मोह है कभी रामचंद्र मेरे प्रभु राम को कुछ ना कुछ क्षति तो नहीं पहुंची, ये मोहवश हो गया। ये भी मोह जो है वो प्यार का मोह है, प्यार सच्चा प्यार नहीं होता तो वो मोह में आ जाता है, और ये मोह को काटना है। और इसलिए सीता मैया ने जब वो आवाज सुनी कि लक्ष्मण मैं खतरे में हूं, आओ मेरे मदद के लिए, तब सीता मैया को रहा नहीं गया।
0: बहुत अच्छी बात। और ज्ञानेश्वर जी इस कथानक में वाल्मीकि ऋषि जो है वो हमें ये भी दिखाना चाहते हैं कि कैसे बार बार हम भूले करते हैं। एक भूल तो ये हो गई, मोह की भूल हो गई कि वो मृग जो है, हिरण जो है, उसको पहचानना उनके पहचान नहीं सकी। दूसरा मोह जो है वो अति मोह, अति प्यार जो है वो उनको लगा अपने पति के प्रति, और यहाँ भी फिर से एक भूल हो गई। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने कुछ तीसरी भी भूल की। ये भूल क्या है, किस प्रकार से हम इन भूलों को बार बार करते हुए भी भगवान चाहता है कि मेरे भक्तों को बचाए, इसके बारे में हम आपसे जरूर सुनेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सीता जी के जब हम बात कर रहे हैं कि कई बार हमारे से अनेक प्रकार की भूले हम दोहराते हैं या बार बार हमारे से भूले हो जाती है, फिर भी अगर हमारा सच्चा प्यार भगवान के प्रति है तो वो प्यार हमें बचा सकता है, लेकिन उसमें मोह नहीं होना चाहिए। और यह इस बात का प्रतीक है कि उसमें शक्ति के प्रति, परमात्मा के शक्ति के प्रति हमें शक नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी, आप हमें बता रहे हैं कि लक्ष्मण जी को उन्होंने मना करते हुए भी सीता मैया ने राम की रक्षा के लिए वन में भेजा, फिर आगे क्या हो गया?
2: देखिए, यहाँ ऐसी कथा तो सबको मालूम है, ये दौरानी बात नहीं है, लेकिन ये कथा का जो हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं या सीख लेने की कुछ कोशिश करते हैं, तब ये कहा गया है कथा में कि जैसे मजबूर लक्ष्मण जी हो जाते हैं, और ये मजबूर इसलिए होते हैं कि लास्ट जो वेपन है, अस्त्र शस्त्र बोलते हैं, तो स्त्री का अस्त्र जो है वो है रोना। जब स्त्री रोने लगती है तब उसका वो अस्त्र हो जाता है। और वहां यहां सीता मैया रोने तो लगी, और उसने कथा जी ऐसी है, बहुत सारी कथाएं हैं अलग अलग भाषाओं में, जो है जो मैंने पढ़ी है उसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि सीता मैया कहती है लक्ष्मण जी को, हे लक्ष्मण, कभी कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं बार बार आपको कहती हूं कि मेरे प्रभु राम जो है वो खतरे में है, उनकी रक्षा के लिए आप जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया लक्ष्मण कि आपके मन में मेरे प्रति आसक्ति पैदा हो गई है, आपके मन में मेरे प्रति मोह पैदा हो गया, और मुझे पाने के लिए आप यहां से नहीं निकल रहे हो, मेरे प्रभु राम खतरे में है, आपका बंधु प्रेम कहां गया? और ये जब चुनौती दे दगे, सबको मालूम है लक्ष्मण जी जो थे उनके मन में सीता जी के प्रति क्या स्नेह था, क्या आदर था, क्या सद्भाव था। अब जब उनको जब ठेस पहुंच जाती है तब लक्ष्मण विवश हो गए, और ये लक्ष्मण विवश होने के बाद वो मजबूर हो गए बाहर जाने के लिए। अभी देखिए, ये भी इंसिडेंट जब मैं पढ़ता हूं, सब अच्छे, सीता मैया तो पवित्र है, लक्ष्मण जी श्रद्धावान है, प्यार है, सीता मैया के प्रति आदर भाव है, और रामचंद्र जी के ऊपर निष्ठा है, सब अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। मन में विकार आ जाता है, मन में विकार आता है तो बुद्धि श्रेष्ठ भी है तो भी कभी कभी उसको भ्रष्ट बनना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और सुनते नहीं है, बुद्धि जो कहती है वो सुनते नहीं है, और फिर मजबूर होना पड़ता है, बुद्धि हार मान लेती है, और फिर विकार हावी हो जाते हैं, और फिर मन भ्रष्ट होके पतन शुरू हो जाता है।
1: यहाँ जो कथानक में दिखाया है कि लक्ष्मण जी जो है वो जाते समय एक रेखा को चित्रित करते हैं, या एक रेखा का बंधन जो है वो सीता मैया के आगे रखते हैं, उसका क्या भाव है?
2: देखिए, वो जब मजबूर हो जाते हैं तब क्या करना है, सुरक्षा तो करनी है, प्रभु रामचंद्र जी ने मुझे जिम्मा दिया है कि सीता मैया की सुरक्षा करो, तो लक्ष्मण जी भी इतने तपस्वी थे तो उन्होंने अपने बाण से एक रेखा निकाल ली, ओढ़ ली, और उन्होंने कहा मैया इतना तो करो कम से कम, मैं अभी जाता हूँ लक्ष्मण जी, मैं अभी जाता हूँ मेरे राम की रक्षा करने के लिए, उनको कुछ नहीं हो गया लेकिन फिर भी मैं उनको लेके आता हूँ, लेकिन तब तक आप ये लक्ष्मण रेखा जो है उसका उल्लंघन ना करिए। ये जब मैं कथा सुनता हूँ तब मुझे लगता है हमारे बहुत सारे मित्र जो है जो व्यसनों से लिप्त है, देखिए ये जब मैं कथा सुनता हूं मुझे ऐसे घर नजर के सामने आते हैं जहां पत्नी जो है वो बार-बार हाथ जोड़ के विनती करती रहती है पति की कि ये शराब मत पियो, ये शराब मत पियो, आपको नुकसान हो जाता है। प्यार से समझाती है, डांट के समझाती है, रोते हुए समझाती है, और उस समय जब पति का नशा उतर जाता है उसे पता भी चलता है कि ये मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं कर रहा हूं, ये जो मेरी पत्नी कहती है वो मेरे भलाई के लिए कहती है, अच्छाई के लिए कहती है। लेकिन कभी कभी ये विकार जब हावी हो जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, वो आकर्षणों से लिप्त हो जाता है। तो ये कभी कभी व्यसन मुक्ति का जो अभियान चलाते हैं हम लोग, तब ये भी कभी कभी मुझे लगता है कि ये कहानियां जो है हमारी जिंदगी से किनसे
1: जुड़ी है,
2: जुड़ी हुई है, हर एक की निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो यहां मैं लक्ष्मण जी के भेंट में मैं वो पत्नी देखता हूं जो रोती है, चिल्लाती है, किसके लिए? भलाई के लिए, अपने पति के भलाई के लिए, अपने घर गृहस्थी के भलाई के लिए वो चिल्लाती है, रोती है, पाँव पड़ती है और फिर दिल से कहती है कि शराब को मत छो।
1: मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी ये जो लक्ष्मण रेखा है वो मर्यादाओं का प्रतीक हो सकती है।
2: ये तो है ही
1: कि हमारे लिए जब हम कभी कोई भूले करते भी है फिर भी कुछ मर्यादों का हम सीमा से बाहर जाकर उल्लंघन करते हैं तो फिर हमारे लिए संकट जो है वो रावण जैसा सामने खड़ा होता है।
2: बिल्कुल, ये जब लक्ष्मण रेखा की अभी तो बात की मैंने, लक्ष्मण और सीता और आकर्षण की, अभी जो बात आपने छेड़ी है वो है मर्यादा की, लक्ष्मण रेखा की। तब वो जब लक्ष्मण रेखा की जब बात मैं सुनता हूँ तब मुझे मेरी छोटी छोटी बहने जो है वो याद आती है।
1: अच्छा,
2: ऐसी छोटी बहनी है जो कॉलेज में जाती है, स्कूलों में जाती है, अभी जवान है, बाह्य आकर्षण उनको लुभाते रहते हैं और ये आकर्षण करते हुए वो घर से निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो फंसाने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत ऐसे रावण बाहर खड़े हैं, बहुत ऐसे आकर्षण बाहर खड़े हैं, तो हमारी छोटी छोटी भोली भाली कन्याएं जो है वो उसमें फंस जाती है। मुझे उनको हाथ जोड़ के विनती करनी है, मेरी माताओं, बहनों, छोटी छोटी कन्याओं, ये ध्यान रखो रावण है बाहर, लेकिन अगर आपके मन में जो राम है वो जिंदा है, अगर आपके मन में जो राम है वो जागृत है, वो भले आपने उसको कहीं बाहर भगा दिया तो लक्ष्मण जी तो है, वो बुद्धि जो है आपकी रक्षा करने के लिए है, आप मोहवश होके वो लक्ष्मण रेखा है उसको उल्लंघन मत कर दीजिए, क्योंकि आपने उल्लंघन कर दिया तो रावण बाहर खड़े हैं आपको पकड़ने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार हम केवल पुरुष समाज को ही दोषी न समझे लेकिन कई बार बहनों से, औरतों से भी कुछ न कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है और उन मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण वही फिर संकट में आ जाती है। दोस्तों इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा क्योंकि विषय जो है वो गहन है और गहराई तक जाने के बाद हमें आज की जो समाज की व्यवस्था है या कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से कुछ न कुछ उपाय मिलेंगे, हम उस पर कुछ हल ढूंढेंगे और उस हल को ढूंढने से मैं समझती हूँ शायद हमारे बहनों के लिए तथा भाइयों के लिए दोनों के लिए ही ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। लक्ष्मण रेखा का बहुत सुंदर अर्थ अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ही मर्यादाओं का उल्लंघन, जो एक समाज की व्यवस्था है जो बनाई रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने भी कहीं ना कहीं ऐसी मर्यादाएं हरेक के लिए दी है, चाहे वो भाइयों की मर्यादाएं अलग होगी, बहनों की मर्यादाएं अलग होगी, लेकिन जब हम उनका उल्लंघन करते हैं तो फिर पूरा रामायण घट जाता है। ज्ञानेश्वर जी, आप हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से सीता मैया संकट में आ गई या किस प्रकार से रावण जी जो है उस कुटी में आ गए।
3: बिल्कुल, तो ये लक्ष्मण रेखा की आप बात कर रहे हैं। लक्ष्मण रेखा की जब बात कर रहे हैं, जैसे हमने उसमें पहले कहा और आपने भी कहा, मर्यादा जो है, और मर्यादा जो है ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, स्त्री सिर्फ माता भगिनियों के लिए नहीं है, हमारे भाइयों के लिए भी है
4: जी।
3: ये मर्यादा जो है, अगर हम स्त्री के संबंध में विचार करते हैं तो ये मर्यादा है स्त्री और पुरुष। पुरुष की वासना जब हावी हो जाती है तब वो पुरुष जो है, विकारी पुरुष जो है, वो लुभाने की कोशिश करते रहता है, और हमारे छोटी छोटी कन्याएं जो है वो उसमें मोह जाल में फंसने की संभावना हो जाती है। और सिर्फ पुरुष नहीं है, अनेक आकर्षण है। ये रावण जो है ये पुरुष के रूप में भले दिखाते हैं, लेकिन हमारे मन में बहुत सारे आकर्षण जो है, वो स्त्री हो पुरुष हो, हमारी युवा शक्ति हो, अगर कोई कन्या है तो वो स्त्री के शरीर में है, कोई युवा है, युवक है तो पुरुष के शरीर में है, लेकिन है तो सब युवक, परिपक्व नहीं है, बुद्ध अभी तक परिपक्व नहीं होने के कारण छोटे छोटे आकर्षण उनके मन में पैदा हो जाती है, और इन आकर्षणों के ऊपर अगर विजय प्राप्त करता है तो उनमें से कई शास्त्रज्ञ होते हैं, कभी इंजीनियर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसान हो जाते हैं, और अगर विजय नहीं प्राप्त करते

0: और ये मोह में कहीं फंस जाते हैं तो वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। गलत रास्ते अनेक प्रकार के होते हैं और वो गलत रास्ते पे एक बार चल गए तो फिर वापस आने का मार्ग बहुत कठिन हो जाता है
1: और खुद ही बहुत दुखी हो जाते हैं, पूरी जिंदगी रोना पड़ता है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ हमारे कई मित्र जो है वो जेलों में चले गए, जेल में जब जाते हैं वहाँ कैदी उनसे बात करते हैं, तब हमने ये देखा है, हमने ये सुना है कि कोई भी कैदी जो है वो पछता है। एक छोटा सा मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, एक छोटा सा मन में विचार उत्पन्न हो जाता है, जो विचार से भले वो खूनी हो और भी कुछ अपराध किया हो, लेकिन एक मोह मन में पैदा होता है, वो मोहवश होके वो कुछ कृति करता है, कुछ क्रिया करता है और फिर उससे भुगतना पड़ता है।
1: और वो कई बार ऐसे कहते भी है कि एक भूल के कारण उनको इतनी बड़ी सजा हो गई।
0: बिल्कुल, तो ये जो है अगर उसी समय वो खुद को रोक ले, देखिए बाहर सामने कुआं है, कुएं पे खड़े हैं और उन्हें रोकने के लिए दो आदमी खड़े हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ढकेलते हुए अगर कोई कुएं में गिरने की सोचता है तो दोष किसका है? और एक बार पैर फिसल गया तो फिर कोई भी कोशिश करे रोकने की रोक नहीं सकता। लेकिन ये जिंदगी जो है, भले आप जेल में हो लेकिन वहां से भी ऐसे कई लोग हमने देखे हैं, वो जेल में गए लेकिन बहुत अच्छा इंसान बन के वापस आ गए
1: और उनकी सजा भी कम हो गई।
0: सजा भी कम हो गई क्योंकि अच्छा बर्ताव किया था, ऐसे हमारे यहाँ प्रावधान है। तो भगवान की, ये तो हमारे न्याय व्यवस्था है, अच्छी न्याय व्यवस्था, आदर्श न्याय व्यवस्था है। वहां अगर किसी को पश्चाताप हो जाता है, कोई अच्छा बर्ताव करता है तो वहां छूट भी है। और ये तो भगवान का दरबार है, जब आप भगवान के दरबार में जाते हो, पश्चाताप करते हो सही ढंग से, सही तरीके से, तब आपको छूट जरूर मिल जाती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि अगर गलत रास्ते पे चला भी गया तो वापस आने का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कभी भी आप ये मत सोचो कि वापस आने का रास्ता बंद हो गया, नहीं, आपका संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा की और सीता मैया की, उन्होंने रेखा तो खींच ली और फिर वो चले गए। अभी देखिए बाण की रेखा है, बाण की रेखा जो है और मिट्टी में डालती है, तो ये मन में रेखा हमारी पक्की है कि हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है, तो उसमें ताकत रहती है। तब ऐसे दिखाया जाता है कि रावण जो है, ये सब प्लॉट है, देखो आकर्षणों का प्लॉट है, मारीच वो भी मायावी है। मारीच तो मर गया, मरते समय उसने कहा लक्ष्मण भागो, दौड़ो और मुझे बचाओ। फिर रावण आ गए, अगर रावण अपने भेष में आ जाते थे तो सीता मैया कभी उसको भिक्षा देती थी? बिल्कुल नहीं देती थी। लेकिन रावण भी भेष बदल के आ गया, रावण भी ऐसे कहते हैं भिक्षु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आ गया और फिर उसने कहा सीता मैया को, मैया मुझे भिक्षा दो। तो ये गलत विचार जो है हमारे मन में, अगर हमें लगता है ये गलत है तो हम उसको भगा देते थे। कोई भी इंसान है अगर उसे सही समय में लगेगा कि ये विचार मुझे धोखा देने वाले है, ये विचार मुझे कहीं ना कहीं फंसाने वाले है, ये आकर्षण जो है, ये मोह जो है वो मुझे कहीं ना कहीं विनाश के तरफ ले जाने वाला है, तो मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं उसको पहचान ही नहीं पाया तो विजय नहीं प्राप्त कर सकूंगा। जैसे इसमें, इस कथा में दिखाया गया है, रावण भेष बदल के आ गया। रावण अगर असली भेष में आता था तो पहचानना आसान था, लेकिन रावण भेष बदल के आ गया। वैसे कभी कभी ये मोह जो है वो अलग अलग प्रकार के भेष लेके, अलग अलग प्रकार के संकल्प लेके मेरे मन में पैदा हो जाते हैं और फिर आदमी फंस जाता है, ऐसे मुझे लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और उनको परखने के लिए हमारे मन में सदा श्रेष्ठ विचारों का अभ्यास चाहिए। सुनना, संग करना, बुद्धि को अच्छा संग देना, उसको ही सत्संग कहते हैं। सत्य जो है परमात्मा कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ, तो उसका संग अगर है हमें, तो कभी ना कभी हमारी भी इन बातों से जीत हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो देखिए यहाँ सीता मैया ने क्या किया, भिक्षा देने की थी। रावण क्या कह रहा था, मैया मुझे भिक्षा दो। तो किसी को भिक्षा देना ये अच्छा काम है, काम बहुत नेक है, काम नेक है। रावण ने नेक काम के लिए उसको प्रेरित भी किया था, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन गलत था, उसके पीछे का भाव जो था वो गलत था। ऊपर ऊपर से हमें बहुत सारे विचार जो है, बहुत सारी व्यक्तियां जो है वो अच्छी लगती है, यहाँ परखने की शक्ति। ऐसे कभी कभी हो जाता है, जो मैं कन्याओं की बात करता हूँ, तो मैंने कहीं पढ़ा है कि जहाँ जो बलात्कार हो जाते हैं, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो जाते हैं, जो छोटी छोटी कन्याएं जो है उनके ऊपर बलात्कार हो जाते हैं, उसमें से More than 70% बलात्कार जो है वो अपने जाने पहचाने लोग जो है वो करते हैं, और वहां कन्याएं फंस जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि इंटेंशंस गलत है, मोह गलत है, सही पहचान नहीं कर पाते। तो हमें ये जो सीख जो है, हर कोई व्यक्ति सीख ले सकता है ये कथा से, ऐसे नहीं सिर्फ कन्याएं ले सकती, छोटा भाई ले सकता है, छोटी कन्याएं ले सकती है, बड़े बुजुर्ग ले सकते हैं, क्योंकि मन में आकर्षण जो है वो आपकी उम्र नहीं देखता। मन का आकर्षण जो है वो आप पति हो या पत्नी हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, आपकी उम्र क्या है, जवान हो या बूढ़े हो, ये नहीं देखता। मन में आकर्षण पैदा होते ही रहते हैं
1: जी।
0: हमारे मन में रावण जो है बाहर बैठे ही रहे हैं, सिर्फ दरवाजा खोलने की प्रतीक्षा करते हैं, अलग अलग रूप लेते हैं और हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे मन में राम अच्छा है तो सब अच्छा है।
1: बहुत सुंदर बात कही, अगर मेरे मन में सदा राम बसा हुआ है तो कई भी प्रकार के प्रलोभन जो है उन प्रलोभनों से हम बच सकते हैं। दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि जो है, इन्होंने हमारे सामने इस प्रकार से इन पात्रों का चित्रण किया है जो हमें बार बार सीख मिले। और कलयुग का जो जमाना है, जो कहा जाता है कलयुग बहुत तमोप्रधान हो गया है, बहुत खराब हो गया है, तो ऐसे जमाने में हमारी रक्षा इस कथानक के द्वारा करने की बहुत सुंदर कोशिश उन्होंने की है। इसीलिए पहले तो मन कहता है कि उनको बार बार सलाम करें, लेकिन जब हम इस भाव से उस कथा को देखेंगे तब। दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अब समय है वाणी को विराम देने का। अमृतधारा प्रोग्राम के द्वारा फिर से आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब दीजिए इजाजत, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहा जाता है, जो मर कर भी ना मरे उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं, जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं, और जो ला सकता है समाज में परिवर्तन उसे यूथ कहते हैं। आप संसार की सभी क्रांतियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि युवाओं ने ही उन क्रांतियों को अंजाम दिया है। आप पाएंगे कि युवाओं ने समाज को एक दिशा दी है, उसकी दशा को परिवर्तित किया है, उसे एक ऊंचाई दी है, बुलंदी दी है। बहुत सारी विशेषताओं और योग्यताओं से संपन्न है हमारा आज का युवा, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखें तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिसमें यदि थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए और सचमुच उसका भी भविष्य और राष्ट्र का भविष्य बहुत श्रेष्ठ और उज्ज्वल हो जाए। आवश्यकता है थोड़े से परिवर्तन की, किन चीजों में युवा परिवर्तन लाए और साथ ही किन किन चीजों से वो बच कर रहे, आज इसी बात की चर्चा हम आदरणीय सूर्य भाई जी से करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत
1: थैंक्स।
0: प्रता जी, युवा वर्ग के लिए संसार, समाज सभी जानते हैं कि वो बहुत महान शक्ति से संपन्न होता है, चाहे वो शारीरिक शक्ति की बात है, चाहे मानसिक शक्ति की बात है, चाहे बौद्धिक शक्ति की बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जीवन में चलते चलते, कई कारण हो सकते हैं उसके, जिनके कारण से वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है या समाज का, लोगों का जो दृष्टिकोण है युवाओं के लिए थोड़ा बदल जाता है। तो किन चीजों में युवा अपने जीवन में बदलाव लाए या किन चीजों का ध्यान रखे कि वो उसके जीवन में ना आए?
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे युवक बहुत अच्छे, बहुत योग्य, हमारे देश के लिए गर्व भी हैं
0: जी।
1: जैसे अमेरिका में काम करने वाले बहुत सारे इंजीनियर साइंटिस्ट, 70% वो तो कहते हैं भारतीय हैं। एजुकेशन के फील्ड में वहाँ भी बड़े अग्रणी हैं हमारे युवक, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़े लोगों की गलती पूरे एक समुदाय को जैसे बदनाम कर देती है। लेकिन युवकों में सचमुच बहुत बहुत योग्यताएं हैं, जैसा आप कह रहे थे कि उन्होंने अनेक क्रांतियों को दिशा दी है, समाज को दिशा दी है। बस अब थोड़ी सी जरूरत है कि वो अपनी शक्तियों को भी यथार्थ दिशा देना सीख जाएं। शक्तियां उनके पास बहुत हैं, और शरीर और मन की शक्ति के अलावा स्पिरिचुअल पावर हर युवक में बहुत होती है। स्पिरिचुअल पावर का अर्थ है पावर ऑफ स्पिरिट, पावर ऑफ सोल, ये भी हर एक के अंदर बहुत होती है। उनमें प्योरिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कुछ चीजों में बह जाते हैं जिसमें आजकल समाज बह रहा है और उसका प्रभाव निगेटिवली उनके जीवन पर पड़ जाता है। उस उन चीजों से अगर वो बचेंगे तो सचमुच वो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज या देश के लिए बहुत महान कार्य कर सकेंगे।
0: दिग्भ्रमित हो रहा है युवा, लेकिन भ्रम पैदा करने वाली स्थितियां उसके
1: बहुत सारी हैं। देखिए,
0: और एक आदर्श की कमी या एक मार्गदर्शक की कमी महसूस होती है, जिसके कारण वो स्वयं निर्णय लेता है और कहीं गलत कहीं सही साबित होता है। इस कारण कई बार बदनामी भी उसे झेलनी पड़ती है।
1: तो पहली चीज जो आम रूप से चर्चित है, और समझदार बुद्धिमान लोग इसकी चर्चा भी करते हैं, कि भारत में इस समय वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता जा रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह खराब है, उसमें अच्छाइयां भी बहुत हैं। उन अच्छाइयों को फॉलो करने की बजाय आज का मनुष्य बुराइयों को जल्दी फॉलो करने लगा है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लो 10 बच्चों को टीवी के सामने बैठा दिया जाए और उन्हें 2 घंटा टीवी दिखाई जाए, और उसमें कुछ अच्छे सीन भी हों और कुछ थोड़े नेगेटिव सीन भी हों, और लास्ट में अगर उन सबसे पूछा जाए एक एक से कि क्या क्या देखा, तो वो सारे जो नेगेटिव सीन थे, जो अश्लील चीजें थी, उनका वर्णन करेंगे। अच्छी चीजें भले ही उसमें ज्यादा आई हों, लेकिन उसको वो नहीं लेते, वो ग्रहण ही नहीं होती उन्हें। तो सर्वे से ये देखा गया कि मनुष्य की ग्रहण करने की शक्ति, देखने की शक्ति बहुत निगेटिव हो गई है। तो पाश्चात्य सभ्यता में बहुत अच्छाई भी अगर हम देखें, वहां लोगों में ऑनेस्टी बहुत ज्यादा है, मतलब वो डेडिकेट रहते हैं अपने कार्य के लिए, उसमें वो थोड़ा भी केयरलेस नहीं होते। मैंने एक और चीज देखी, हमारे पास हजारों लोग आते हैं हर साल, हजारों क्या 10,000 आते होंगे, अपनी गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स देने के लिए भी वो प्रतिबद्ध रहते हैं, अपने मुख से बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें अपनी सरकार के प्रति भी वफादार ईमानदार होना है। तो देखिए, अगर उनकी कल्चर की ये बातें हम सीखें, हमारा युवा सीख जाए, तो क्या हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ जाएगा? लेकिन सीखते हैं फैशन, उनकी नग्नता।
0: अच्छी चीजें तो परोसी जा रही हैं, लेकिन अच्छी चीजों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बुरी चीजों की तरफ ध्यान जा रहा है। वो चीजें हम ग्रहण कर रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। क्या
1: बिल्कुल
0: कारण मानते हैं
1: बिल्कुल
0: आप इसका?
1: यही बात। अगर हम हमारे पास फिल्म डायरेक्टर्स आते हैं और अब उन्हें हम कहते हैं कि आप अच्छी फिल्में क्यों नहीं बना रहे हैं, ये हिंसात्मक और ये अश्लील फिल्में ही क्यों आप ज्यादा बना रहे हैं, तो वो अपने प्रत्यक्ष उदाहरण दे के हमें कहते हैं कि अगर अच्छी फिल्में बन जाएं, उसे देखने वाले कितने होंगे, वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, बिल्कुल चलेगी नहीं हमारी। तो
0: बिल्कुल
1: डिमांड ही वैसी है। तो ये जो डिमांड है, ये क्यों हो गई है, ये विषय सचमुच बहुत ही विचारणीय है। अन्यथा फिल्म डिवीजन और ये मीडिया डिवीजन और पाश्चात्य सभ्यता भी मनुष्य को बहुत आगे बढ़ा सकती है, लेकिन मनुष्य स्वीकार ही निगेटिविटी को कर रहा
0: आपने
1: है।
0: सही बात कही
1: हाँ
0: दादाजी। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में अमरीश पुरी जी का आना
1: हाँ
0: हुआ था, तो जब उनसे ये पूछा गया, सेम ये जो बातें आप कह रहे हैं कि सामने जो ऑडियंस बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में इतने गंदे गंदे दृश्य दिखाते हैं कि हम अपने परिवार के साथ बैठ करके भी नहीं देख सकते हैं, तो आप ये सब चीजें क्यों उसमें डालते हैं। तब उन्होंने पूछा, सामने जो एक मिनिस्टर बैठे हुए थे उनसे ही पूछा उन्होंने कि आप ये बताएं कि आपने सूरज का सातवां घोड़ा देखा है? एक बहुत ही सुंदर फिल्म है ब्रदर जी, जिसमें बहुत सुंदर चरित्र हैं और बहुत सुंदर मूल्यों की बात है। तो उन्होंने और पूरे ऑडियंस में लगभग 2000 लोग बैठे हुए थे, उसमें हार्डली एक दो लोगों ने ही वो फिल्म देखी थी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि इतनी अच्छी फिल्म जब बनाई जाती है तब आप लोग ही नहीं देखते हैं, तो फिर वो बना करके हम क्या करेंगे? निर्माता निर्देशक घाटे में क्यों
1: हाँ
0: जाएंगे?
1: देखिए, दोनों चीजें हो गई। पहले ये चीज चली तो ये मनुष्य का झुकाव अश्लीलता की ओर बढ़ा, फिर समाज में भी अश्लीलता और विकार और इम्प्योरिटी, सेक्स लस्ट, इसकी भावनाएं ज्यादा बढ़ती गई। विदेशों से ये बात आई भारत में, हालांकि भारत की सभ्यता तो प्योरिटी पर बेस्ड रही है, लेकिन ये चारों ओर से ये चीजें आई, और कहीं ना कहीं फिल्म डिवीजन भी इसकी जिम्मेदार है अवश्य। देखिए, अगर मनुष्य जहर खाने लगे और सब मरने लगे, तो बेचने वालों का या पैदा करने वालों का ये कर्तव्य तो नहीं ना, वो वही चीज पैदा करते जाएं। मनुष्य का एक कर्तव्य भी होता है कि अगर कोई मनुष्य डूबना ही चाह रहा है तो उसे बचाया भी जाए, कोई मनुष्य कुएं में कूदने के लिए ही तैयार है तो उसे रोका जाए। तो कहीं ना कहीं हमें अब ये जागृति लानी पड़ेगी, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बड़े और छोटे बच्चे हों, कि उनके एटीट्यूड्स को बदलना पड़ेगा। जो ये चीजें हैं उससे क्या नुकसान हो रहा है, इसकी अवेयरनेस, इसका ज्ञान किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। मेरे पास युवकों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें जब वो बुरे संग में थे तो कैसे उन्होंने एंजॉय किया उन सब चीजों को, और 5-7 साल के बाद ही उनकी जो दुर्गति हुई कि जीवन भर पश्चाताप के, डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, अयोग्यताओं के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा।
0: ऐसी चीजों को मीडिया को उभरता जी यदि सामने लाना चाहिए, और जैसे एक फिल्म डिवीजन की भी बात आपने कही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके लिए आपने एक बहुत सुंदर संकेत दिया कि यदि कोई सामने वाला जहर खाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि हम जहर ही परोसें। संभव है कि उनको भी थोड़ा नुकसान भले उठाना पड़े शुरुआत में, लेकिन यदि वो अच्छी चीजों की शुरुआत करते हैं, अच्छी फिल्मों का निर्माण करते हैं या मीडिया में भी अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो युवा वर्ग जो एक अंधी दौड़ में दौड़ा चला जा रहा है उसे हम बचा पाएंगे और श्रेष्ठ भविष्य की ओर ले जा
1: बिल्कुल
0: पाएंगे।
1: देखिए, ठीक है यही बात कि कुछ डेडिकेशन तो अपने देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए करना ही पड़ेगा। हमें पैसा ही चाहिए, चाहे वो जहर खिलाकर हम इकट्ठा करें, चाहे वो मनुष्यों को बीमार करके हम इकट्ठा करें, तो ये जो मान्यता है ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आज अश्लील फिल्में सभी बंद कर दी जाएं, चाहे वो नेट पे हैं, चाहे मोबाइल्स में लोगों ने भरी हुई हैं, जैसे भी है उनका निर्माण हो रहा है, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे पूरी तरह से, और अच्छी नैतिकता को बढ़ावा देने वाली पवित्रता को बढ़ावा देने वाली, चरित्र को श्रेष्ठ बनाने वाली, मनुष्य को भ्रष्टाचारी की बजाय श्रेष्ठाचारी बनाने वाली फिल्में निर्माण की जाएं, तो 20 साल में ही एक ऐसा समय भी आ जाएगा, बल्कि 10 साल में ही, कि लोग उन्हें देखने लगेंगे।
0: बिल्कुल, वैसे भी जो चीजें उपलब्ध होती हैं, व्यक्ति उन्हीं चीजों को देखता है और उन्हीं चीजों से सीखता है, तो भले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन परिवर्तन की बयार लाने में,
1: और लोगों को लोस भी हो सकता है,
0: मतलब हमारे मन में एक मानसिकता शायद ये बनी हुई है कि यदि हम फिल्मों में तड़का लगा के दिखाएंगे या न्यूज को भी कुछ तड़का लगा के दिखाएंगे तो शायद लोग ज्यादा देखें, और अच्छी चीज दिखाएंगे तो शायद लोग नहीं देखेंगे, तो शायद ये कहीं ना कहीं भ्रम है मीडिया के भी मन में।
1: सच बात ये है, क्योंकि वो लोग भी उस फ्लो में बहते जा रहे हैं ना सभी। हम फिर से आ गए जरा वेस्टर्न कल्चर पर, हम बात कर रहे थे कि उससे हम कुछ अच्छाइयां सीखें, और एक समझदार मनुष्य, एक बुद्धिमान युवक का दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए, जैसे हम अपना ये गुलाब का फूल लगाते हैं या और अच्छे अच्छे जो पुष्प हैं उनके पौधे हम रोपते हैं, उसमें नीचे खाद, पानी, मिट्टी, गंदगी रहती है ना, लेकिन फूल कितना सुगंधित, सबको आकर्षित करने वाला। अगर वो नीचे देख लें तो शायद कुछ भी ना देखें, लेकिन बरबस मनुष्य फूलों की ओर खींचा चला आता है ना। ऐसे ही हर सभ्यता में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, मीडिया में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, पाश्चात्य सभ्यता भी अच्छाइयों से भरी पड़ी है, हमारी फिल्मों में भी हम बहुत अच्छाई ढूंढ सकते हैं या उन्हें टोटली पॉजिटिव स्वरूप दे सकते हैं। बस जरूरत है कुछ ऐसे समाज सुधारक लोगों की, ऐसे शिक्षकों की जो समाज को पॉजिटिव होना सिखा दे, जो समाज को ये याद दिलाए, जो युवकों को ये याद दिलाए कि जो तुम देख रहे हो इससे तुम्हारा कैसे पतन हो रहा है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। और ये काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है।
0: जी प्रता जी, ये तो एक बात हुई कि चलिए मीडिया किस प्रकार से अपने दिखाने वाली चीजों में परिवर्तन लाए, बनाने वाली चीजों में परिवर्तन लाए, एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष जो युवाओं का पक्ष है, युवाओं में भी तो वो एक जागृति आए कि वो क्या देखें क्या ना देखें, जैसे हम क्या खाएं क्या ना खाएं, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, तो जो लाभदायक होता है वो चीजें हम खाते हैं, हानिकारक चीजों को छोड़ देते हैं। तो ये एक अवेयरनेस यदि युवाओं में आए कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है, तो इससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन है।
1: बिल्कुल, ये इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम युवकों को और सभी को ऐसी अवेयरनेस दें कि सचमुच वो क्या फॉलो करें और क्या न करें। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि आत्मा मूल रूप में पवित्र है, और हमारी भारत की सभ्यता, भारत की जो महानताएं थी वो प्योरिटी बेस्ड थी, प्योरिटी थी यहाँ, चाहे वो महाराणा प्रताप के चरित्र से देखो, चाहे शिवाजी के चरित्र से देखो, चाहे स्वामी दयानंद को देखो, चाहे स्वामी विवेकानंद को देखो, ये लोग अभी हुए हैं, ये काल्पनिक नहीं है। इनके जीवन में महानताएं, इनकी सफलताएं, इनकी विजय, या ये जो हीरो बने हैं, उसका आधार पवित्रता ही था। पवित्रता जब हमारे देश में थी तो हमारा देश विश्व के लिए गुरु था, जगत गुरु था। बहुत लोगों को पता नहीं है कि भारत से ही सारी धन संपदा सारे देशों में फैली है, भारत से ही शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन भी भारत से ही बाहर गई है, अब वहाँ के एक्सपर्ट लोग होके उसे वापस यहाँ ला रहे हैं। तो प्योरिटी बेस्ड है अच्छाइयाँ सब कुछ, और हम आत्माएं भी प्योर हैं, हमारा मन भी प्योरिटी की मांग करता है। देखिए, मन में जरा शांति हो जाए, हमें जरा सा क्रोध आ जाए, भले ही तब हम समझेंगे क्रोध करना जरूरी था, लेकिन हमें वो अच्छा तो नहीं लगता। दूसरा व्यक्ति हमसे क्रोध कर रहा हो वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा व्यक्ति अहंकारी हमें दिख रहा हो हमें लगता है इसका अहंकार अच्छा नहीं है, तो वही चीज हम में भी न हो। तो प्योरिटी को बीज समझते हुए हम हर चीज को फॉलो करें, पाश्चात्य सभ्यता की बात है, जो उसमें ऐसी चीजें हैं कि वहां हमारी प्योरिटी पर वो कुटाराघात कर रही है, हमें पवित्रता के मार्ग से अलग ले जा रही है, उनकी ओर से हम आंखें बंद कर लें। क्योंकि अगर वेस्टर्न कल्चर की हम बहुत गहरी स्टडी करें तो देखो, मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा एक बात, कोई भी सभ्यता जब नष्ट हुई है संसार में तो उसका एक ही कारण रहा है, पाप और अपवित्रता। और जिन सभ्यताओं में अब अपवित्रता बहुत है, यही सबसे बड़ा पाप भी है, वो भी समझ लो अब नष्ट होने के कगार पर आई हैं। तो ये बहुत सारी काम प्रधान जो संस्कृति हैं, ये अब उस देश को समाज को नष्ट करेंगी। तो ऐसी सभ्यता को फॉलो करना हमारी समझदारी नहीं है। हमारी सभ्यता को वो फॉलो करेंगे, हम देख सकते हैं। ये बात मैं कह दूं आपको बिना रुके, हमें ट्रेन में कई बार विदेशी मिल जाते हैं, भाई ने सिर पे टोपी पहनी हुई है, धोती पहनी हुई है, सफेद कुर्ता, और बहन जी ने सलवार वही पंजाबी ड्रेस पहनी हुई है, मेहंदी लगाई हुई है, और वही इंडियन सब चीज। हम उनसे पूछते हैं, डू यू लव इंडियन ड्रेस? यस, इट्स वेरी गुड। तो देखो, उन्होंने अपनी छोड़ दी, हमारी फॉलो करने लगे। सत्य तो यही है कि भारत को ही सबको फॉलो करना चाहिए, हम अपने को इतना महान बना दे। ये गंदगी जो भारत में आ गई है, जिससे कई लोग विदेशों में भी भारत से घृणा करने लगे हैं, जो आजकल बहुत सारे केस हो रहे, रेप के, ये वो, सबको घृणा होने लगी कि भारत में क्या हो गया, चाहे करप्शन के मामले में। तो हम अपने आदर्श को फिर से प्रस्तुत करें, कायम करें, तो निश्चित रूप से संसार इसे फॉलो करेगा।
0: बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी आपने। कुछ दिनों पहले मैं नेट पे था, तो मैंने देखा कि जो पश्चिम के युवा हैं, वो भारत और पूर्व में जो सभ्यता और संस्कृति रही है उसकी तरफ उनका रुझान जो है बढ़ता चला जा रहा है। वो जानना चाहते हैं यहाँ के आध्यात्म को, यहाँ की संस्कृति को। और ठीक इसके विपरीत हमारे युवाओं में वहाँ के लिए रुझान पैदा हो रही है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं। और तो ये देखने में बड़ा अजीब सा और अटपटा सा लगता है कि वो हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं और हम कुछ ढूंढने के लिए वहाँ जा रहे हैं।
1: इन चीजों से तंग हो गए, उन्होंने ये भोग करके, फैशन करके, खा पी के, विषय विकारों में रत रह के देख लिया और फाइनली समझ गए कि दिस इज नॉट रियल लाइफ, ये तो पतन का मार्ग है। इसलिए फिर से, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हर मनुष्य के मन में, संसार में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये भरा हुआ है कि भारत से ही हमें सब कुछ मिलेगा, शांति मिलेगी, चाहे रियल सभ्यता मिलेगी, चाहे प्योरिटी मिलेगी, चाहे सत्य ज्ञान मिलेगा, तो वो फिर से भारत की ओर आकर्षित होते हैं। और देखिए, हमारे यहाँ भी जैसा मैंने कहा, 10,000 कम से कम विदेशी यहाँ पर आते हैं, ज्ञान योग सीखते हैं। उनकी आप ड्रेस देखो, हमारे भारत के लोग भी, हमारे आबू के लोग जब उनकी ड्रेस देखते हैं, बहनें फुल ब्लाउज का, फुल बाहों का ब्लाउज पहने हुए हैं, साड़ी पहनी हुई है सफेद, बिल्कुल अंग प्रदर्शन है ही नहीं, उनके चेहरे अब चमक रहे हैं।
0: चीन के राजदूत का एक बार आना हुआ था कार्यक्रम में, तो एक बहुत सुंदर बात कह रहे थे, जो भारत की महिमा आप सुना रहे हैं, कि चीन में कहावत प्रसिद्ध है कि यदि तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। ये हम सबके लिए कितने गर्व की बात है और कितनी ऊंची चीज है। तो हम अपनी संस्कृति के लिए सच्ची बहुत ज्यादा सम्मान रखें। और जहां तक ड्रेस की बात आप कह रहे हैं भ्राता जी, तो कहीं ना कहीं जो लोगों की दृष्टि में जो गंदगी आती है या किसी ना किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की घटनाएं होती हैं, तो ये कोड भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है।
1: तो इसका इफेक्ट है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो शायद मेलबोर्न थी या कौन सी जगह, ब्रिस्बेन, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था। तो मुझे जो लेकर गया था वो किसी लेडी से बात कर रहा था, उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल सिंपल, नीचे घाघरा सा, ऊपर लाल, और हाथ में जो थैला लिया हुआ था, जैसे हमारे यहाँ बोरी के थैले नहीं बनते, कंतान जिसे कहते हैं, वो थैला। मैं सोचे, बहुत देर तक बात कर रहा, 15-20 मिनट हो गई, मैं सोच रहा ये व्यक्ति, हमें प्रोग्राम में जाना, इस लेडी से इतनी लंबी बात कर रहा है। बात करके वो आ गया, मैंने उससे पूछा, थी कौन भाई, तुम इतने मगन होके बात कर रहे थे? उसने कहा, ये इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार है। मैं तो हैरान हो गया
0: जी।
1: उसकी ड्रेस और हाथ में थैला देख के, और वो घर में नहीं, यूनिवर्सिटी में थी। मैंने कहा, देखिए इन लोगों ने सिंप्लिसिटी अपना ली है। तो वास्तव में ड्रेस का इफेक्ट विचारों पर पड़ता ही है। हम स्वयं भी देख लें, हम सफेद परिधान पहने हैं, हमारे विचार सुंदर होते हैं, हमने भी देखा। हालांकि कुछ सफेद पहनने वालों के खराब भी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर हम ऐसे वैसे कपड़े पहन लें तो हमारे विचार उससे अवश्य प्रभावित होते हैं। हम गंदगी लपेटे हुए हो, हम नहाए न हो दो चार दिन से, हमारे विचार मैले हो जाते हैं। तो एक्चुअली जितनी स्वच्छता है हमारे अंदर, जितना हम वेल ड्रेस्ड हैं, उतना हमारे विचार भी सुंदर होंगे। तो कहीं ना कहीं इस परिधान का इफेक्ट हमारे विचारों पर पड़ता ही है
0: जी। और वैसे भी कहा भी जाता है भ्राता जी कि व्यक्ति के परिधान से उसके व्यक्तित्व की भी झलक मिलती है। आपने जैसे कपड़े पहने हैं उससे आपके विचार कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, वो परिलक्षित होता है। और दूसरी तरफ जो भ्राता जी मैं कह रहा था आपको कि एक समाज में जो बहुत ज्यादा आजकल केसेस हो रहे हैं, चाहे वो बलात्कार की बात है, चाहे वो गलत और एक्टिविटीज की बात है, तो मैं ये विशेष जानना चाहता था कि आपका विचार क्या है कि इस प्रकार के जो परिधान, जो पश्चिमी सभ्यता की देन है हमारे देश को, हमारे देश की सभ्यता, हमारी संस्कृति वास्तव में बहुत ऊंची है, हमारा परिधान इतना श्रेष्ठ रहा है जिसके लिए आदर और सम्मान पैदा होता है, तो ये जो एक पश्चिमी ड्रेस आजकल ज्यादातर हमारी बहनें पहनती हैं, उसके लिए आपका क्या विचार?
1: देखिए, जो ये आजकल केसेज हो रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं केवल वस्त्रों को नहीं मानता, उसके जिम्मेदार मूल रूप में गंदी मूवीज। एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसने बिल्कुल सीधे साधे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन मूवी गंदी देख रहा है, तो उसके विचार गंदे हो जाएंगे। और दूसरा इसका जिम्मेदार है मनुष्य के अंदर बढ़ी हुई सेक्सुअल फीलिंग्स। सेक्सुअल फीलिंग्स इतनी बढ़ गई है आजकल, मैं तो बूढ़ों को देखता हूँ, बात तो बड़ी लज्जा की होती है, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग सेक्सुअल फीलिंग्स से मुक्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन वस्त्र भी वो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। जैसे अभी आपने सुना हो 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म का केस हुआ है, तो उस लड़के ने बता दिया पुलिस को कि उसके मोबाइल में 5 ऐसी अश्लील मूवी भरी हुई हैं, वो उन्हें देख रहा था और फिर वो अपने को रोक नहीं पाया। उसकी वो भावना इतनी प्रबल हो गई, दूषित भावनाएं, कि उसने ये कुकृत्य कर दिया। तो ड्रेस भी है, लेकिन ये जो मूवीज हैं मूल रूप से, हम फिर उस बात पर आ जाएं, अगर हमारे मूवी बनाने वाले लोग कुछ, मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, समझदार हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि वो समझदार हैं। वो संसार को क्या दे रहे हैं, वो युवकों को क्या दे रहे हैं, और इससे वो संसार को पतन के गर्त में ले जा रहे हैं, उन्हें इस बात की अवेयरनेस हो जाए तो वो थोड़ी अच्छी मूवीज दें परों से, और उससे बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, फैशन तो वस्त्र और फैशन डिजाइनिंग, और ये तो आजकल बहुत बड़ा कारोबार है, इसमें लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और बहुत बड़ा कोर्सेज चल रहे हैं, बड़े कारोबार चल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वही कोई बहुत बुरी चीज है, लेकिन उसमें नग्नता ना हो, उसमें ऐसा ना हो जो दूसरों की इम्प्योर फीलिंग्स को वो चीजें बढ़ाएं। बस इतना अगर हम फैशन पर ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा, सुधार होगा समाज का, और इसमें जो अननेसेसरीली खर्च होता है उससे भी लोग बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं, बच्चे देख के आते हैं बाजार में, ये है उसकी फ्रेंड ने ये पहना हुआ, वो भी घर में आके माँ को परेशान करते हैं, मुझे तो यही चाहिए, तब तक रूस जाते हैं, खाना नहीं खाते वो बेचारे गरीब माँ बाप, उन्हें कहीं ना कहीं से करके देना ही पड़ता है, तो इस समस्या से भी वो मुक्त हो जाएंगे।
0: निश्चित रूप से भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर बातें रखी हैं जिनसे युवाओं को भी अपने आप को थोड़ा सा बचाना है, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाना है। और जो ऊपर का तबका है, मीडिया का प्रभाग है, गवर्नमेंट भी है, यदि एक कड़ा रुख अपनाती है इन सब चीज़ों के लिए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन की एक सुंदर बयार आएगी और सब कुछ देखते ही देखते परिवर्तित हो जाएगा। हम एक सुंदर सभ्य और श्रेष्ठ समाज की ओर बढ़ेंगे जिसकी आज कहीं ना कहीं हमें कमी महसूस होती है, कई कारणों से लज्जा प्रतीत होती है कि हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। तो यदि ये सारी चीजें की जाए तो निश्चित रूप से हम एक सुंदर भविष्य की ओर जाएंगे। इस चर्चा को भ्राता जी आपके साथ आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथियों, आपने देखा कि युवा जीवन बहुत ही मूल्यवान है, श्रेष्ठ है, और इसमें हमें ये निर्णय करना है कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार सद्गुणों को अपनाकर, किस प्रकार बुराइयों से दूर रहकर औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। हमें केवल औरों के आदर्श पर नहीं चलना है, लेकिन ये भी निश्चित करना है कि हम स्वयं भी औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, हमारे जीवन को देखकर दूसरे भी सीखें। ऐसा तभी हो पाएगा जब हम अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करेंगे और बुराइयों को छोड़ते चलेंगे। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट, देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मेरा नाम है मंजू। मैं बाड़मेर से हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

उसको सौगातें उतनी मिलेगी। ला ला ला।

तारों भरी नामी ने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए।

0: अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
1: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में। तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सब की गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
4: लाइफ इज अ सॉन्ग, जीवन एक बहुत सुंदर संगीत है। सिंग इट, सिंग इट। जीवन एक बहुत सुंदर गीत है और इस गीत को हमें गाना बजाना आना चाहिए। मुझे एक सिंगिंग कंसर्ट में बुलाया गया और मुझे ये बताया गया कि ये कंसर्ट जो है कुछ अलग है, यूनिक है। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे। चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है,
5: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक देकर के संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे? बाबा, क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला, वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? ये कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: तेरी पूजा

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुले छा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुले छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है। बहुत ही फायदा करती है तुलसी, और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ, और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियां, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियां जरूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोड जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियां बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोड जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं तुलसी के पत्तियां। बस आपको जरूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियां लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताजा हरी पत्तियां लेकर के, फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, श्वास की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में
तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा। चाय में जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो, और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी, और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं, और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत, और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे
1: हैं। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए।
2: अच्छा, तो ये पृथ्वी
1: जी, जी
2: और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
1: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
2: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम
1: जी, आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
2: जी, जी जी जी।
1: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी जरूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप की सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 वाला फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम, कुल्फी, और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप, और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में आप पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है, और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए, और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए, और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में, इस पात्र में भरना है, और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
0: हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
1: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है, और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
0: जी,
1: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं, और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
0: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
1: जी, मैं तो अभी ऑन किया था।
0: जी जी, तो आज का प्रश्न है, प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
1: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेत के 5 तत्व रखे है
0: जी,
1: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है, हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
1: जी बहन
0: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाए, कुल्फी बनाए, चिवड़ा बनाए या भोजन बनाए, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता, इसलिए है प्रकृति आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के पांच तत्व में से एक तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी पांचों को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज का प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से, और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का, कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं, आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग सुरेश भाई।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
0: जी,
2: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते। आज देखो कोई भी बात हो तो, जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितनी ही बातें हो सकती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन
0: जी,
2: कोई
0: जी,
2: करता
0: जी।
2: नहीं वो करता नहीं, बात ही करता है
0: बिल्कुल।
2: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद इसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
0: जी।
2: तो आज कई सारी बिजली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
0: जी,
2: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
0: जी।
2: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊं तो एक सैंपल बताऊं तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
0: जी।
2: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है, और बात कहाँ कहाँ से चली जाती है,
0: पाया ही चेंज हो जाता है
2: शायद, अच्छा विषय चेंज हो जाता है
0: जी।
2: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले कुछ साल भर में कोई आगे कुछ हुआ तो ये बात भी आगे आ जाती है इस वक्त
0: जी।
2: तो बात का वचन करते हैं लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो ये बात ठीक है, ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
0: जी।
2: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
0: जी।
2: तो आज शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने दो, बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
2: तो यही चाहूंगा आपके दीदी से, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है।
0: जी जी जी,
2: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
0: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
0: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
3: विषय बहुत बढ़िया है
0: जी, थैंक यू।
3: के पहले तो एक फेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मिल का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
3: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
3: दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
0: जी।
3: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
0: जी।
3: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
0: जी।
3: और
0: बिल्कुल
3: इसके, और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
0: जी,
3: वो
0: जी,
3: पहले
0: जी।
3: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाएंगे और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
3: हाँ ये बात है
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से। हेलो,
4: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
4: बस अच्छे है, काम कर रहे। तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल करके बात करता हूँ।
0: जी जी स्वागत आपका। तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
4: हाँ वो तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी।
0: अच्छा ठीक है
4: जी। और दीदी हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना, इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ, और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते है, हमारे गुजराती में बोलते है, तो कह के अरे तुम तो ये है। फिर आदमी को, उस इंसान को भी पत्नी के बारे में, तुम्हारी वाइफ इतनी ये है, खराब है
0: जी,
4: तो
0: जी।
4: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं
0: जी।
4: तो
0: जी,
4: फिर
0: जी।
4: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
0: जी।
4: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ, चलो तुम्हारे पति ने ये किया, चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो, कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए हैं, ना उनके घर में झगड़ा है या ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो ये बात है आग बुझाने की।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
4: जी जी सही बात है दीदी
0: जी, बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
4: थैंक यू
0: जी। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
5: अभी बजे हैं सुबह के 10, स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं। हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है घर परिवार में आजकल, ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया। उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था। इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया। तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं, इसके विचारों में खोई होगी ना इसलिए दूध उबल गया। और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम कहाँ करती है, ये तो ऊपरी मन से करती, मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली जबकि कारण कुछ था ही नहीं। एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया। अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती। लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें, वो भी तो शुरू हो गई, फिर तूतू मैं शुरू हो गई। अब बात जो थी दूध उबलने की वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो 4 दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे 8 दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया। अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया, लेकिन इतनी तूतू मैं हुई, इतनी तूतू मैं हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में और मेन बात तो दब गई और दूसरी बातें सामने आई। वो उनकी उछाले, क्या फायदा मिला। घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है। अगर हम फट फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है। अब बहू को आप 4 सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, 4 सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने 4 सुनाई, 8 सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी, फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया। अब क्या फायदा मिला, भाई दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई। अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दे तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी। अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है, फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई। वो कहते ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए, बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले। कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए। तभी वो परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
1: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहू
1: बहू
0: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्व, उनके नाम बताना है और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन, झूठी माया, झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: काए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और राम राम सर। शनिवार की सुप्रभातम, कैसे हैं सब? राजी खुशी हैं? चलिए भाई, प्रभा पंडिताइन आप सबके प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमेशा हम आपको कोई कहानी बताते हैं और कहानी में कोई ना कोई शिक्षा होती है। आज भी एक ऐसी कहानी घमंडी मगरमच्छ और शांत कछुआ की सुना रहे। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता रहा, वही नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ जानता रहा कि वो कछुए को खा नहीं सकता, कहे कि उसका खोल बहुत मजबूत था। कछुआ भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि मगरमच्छ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए से कहा, ना तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ और ना ही तुम मुझे नुकसान पहुँचा सकते हो, इसलिए काहे ना हम दोनों मित्र बन जाए। कछुए ने शांत स्वर में कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है, हम दोनों में बहुत अंतर है। ये सुनकर मगरमच्छ को बहुत क्रोध आया। वो बोला, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें नदी से बाहर फेंक दूंगा, फिर देखूंगा तुम वापस कैसे आते हो। कछुआ चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी, घमंड करे वाला अंत में हार जाता है। इस सुनकर मगरमच्छ और अधिक क्रोधित हुई गवा। उसने कछुए को धक्का दिया, कछुआ तुरंत अपनी खोल में चिप गया। मगरमच्छ उसे उठाकर नदी से बहुत दूर मैदान में फेंक आया। जब कछुआ अपने खोल से बाहर निकला तो उसने स्वयं को मैदान में पाया। मगरमच्छ बोला, यदि फिर कभी नदी में आए तो दोबारा फेंक दूंगा। कछुए ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, दूसरी नदी बहुत दूर है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब या तो मुझसे क्षमा मांगो या नदी में लौटने का विचार छोड़ दो। कछुए ने कहा, मैं धीरे धीरे सही पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर मगरमच्छ वहां से लौट पड़ा। रास्ते में वो भटक गया और एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गया जहां बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी, और जैसे ही वो वहां पहुंचा मिट्टी में धंसे लगा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना प्रयास करता उतना ही अधिक धंसता जाता। अब उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे मगरमच्छ की पूंछ की आवाज़ सुनाई दी। वो पलट कर वापस आया और मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ विनती करते हुए बोला, भाई मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। कछुए ने कहा, तुम्हें तो अपने बल और घमंड पर बहुत अभिमान रहा, फिर मैं तुम्हारी सहायता काहे करूँ। मगरमच्छ ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगे लगा। तब कछुए को ऊपर दया आ गई, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। बहुत देर तक मेहनत करे के बाद मिट्टी धीरे धीरे बह लगी और मगरमच्छ बाहर निकलकर पानी तक पहुंच गया। मगरमच्छ भावुक होकर बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, आज से हम सच्चे मित्र बनकर रहेंगे। कछुए ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली और इसके बाद मगरमच्छ कछुए को अपने पीठ पर बैठाकर नदी में घुमाता और दोनों नदी किनारे पेड़ की छाया में बैठकर प्रेम से बतियाते रहते। इस कहानी से आपको शिक्षा का मिली, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कहे कि घमंडी व्यक्ति अंत में स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाता है। हमें हमेशा विनम्र, दयालु और सहायक बनकर रहना चाहिए। सच्ची मित्रता प्रेम, सम्मान और अच्छे व्यवहार से बनती है। साथ ही क्षमा और दया का भाव दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। तो देखिए भाई, यही बात हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है, जबकि हमारे जीवन में ज़्यादा होती है, क्योंकि मनुष्य के पास छोटी छोटी बातों के लिए बहुत घमंड है और वो घमंड कभी ना कभी हमें ही मुसीबत में डाल देता है, जैसे मगरमच्छ को। लेकिन वहीं पर कछुआ प्रेम भाव का प्रतीक, उसने उसको निकाल दिया। लेकिन हम तो देखते हैं कि किसी ने मुझे दो बात सुनाई और अब वो मुसीबत में है तो बहुत खुश होते हैं, कहते देखा उसको उसके कर्म का फल मिल गया। ये नेगेटिव भाव कहीं ना कहीं इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जानवर एक बार भूल जाए लेकिन मनुष्य नहीं भूलता और दूसरे की पराजय पर बहुत खुश होता है। और मैं समझती हूँ कि इंसानों वाली सोच तो नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया उस दिन के बाद किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। खुशी उड़ती हुई तितली की जैसे है जिसे पकड़ने के लिए आप जितना दौड़ेंगे ये उतना ही आपसे दूर चली जाएगी। यदि आप शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके कंधे पर आके बैठेगी। खुशी के पीछे मत भागो, उसे महसूस करो। भले ही कोई आपको कम आके, अगर आप अपनी स्वाभाविक शक्तिशाली मानसिकता में दृढ़ रहते हैं वही आपकी सुपर पावर है। न संघर्ष कम होता है, न संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो उम्र है और हमें उसका कहीं से अंदाजा ही नहीं है। हर साल एक कम होता जीवन से, लेकिन फिर भी हम बड़े धूमधाम से केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं। अरे जिंदगी का एक साल कम हो रहा भाई। जीवन की सबसे महंगी वस्तु है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसीलिए कहते वर्तमान में जियो जियो। जो वर्तमान की वैल्यू को समझ जाता है उसका आने वाला कल भविष्य भी संवर जाता है, क्योंकि जो आज है वो कल पास्ट होगा और कल प्रेजेंट होगा और परसों फ्यूचर होगा। तो आज का दिन हमने अच्छी तरह बिता लिया तो कल हम क्या कहेंगे, कल हमारा दिन बहुत अच्छा बीता और कल बहुत अच्छा बीता और आज की कीमत हमको है तो आज का दिन भी मेरा अच्छा होगा और कल और आज अच्छा था तो भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। कहे का मतलब हमें वर्तमान में रहना है। कहते हैं बीत गया वो सपना है, आने वाला कल कल्पना है, लेकिन आज तो अपना है। जो अपना है उसको तो संजो लीजिए, उससे तो जीवन में जो कार्य करना चाहता है वो कर लीजिए। तो जीवन की सबसे महंगी वस्तु है आपका वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैं दिखता तो नहीं हूँ पर हर पल आपके साथ रहता हूँ। जब आप खुश होते हो तो मैं वजह बनता हूँ, जब आप उदास होते हो तो मैं हिम्मत बनता हूँ और जब आप कुछ नहीं समझ पाते तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। दुनिया हमेशा साथ छोड़ देती है लेकिन मैं कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। और ये बात सही में एकदम सही है, और दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, शायद ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे किसी ने हाथ पकड़ कर सहारा दे दिया हो। इस अदृश्य ताकत को हम परमात्मा कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते और हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ते। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। कठिनाइयाँ जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उपहार दे जाती हैं जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। है कि नहीं सही बात? अरे भाई हम तो कभी गलत नहीं न करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी आंखें जहाँ बंद हैं वहाँ खुल जाएं। निरंतरता बनाए रखे, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अपनी नई नवेली दुल्हन किरण को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में मिली नई चमचमाती गाड़ी से शाम को दिनेश लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था। किरण ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जानी मन, मजे लेने दो। आज तक दोस्तों की गाड़ी चलाई है, आज अपनी गाड़ी है। सालों की तमन्ना पूरी हुई। मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे डैड से मांग करी थी। किरण बोली, अच्छा म्यूजिक तो कम रहने दो। आवाज़ कम करते हुए किरण ने कहा। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक भिखारी आ गवा। बड़ी मुसीबत से ब्रेक लगाते पूरी गाड़ी घुमाते हुए दिनेश ने बचाया। फिर तुरंत उसको गाली देकर बोला, अरे मरेगा क्या भिखारी, इस देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। किरण गाड़ी से निकलकर उस भिखारी तक पहुंची तो देखा बेचारा अपाहिज था। उससे माफ़ी मांगते हुए पर्स से 100 रुपये निकाल कर उसे दिए और बोली, माफ़ करना काका, वो हम बातों में कहीं चोट तो नहीं लाई। लीजिए, हमारी शादी हुई है, मिठाई खाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। उसे साइड में फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया। भिखारी दुआएं देने लगा। गाड़ी में वापस आकर जैसे ही किरण बैठी, दिनेश बोला, तुम जैसों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। किरण मुस्कुराते हुए बोली, भिखारी तो मजबूर था, इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर। जानते हो, खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में। आपने भी तो पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन भिखारी हुआ, वो मजबूर अपाहिज या एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े और किसी की नई गृहस्थी शुरू हो। उस पर दहेज मांगना भीख नहीं तो का है, बोलो। दिनेश एकदम खामोश, नीची नजर की शर्मिंदगी से सब सुनता रहा, क्योंकि किरण की बातों से पड़े तमाचे ने उसे बता दिया था कि कौन है सचमुच का भिखारी। जी हाँ, ये रोग, ये बीमारी कैंसर की तरह हमारे पूरे समाज में घर घर में फैल रही है। हर रोज हम टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, दहेज के कारण कितनी अबोध कन्याओं की बलि दी जा रही है। बाद में सुसाइड का नाम दे देते हैं या कुछ और कर देते हैं, और मरे के बाद भी उसको छोड़ते नहीं, उसके चरित्र पर कुठाराघात करते हैं। ये हमारे समाज में एक कैंसर के रूप में फैल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपकी बेटी को तो आपने दे दिया, लेकिन आपके घर आपने ले भी लिया, लेकिन आपके घर में भी तो बेटी होगी। अगर उसके साथ ऐसी ही कोई घटना हो, आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्यों ना हम अपने भाग्य का और अपने आत्मबल पर विश्वास रख के अपने पैरों पे खड़े होके अपनी इच्छाओं को पूरी करें। जो बाप अपनी बेटी को देता है, उसके पास होगा तो वो क्या नहीं देगा, लेकिन उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। पिता को भी अच्छा लड़का चाहिए, बेटी सुखी रहे, यही सोचते हैं, लेकिन कई पढ़े लिखे मूर्ख आज भी इस का कहेंगे अंधविश्वास की नगरी में ये हो रहे हैं, डूब रहे हैं कि वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। अरे वो दे रहे हैं, लेकिन आप काहे मांग रहे हो? वो जो दे रहे हैं वो प्रेम से ले लीजिए, अपनी किस्मत से कमाइएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमें बहुत दुख होता है जब इस ऐसी घटना पढ़ते हैं या ऐसी बातें जो होती हैं, और आजकल तो हर दिन में 2-4 ऐसी खबर आ ही जाती है, और सुन के दिल को बहुत आघात पहुंचता है कि कहाँ हम समझदार, विवेक वाले, बुद्धि वाले, जिसको भगवान ने समझ दी, वो इंसान आज जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, चंद सिक्कों की खातिर चंद सुखों की खातिर, लेकिन वो सुख परमानेंट कहाँ रहता है? आखिर कानून के हाथ तो बड़े हैं, वो तो किसी न किसी तरह पकड़ ही लेता है ना, और आपका समाज में फिर नामकार हो जाता है। तो सबसे निवेदन करेंगे, दहेज मत मांगिए, बेकारी मत बनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो रूखी सूखी है वो सम्मान के साथ खाएं। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। कर्म परछाई की तरह होता है जो आपके साथ साथ चलता है, इसलिए शुभ कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं, यही में कल्याण है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उही प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। शब्दों का जाल मन को प्रभावित कर सकता है, पर सत्य का स्पर्श अक्सर मौन के निकट होता है। जिंदगी में इतनी गलतियां भी मत करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। बहुत गहरी बात है, इसको सोचिएगा। जो चीज आपके मन की शांति छीन ले, उसे छोड़ देना ही समझदारी है, चाहे वो आदत हो, सोच हो, या कोई रिश्ता हो। क्योंकि रिश्ता भी बराबरी में होता है। बराबरी का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि धन दौलत से, एक वेवलेंथ होती है, हर एक इंसान की एक सोच होती है। जब सोच एक दूसरे की मिलती है तो वो प्रॉपर होती है। हम कोशिश करें कहीं ना कहीं इन बातों में गहरा जो अर्थ छुपा है उसे समझने की। परमात्मा कहते, मेरे लाडले बच्चों, आपके द्वारा कमाई हुई जायदाद का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। कहे कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। हमारे पास्ट के कर्म बोलिए, हमारे कोई संस्कार बोलिए, कहीं ना कहीं सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। और अपने मन से खुद ही प्रतिज्ञा करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम जो कुछ करेंगे उसमें अन्याय नहीं होगा। भगवानुवाद, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। लेकिन अगर आप किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करना। वो परमात्मा हमारी गारंटी ले रहा है, और फिर भी हम जानबूझ के भी कई बार गलत कर लेते हैं। आपका छोटा सा श्रेष्ठ कर्म किसी का जीवन बदल सकता है। एक पानी रख दो, गर्मी के दिन है, पक्षियों को बोलना तो आता नहीं, लेकिन वो पानी पी के हो सकता है उसकी प्यास बुझ जाए, हो सकता है उसका जीवन बदल जाए। सकारात्मक माहौल बनाएं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें। कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अगर न समझ पाए तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, अगर वो भी ना हो पाए तो छोड़ दीजिए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हर चीज़ का अपना समय होता है, हर फसल का अपना समय होता है, तो जीवन में कुछ चीज़ भगवान पे छोड़ें। जीवन बहुत ही छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ करो। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। है कि उनको कोई फिक्र नहीं होती, हमने कोई गलत किया ही नहीं है, अदरवाइज अंतरात्मा का चोटती है, आज हमने ये गलत किया, हमने उनको ये गलत बात कही, हमने उनका दिल दुखाया। तो ईमानदारी से काम करिए, अच्छी नींद आएगी। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों से बहस करोगे तो ज़िंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के पास मन मन का ईगो है। छोटी सी सच्ची बात भी कहोगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं और कई सवाल खड़े हो जाएंगे, मनमुटाव हो जाएगा, आपस में दुश्मनी हो जाएगी। हर चीज़ ताज़ी अच्छी होती है, हर चीज़ ताज़ी अच्छी होती है, इसीलिए वो आप सुने होंगे एक मंत्र, सर्वत्र नूतनम सस्ततम सेवकान्ने पुरातने, यानी हर चीज़ ताज़ी अच्छी होती है, लेकिन सेवक मित्र और चावल पुराने ही अच्छे होते हैं। पुराना सेवक है हमको अच्छे से जानता है क्या चीज़ की ज़रूरत है, मित्र पुराने जितने होंगे उतनी आत्मीयता होगी, और पुराने चावल बहुत अच्छे खिलते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। संबंधों की यही सुंदरता है, नए सुख देते हैं और पुराने जीवन को स्थिरता और मिठास देते हैं। इरादे, जीवन है, गलतियां होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाला संभाल लेगा। चलिए भाई एक गीत और सुनते हैं, ओके बाद फिर आपसे बताएंगी। बहन जी को निकुआ सा गीतवा सुना दीजिए ना, सुनिए गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक छोटे से गांव में रामसेवक नाम का दूध वाला रहता रहा। उसके पास चार गाय थी और उन्हीं के दूध को बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। हर सुबह वो ताजा दूध लेकर नाव से नदी पार करता और शहर जाकर लोगों को दूध बेचता। शुरुआत में वो बहुत ईमानदारी से काम करता रहा, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और कमाई भी अच्छी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद राम सेवक के मन में लालच आ गया। वो सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूँ तो ज़्यादा मुनाफा होगा और कोनो पता भी नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, रोज नदी पार करते समय दूध में नदी का पानी मिलाए लगा। लोग उसके व्यवहार पर भरोसा करते थे, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। राम सेवक की आमदनी बढ़ने लगी और वो खुद को बहुत चतुर समझे लगा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में उसने काफ़ी पैसा जोड़ लिया। उसी दौरान उसकी बेटी की शादी तय हो गई। राम सेवक बहुत खुश था। उस शहर गया, बेटी की शादी के लिए महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, बर्तन और कई कीमती सामान खरीद लाया। खरीदारी करते करते शाम हो गई रही। वो जल्दी जल्दी सामान नाव में रखकर गांव लौटने लगा। नाव में सामान बहुत ज़्यादा था और नदी के बीच पहुँचते ही नाव डगमगाए लगी। राम सेवक घबरा गवा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी रही। नाव अचानक पलट गई और उसने किसी तरह तैर कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सारा सामान नदी की तेज धारा में बह गवा। उसकी बरसों की जमा पूंजी देखते ही देखते पानी में समा गई। राम सेवक नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोए लगा। वो बार बार भगवान को दोष दे रहा था, तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी। जिस धन में बेईमानी मिली हो वो टिकता नहीं। तुमने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया था, आज यूं ही पानी तुम्हारी कमाई बहा कर ले गया। ये बात राम सेवक के दिल को छू गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन प्रण किया कि अब वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। अगले दिन से उसने शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौट आया। अब उसकी कमाई भले थोड़ी कम थी, लेकिन मन में सुकून था। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वो दुख और पछतावा ही देता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत, सच्चाई और विश्वास शामिल हो। हम अपने आप से पूछें, हम दुनिया में जी रहे हैं, कितने ईमानदारी से जी रहे हैं? काहे कि कई बार हम कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लेकिन जो सब कर रहे हैं उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। सभी को जो कर रहे हैं गलत, उनको जो बो रहे हैं वो वापस रिटर्न तो मिलेगा ना। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख हो? नहीं ना। ईमानदारी से जितने हम जीते हैं रहते हैं, वही हमारे जीवन में वैसे ही प्रकार के लोग आते हैं। वो हमारे साथ ईमानदारी रखते हैं, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। काहे कि जो बोया वही तो काटिएगा ना। तो आप सब से ही कहते हैं, कहानी सिर्फ सुनाए के लिए, कनरस के लिए नहीं है, मनरस के लिए है। मन में लगना चाहे कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और सुन के वो चीज को, उस आदत को, वो व्यवहार को हम चेंज कर लें। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ़ करो। हम पहले भी आपको ये बात सुनाए हैं, कहे कि जीवन में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने दूसरों के लिए सोचा। अब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, ज्ञान और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक श्री हरि के पास पहुँचना अत्यंत ही कठिन है। भगवान को सच्चे दिल वाले अच्छे लगते हैं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, का पता यही समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। और अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी तो बड़ी ही मिलेगी, इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो अपने आसपास हो रही उन चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सभी दुनिया को चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, लेकिन हम अपने आप से पूछें हम किस किस की बात मानते हैं। तो हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं। और जिसने स्वयं का परिवर्तन कर लिया वो सही में कहीं ना कहीं निमित्त बन जाता है औरों को परिवर्तन का भी। जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है, जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। थोड़े समय अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश तो करें। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए, समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा। कई लोगों की आदतें कितना भी धोखा खाए के बाद चेंज नहीं होती, उनको फिर समय ही ठीक करता है। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है, और नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती हैं। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मीलो दूर काहे ना हो। जैसे आप हम कभी साल दो साल में मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर शनिवार रविवार आप प्रोग्राम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिले हुए ही तो हैं ना। जैसे ही हम किसी के बारे में बात करते हैं या फुनवा आता है तो उसका चेहरा सामने आ जाता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि पास हो, जरूरी है भावनाएं सच्ची हो। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को दो हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। किसी चीज़ का गुरूर मत करिए, ऊपर वाले की मेहरबानी जो हमें उस काबिल बनाया। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। अब एक बहुत बड़ी कला है कि हमें कब मौन रहना है और कब बोलना है। अगर ये हम समझ गए, जीवन में महाभारत कभी नहीं होगी। समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए, का पता ही समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी तो बड़ी ही मिलेगी, है कि नहीं। चलिए भाई और एक गीत सुन लेते हैं। ओके, बस फिर आपसे बताएंगे, सुनिएगा ये गीत।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: देखिए भाई, आपसे हम अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि बात को कहीं ना कहीं दूसरों से भी बतियाएं। कई भाई बहन हैं वो सुनाते हैं, आपने दीदी कहानी सुनाई ना, ये बात सुनाई ना, बहुत अच्छी लगी, और हम दूसरों को सुनाते हैं। ज्ञान जितना बांटा जाए, जितना प्रेम बांटा जाए, जितनी शांति बांटी जाए, उससे ज़्यादा कीमती धन नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमसे अगर कहीं गलती हो रही है या अनजाने जाने में, वो हम इन बातों को सुन के भूल जाए यानी सुधार लें। तो ज़रूर औरों को भी बताइएगा। चार अमूल्य रत्न। एक शांत गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आते थे। संत का जीवन बहुत सादा रहा, लेकिन उनके विचार अनमोल थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका समय अधिक शेष नहीं है। उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चार बेटे पिता के चरणों में बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चार ऐसे रत्न देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुख शांति और आनंद से भर देंगे। बेटों ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी वो कौन से रत्न हैं? संत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। संत बोले, पहला रत्न माफ़ी। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, बुरा कहे या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, तो उसके प्रति मन में बदले की भावना मत रखना, उसको क्षमा कर देना। क्रोध मन को जलाता है, जबकि माफ़ी आत्मा को शांति देती है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार गांव का एक व्यक्ति संत को बहुत अपशब्द कह रहा था, लेकिन संत शांत रहे। लोगों ने पूछा, आपने उसे जवाब काहे नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई हमें उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उही प्रकार मैंने उसके कटु शब्द स्वीकार ही नहीं किए। चारों बेटे पिता की बात ध्यान से सुनते रहे और वो बोले, दूसरा रत्न है भूल जाना। संत ने आगे कहा, यदि तुम किसी की मदद

करो तो उसे भूल जाओ। कभी ये उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारा उपकार लौटाएगा। सच्चा उपकार वही है जिसमें प्रतिफल की इच्छा ना हो। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक गरीब किसान की सहायता की थी। बरसों बाद वो किसान बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी संत को याद नहीं किया। फिर भी संत के मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि संत बोले, जिस उपकार को बार बार याद किया जाए वो व्यापार बन जाता है, सेवा नहीं। तीसरा रत्न, विश्वास। संत ने अपने बेटों का हाथ पकड़कर कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अपनी मेहनत और परमात्मा पर अटूट भरोसा रखो, कठिन समय में यही विश्वास तुम्हें संभालेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कई बार इंसान मेहनत करता है, लेकिन सफलता देर से मिलती है, और ऐसे समय में जौन व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। ईश्वर कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। संत ने कहा, चौथा रत्न है वैराग्य। अब संत की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने कहा, यह संसार नश्वर है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, इसलिए धन मोह और लोभ में इतना मत उलझो कि जीवन का आनंद ही खो दो। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति का मन संतोष से भरा होता है वही वास्तव में सबसे धनी होता है। चारों बेटे भावुक हो उठे। उन्होंने पिता के चरणों में सिर रख दिया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक तुम इन चार रत्नों, माफी, भूल जाना, विश्वास और वैराग्य को अपने जीवन में संभाल कर रखोगे, तब तक कोई भी दुख तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद चारों बेटों ने पिता की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया। समय बीतता गया, लेकिन वे सदैव शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहे। इसलिए कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टता से बड़ा धन दुनिया में कोई भी नहीं होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वो कभी भी किसी परिस्थिति से घबराएगा नहीं। आई है चली जाएगी, इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आया है और वो चले जाने वाला है। हम भी अपने जीवन में इस बात को अपनाएं। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो। कहा है कि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। ये बात हम आपको सुनाए ही हैं। तो जीवन में कोशिश करें, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें। हमें अच्छी अच्छी बातें ऐसा लगता है कि रिपीट करके आपको सुनाएं, ताकि अगर आपने नहीं सुना हो तो फिर याद सुन लें। और कभी अच्छी बात दो बार भी कही जाए तो उसमें बुराई नहीं है। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है, आपको कहा। नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वे मिलो दूर का ही ना हो। और ये बात जे के समझ में आ गई, समझ लो उसके जीवन में सब कुछ आ गया। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को भी जीवन में धारण करिए। हमारे जीवन का आखिरी समय कैसा बीतेगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्म तय करेंगे। असंतुष्ट मन की मुख्य वजह परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति के बारे में लगातार सोचते रहना होता है। प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, जस की तस स्वीकार। कुछ भी वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य। जिंदगी परीक्षा, और परीक्षा में जो भी पेपर आएंगे उसका जवाब आपको देना ही देना है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अगर तुम आम की प्रतीक्षा कर रहे हो मित्र, तो समस्या मेहनत में नहीं दिशा में है।
और इंसान की दशा और दिशा तब सुधरती है जब जिंदगी में उसकी सोच सकारात्मक होती है। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति अपने समय पर सफलता प्राप्त करता है। धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और स्वयं पर विश्वास रखिए। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। विश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता की सच्ची कुंजी है। और जो व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया फिर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है। बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बराबरी वालों के साथ दोस्ती निभाइए। कहे का मतलब हमारे को मालूम होना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं, उसको भी उड़कर जाकर ढूंढना पड़ता है। मनुष्य के पास सबसे अच्छी पूंजी है उनके अच्छे विचार। काहे कि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। आपको किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कौशल को दिन ब दिन बढ़ाते रहें। जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। वैचारिक मतभेद भले ही कितने हो जाएं, लेकिन उम्र का लिहाज और शब्दों की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। खुद को समझ लेने के बाद दूसरों से शिकायत धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगती है। जब तक आत्मबोध ना हो तब तक ये बातें जीवन में घटित नहीं होती। कोशिश करें आत्मबोध को बढ़ाने की। आप जो अच्छी चीज़ें चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी मन से कहें। ऐसा करें से उन्हें पाने के लिए ज़रूरी सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जाता हो। अंत में यही कहेंगे, रहम दिल वो व्यक्ति बन सकता है जिनकी नज़र सदा दूसरों की विशेषताओं पर हो, उनकी कमियों पर नहीं। दूसरे की बुराई देखना जैसे दूसरों की फेंकी हुई गंदगी को उठाना है। अतः बुराई को न देख सबकी अच्छाइयों को देखिए। अंत में टाइम हुई गवाह है। आप सबसे विनती करते हैं कि जो बात कही है उन्हें जीवन में उतारिए। आज के लिए बस इतना है। अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: वर्षों का ये कारवां।
1: रतन राम राम।
2: राम राम कंचन। राम राम
1: की करे भाई तू?
2: अरे भाई मैं तो मजा में हूँ, तू सुना। और
1: बस काले तो घणो मजो आयो, काली बात इस दिमाग में है। काले गांव में घूमे ने बड़ो अच्छो लागो मन तो।
2: अरे आपा गोलियाफली गांव में घूमवा क्या, वो तो मारा भी दिमाग में नहीं निकल रो, घणो मजो आयो। मने तो बटारी बात याद आ रही।
1: सही बात है, गांवरी तो गांवरी से बात आवे। गांव में जाओ तब अपने रख रखाव रहेंगे और उठा पड़े नी, गांव में कौन है कोई हाल चाल है, जाओ यदि पता चले।
2: वो तो है ही, संस्कृति नजर आवे बटा के, रीति रिवाज आपने खबर पड़े कैसा रीति रिवाज है कई है। मने तो यह बात बढ़िया लगी कंचन के आपा जैसे ही गांव में गया।
1: हाँ।
2: और वे दुकाना नहीं आई जटे? हाँ। टेलर की दुकान ही, नाई की भी दुकान ही।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: तो ये टेलर भाई कैसे मुस्कुरान आपनो बोलिया बेन जी राम राम।
1: सही बात है, वो तो मने को अच्छो लागो, घणो अच्छो लागो।
2: एक बार आपा पहलिया मिलिया और दूसरी बार आपा काले मिलिया तो भी वे आपने एकदम देखता इन राम राम क्यों सच्ची मरन तो असो लागो अपनो पन लागो। हक शहरा में अड़े भड़े कुंड रहे जो ठा कोनी वे।
1: सही बात है, शहरा में तो पास में कुंड रहे, कोई वेरी होए करने कोई खबर नहीं पड़े, सब अपने अपने में रहे है। लेकिन गांव में पहले प्रवेश करी तो मैंने जरूर पूछी हाल चाल या कौन है की कर आया है, कोई हो आप रोटे रिश्तो कोई है या आप कटुतिया थाके आए, पहला पानी पूछी ला है नी।
2: हाँ जी बात।
1: तो देखो भाई भी कतरा अच्छा सा अपन पूछिया के भाई आप की करो, घर में सब ठीक तो है, सब राजी खुशी तो है, तो अपनापन लागे वो।
2: और देखो कतरा वेगा वे दुकान खोल दी दी।
1: हाँ
2: सेरा में आपा देखा नौ नौ दस दस बजा तो उठा, पर उठ उठन वा ना धोन जावे जतरे कतरी बच जावे और अटे अतरा वेगा आई जावे।
1: देखो गाँव रो इस तो है, सुबह री जो शुरुआत वे सुबह जल्दी ना धोवे ने उठे पूजा पाठ करे ना आपरे जो भी रोजी रोटी रे वास्ते जावे, घरी पन भी औरत हो सब कुछ काम करे, सबने टिफिन बनावे देन अपने काम में लाग जावे।
2: अच्छी बात है।
1: आप देखियो नी काले?
2: हाँ देखियो मैं भी।
1: हाँ तो देखो आप आगे गया तो देखो एक बाऊजी धोती पगड़ी और अंगरवी की पहनवा वाला।
2: अरे वाको पेरवेस देखन तो मने गीत याद आ गयो।
1: बस तन तो गीत री उजे है और तो कोई नहीं उजे।
2: तो मैं कई करूँ गीत याद आ गयो तो बोल लू।
1: यदि कोई धोती पोती वाला देखी जाए या घाघरा वाला देखी जाए तो गीत याद आवे तन तो।
2: तो मैं मने शो के तो मैं कई करूँ, मैं तो बोल रही हूँ।
1: बस सुना दे तू भी।

0: डोले रे।
1: वाह वाह, बड़ो घणो सोनो अच्छो गाणो गायो। सच में आ तो अपोरी एक शान है, यानी धोती पगड़ी और अंगर की राजस्थान री पहचान है।
0: यह सही है कंचन, पर वे कई रबारी बासा हा। हाँ। तो वे अंगर की पैर रखा। हाँ। और घना झना धोती और जब्बो पैर है, पगड़ी तो बांधे ही है।
1: हाँ हाँ हाँ, पगड़ी पण भी अलग अलग तरह री।
0: हाँ।
1: लेकिन जो भी अपोरे वो जो धोती और पगड़ी रो है पहनवास, वो एक बुजुर्ग रो एक निशानी है। अन्य देखे तो अपर घर बुजुर्ग याद आवे।
0: अरे मन तुम्हारा दादाजी याद आ गया, हमारा दादाजी भी ऐसे इस कपड़ा पहनता है, बस अंगरखी की जगह पे जब्बो पहनता है।
1: अच्छा अच्छा, और देखो पुटे दो लारे दो है ना, छोरा आवता था लारे।
0: हाँ, जवानी
1: देखा, आज की दुनिया में देखो पैंट शर्ट पहने हैं। अगर उन्होंने ख्याल आवे कदी के हमारी जो पीढ़ी पण भी वही वे कदी ये पहन ला, या एक कोई बुजुर्ग वही वन टाइम रहा ये धोती ने पगड़ी पहन ला कोई।
0: सही है कंचन, अबे केवे समय का लारे परिवर्तन भे रहे, तो भैया का विचार तो यही जाने कहानी संस्कृति ने अपनाई कनी अपनाई, पर खरे खर ये सब पेरवे बढ़िया लागे, पेरे सका बढ़िया लागे।
1: वो तो वेणो इससे जे समाज हर समाज में वे हर समाज री एक पहचान वे।
0: हाँ।
1: पगड़ी री पण भी पहचान वे और पहनावस्त्री पण भी पहचान वे।
0: हाँ।
1: तो आज पण भी देखो शहरों ती कोई भी आवे आप भले रिश्तेदार सब रहे, लेकिन जब गांव में आवे लानी तो अपनी पोशाक जरूर पहने ला, वह एक शान समझे।
0: हाँ अच्छी बात, तो कहवे की कहूँ खबर पड़े हाँ ये अपना बुजुर्ग है।
1: हाँ
0: बड़ा है और गावा में आपने बासा तो पेरे धोती जब्बा के अंगर की, आना आपने जो दादी लोग है जाना आप भाई भी केवा।
1: हाँ।
0: तो ये लोग ओढ़नी और घाघरा पेरे।
1: हाँ ओढ़नी और घाघरा।
0: हाँ ओढ़नी भी केवा तो साड़ी घाघरो भी केवा, साड़ी लेंगो भी केवा।
1: सही बात है।
0: तो ये कहूँ लागे हाँ देखो अपना बुजुर्ग है और यहाँ के छत्र छा में बढ़िया भी लागे।
1: सही है।
0: और कंचन थन खबर है नहीं तो आप थोड़ा किस बड़े नहीं देखे आप माता जी का मूर्त।
1: अच्छा वो पत्थरी जो मूर्त। हाँ, रास्ता में बैठा है।
0: हाँ वो लंबे लंबे आप।
1: हाँ,
0: काले वाले पूछे हो ना
1: काले
0: तो भाई ये कौन है कई है, तो वे क्यों ये तो माता जी है, माता जी ने बैठा रखे।
1: हाँ वो कालो पत्थर सो लंबो सो रखे।
0: हाँ हाँ हाँ, इलाजी इलाजी जैसा दिखे।
1: हाँ हाँ हाँ, वरना माता एक आकृति पण भी थी।
0: आकृति भी ही और जाए कसे ही शब्द में नाम भी लिख रखा, कई लिख रखे नीचे।
1: हाँ पुराना जमाना रो जो पत्थरी जो कलाकृति वे वो की दौड़ी है कुछ उगारी हो रही।
0: हाँ,
1: है
0: हाँ।
1: लेकिन जो दो औरत आती थी वहां आपको पूछे पण भी तो नहीं वे कन्नो मंदिर है।
0: हाँ तो वे इस बताया ना ये माता जी की मूर्ति है।
1: तो मैं तो हौसला लगी भाई माता जी री मूर्ति और हमने तो कोई मूर्ति रो रूप देखी जे रे, माता एक सिर्फ चित्र है वो पण भी नाली रे पास में रख के रो।
0: अरे नाली और गंदगी खतरी उखर लो पास में।
1: हे बाबा बात मत पूछो, अत्री उकल लीजिए।
0: अन वटे दीवा अगरबत्ती कर रहे क्या माता जी का वटे, और चारों मेर गंदगी। वह गंदगी देख था आपने कसो लागियो का आप जल्दी अटू निकला, मुंडा पे आपने कपड़ो बांधनो पड़ियो।
1: सही बात है। और वो बोले कि सुमे शाम तो अन्य अगरबत्ती वे नारियल फोड़े।
0: हाँ और
1: दीवा धूप वे, अमे आप भी सोचो घर में जो संध्या रे सामे दीवा बत्ती वे तो कतरी साफ सफाई वे, और वो तो नाली रे पास में, मैंने वो समझ में क्यों नहीं आयो।
0: मैंने तो आश्चर्य फेरो काम वाला कई सोचन बटे बिठा रह गया माता जी ने दीवा बत्ती और चारों मेर तो बास आ रही अपना तो माथा ही फाट जावे जैसी गंदी बास। नालिया टूटी सकी, सड़का टूटी सकी, पानी तो रेलम पेलम वेरो चारों मेर कादो कीच और बड़े उखर लो जे मुथेलिया उड़ उड़ प्लास्टिक इन चारों मेर वकर री।
1: भाई सच में आजकल इंसान पण भी एक जगह बैठी तो साफ सुथरा बैठी जन्ना आपो देवी या देवता मानव वर्णन को एरा स्थान माते बैठा सको।
0: वही तो
1: कोई राज वो मने कोई समझ में नहीं आयो, लेकिन स्वच्छता तो स्वच्छता वे वे आज कोई के इंसान स्वच्छता है तो सब कुछ है, जब तंती साफ राखो तो मन अपने आप साफ वेला। लेकिन अपोरी साफ सफाई नहीं राखो, अपोरी कोई जवाबदारी नहीं है तो फिर दुनिया ने आपको कोई समझाओ, आप और बाल बच्चा ने कोई समझावला।
0: साची बात कह रही कंचन थू। और खबर है गाया भी अटीनो अटीना फर रही ही और वे भी पोईटा कर कर और भी गंदगी, क्योंकि एक तो पोईटा एक तरफ वे ना तो वाने उठान अपने खेता में काम आवे खाद का वास्ते।
1: हाँ।
0: पर
1: वही
0: किचड़ में जो पोईटा पड़िया वे को तो और भी ज्यादा किचड़ वे रहो, और बेचारी वे गाया फिर मुंडो मार रही थेलिया या में कचरा में।
1: दोष वनारो नहीं है, दोष अपारा है, क्योंकि आप अनवर्ण जगह कटी भी डाल दो कचरो। आज घर तो अपोरी घर ही तो आंगन साफ सफाई वालो राखो और पड़ोस में जाने डालो, तो अपोरी जवाबदारी बने कि जो कचरा रही जगह है या कोई डब्बा है डस्टबिन में डालो। आज सरकार कतरी योजना बनावे सफाई रे वास्ते।
0: अरे स्वच्छता अभियान अपने प्रधानमंत्री जी या योजना बनाई सकी स्वच्छता अभियान की।
1: आपने तो ठा है कि हमें तो गीलो कचरो सूखो कचरो लावा वास्ते पण भी अलग अलग बनियारा वे डब्बा।
0: अरे कंचन मने तो बात याद आ रही कि गावा में तो लोगा ने डस्टबिन भी सरकार की तरफ नगर पालिका की तरफ दे रखा।
1: नहीं सही बात है, मारी माता जी पण भी मने हुनायो क्या आपने नगर पालिका सबने घर में दो दो बाल्टियों दी दी है गीला कचरा और सूखा कचरा रे।
0: हाँ।
1: जब गवर्नमेंट सरकार अत्रो कर सके तो अपने घर में तो अपने नजदीकी से डालना हुए तो क्यों नहीं अलग अलग करें डालो, गंदगी क्यों फैलाओ और गंदगी फैलवारे बाद में आप फिर वन्ने करने भी दोष दो।
0: अरे
1: वो
0: फिर
1: तो सही नहीं है भैया।
0: अरे सही भी नहीं है और एक तो बीमारियां भी है ना। अब देखो गाय बिस्टा में मुंडो डाल रही, अबे बटा के लुगाया कई करे साग भाजिया प्लास्टिक की थैला में बांध बांध फेंक रखी, आपा देखी ना।
1: हाँ।
0: और गाय मुंडो मार रही तो बेचारी गाय ने कई साग भाजी निकालता तो नहीं आवे थैली में, थैली समेत खावे पचे बीमार हो जावे मर जावे पचे डॉक्टर लोग के वे गाय प्लास्टिक की थैला खा गई वास्ते मर गई। तो आप गाय को थोड़ा तो ध्यान रखा।
1: सही बात है रतन के तू, वो तो अपर जवाबदारी वे जिम्मेवारी अपनी है। हर एक इंसान समझे के मारी जिम्मेवारी है तो एक ने देखे दूसरों कर सके। देखो पास में एक छोटी सी स्कूल प्राइमरी।
0: हाँ, प्राइमरी स्कूल
1: ध्यान आवे तने।
0: हाँ,
1: के देखो छोटा छोटा बच्चा पढ़े रिया भणे रिया में अपना माँ बाप अपने बच्चों ने भेजे कोई अतरी सफाई रो ध्यान नहीं है कोई स्कूल वालों ने।
0: अरे अतरी ध्यान वेते तो अतरी गंदगी ने वेती और असी बासी ना आवती बीमारी ने वेती। पर चाल कंचन अब हमारा तो थोड़ा ये गंदगी ये देख और मन थोड़ा उब गयो, एक गीत सुन ला।
1: हाँ सुना दे तू भाई।
0: तो सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है इतना इंटरेस्टिंग कि आप भी सुनेंगे तो अपने बचपन में चले जाएंगे, और जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ही है बच्चों की दुनिया। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि स्टूडियो में कौन कौन है, तो आप लोग एक एक करके आपका नाम और आपकी क्लास बता दीजिए हमारे सुनने वाले दोस्तों को।
1: मेरा नाम दीपक है, मैं प्लस वन क्लास में पढ़ता हूँ।
2: मेरा नाम अनमोल है, मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम विवेक है, मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास फाइव में पढ़ता
5: हूँ। मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
6: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास सेवन्थ में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
8: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास एट में हूँ।
0: ओके, तो हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हैं तो सभी बच्चे। अब बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे हम करते हैं, तो आज कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसपे हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है?
5: रेड।
0: ओके।
5: ब्लू।
3: ब्लैक।
0: ओके।
3: पिंक।
7: पिंक।
0: पिंक। ओके।
8: ब्लू और पिंक।
0: ओके। अच्छा, लड़कों को पिंक कलर नहीं पसंद होता क्या? नहीं पसंद होता?
3: नहीं।
0: किसी को भी नहीं होता?
3: नहीं।
0: क्यों? पिंक अच्छा नहीं होता?
5: गर्लिश लगता है, हल्का सा।
0: थोड़ा सा गर्लिश लगता है ना? राघव को क्या लगता है? राघव तो पिंक भी पहने आज।
5: नहीं, वो पिंक नहीं है।
0: पिंक नहीं है?
8: मजेंटा है ना?
0: कौन सा कलर है फिर ये? अच्छा, थोड़ा
5: तो पिंक ना,
0: पर्पल जैसा है। पिंक नहीं है? पिंक नहीं पहन सकते क्या लड़के?
5: नहीं।
0: नहीं, क्यों? पहनते हैं?
5: पहनते हैं ना?
3: पहनते हैं, लेकिन
9: हम नहीं पहनते।
0: आप नहीं पहनते?
8: मेरी क्लास में एक लड़का है, उसको पसंद है पिंक कलर।
0: किसी किसी को मतलब हो सकता है पसंद, पर ज्यादातर लड़कों को नहीं होता। ओके, अगर पिंक पहनेंगे तो क्या चिढ़ाएंगे सब लोग?
5: यस
3: यस।
0: कौन चिढ़ाएगा?
5: दोस्त।
0: क्या बोलते हैं?
3: सबसे पहले दोस्त ही चिढ़ाएंगे, लड़कियां जैसे कपड़े पहने, लड़की हो गया।
9: चपड़ी चपड़ी बोलेंगे।
0: अच्छा, ओके, और क्या बोलते हैं, मतलब चिढ़ाते किसी को आपकी क्लास में जो लड़का पिंक
5: तो चिढ़ाएंगे
0: पहनता ही नहीं हो? ओके, आपकी क्लास में जो लड़का पिंक पसंद है उसे कोई कुछ बोलता है?
8: नहीं, कोई नहीं बोलता, सब इक्वली है हमारी क्लास में।
0: कोई नहीं बोलता?
8: नहीं, लड़के को भी ब्लू पसंद होता है, लड़कों को भी पिंक पसंद होता है।
0: ओके, तो लड़कियां ब्लू पहन सकती हैं क्या?
5: यस,
3: पहन सकती हैं।
0: मतलब लड़कियां सब कलर पहन सकती हैं, बट लड़के नहीं पहन सकते सारे कलर?
9: लड़की को तो अच्छा लगता है सब।
0: हाँ, लेकिन लड़कों पे क्यों नहीं अच्छा लगता फिर सब कुछ?
3: अच्छा तो लगता है, लेकिन
5: दोस्त मजाक नहीं उड़ाते।
0: अच्छा, दोस्त मजाक उड़ाते, अगर दोस्त मजाक ना उड़ाए तो
3: फिर पहनेंगे?
5: फिर पहन सकते
3: तो अच्छा है।
0: फिर पहन सकते हैं ना, डिफरेंस तो नहीं है ना, कलर तो सबके ही होते हैं। ओके, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि जब बाहर के काम करने होते हैं ज्यादातर, जैसे बैंक का काम, अच्छा बैंक के बारे में किसी को पता है, किसी को नॉलेज है बैंक के काम कैसे करते हैं? है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा? आपको पता है कुछ? नहीं भी पता है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बच्चे हो आप लोग, है ना?
3: थोड़ा बहुत पता है।
0: थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को?
5: बैंक में पैसे निकलते,
0: ये पता है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल।
3: लॉकर्स
0: होते हैं,
9: लॉकर्स होते हैं, उनमें वैसे देखा जाओ तो जनरल होते हैं और क्लर्क होते हैं, जिसमें हम उनके पास जाते हैं और लॉकर्स के वैसे जैसे हम पैसे निकालने हो उनके पास जाते हैं, फिर उसमें काफी तरह के चेक्स होते हैं, 7 तरह के चेक्स होते हैं ज्यादातर।
0: ओके,
3: अगर हमको कैश एक्सचेंज कराना हो वो भी बैंक में होता है, कैश एक्सचेंज हो जाता है,
9: कैश वो फटे नोट होते हैं उनको हम एक्सचेंज करा सकते हैं उनसे बस।
0: ओके, ठीक है, और आप लोगों को कुछ पता है बैंक के बारे में कुछ?
8: दीदी, मुझे एटीएम से पैसे निकालने आते हैं और दूसरों को भी निकाल के देती हूँ जिनको जरूरत होती है।
0: वेरी गुड,
3: तो मुझे भी आते हैं।
0: आपको भी आते हैं?
3: जब समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है मैं तब चंडीगढ़ जाता हूँ अपने मामू के पास, मामू मेरे बैंक में जॉब करते हैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ मैं बैंक में कभी कभी।
0: ओके, अच्छा, तो आपको क्या लगता है बैंक के काम करना लड़कों का काम होता है कि लड़कियों का काम होता है?
3: नहीं, जैसे वहाँ पे तो दोनों होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं,
0: दोनों का,
3: दोनों का होता है,
0: कोई डिफरेंस नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को?
8: दोनों,
5: दोनों कर सकते,
9: दोनों
5: करते,
0: पर दोनों करते हैं क्या? बराबर है,
7: पहले के टाइम पे होता था कि हाँ लड़कियाँ बाहर काम करने नहीं जाएंगी, पर अब तो सारी इक्वल है।
3: अब तो लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलते हैं।
0: लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलती हैं अभी तो?
3: पहले सोचा जाता था क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम है, अगर इनके चोट लग जाएगी लड़कियों के तो ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा चोट लगेगी।
0: आपको क्या लगता है?
10: दोनों ही बराबर है,
3: जबकि आरसीबी को सबसे पहले गर्ल्स टीम ने वर्ल्ड आईपीएल ट्रॉफी जिताई है,
0: लड़कियों की टीम पहले जीती है,
9: और जो कि हमारी इंडियन टीम है लड़कियों की, उन्होंने भी हमारे देश के लिए पहले ही ट्रॉफी खेली है।
0: पहले खेली है, बात तो सही है। आप लोग को क्या लगता है भाई, आप लोग सीखोगे बैंक के काम करना कि नहीं सीखोगे, बड़े होके सीखोगे करोगे, बोरिंग तो नहीं लगेगा वहाँ जाके सब ऐसे?
3: मुझे तो खुद कमर्स करनी है, मुझे आई एम इंटरेस्टेड।
0: और आप लोग लड़कियों को क्या लगता है, इंटरेस्टेड है, बोरिंग तो नहीं लगता?
8: नहीं।
0: ओके अच्छा, खाना बनाना किस किस को आता है यहाँ पे?
3: मुझे आता है।
0: सबको आता है?
3: सबको आता है।
0: अरे बाप रे,
9: कुछ भी करा सकती हो।
7: दीदी मेरे को बनाना तो आता है पर खाना पसंद है ज्यादा।
0: खाना ज्यादा पसंद है? अच्छा ओके।
8: खाना खाना और बनाना दोनों ही पसंद है।
0: अच्छा सबसे अच्छा आप लोग क्या बनाते हो, एक एक चीज बताओ।
10: मैगी।
0: ओके।
3: सबसे अच्छा पास्ता या फिर सैंडविच।
0: ओके वाह।
9: मैं सबसे अच्छा पनीर।
0: अच्छा ये तो ओके, मैगी पास्ता और
6: सब्जी, कोई भी तरह की सब्जी,
0: कोई भी सब्जी,
7: सैंडविच।
0: ओके अच्छा, जैसे आप लोग बड़े हो क्या क्या बनना चाहते हो?
10: बैंक मैनेजर।
0: बैंक मैनेजर ओके।
9: क्रिकेटर।
0: क्रिकेटर दैट्स ग्रेट, बैंक मैनेजर भी बहुत अच्छा है।
3: मैं भी बैंक में जॉब करना चाहता हूँ।
0: क्यों बैंक में करना चाहते हो?
3: क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बैंक में जाना, मैं अपने मामू के साथ जाता हूँ, उनकी जॉब देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: ग्रेट,
10: बड़े होके सोचूंगा, अभी टेंशन क्यों लेनी है।
0: ओके ठीक है।
7: आईपीएस ऑफिसर।
8: आईएएस।
0: ओके तो आपको लगता है ऐसा कोई काम है जैसे बॉक्सिंग या ऐसा कोई काम लगता है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं?
3: नहीं, नहीं। लड़कियां भी बॉक्सिंग करती है, हरियाणा की काफी लड़कियां जो बॉक्सर हैं।
0: करती है ना,
3: रेसलिंग करती है, विनेश फोगाट गोल्ड मेडल दिया उन्होंने अपने देश को,
7: हमारे रनिंग की भी।
6: और दीदी अगर बॉक्सिंग के मैदान में नहीं जाना हो तो घर पे भी वो तकियों से बॉक्सिंग कर सकते
3: हैं। तकियों से या फिर अपने छोटे भाई से बॉक्सिंग कर सकती है।
7: बॉक्सिंग तो दीदी भाई बहनों के साथ होती है।
0: भाई बहनों बॉक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ?
3: मेरी छोटी बहन है वो मुझे पीटती है।
0: छोटी बहन मारती है?
3: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है, अभी तक वो सिर्फ 5 साल की होगी।
0: हाँ।
3: मेरे को मारती है वो बहुत।
10: मेरी बहन
3: जब पिटाई करती है मार देती है,
10: बहुत फिटती है मुझे।
0: आपको मारती है? वो भी छोटी है?
10: हाँ जी।
0: अच्छा,
7: राघव और मेरी बहुत अजीबो तरीके से लड़ाई होती है, मतलब कोई बात नहीं होगी तो भी हाँ आजा लड़ ले आजा।
3: जब होती है ना इतनी वाहियात लड़ाई होती है ना, फिर जो उसके हाथ में पिल्लो आ गया वो पिल्लो मार देगी, मेरे मुक्का मार देगी, कुछ भी कर देगी।
0: फिर आप नहीं करते कुछ?
3: वो छोटी है, उसको मैं इसलिए नहीं कुछ कहता ना।
0: छोटी 5 साल की है ना, बहुत छोटी
3: बहन। अभी तो बहुत छोटी है, मैं तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा बड़ी हो जाए फिर देखेंगे।
0: अच्छा फिर बराबरी से मुकाबला होगा?
9: मेरे तो बस चांटी पड़ती है।
0: चांटी पड़ती है?
3: ये अपनी बहन को पीटता चांटी चांटी।
0: बहन बड़ी है कि छोटी है?
3: बड़ी है।
0: अच्छा,
9: ये कि मैंने हमारे
3: हर घर में ऐसा होता है, अगर कोई छोटा हो तो वो अपने से बड़ों को पीटता है। अब मेरी छोटी बहन है वो मुझे पीटती है, हम उसको यही सोच के छोड़ते हैं कि अभी वो छोटी है। ये छोटा है ये अपनी बहन को मारेगा तो वो भी यही सोचती है कि
0: ये छोटा है अभी। और राघव, राघव तो छोटा है घर में।
10: दीदी मेरे को तो कोई नहीं सोचता।
7: दीदी हमारे घर में सब इक्वालिटी, उसको मार पड़ेगी तो मेरे को भी पड़ेगी, उसको डांट पड़ेगी तो मुझे।
3: हाँ ये बात सही है, शरारत चाहे कोई भी करे लेकिन मार दोनों को पड़ेगी।
0: दोनों को पड़ती है?
7: थोड़ी सी ज्यादा मार बराबर है।
10: मेरे घर में तो ऐसा
6: दीदी शरारत करती है, मैं आराम से ऐसे लेटा होता हूँ, मुझे मम्मी आकर डांट जाए क्या कर रहा था इतनी देर से।
3: जब कभी कभी मेरी बहन मुझको मारती है तो मेरे को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं उसको कुछ बोल देता हूँ, फिर भी मम्मा से मुझे ही मार पड़ती है, क्योंकि तू तो बड़ा था।
10: मेरी बहन तो भी छोटी है, अगर मम्मा ने मेरी बहन को मारा तो पापा यही ट्राई करेंगे कि मेरी मम्मा मुझे भी मारे।
0: मतलब एक जना नहीं पिटना चाहिए,
3: आग लगा देते हैं बीच में आकर दोनों के बीच।
0: हाँ आप कुछ बोल रहे हो?
4: मेरा भाई भी मुझसे झगड़ा करता है, वो कुछ ज्यादा ही करता है।
0: ज्यादा करता है?
4: मुझसे बड़ा है 13 साल का,
0: तब भी लड़ाई करता है। फिर आप कुछ नहीं कहते?
4: मैं भी मारती हूँ, वो और जोर से मारता है।
0: और रूहानी?
8: दीदी मैं तो मेरे भैया को मारती हूँ तो बोलते हिंसा कर रही है। तो बोलती हूँ बार बार ऐसा क्यों बोलते? हाँ मेरे को पसंद है हिंसा, आई लव हिंसा।
10: दीदी मैं 3 बार WWE जीता हूँ
0: शिवांशी से। वाह,
7: ये तो पूछा दीदी कितनी बार हारा है?
3: हाँ हारा कितनी बार?
10: 2 बार।
3: दो बार आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा ना, ऐसा बुरा हारा है।
0: बहुत लड़ाई होती है भाई बहनों में तो। ठीक है चलो। अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि इक्वालिटी तो होती है ना, जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे तो बाहर के तो आप लोग करोगे जो करोगे है ना, घर पे भी, लेकिन रोज खाना बनना होता है, रोज सब कुछ होना होता है, रोज खाना कौन बनाएगा, ख्याल लगता है?
8: मैं
10: दीदी मैं
0: ओके
3: मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बना लूंगा, मेरी मम्मा भी बना लेंगे, कोई
0: बना दोगी?
3: वैसे मेरे मम्मा मुझे ऐसे बनाने नहीं देंगे।
0: और मान लो मम्मा के लिए आपको बनाना हो तो
3: फिर मैं बना दूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम।
0: रोज
10: मैं तो बाहर से ही ऑर्डर करूंगा।
0: बाहर से ऑर्डर करोगे?
9: के लिए बाहर जो बने होते हैं वो भी मांग देते हैं। बर्तन
0: बर्तन भी करते हो?
3: हम तो कर देते हैं, हमारे मम्मा कभी बीमार होते हैं हम फिर भी घर का काम कर देते हैं।
0: सफाई झाड़ू सब
3: सब झाड़ू सफाई डस्टिंग सब।
10: मम्मा अगर कहीं वॉकिंग करने भी गए हो ना फिर भी जब मैं घर पे होता हूँ तब सफाई सफाई कर देता हूँ।
0: अरे वाह। और आप लोग?
7: दीदी ये बात राघव को भी सीखनी चाहिए, कुछ भी नहीं करता।
0: कुछ नहीं करता? कुछ तो करता
10: हूँ, करता हूँ, देखते नहीं तो मेरी ख्याल।
0: चुपके से कर देता है राघव, है ना? घर का काम करते हो?
8: हाँ, अभी भी करते हो और आगे भी जाके करेंगे।
0: रोज करोगे?
8: हाँ।
0: ओके।
8: दीदी मैं भी रोज घर का काम करूंगी और खाना भी बनाऊंगी अलग अलग।
10: दीदी यह बात शिवांशी को सिखा दो। दीदी जब भी बर्तन धोने जाएगी टीवी इधर से गाने सुनूंगी, फिर वह सिर पे ऐसे खड़ी रहेगी अगर मैं नहीं दूं, फिर छीन के अंदर चली जाएगी, फिर अंदर से गेट भी बंद कर देगी, मैं अंदर आके ले भी नहीं सकता।
7: पांच मिनट तक रुकते होते हैं, अगर सामने वाला दे रहा है पांच ले लेंगे। नहीं तो
10: दीदी मुझे को पांच मिनट का नाम बोल के एक घंटा पूरा गाना सुनती है।
0: अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये लड़ाइयां भी आपको ना बड़ी याद आएंगी, पता है बड़े हो जाओगे तो। अभी अच्छा ये बताओ कभी किसी ने आपको ऐसा कहा है या आपने किसी को कहा है या सुना है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे?
3: हाँ जी। नहीं हम ऐसे करते ही नहीं है, रोते ही नहीं कभी।
0: कभी नहीं रोते? क्या बात कर रहे हो? किसी
10: आपको बात बताता हूँ।
3: हाँ। हाँ। इसकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है।
10: डायमंड हॉल के पीछे गेम चल रही थी, तो उधर बड़े बच्चे भी थे छोटे बच्चे भी थे, तो उधर मैं जब हम गए तब कोई भी नहीं था, पांच बजे बुलाया था और पांच बजे पहुंच गए थे, कोई नहीं था, ये दोनों मेरे साथ थे, फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी तो वो रनिंग करवा रहे थे, फिर मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर मैंने इनको ढूंढा, फिर ये नहीं मिले, फिर मैं उधर मोहिनी वन में चले गया रूम में, उधर देखा उधर भी कोई नहीं, फिर मैं फिर से आया इधर, फिर देखा तो फिर वो गेम खिला रहे थे, फिर मैं चले गया, फिर मैं गेम खेला आठ बजे आया, फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने रोते रोते पूरा घूमा कोई दिखाई नहीं मुझे, फिर बच्चों ने बोला कि जहाँ पर आपका रूम है उधर चले जाओ, उधर वो अपने आप आ जाएंगे, और ये लोग बॉलीवुड जो बॉलीवुड स्टूडियो में गए घूम रहे थे, और फिर
3: ये बेचारा रो रहा था घर पे।
0: हाँ, आप लोग मिल नहीं रहे थे ना उसको कितनी देर तक?
3: इसने हमको बताया मैं तीन बार अपने रूम में गया रोता
10: रहता। मुझे दो नंबर याद थे मम्मा का और पापा का, जो पापा का नंबर था वो दो तीन पहले ही चेंज हो गया था, और मम्मा का तो फोन टूट गया था जिसकी वजह से मुझे कोई अब चांस भी नहीं था जिससे मैं फोन कर सकूं।
0: तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, काफी देर लग गई ना। फिर कैसे मिले ये लोग? मिल गए थे
10: फिर? मैं रूम में चले, फिर मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर पहले तो मैंने बहुत देखा नहीं आया, फिर मैंने बोला शिव बाबा आप ही मिला दो मुझे, पांच छह मिनट के बाद मासी आ गए।
0: अरे वाह। चलो फिर आप चुप हो गए ना?
3: हम तो वहाँ पे बाबा की मूवी भी आधी छोड़ के आए इसी के चक्कर में, कहीं रो ना रहा हो घर पे। हमें दीदी ने बोला कि देख लेते हैं मूवी, नहीं रोएगा वो बड़ा है। घर आके पता चला ये तो फूट फूट के रो रहा था।
0: हाँ, वो मिल नहीं रहा था ना, नंबर भी नहीं था उसके पास।
7: नंबर पर उसको जाते हैं
3: हमारा रूम तो हमारा खुला था सारा।
10: मुझे ये टेंशन पड़ी हुई थी कि फिर ये लोग इतनी लेट आएंगे तब तक।
0: होता है कभी कभी होता है भाई, अकेले छूट जाते हैं तो होता है।
10: घूमते रहेंगे उधर ढूंढते रहेंगे आएंगे नहीं रूम में, फिर
0: हो जाता है भाई, अकेले हो जाते हैं तब तो होता है। तो अच्छा कौन कौन यहाँ पे रोता है कभी कभी, जैसे तो उसने तो अपना बताया।
3: मैं कौन कौन जब जाता था छोटा होता बहुत रोया।
0: अभी नहीं रोते?
3: अभी नहीं रोते।
0: आप लोग?
8: मेरा भाई मुझे अगर मारता है तब मैं रोती भी हूँ और उसको मारती भी हूँ।
4: मेरा भाई मेरे को जोर से मारता है, अगर मैं रो जाती हूँ तो फिर बाद में इतना गुस्सा आता है उसको भी रुला देती हूँ मैं।
10: मुझे अगर कोई भी मारता है मैं रोता नहीं हूँ, मतलब रोना आता ही नहीं है
3: इसको। मारने पर रोना नहीं आता, वैसे ही रो पड़ता है बिना बात के।
0: मारने पर नहीं आता, किसी और बात पे, सबको अलग अलग बात पे आता है ना।
3: सबका अलग नहीं।
0: राघव रोता है कि नहीं रोता राघव? कभी बताओ, सच सच बताओ।
10: कभी कभी
0: कभी कभी है ना, किस बात पे रोते हो?
10: दीदी इसने मेरी इधर नीड की हड्डी पे इतनी जोर से लांग मारी, अब बोलो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरी कमर पूरी एक दिन के लिए ऐसे हो गई थी।
0: ओहो। और शिवांशी को रोना आता है?
7: दीदी वैसे तो लगभग लड़ाई होती सब, तो रोने के बजाय हंसना।
10: दीदी झूठ बोल रही है, बाथरूम में जाकर रोती है, आधे घंटे बाद आती है।
0: अच्छा वो बता रही, कोई बात
7: नहीं। कई बार जैसे कई ज्यादा ही चोट लग जाए कि हाँ खेलते खेलते तब तब थोड़ा रोना।
8: दीदी ये तो बात बात पर भी रोने की एक्टिंग करती है
0: आपको।
8: और दीदी मैं तो भैया के साथ खेलती हूँ तो भैया ही एक्टिंग करते हैं रोने की।
7: एक बार हुआ
0: रोए थे
7: 2023 में इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप था,
0: हार गया था ना फाइनल में।
7: फाइनल में
0: बहुत लोग रोए थे उस दिन तो।
3: मैं ऐसे गेम के पीछे कभी नहीं रोया,
0: गेम के पीछे नहीं।
3: वो हमारे देश का लक है,
0: मतलब
3: बैड लक होता है कभी गुड।
7: क्या चक्कर है इसको, उसको मालूम है जिसने कुछ ऐसा करना हो तो उसके तो दिल में बीतती है ना
0: पता चलता है। लेकिन मतलब किसी ने कभी ऐसे नहीं बोला ना कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या ऐसा लगता है आपको लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता लड़के रोते हैं?
7: नहीं,
0: ऐसा है कि रो सकते हैं,
7: रो सकते हैं, रो सकते, दर्द होता है वो।
10: अभी ये लोग भी मुझे से चढ़ा रहे हैं, वर रो रहा था सर कैसे चढ़ा रहे हैं, रो रहा था, इतना बड़ा हो गया रो रहा था।
0: तो क्या हुआ, रो सकते हैं ना, बड़े बड़े लोग नहीं रो सकते
3: भाई, तो अभी रो ले चाहे कोई बात नहीं
0: है ना। बड़े लोग रो सकते कि नहीं रो सकते?
10: दीदी मम्मी पापा रो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रो सकते?
0: हाँ, कोई भी रो सकता है,
7: पापा भी रोते
10: हैं। हाँ, रोते हैं ना।
7: कब रोते हैं?
0: कभी कभी बुरा लगता है तो
3: रोते हैं,
7: झगड़ा हो जाता है तब।
0: कभी कभी उनको बुरा लग सकता है।
3: दादी की डेथ हुई थी फिर मैंने अपने पापा को फर्स्ट टाइम रोते देखा था।
7: हाँ।
3: उसके बाद कभी
10: रोते ही ना।
0: अच्छा पापा को किस किसने?
10: मम्मा तो जब हमसे गुस्सा होते है ना, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे मम्मा तब रोते हैं, और पापा को भी जब दादी की डेथ हुई थी तभी रोते हुए देखा था।
0: पापा को कभी और उसके अलावा रोते नहीं देखा?
3: नहीं,
0: कभी भी नहीं। आप लोगों ने, आपने
7: देखा भैया की डेथ हुई थी
0: तब? जब बहुत कोई बड़ी घटना ऐसे होती है तब
3: ऐसे रोते देखा।
0: पापा को रोते हुए देखा है किसी ने?
7: नहीं दीदी,
0: कभी भी नहीं।
3: नहीं,
0: कभी भी नहीं।
10: तो हाथ को उठा रही है जब नहीं।
3: अरे मुझे कुछ और
0: नहीं देखा भी बोल सकते हैं ना कि नहीं देखा।
7: मेरे पापा को तो मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, कोई ऐसी बात भी हंसते रहेंगे।
0: ओके,
3: मेरे पापा भी पूरे दिन घर में अगर शाम को आते हैं ड्यूटी से तो सारे सबको हंसाते हैं,
0: हंसते रहते हैं। आप क्या बोल रहे हो?
4: मेरी मम्मी रोती नहीं है पर एक लगा देती है, शांत हो जाते हैं,
0: शांत हो जाते हैं। मम्मी अच्छा पापा की बात कर रहे हैं, पापा को रोते देखा?
4: नहीं पापा तो नहीं, पापा तो और ही प्यार करते हैं,
0: कभी रोते नहीं है पापा ना।
4: दीदी पापा रोने की एक्टिंग करते ताकि हम लोग उनको परेशान ना करें।
0: ओके,
4: असलियत में नहीं रोते,
0: असलियत में नहीं रोते। राघव
10: नहीं रोता।
0: तो क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते? कभी उनको बुरा नहीं लगता किसी चीज का? क्यों नहीं रोते कभी?
7: नहीं लगता है, उनका दिल स्ट्रांग होता है, दिल स्ट्रांग होता है उनका,
0: दिल स्ट्रांग होता है। ओके,
3: क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसी मुसीबतें जो होती है छोटी मोटी एक्सपीरियंस करी होती है बचपन से लेकर, जब ऐसे कभी अपने माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसी मुसीबतें जो एक्सपीरियंस करी होती है, जब माँ बाप की डेथ होती है फिर तो वो रोते है ना,
7: उनका इमोशनल उनका एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते?
4: मेरी मम्मी तो बहुत नाटक करती है रोने का,
0: एक्टिंग करती है रोने का, रोती थी लेकिन रियल में।
7: दीदी पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: अच्छा मम्मी को रोते देखा है किसी ने?
4: हाँ जी, मम्मी तो ऐसे नाटक करती है, असली अपन नहीं रोती।
7: नहीं मम्मी को तो नहीं देखा,
8: मम्मी तो कभी नहीं रोती।
4: मेरी मम्मी रोती तो है नाटक में, मेरे को पता चल जाता है क्योंकि आंसू तो नहीं निकलते।
0: अच्छा बिना आंसू के भी तो रो सकते हैं?
4: नहीं दीदी, पर पानी लगा देते हैं यहाँ पे और बोलते मैं तो रो रही हूँ।
0: ऐसा ऐसा क्यों? लेकिन
4: हम चुप होने के।
0: हाँ ये चक्कर
8: है, दीदी बताया ना शिवांशी ने पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: और आप लोगों ने देखा है मम्मी को रोते हुए?
3: नहीं मैंने नहीं देखा।
7: कभी कभी झगड़ा हो जाए तो थोड़े रो लेते हैं,
0: रो लेते हैं,
7: पापा तो खुशी रहते हैं, मम्मी है बस।
0: मम्मी कभी कभी रोते, कभी
7: कभी कभी कभी वो भी साल में एक दो बार,
0: ज्यादा नहीं ना। अच्छा मम्मी को रोते हुए देखना ज्यादा अजीब लगता है कि पापा को रोते हुए?
3: पापा को,
7: मम्मा को,
10: मम्मा अलग अलग स्टाइल से
0: अलग अलग
7: कभी
3: अजीब नहीं लगता, खुद को ऐसे बुरा लगता है कि हमारे पापा रो रहे हैं हमारे
0: साथ। हाँ मतलब किसको देख के ज्यादा बुरा लगता है, मम्मी को,
3: पापा को, पापा को,
7: मम्मा को?
0: किसको रोता देख ज्यादा बुरा लगेगा अगर मान लो मम्मी या पापा?
10: पापा तो रोएंगे ही नहीं तो फिर
0: बुरा कैसे
3: लगता है? ऐसा लगता है जब हम रोते हैं हमें पापा चुप कराते हैं, पापा रोएंगे तो उनको हम ही चुप कराएंगे।
10: पापा रोते ही नहीं है, चुप कब करवाओगे?
0: हाँ रोते ही नहीं है ना, लेकिन रोएंगे अगर अगर
3: कुछ ज्यादा ही,
0: चुप करा सकते हैं हम बच्चे को, नहीं रोए तो भी अच्छा है, रोए तो भी कोई बुरी बात नहीं है रोने से तो, है ना। आप लोगों को किसको देख के ज्यादा बुरा लगेगा, मम्मी को या पापा को रोते हुए देख?
10: कोई रोता ही नहीं है
7: गाली
0: ये भी अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, नहीं रोना भी अच्छी बात है, है ना? कभी हर्ट तो सबको होता है, कभी ना कभी कुछ बुरा सबको लग सकता है।
10: दीदी मैं रोता फिर भी नहीं हूँ।
0: रोते फिर भी नहीं हूँ, क्यों नहीं रोते?
10: पता नहीं,
0: पता नहीं। चलो ठीक है, तो मतलब हमेशा खुश रहता है राघव, है ना? लग रहा है। ओके अच्छा, तो आप लोगों ने बताया कि सब इक्वालिटी है अभी तो, है ना? तो कोई मतलब लड़कों को रोने के लिए या किसी भी चीज के लिए चिढ़ाया तो नहीं जाता ना?
10: नहीं,
0: कभी नहीं है।
3: चिढ़ाया जाता है जैसे अब ये रोने लग गया था, इसको हम से चिढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर से रो दे चिढ़ के।
0: वो तो दोस्तों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मस्ती करते हैं ना। हाँ, कभी कभी सच में रोते हैं, कभी कभी कुछ बुरा लग जाता है तो होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
10: पर हमारे सामने तो आज तक सच में नहीं रोए।
0: कभी कभी बच्चों के सामने नहीं रोते हैं और कभी कभी नहीं भी रोते हैं ना, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सब लोग अपने दुख, कोई हर कोई रो के नहीं करता, हर कोई बिना रोए नहीं करता, सबके अपने अपने तरीके हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
10: ये तो आप मम्मा पापा को ही देख के देख लो, पापा नहीं रोते मम्मा रोते, इधर से ही देख लो कौन स्ट्रांग होता है ज्यादा।
0: ओके और आप लोग क्या लगते हैं?
3: उनके हार्ट स्ट्रांग होते हैं पापा के, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम थोड़े हैं आज।
0: लेकिन हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना पापा लोग के। ओके
7: गर्ल्स
0: ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
3: नहीं बॉयज,
0: बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं।
10: नहीं दीदी गर्ल्स,
3: दीदी गर्ल्स ही होते स्ट्रांग,
8: गर्ल्स होती है।
0: क्यों लगता है आपको कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं?
9: क्योंकि जब भी कोई बात होती है लड़के जल्दी रोने लग पड़ती हैं, इसीलिए
0: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं।
3: मुझे ऐसा नहीं है कि लगता है कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे उन्होंने बोला पहले कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ, ऑब्वियसली लड़का
0: इसलिए बोलना पड़ेगा। इन दोनों भी बोल सकते हो,
3: लड़कों को नीचे थोड़ा गिनने देंगे।
0: देख दोनों भी बोल सकते हो, आपकी दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो।
9: लड़के रोने लग पड़ती है,
0: लड़कियाँ जल्दी रोने लगती है,
7: ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियाँ हमेशा नहीं रोती,
0: हमेशा नहीं रोती ना,
7: जब लड़ने का टाइम आता है तब लड़ती भी है,
0: लड़ती भी है,
9: कोई भी बात हो जाए तो जल्दी लड़ती
3: है। ऐसे सही बात है,
10: मैं अभी इनको थोड़ा सा सुना दो अभी रोने लग पड़ेंगी।
3: लड़कियों में एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है।
0: एटीट्यूड ज्यादा होता है?
3: हमारे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम नंदिनी था, तो वो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ती थी। जब भी उसको टीचर्स ने कुछ बोल देना तो टीचर्स से गुस्से हो जाती थी, अगर उनकी क्लास लग रही वो साइड वाले रूम में जाके बैठ जाती थी, उनकी क्लास में नहीं आती थी,
0: टीचर से ही नाराज।
7: दीदी कुछ कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो बात बात पे अपना
3: कुछ कुछ होती हैं, कुछ कुछ के लिए हम सभी को तो नहीं बोल सकते।
0: नन्नी के अलावा और कितनी सारी लड़कियां भी तो थी ना,
7: पर हमारे जैसे
10: दीदी लड़के थोड़ी कोई कम होते हैं, वो भी तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं।
3: दीदी मैं तो नाटक करती हूँ, फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं सच में डांटती हूँ, रोते हैं। जैसे मैंने मेरे भाई के भी दोस्तों को रुलाया है बहुत।
0: भाई के दोस्तों को भी रुला दिया है? अरे बाप रे।
10: दीदी हम टीचर्स के सामने एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं।
3: हाँ ये बस
9: ये बस
3: टीचर्स ने हमें कुछ बोल दिया तो चुप रहते हैं।
0: एक एक करके
3: टीचर्स ने कुछ बोल दिया तो अपना चुप रहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, बड़े हैं ना।
0: बड़े हैं
3: हमारे सही।
10: दीदी दीदी लड़कियां है ना मैम को प्लीज प्लीज बोल के माफ करवा देती है गलतियां।
9: अक्सर ज्यादा देखा जाओ तो जो टीचर होते हैं ना वो अक्सर ना ज्यादा जो लड़के उनको पीटते हैं।
3: लड़कियों को इसी वक्त माफ कर देते हैं।
7: दीदी लड़कियां सारा काम करती हैं, कई बार कुछ छूट जाए काम तो माफ कर देती है फिर।
10: दीदी
11: दीदी लड़के तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेंचों पे।
10: दीदी
3: नहीं कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ते भी हैं।
10: मैम इनकी तरह टाइम वेस्ट करके स्टिकर थोड़ी बनाएंगे।
0: क्यों स्टिकर नहीं लगाते लड़के?
10: नोटबुक पे पेपर पे ड्रॉ करते रहते हैं और फिर उस पर टेप चिपका के कलर कुलर भर के करते रहते हैं, नोटबुक में लगाते रहते हैं।
0: ओ लड़के नहीं करते ऐसा? बिल्कुल नहीं
3: करते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो करते हैं,
0: बहुत कम
3: होता है।
10: नोटबुक में कौन लगाते
3: हैं? क्यों नहीं लगाते भाई, कुछ ऑयल पेस्ट करते भी है।
0: हाँ बोलो बोलो रूहानी बोलो।
8: दीदी जो शाही लड़कियाँ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ब्रेव लड़कियाँ बहुत कम होती है, इसलिए लड़कों को सिर्फ शाही लड़कियाँ ही दिखाई देती है। और हम आर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है, उसमें हम गुड है इसलिए हम करते हैं, क्योंकि लड़कों को आता नहीं है वो करना।
10: मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब पेंटिंग पुंटिंग की बात नहीं कर रहा, पर जो टाइम वेस्ट करते हैं वो चीज अलग है।
0: ओके
3: तो बहुत अच्छी चीज है। सौरभ जोशी जो आज के समय में ब्लॉगर है वो भी पहले आर्टिस्ट ही थे, आर्ट करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो।
0: समीक्षा
11: पंडित हम लोग तो स्टिकर्स बनाते, इन लोगों की तरह थोड़ी हम पीछे मुड़ के बातें करेंगे सात लोगों से।
10: आज सही है टाइम पास होता है,
3: पीछे मुड़ के क्या बातें,
10: मजा आता है, याद दिलाती। दीदी मैं बातें नहीं करता पीछे मुड़ के।
0: ओके
9: okay. हमारे आगे बैठे होते
4: हमारे हमारे क्लास में कोई सर आते हैं, वो चमन जी सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं तो वो क्या है किसी लड़की और लड़की दोनों साथ में झगड़ा हो गया तो वो सीधा लड़कों को ही मारेंगे जाके, गर्ल्स को छुएंगे भी नहीं, गर्ल्स को छोड़ देते हैं,
10: मैम ही मारती है लड़कियों को।
9: ऐसा क्यों, बराबर है ना, दोनों को पीटा,
0: लड़कों को ज्यादा पिटाई होती है,
10: बहुत ज्यादा, मैम ही मारती है लड़कियों को, सर तो जब मार हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया लड़कियां लग पड़ेंगी फिर सर उनको मनाने में।
0: दीदी तो लड़के क्यों नहीं रोते फिर, सर उनको भी वो कर देंगे,
9: आपको बता के,
0: जैसे मान लो सर मार रहे हैं लड़कियां रोने लगी तो चुप हो जाते हैं तो लड़के भी रोने लगे अगर सर मार रहे हैं तो,
10: उनको तो मारो भी ना फिर भी पहले ही रोने लग पड़ती है।
0: अच्छा तो फिर माफ कर देते हैं
10: दीदी,
0: एक मिनट पहले लड़कियों की साइड भी सुन लो, बोलो
7: दीदी। ऐसा नहीं है कि टीचर के सामने रोने लग जाते हैं, कोई रोते नहीं, वो टीचर को पता है कि हाँ ये लड़की काम करने वाली है, नेक्स्ट टाइम पूरा कराएगी, इसलिए छोड़ देते हैं।
0: हाँ मतलब उसकी इमेज इमेज अच्छी है,
7: इमेज अच्छी बना रहे हैं।
3: कई लड़कियां ऐसी होती है वो बिल्कुल ही नहीं करती, इतनी वो ढीठ हो जाती है, उनको रोज मार पड़ेगी वो फिर भी काम नहीं करेंगी,
0: फिर भी रोएंगी।
3: अगर उन्होंने हम अभी नहीं करेंगे काम, जैसे अभी अप्रैल मई का सिलेबस चल रहा है तो उनका अप्रैल का कंप्लीट है, मई का कंप्लीट नहीं है, तो वो अगर उन्होंने ठान लिया कि हम मई में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, जून में ही करेंगे समर वेकेशन में, तो वो ऐसे ही करती हैं,
0: जो ठान लिया वही करती हैं। एक बार अमीक्षा, अमीक्षा बोलो।
11: पर एक बार दीदी ये लोग बोल रहे हैं ना कि वो अभी इन लोगों ने बोला कि है ना लड़कियां लास्ट तक वो नहीं करती, तो हम लोग अगर पहले भी ना करें तो भी लास्ट तक हमारा सब कंप्लीट
0: हो जाता है। राघव
12: दीदी पहली बात मुझे आज तक किसी भी टीचर ने मारा नहीं है, दूसरी बात एक बार ना हमारी क्लास में मतलब दो लड़कियां थी वो लिख रहे थे ये मैम पागल हैं और वो मैम क्लास में बैठे थे और ना किसी ने जाके उनको वो दिखा दिया, फिर उन दोनों का ऐसे थप्पड़ मरे वो पूरा दिन रोती रहे।
0: लड़कियों की पिटाई हो गई यानी।
10: मैम मेरे पुराने स्कूल में दो लड़कियां थी, एक सर थे वो उनको इतना सुनाते थे, जब भी क्लास में आते थे डांटते ही रहते थे, अगर कुछ भी हो तो उन पे ही बात लेके जाते थे, कितने मतलब बहुत बेइज्जती करते थे उनकी। और लड़कियों ने उन्होंने क्या किया, जब सर की ट्रांसफर हो रही थी वो इतना फूट फूट के रो रही थी।
0: अच्छा तब भी?
10: हाँ बहुत रो रही थी
0: जबकि उनको ही डांटते रहते थे। ओहो
8: दीदी मैं तो सोचती हूँ दोनों ही कमजोर है और दोनों ही स्ट्रांग है।
0: ओके ऐसा क्यों?
3: हाँ मैं भी इस बात के साथ एग्री हूँ,
8: क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती है जो शाय होती है, उनकी ये कमी होती है, कुछ लड़के होते हैं जो जैसे क्लास में होते हैं कुछ बोलते नहीं है, काम करते नहीं है, इसलिए उनको डांट पड़ती है। वैसे दोनों भी वीक है और दोनों भी स्ट्रांग है, क्योंकि लड़के भी बहुत काम करते हैं क्रिकेट में भी, और एक लड़की थी जिसने एवरेस्ट पर उसका पैर नहीं था तब भी वो चढ़ी थी।
0: बात तो सही है। हाँ कौन बोलना चाह रहा है?
4: दीदी हमारे तो सर और मैम दोनों ही गर्ल्स को नहीं मारती, मैम तो है ना सीधा दोनों की गलती होगी तो बॉयज को ही मारेगी। मैम गर्ल्स को नहीं मारेगी क्योंकि मैं और मेरी तीन दोस्त है वो एक मैम की फेवरेट है तो अच्छा। वो सीधा बॉयज को मारती है
0: सीधे बॉयज को।
9: ये तो ना इंसाफी हो ना, कोई काम भी हो ना तो तब भी वो लड़कियों को ही कहते हैं।
0: जैसे
7: क्योंकि दीदी टीचर्स को पता होता है ना लड़कियां काम पूरा कर देंगे, लड़के
9: नहीं, अक्सर कोई भी स्कूल का काम हो वो लड़कियों को ही कहते हैं, स्कूल का कहते नहीं
0: काम, जैसे
9: कोई भी काम हो
10: जैसे अगर कुछ डेकोरेट करना हो, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा घुमा फिरा नहीं जाता ना, बैठी बैठी के काम करना होता है ना उनको,
3: ऐसी बात नहीं है वो घूम लेती हैं,
7: घुमा फिरा नहीं जाता, लड़के ही बाजार के काम करती हैं,
0: करते हैं
3: नहीं, सही बात है, ऐसा तो नहीं है लड़कियों से घुमा फिरा नहीं जाता, लेकिन लड़कियां जैसे
7: हो या लड़के हो
3: भाई, अगर मैं लड़का हूँ लेकिन ऐसा थोड़ा है कि लड़कियों के साइड
7: लेता हूं, लड़कियों की तरफ ले रहता हूं,
3: मेरी भी तो बहन है,
10: जाओ फिर उधर बैठ जाओ,
3: मतलब मैं अपनी बहन को ही बुरा बोलूंगा नहीं बोलूंगा मैं।
0: बोलो बोलो आप जो बोलना चाह रहे हो।
3: लड़के होते हैं कि कोई जैसे गेम्स खेलते रहते हैं ज्यादातर, लड़कियां होती है वो घर पे बैठ के कोई डेकोरेशन के आर्ट वगैरह करती है घर में लगाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, घूमती भी है, क्योंकि मेरी बहन बहुत घूमती है, अगर एक बार जिद पे अड़ जाए कि मुझे नीचे लेके चलो तो उसको लेके ही जाना पड़ता है,
0: लेके ही जाना पड़ता है।
11: दीदी नहीं सुबह रोज 5 बजे से उठ के 6 बजे तक वॉकिंग भी तो करती है, जॉगिंग भी करती है,
10: हर लड़कियां नहीं करती
11: तो कोई कोई तो करता है ना, हर लड़कियों की बात नहीं,
0: सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना।
3: आजकल तो लड़कियां बॉयज से ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही है, कई बॉयज होते हैं जो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, लेकिन जो लड़कियां वो ऐसे घर में भी करती है, ग्रीन टी पीती है, कॉफी पीती है सुबह, ब्लैक वॉकिंग करती है, योगा करती है, बहुत
0: बड़ी सारी चीजें करती है ना,
3: फिटनेस का ध्यान रखती
4: है। मेरी मैम तो हमसे काम करवाती है, बोतल भी भरवाती है, बोतल के पानी भरवा देती है,
0: हाँ मतलब बाहर जाके भी काम करती है,
10: फ्री होती है ना,
0: जो भी कर सकते हैं। ओके
12: दोनों इक्वली होते हैं,
0: दोनों इक्वल होते हैं?
12: हाँ, बस कईयों को लगता है कि ये बाहर वाला काम लड़के ही कर सकते हैं और ये अंदर वाला काम लड़कियां ही कर सकती है, बल्कि लड़कियां बाहर वाला काम भी कर सकते हैं।
0: ओके,
8: पर कम करती हैं। अब पापा को अगर कोई भी सामान लेने को बोलता है दुकान से, तो लड़कियों को ही बोलता, कोई लड़कियों को नहीं बोलता।
0: अच्छा, ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है
3: घर में?
8: लड़कियों की।
0: ओके,
3: या फिर छोटे की,
8: छोटे
3: जो छोटा होगा,
0: जो छोटा होगा उसकी,
3: जो बड़ा होगा उसकी पिटाई होगी।
7: छोटे भाई बहन की सुनी जाती है,
0: छोटे भाई बहनों को लगता है छोटे भाई बहनों की नहीं सुनी जाती, बड़ों को लगता है बड़ों की नहीं सुनी जाती।
3: अगर
0: सुनी किसकी जाती है?
12: जब घर में
3: दो भाई हैं तो उनमें छोटे की सुनी जाएगी, अगर भाई बहन है तो उसमें चाहे बहन बड़ी हो चाहे छोटी हो उसी की सुनी जाती है।
0: अच्छा, अगर बहन है तो बहन की सुनी जाती है। क्या बोलना रूहानी को?
8: दीदी, मेरे घर में तो बुआ के लड़के जो मेरे भैया है ना, वो घर में आते हैं तो मेरे प्रति सब बदल ही जाते। दादी जी आती है, आ बेटा क्या खाएगा, क्या खाएगा, तू हट यहाँ से।
0: आपको साइड कर दिया जाता है? कभी कभी आते होंगे ना वो?
12: फिर दीदी उस टाइम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती
8: दीदी, ऐसे रास्ते से आप हट जाते हैं। फिर वैसे इनकी कौन सी वैल्यू होती है?
7: होती है,
12: हमारी बहुत सारी वैल्यू
3: होती है भाई। मैं तो मानता हूँ लड़कियाँ और लड़के सेम है,
7: लड़की
3: कोई फर्क नहीं,
0: दोनों इक्वल है। आपको ऐसा लगता है?
7: ये दोनों इक्वल है, लड़का और लड़की दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं।
12: दीदी दीदी, अपन जूस की बोतल को भगवान मान सकते हैं? भगवान ने मतलब आधा इसमें भरा है आधा इसमें भरा है, तो दोनों इक्वल है,
0: दोनों इक्वल है।
12: अगर है ना, अगर लड़कियां नहीं होती ना तो मम्मी भी नहीं होती।
0: ओके, मम्मी भी तो लड़की है।
7: लड़की बिना संसार नहीं चल सकता, लड़कियों बिना चल जाएगा।
0: तो मतलब दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है जगह, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचे हैं जो आप सबको लगता है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, किसी को तो वीक नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि लड़कियां भी सब कुछ बन सकती हैं, लड़के भी सब कुछ बन सकते हैं। आप लोगों ने खुद ही बताया, है ना, कि सारे प्रोफेशन में दोनों ही जा सकते हैं।
8: हाँ जी,
0: है ना? कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकते हैं? कोई
8: नहीं।
0: कोई भी नहीं है।
3: हम अगर लड़कियों को बुरा बोले तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के DC है जो, वो एक लड़की है, आशिका जैन।
0: बिल्कुल।
3: अब हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू एक लड़की है, बहुत
8: मेरे मन में भी है।
0: बिल्कुल
7: दीदी, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, विंग कमांडर भी लेडी थी और जो कर्नल थी वो भी लेडी थी।
8: यस यस,
3: सही बात है। सिंदूर मिशन
0: ये भी सही बात है, मतलब लड़कियां आर्मी में भी है।
3: लड़कियों को इसीलिए भेजा कि वो सिर्फ और सिर्फ मसला निपटा के, लड़कों को भेजते तो पाकिस्तान को ही निपटा देते।
7: लड़कियां भी निपटा सकते,
3: लड़कियां तरस खा जाती है, लड़के नहीं खाते ना।
7: उन्होंने भी ऐसा
0: अच्छा लगता है आपको कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा तरस खाती हैं या थोड़ा सा ज्यादा यू नो दया कर देती हैं?
3: वो होता है, लड़कियां
7: छोटे नहीं करते, पर अगर कोई बड़ा हो ना फिर बड़े करते हैं, छोटे नहीं करते।
0: छोटे
7: लड़कियां नहीं करती, जैसे मम्मा हो गए, दादी हो गए, वो करते।
3: हाँ, वो ऐसे दया कर जाते
7: हैं। अच्छा, बहुत जल्दी हो जाते हैं।
0: ओके, तो आपको क्या लगता है दया ज्यादा कौन करता है, लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां ज्यादा करती हैं?
7: ये लड़कियां करती है, बट देख के करते हैं कि सामने वाला कैसा है। अगर
0: कैसा
7: सामने वाला की मतलब इमेज अच्छी होगी हमारे सामने तो थोड़ी बहुत दया खा लेंगे, पर
12: अगर बस इमेज अच्छी होगी, अगर उसकी रियलिटी
0: धीरे रुक जा तो, रुक जा उसको पूरा बोलने दो।
7: अगर सामने वाला अनजान है, हमें उसकी रियलिटी पता नहीं है कैसे, तो थोड़ा दया खाने में सोचेंगे,
0: सोचना पड़ेगा। ओके,
8: हाँ दीदी, लड़कियां भी दया खाती है, लड़के भी खाते हैं कभी कभी, दोनों ही इक्वल है, सब कुछ ज्यादा नहीं है।
0: ओके, तो और लड़के नहीं दया करते हैं?
7: करते हैं,
3: कर लेते हैं पर बहुत कम,
0: कम करते हैं थोड़ा सा। सो मतलब लड़के भी करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं, जैसा बोल।
8: यस।
0: अच्छा, दया करना सॉफ्ट होना होता है या स्ट्रॉन्ग होना होता है?
7: स्ट्रॉन्ग होना होता है,
3: स्ट्रॉन्ग होना होता है।
0: क्या लगता
3: है? जिनके हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं वही दया कर सकते हैं।
0: स्ट्रॉन्ग,
3: स्ट्रॉन्ग।
0: ओके, चलो, मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, जो भी आपने क्वालिटीज बताई वो भी स्ट्रॉन्ग बनाती है हमको, है ना, वीक नहीं बनाती है, मतलब दया करना ये सब करना। चलो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जाते जाते हम यहाँ पे हम अपने एपिसोड को करेंगे क्लोज, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत सारी। तो बस जाते जाते आपको एक एक गुड क्वालिटी बतानी है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में होती है, एक गुड क्वालिटी जो दोनों में होती है। क्या होता है दोनों में?
7: जैसे कि लड़की है वो भी लड़के के बराबर काम करती है, ऐसे कोई भी काम हो
9: जैसे आपने बताया है कि क्रिकेट है, उसमें भी कोई लड़कियां आगे है और लड़के भी आगे,
0: दोनों
3: तो एक यही गुण अच्छा लगता है लड़कियों का, क्योंकि आरसीबी को फर्स्ट टाइम जो ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी जिताई है वो लड़कियों ने जिताई है,
0: वुमेन टीम ने जिताई है, तो खेलना अच्छा लगता है आपको?
3: अच्छा लगता है।
0: ओके, दोनों में क्या अच्छाई होती है या सेम क्या होता है दोनों में?
7: दोनों पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं, मतलब अपने ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खुद के ऊपर डिपेंडेंट,
0: इंडिपेंडेंट रह सकते हैं दोनों। ओके
8: दीदी, दोनों में सेम एटीट्यूड होता है।
0: ओके, क्या सेम होता है?
11: दीदी अगर लड़के खेल सकते हैं तो उतना ही लड़कियां भी खेल सकती हैं।
0: बिल्कुल
4: दीदी, जैसे लड़के और लड़के एक ही होते हैं, क्योंकि लड़कियां अगर भागते भागते थक सकती है तो लड़के भी थक सकते हैं।
0: हाँ ये भी सही बात है, लड़के भी थक सकते हैं, है लड़कों को भी चोट लग सकती है,
1: थक सकते हैं
0: पर थकते नहीं है।
7: नहीं
0: लड़के थकते नहीं है कभी,
3: बस शो नहीं करते।
0: क्यों शो नहीं करते?
11: इमेज के लिए,
1: इमेज के
3: उनको हमेशा ऐसा ही लगता रहता है अगर हमने शो किया तो लड़कियां हमें चिढ़ाएंगी कि तुम थक गए हम नहीं थके, लड़कियां हमसे स्ट्रांग रह जाएंगी ऐसे।
0: अच्छा ऐसा, लड़कियां चिढ़ाती हैं फिर?
3: चिढ़ाती हैं, बस थक गए यही तक था दम, आजा और चलो फिर।
0: और फिर लड़कियां थक जाती हैं तो आप नहीं चिढ़ाते?
3: फिर हम कहते रोलो, बैठ के रोलो।

0: कह सकते हो.
1: ओके लेकिन सच में अच्छा ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं. मतलब अगर नहीं चिढ़ाए कोई किसी को, मान लो कि ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा, तो फिर थकना शो कर सकते हैं या नहीं?
2: कर सकते हैं
1: ये, तब भी नहीं
2: करना. उसके लिए थकना भी होना चाहिए.
0: हाँ उसके लिए थकना भी चाहिए. लड़के इतना थकते नहीं है क्योंकि जब उनको रोज की वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उनको हर वक्त खेलना है, हर वक्त बैठे भी रहना है, उनको पढ़ाई करनी है एक जगह बैठ कर.
1: लड़के इतना थकते नहीं है.
0: हाँ घूमते फिरते रहते हैं ना.
1: आपको क्या लगता है
3: दीदी? वो दिखा सकते नहीं, दिखाएंगे कि हम थके हैं, फिर कोई चिढ़ाने वाला तो है नहीं.
4: और दीदी
1: अगर कोई चिढ़ाने वाला नहीं है तो थकते हैं या नहीं थकते हैं?
4: थकते हैं.
3: थकते हैं दीदी, काम करेंगे तो थकेंगे.
0: थकेंगे तो सभी
1: थकेंगे तो
4: सभी. दीदी ऐसे भी
3: शो करने की बात है बस.
4: अगर शो भी ना करे तो भी मतलब लड़कियां वैसे भी थकती है.
1: लड़कियां
4: थकती है पर दिखाती भी है.
1: दिखा भी देती हैं लड़कियां, बट लड़के दिखाते नहीं है. थक भी जाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है. नहीं ना, ये थक तो भाई सभी जाते हैं क्योंकि फिजिकल स्टैमिना आपका सबका बहुत होता है. हालांकि उसमें भी खुद को मोटिवेट करके और हम है ना, खुद को मोटिवेट कर लेते हैं तो और भी कर लेते हैं. पर थकान तो किसी को भी हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. चलो फिलहाल हम करते हैं अपने दोस्तों को गुड बाय. बस इस एपिसोड से हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को करते हैं बाय बाय.
5: बाय बाय.
6: आप सुन रहे रेडियो 101.3, रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए. आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए.
7: रेडियो मधुबन

0: नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा मोहम्मद सबना हार्दिक कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम्स जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हें सब मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि आपने जो भी काम आप करा मन लगाता करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: दोस्तों, जीवन में जब भी हम उतार चढ़ाव की बात करते हैं, कई बार हमने सुना है कि जीवन संगीत की तरह है, क्योंकि संगीत में भी उतार चढ़ाव होते हैं। सुरों को कभी ऊपर से गाया जाता है, कभी नीचे से, कभी सुर तेज लगाए जाते हैं, कभी धीमे से। इन सुरों के खेल को जब हम समझ जाते हैं तो संगीत हमारा मधुर हो जाता है। ऐसे ही सुरों के एक साधक के साथ आज हम मिलने जा रहे हैं। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम यशस्वी भारत। आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के मेहमान हैं एक ऐसे ही महान संगीत साधक, उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी, जो कि अपने ध्रुपद गायकी के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में हम भारतीय भी बहुत कम जानते हैं, लेकिन डागर घराने से आने वाले उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी ने बचपन से ही ध्रुपद गायकी को अपने जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बना लिया, जिसकी वजह से आज उनका नाम ध्रुपद गायकी के साथ समकक्ष हो गया है। ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, आइए मिलते हैं उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जी से, जिन्हें वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। जानेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में, संगीत के बारे में, और संगीत के इस अनोखे पहलू के बारे में जिसका नाम है ध्रुपद। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं वसीफुद्दीन डागर जी का हमारे स्टूडियो में। वसीफुद्दीन जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है रेडियो मधुबन में जुड़ने की आप लोगों के साथ। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: और हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य हम कहेंगे कि आज का ये हमारा एपिसोड आप सजा रहे हैं अपने चमक से, अपने हुनर से और अपने तजुर्बे से भी, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा अवसर मिलता है कि हम ऐसे भी वीकली वंस एन एपिसोड आता है, और जनरली जितने भी हमारे मेहमान होते हैं वो बहुत व्यस्त होते हैं, क्योंकि उनका चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो इतने डीप लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं अपने फील्ड से कि उनका समय निकाल के आप आना एक तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर हम उनसे एक घंटा मांगते हैं। तो इसीलिए आपने वो एक घंटा हमें दिया, इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया है।
1: It's all my pleasure.
0: तो वसीफुद्दीन जी, हम हमारी आज के बातचीत की जर्नी शुरुआत करेंगे पहले आपकी कहानी आपकी जुबानी से, क्योंकि आज आप एक जाने माने ध्रुपद गायक हैं। ध्रुपद के जो इतिहास को आज आप वर्तमान में लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप बचपन में आपने अपने आसपास में शायद ध्रुपद के सुरों में खुद को पलते हुए देखा है, लेकिन कभी आपके मन में क्या आया होगा, क्यों आपने इसको सेलेक्ट किया, या आप कुछ और फील्ड में भी जा सकते थे, या आपकी जर्नी क्या रही, ये हमको जानना है। अक्सर जब हम किसी मेहमान के बारे में बात करते हैं तो जो हमने पढ़ा होता है, सुना होता है, हम उसके जरिए उनका जिक्र करते हैं, लेकिन जब वो खुद अपने बारे में कहते हैं तो वो कहानी जानना और भी मजेदार हो जाता है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: जी, वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट मैं 20वीं पीढ़ी में हूँ, आई एम द 20th जनरेशन इन द फैमिली। So my father, my grandfather, my great grandfather, my great great great grandfather had all been musicians. So of course it's a blessing. भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है कि मतलब आप अगर खानदान में पैदा होना ही काफी नहीं होता है, ईश्वर की प्रभु की बहुत कृपा होनी चाहिए एक म्यूजिशियन बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए। तो वो परमात्मा ने कर्म किया कि उसको उसने मेरे में भी म्यूजिक की तरफ बहुत ही प्यार और बहुत ही स्नेह रखा, और मैं उससे म्यूजिक के प्रति मैं हमेशा ही मुझे अच्छा ही लगा बचपन से अभी तक। तो ये है कि मतलब आज साइंस भी बोल रही है, मतलब बहुत पहले से ही हम लोग भारत में तो माना ही जाता है कि पैदा होने पहले से ही सुन रहे होते हैं। तो आई बीन लिसनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न, सो म्यूजिक वॉज वेरी मच इन द एटमोसफियर। माई अंकल, my tauji ustad zahiruddin dagar sahab was there, my father ustad fayazuddin dagar sahab, both of them were my teacher, my hero, you can say. I was looking at main unko hi hamesha dekhta rehta tha ki bhai ye ho raha hai, ye performances hai, तो जर्नी में यही टारगेट यही था। और फिर स्कूल में मेरे टीचर भी बोलते थे, आई गॉट एनकरेजमेंट फ्रॉम माय प्रिंसिपल एंड माय स्कूल एंड माय टीचर, दे ऑल एनकरेज दैट यू नो दैट यू आर, आप करो आप करो। और फिर एक बात ये भी बोलते थे, एक टीचर ने मुझसे ये भी बोला, देखो आसिफ आपका, आपको मालूम है आपको क्या बनना है, लेकिन आपके जो दोस्त है ना इनको कुछ नहीं मालूम इनके कहाँ पे इनकी लाइफ किधर लेके जाएगी। तो वन थिंग इज वेरी वेरी गुड कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है और आपकी इच्छा भी, आपको आप ये करना चाहते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है। और मैं भी इसको मानता हूँ, हमारे परिवार वाले भी इसको मानते हैं कि उसकी कृपा रही कि मैं म्यूजिशियन बन गया। और बहुत आसान तो होता नहीं है, बहुत कठिन डगरपन घटकी जो है ना, वो डगरपन घटकी मैं ये बोलता हूँ, ये जगह जो है ना ये है, ये डगरपन घटकी, इसे खाना भी है पीना भी है गाना भी है बोलना भी है, सारे यही नेक जो है कंट्रोल करता है पूरे के पूरे, इसको भी मस्तिष्क को भी वो कनेक्ट करता है। तो लेकिन यही है डगरपन घटकी, तो इसको पूरा का पूरा, इसको पूरा का पूरा साधना, स्वरों की साधना, उसको रियाज किस तरीके से करना है, साधना किस तरीके से करना है, कैसे आपको वक्त लगाना है, क्योंकि जब इसको ज्यादा इस्तेमाल करते तो गला भी खराब होता है, गला बैठ जाता है, जिस चीज के ज्यादा इस्तेमाल होती है तो खराब भी तो होने लगता है ना। तो गले की किस तरीके से केयर की जाती है, गले को किस तरीके से रफ एंड टफ बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो मैं पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अचार नहीं खाऊंगा, मेरे एक अंकल नहीं खाते थे और कोई और नहीं खाते थे, तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, खट्टा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अपने गले को डेलिकेट नहीं बनाने की जरूरत है, नहीं इतना उसको छुई मुई नहीं बना देना, छुई में थोड़ा सा ये हो गया तो हो जाएगा, वो हो गया तो हो गया, तो रफ एंड टफ होना चाहिए, अचार भी खाओ आइसक्रीम भी खाओ सब कुछ करो, सब कुछ वो करो। तो मेरी आदत अभी भी है, अभी अब सब लोग यू विल बी वेरी सरप्राइज सुनो, आई ईट गोलगप्पा ऑल्सो, आई ईट चाट ऑल्सो, मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, मतलब उसको गले को रफ एंड टफ बनाने की जरूरत होती है। तो साधना फिर ताऊ जी से और पिताजी ने साधना शुरू करवाई, बच्चे को क्या जरूरत है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, जो भी हमारी आदत है उसके बीच में मुझे बुला दिया जाता कि हाँ हाँ हमारा बच्चा भी कर रहा है और वो भी है बहुत बहुत अच्छा करता है, हाँ बेटा बेटा सुनाओ, तो बच्चा वो को क्या चाहिए बीच में आके आई टू सिंग एंड देन ग्रेजुअली और थोड़े थोड़े स्कूल भी शुरू हो गया था, स्कूल के साथ फिर वो भी था, पहले थोड़ी देर की एक क्लास होती थी शाम को या कोई स्कूल से आने के बाद, या फिर और समय होता था जब छुट्टी होती थी तो उसमें जो है वो ज़्यादा लंबे सेशंस होते थे, सुबह से शुरू हो जाते थे, सुबह 6 बजे से या 4:30 5 जब भी उनका जब भी शुरू हो जाता था रियाज तब से लग जाते थे वो, तब से 10, 11, 12 बजे तक जो है 3-4-5 घंटे उसमें लग जाते थे। तो शाम को छुट्टी के दिन ये होता था, ये फॉर्मेट होता था, वरना स्कूल डेज में तो फिर वही शाम को 1-1.5 घंटे की क्लास होती थी, उसमें वो होता था, फिर उसमें प्रैक्टिस करते करते जो है फिर उसमें, क्योंकि ग्रेजुअली ओनली स्टैमिना बिल्ट होता है, स्टैमिना तो एकदम ऐसा आता नहीं है ना, स्टैमिना को भी तो वक्त समय देना पड़ता है। तो इसी तरीके से उसमें फिर ग्रेजुअली इसके वो पढ़ते ही चला गया। तो एट द एज ऑफ 20 आई गेव माई फर्स्ट परफॉर्मेंस इन भारत भवन, पहला मेरा परफॉर्मेंस भारत भवन में हुआ था। और बहुत सी चीज़ें उसमें भी घटी थी, मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट हो गई थी जब हमको जाना था, और मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो पूरे पूरे टाइम 6 घंटे ट्रेन मतलब लेट होना, एक जगह पे खड़ी हुई थी 6 घंटे, हमने कुछ खाया भी नहीं, और हम पहुँचे 4:30 बजे और 5:30 बजे परफॉर्मेंस था। तो बस तैयार होने का ही टाइम था, बस उसमें भी भागा दौड़ी करके फिर तो ताऊ जी ने पूछा भी आपको भूख लग रही है, तो मैंने कहा अरे तुमने खाया नहीं ट्रेन में, मैंने कहा जी नहीं खाया, वो भी थे अलग अलग उसमें थे, हम लोग अलग अलग कंपार्टमेंट में थे, टिकट नहीं मिली थी आसानी से, तो अलग अलग आए थे, तो उसमें कहने अरे क्यों नहीं खाया, मैंने कहा मुझे आप उधर थे तो मैंने नहीं खाया। तो फिर मुझे पहुंचे गए भूख लग रही है, कहा जी बहुत जोर से भूख लग रही है, कभी तो खाना नहीं हैव टू कीप योर स्टमक एम्प्टी, हम लोग को बहुत पहले से हम लोग नहीं खाते हैं उसमें, क्योंकि उसको उसमें आवाज़ जो लोअर आवाज़ और मंदिर की आवाज़ और वो सब कुछ उसको बिल्ट अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे भारत भवन में मेरा प्रोग्राम हुआ था 88 में, और फिर उसके बाद फिर मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो फिर मैं ताऊ जी के साथ जुगलबंदी में उनके साथ बैठा मैं, तो फिर वही उसी तरीके से ही चलता रहा वो मामला. सो नाउ आई एम हियर एंड आई एम ऑनर्ड टू बी बोर्न इन सच अ फैमिली. इतने सारे ग्रेट म्यूजिशियंस यहाँ पे रहे हैं एंड आवर टीचर्स आर फार सुपीरियर देन अस. वी कैन नॉट अचीव दैट. वी ट्राई टू डू लिटिल, थोड़ा बहुत उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे गुरु हमारे सारे बड़े, बहुत बड़े हैं, उनको किसी तरीके से भी छू नहीं सकते, इतने बड़े हैं वो.
0: यही सिखाती है भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा कि हमेशा नम्र रहना है और हमेशा झुक करके चलना है. इसमें ही महानता है, इसलिए हम समझते हैं. लेकिन मैं इस पे वापस आऊंगा, लेकिन मैं पहले सवाल वहां पूछना चाहता हूँ कि बचपन में जब आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ घिरे होते हैं जिनकी आकांक्षाएं या इच्छाएं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है और गाड़ियां होनी चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारा अलग अलग किस्म का सपनों से घिरा हुआ मन होता है उस समय. इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं हम, और कई चीजों का हम पर प्रभाव भी पड़ सकता है. तो वो जो यंग वासिफुद्दीन थे, उन्होंने खुद को कैसे इस इन्फ्लुएंस से बचा के रखा और कैसे खुद को बताया कि मेरा लक्ष्य जो है वो ये है, और उसके लिए आपने उस समय क्या किया? मतलब क्या आपने खुद को सुनाया, समझाया, या वाज देयर अ गाइड हु वाज मेंटरिंग यू?
1: माय फादर वाज माय बिग गाइड. माय अंकल वाज आल्सो देयर, वेरी मच देयर, बट फॉर कंसल्टिंग थिंग्स इट वाज माय फादर विद हुम ही वुड ऑलवेज सजेस्ट समथिंग. So actually my friends also supported me. They knew who I am and what family I belong to. But wo jaise wo maine bataya na chutti ke din jo hai wo bada mushkil din hota tha waise, kyunki us din hi sabse lamba hamara session hota tha. Aur us din hi subah chuttiyon mein jab hai na wo subah cricket hamari 7 baje khela jata tha. Sare colony ke liye sare ikatte hote the और अलग अलग क्लब्स के साथ खेलते थे, अलग अलग कॉलोनी के साथ मैचेस होते थे. उसमें मेरे छुट्टी के दिन वाले जो है मेरे मैचेस छूट जाते थे, बिल्कुल नहीं खेल पाता था क्योंकि मेरा इसमें सेशन में ही चला जाता था. तो उस पर नाराज भी होते थे वो लोग, क्या मैं बॉलिंग करता था, फास्ट बॉलिंग करता था, तो दे नीडेड मी इन द टीम, बट मैं उसको नहीं कर पाता था मैं उस पर. तो वो नाराज वाराज हो के वो कितना कितनी देर नाराज होंगे, जो मुझे उनको मालूम है कि मुझे जो करना है मैं वही करूंगा. तो I had a love for cricket also, मतलब था, लेकिन मेरे दिमाग में कभी और कुछ बनने का, क्रिकेटर बनने का जरूर है. तो हर बच्चे को कोई खेल स्पोर्ट्स के ऊपर ही दिमाग लगता है कि स्पोर्ट्स ही में कुछ आगे वो करेंगे. सो दोज वर द डेज, वो एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर किसी पे भी वो नहीं था. हमारे पहले के वो माहौल भी चला गया, जैसे कॉलोनी के लोग खेला करते थे, सब कुछ खेला करते थे. आज तो बगैर किट के जो है कोई बच्चा क्रिकेट ही नहीं खेलने के लिए आता है. बगैर सही शूज नहीं हो फुटबॉल के तो वो नहीं खेलना चाहते, सही रैकेट नहीं हो तो वो. हम लोग तो एक दूसरे के शेयर करके खेल लेते थे, रैकेट एक या दो के ही होते थे, उन्हीं से पूरा का पूरा बैडमिंटन भी खेल लेते थे. और फुटबॉल शूज जो है वो चाहे कैसे भी खेल लेते थे, चप्पल थी या कैसा भी जूता था वो खेल लेते. आजकल जो है ना बहुत ही अपनी किट, अपना पैड, अपना विकेट. किसी के पास दो विकेट थी, किसी के पास दो विकेट थी, तो You can imagine what I'm saying. तो एक वो माहौल एकदम ही डिफरेंट था, और डिफरेंट मतलब हम उसी में ही पैदा हुए. ये एक साथ ही सबको जितने भी हैं, सब दोस्त वोस्त जो भी मिलजुल के जैसा भी है, तो वी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. तो जरूर अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा. मेरा अपना पर्सनल वो है कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लोग पसंद करते हैं, तो मिडल ऑफ द सब्जेक्ट, मिडल ऑफ द कोर्स, वो आपको हमको ये एक बार जरूर मन में आता है, अरे मुझे कैसे पसंद आ गया ये वाला सब्जेक्ट, ये तो इतना बेकार, इतना बुरा है और कितना वैसा है. कोई टेक इट एनीथिंग, कि हम फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, जो भी कुछ ले लें. व्हेन यू गो इनटू डेप्थ ऑफ द एजुकेशन, वो अपना भयानक रूप दिखाता ही है वो सब्जेक्ट जो है. तो म्यूजिक में भी ऐसे क्षण आते हैं जो बहुत बहुत डिफिकल्ट चीजें, समय आता है कि आप गला नहीं चल रहा, गला सपोर्ट नहीं करता है, वो है, फिर ऊपर से और टास्क मिल जाता है और डिफिकल्ट वो चीजें की हो जाती है. तो इट हैपेंस विद एवरी सब्जेक्ट, कि मतलब बीच में जो है जरूर ये लगता है कि अरे मुझे म्यूजिक कैसे पसंद आ गया, ध्रुपद है बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं तो कुछ और ही कर लेता तो अच्छा होता है. लेकिन हर चीज मुश्किल है, तो ये जरूरी है कि आपको यू हैव टू हैव ट्रस्ट, आपको अपने पे यकीन रखना है और आपके टीचर्स के ऊपर यकीन रखना है, अपने बड़ों पे आदर सम्मान बहुत जरूरी है, जो आजकल जो है गायब होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा कि उन लोगों पे, उन नई यंगर जनरेशन को हमको ये प्रोत्साहित करना है कि आप इससे भी कुछ होता ही है। आजकल हमें सवाल पूछने की कोई इजाजत नहीं थी, आजकल हर टेक्निक के बाद वो पूछते इससे मुझे क्या फायदा होगा, उससे मुझे क्या फायदा। अरे भैया करो तो, करना जरूरी है, करत अभ्यास जो है, आपको अभ्यास करना जरूरी है। फिर उसके बाद फिर आपको अपने आप अपने दृष्टिकोण ही बनेंगे। पहले से सवाल पूछ लेते, कुछ लोग अपना आपको इंटेलिजेंस समझते हैं सवाल पूछने का, उसमें जवाब मिल भी चुका होता था उनका सवाल जो है ना, पहले से टेक्स्ट तैयार होता है तो फिर भी वो सवाल पूछते हैं। तो पहले तो हमको सवाल पूछने की इजाजत ही नहीं थी, तो जवाब मिल जाते हैं, जवाब सवाल अगर पूरा सवाल बन जाए तो सवाल में ही जवाब होता है। तो यू हैव टू गिव अ टाइम,
0: बताया कि करते करते ही आपको जवाब मिलता भी है, मतलब पहले करने की आवश्यकता है। जब आपने कहा करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहले के लोग थोड़े से सुजान पहले से ही होते थे और इसलिए उनको जड़मती से सुजान होने में कम टाइम लगता था। अभी शायद जड़मती वाला हिस्सा ज्यादा है जिसके वजह से सवाल भी ज्यादा है या डाउट। सवाल मैं समझता हूँ गलत नहीं है, लेकिन जो संशय है, जो डाउट है ऑन द प्रोसेस, ये प्रोबेबली बुद्धि को करप्ट कर देता है कि ये जो मुझे बता रहे हैं इसमें जो डाउट आ रहा है गुरु के प्रति या शिक्षा के प्रति, ये बहुत खतरनाक होता है। और जैसे आपने बताया कि हर सब्जेक्ट में ही एक लो पॉइंट आता है जहां पर आपको लगता है कि मैंने क्यों ले लिया ये सब्जेक्ट, मैंने अपने पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन ऐसे समय पे ये संशय और ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो व्यक्ति अपने बुद्धि को संशय से कैसे बचाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा कि आज का युवा या कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में अगर पारंगति लेना चाहता है और उसमें अगर उसको संशय आ रहा है या वो जूझ रहा है, तो संशय से खुद को कैसे बचाए।
1: संशय से किस तरीके से बचे, उसे बचना तो मुश्किल है, लेकिन उसमें फिर यही है कि यू हैव टू डेवलप अ रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर। आप उन पर ट्रस्ट करिए, यू हैव टू डेवलप अ ट्रस्ट। और वो भी गायब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों में वो भी गायब हो जाता है, बट यू हैव टू हैव ट्रस्ट। आपको यकीन रखना पड़ेगा कि इसी सिया समंदर से मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा और इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा। तो ये तो बहुत बड़े लोगों का ये कहना है, लेकिन मैं एक उस बचपन में जो है उसको बहुत मुश्किल से वो चीजें समझती है, तो माँ और बाप जो है ना, वो या कभी भाई बहन भी जो है, बड़े भाई या बड़े बहन या कोई भी, they can inspire you, they can give you a reply। उसमें से अगर आप उसमें से अगर उस क्षण में अगर आप उसको ट्रस्ट करके उसको उसी विधि को उसी विधा को उसी विद्या को अगर आप ट्रस्ट कर लें तो यू विल गेट द रिप्लाई। तो इसी तरीके से मैं उस डाउट्स में जब मैं आया था, जब मुश्किल क्षण थे, जब डिफिकल्ट प्रैक्टिस हो रही थी और वो आई वाज नॉट एबल टू डू, तो ये लग रहा है यार कि ये क्या मतलब है। फिर यू हैव टू गिव अ टाइम, आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो बेस्ट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ द रूम ऑल्सो, आप थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाओ थोड़ा सा। अगर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है तो उस जगह को छोड़ना अच्छा रहता है। जब जगह छोड़ते हैं तो फिर वो जगह याद आती है, जब थोड़ी देर आप जगह छोड़ हट जाओ तो फिर आपको वो जगह फिर याद भी आती है, आपको दिखती भी है, जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, जहाँ पे आप अभ्यास कर रहे थे, थोड़ा सा उस जगह को छोड़ने से आपको ये लगता है कि हाँ चलो छोड़ो दिमाग में। थोड़ी देर आप जब बाहर अपना व्हेन यू टेक वो सब निकाल देते हैं तो उसके बाद फिर वही जगह वापस आपको याद आती है, फिर आप वापस वो खींच के लेके आ जाती है। तो कहीं ना कहीं तो आप अट्रैक्शन तो आपका उसी पे ही था ना, तो इसीलिए आप वो कर रहे थे, तो इसलिए देन यू गेट इनटू दैट। तो उस टाइम जो है मैं अभी है कि आपको समय को भी समय देना पड़ता है, यू हैव टू गिव अ टाइम, समय को समय देना पड़ता है। जब आप अच्छा समय आप किसी की क्वालिटी टाइम कहीं पे आप देते हैं तो वो दैट क्वालिटी टाइम्स गिव्स यू बैक, फिर आपको वो समय अच्छा समय दिखाता है। तो ये समय एकदम ऐसे तो आ नहीं जाता है, तो सन्मयता के साथ उस समय का आपको परिश्रम करना चाहिए, आपको और आपको उसका इंतजार करना चाहिए। आजकल जो है समय उड़ क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं ना, हमारे आध्यात्मिकता में हम लोग का यही वो रहता है कि भाई जो चीज अच्छे श्लोक क्यों पढ़ने को लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अच्छी बातें बोलो, क्यों बोलते, इसलिए बोलते हैं कि वो अच्छा जो है उससे अच्छा ही होता है, जो बुरा होता है तो उससे बुरा ही होता है। तो इसीलिए ही जो है हम लोग पिछले 30 साल से हम लोग या ज्यादा से 30-40 साल हो गए हमको ये समय नहीं है। We don't have time. कितनी जल्दी समय उड़ गया, समय कितनी जल्दी उड़ जाता है। मेरे ख्याल से हम लोग को जो है अब ये मंत्र भी जाप करना चाहिए, समय है। जब समय है करेंगे तो समय भी थमेगा, समय भी रुकेगा। क्योंकि हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जो हम लोग संगीत जो गाते हैं, जो मेडिटेशन करने वाले हैं, तो वो क्या है, सबसे सुंदर समय कौन सा है। बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कहता है सूर्य उदय है, कोई कहता है सूर्य अस्त है, कोई कहता है यही समय है, कोई कहता है सुबह का समय है। तो ज्यादातर सुबह को ही बोलते हैं कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। तो उन्हीं को मैं ये सवाल पूछता हूँ कि रात अच्छी नहीं है क्या, रात कुछ नहीं देती क्या? तो रात भी कुछ देती है, हर समय कुछ ना कुछ आपको देता ही है। लेकिन सबसे सुंदर समय वो समय है जब आपको समय का ही आभास नहीं हो। क्योंकि समय को तो वो जो 5 मिनट का गाना कभी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, कभी 5 मिनट में नहीं खत्म होता, कभी 5 मिनट से पहले खत्म हो जाता है। ये होता है, ये हम सबके साथ हो चुका है जो हमको पसंद है। कभी हम वो गाना पूरा का पूरा सुन पाते हैं, कभी वो टॉक जो है बहुत अच्छी तरीके से सुन पाते हैं, कभी नहीं सुन पाते कितनी अच्छा प्रवचन हो रहा होता है, नहीं सुन पाते, कभी पूरा का पूरा सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। तो वो क्षण जब आ जाता है, समय जब एक क्षण में प्रवेश कर देता है, तो फिर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान जो है, ये संगीत है जो है, ये ध्यान जो है वो आपको उस क्षण में ले जाता है, आप वो समय को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मतलब अपने आप को आप रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ असेसमेंट, जैसे धारणा क्या है, ध्यान क्या है, कि किस तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेजेस है। तो आपको आपको किस तरीके से अपने आप को वो करना है, कमिट करना है। कमिटमेंट के बाद फिर आपकी धारणा भी चाहिए।
0: मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि समय को भी समय देना बहुत जरूरी है, और जब समय आपको आभास ही ना हो वो समय आपका बेस्ट समय है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप अपने, इसे ही हम योग कहते हैं, कि आप अपने कर्म से या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे आप इतना जुड़ जाए कि आपको जो थर्ड एलिमेंट है समय, उसका ख्याल ही ना रहे। और इसके लिए ही जो आपने बताया कि अभ्यास धारणा ये बहुत मायने रखती है। मुझे एक और सवाल इसमें ध्यान आता है कि व्यक्ति जब अपने विधा में इस प्रकार से जुड़ जाता है कि वो और विधा अलग नहीं हो, उसका एक इमेज बन ही जाता है उस विधा के साथ, तब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति के ऊपर ये बोला जा रहा है कि भाई आप तो बस यही करते हैं, आपको तो बस यही आता है। लेकिन एक ह्यूमन स्पिरिट जो है, एक मनुष्य जो है, वो लगभग सब कुछ करने में पारंगत हो सकता है, लेकिन कोई एक विधा को चूज करता है। कभी आपको ऐसे सुनने में आया है अपने लिए कि भाई आप तो केवल ध्रुपद गायकी में ही आगे हैं, या आप कुछ अलग प्रकार के गायकी में नहीं कर सकते, या कईयों के लिए ऐसा बोला जाता है भाई ये तो लोक संगीत ही कर सकते हैं, ये शास्त्रीय संगीत नहीं कर सकते, या ये वेस्टर्न म्यूजिक ही कर सकते हैं, इनसे ये म्यूजिक नहीं होगा, ये तो इस तरीके की बातचीत बहुत सुनने में आती है। इसमें कितना तथ्य है
1: भाई? एक चीज आ जाए वो आसान तो है नहीं। एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए। तो एक कभी अगर आप साधक बन जाते हैं और संपूर्ण साधक बन जाते हैं, तो that should give you blessing. That blesses. This is a blessing you get. और आप में अगर उत्तेजना है तो आप उत्तेजित कहीं पे भी रह सकते हैं।
0: बहुत अच्छा है।
1: तो आप में अगर आप उत्तेजित हैं तो आप उत्तेजित रहेंगे ही रहेंगे। तो लेकिन उसी को तो रिलैक्स करने के लिए ये माध्यम है, ये योग क्यों है, योग को धीरे करने के लिए क्यों बोला गया है, ये ठहरने को क्यों बोला गया है, मेडिटेशन को, ध्यान को क्यों कहा गया है कि आप ठहरो। सबसे पहले मतलब जो हम लोगों ने अंगुली माल का वो जो सुना ना, वो पहली बार जो उन्होंने वो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि उसने कहा, उनको कहा ठहरो, तो उन्होंने कहा कि तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। तो पहले तो ये बहुत जरूरी है कि ये ठहरने का मतलब क्या है। आप रुकने का मतलब क्या है, थमने का मतलब क्या है, अपनी अपनी जो भी अपनी उत्तेजना है आपकी, जो इधर उधर जो आपकी इंद्रियां जो आपकी सब जगह पे लेके जा रही, तो उसको एकाग्रत का मतलब क्या है। अब जैसे मुझे पता नहीं, मैं ध्यान का तो मुझे ना क्या बोलूं, लेकिन ध्यान मेरे लिए वो है कि शोर में भी अगर आप अपने सेंटर प्राप्त करें तो वो ध्यान है। एक एम्बियंस क्रिएट करके ध्यान किया तो ध्यान, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जहाँ पे ऑलरेडी पिन ड्रॉप साइलेंस है वहां पे ध्यान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको वहां पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए जहाँ पे बच्चे छिड़कूद कूद कर रहे हैं, वहां पे आप अपने ध्यान प्राप्त करें, वो ध्यान है। और देखो ध्यान आया कहाँ पे, कौन से मुल्कों में आया, भारत से, भारत में आया, चीन में है, जापान में है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। शोर तो आजकल बहुत हो गया ना, आजकल तो आज जो पंखा है वो भी शोर करता है, पंखे का भी शोर है, कूलर का भी शोर है, एसी का भी शोर है। उस शोर में से आपको आवाज अपनी बचानी है, निकालनी है, संभालनी है। तो ध्यान का मतलब ये इतनी डेंसली एरिया में क्यों क्यों ध्यान दिया गया, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में वहां पे पंखे की जरूरत नहीं है, उनको एसी की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी ठंडे हैं मुल्क, उनको वो वैसी उनके जो हमारे हमारे टोन में उनके टोन में इसलिए भी फर्क है क्योंकि वो उनको एसी और से लड़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमको अपनी आवाज निकालने के लिए एसी से भी लड़ाई करनी है, पंखे से भी करनी है, ये से भी करनी है, सब चीजों से करनी। तो इस ये भी एक वजह है कि वो मतलब उनके टोन और इधर के टोन में क्यों फर्क हो जाता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान देखना पड़ता है ना। तो ध्यान एक ऐसी जगह है कि मतलब आपकी यू हैव टू फाइंड योर सेंटर जब थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल एंड फाइंड इट, फाइंड योर सेंटर, ये है ध्यान। अब जैसे स्वर जो है, स्वर जैसे हिंदी में लिखते हैं स्वर, तो आधे सा और व र है। एक और बात बोलता हूँ मैं, और मैं आजकल बस यही दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो मैं ढाई अक्षर किस चीज का है,
0: प्यार का कहते हैं,
1: प्यार का, लेकिन आ की मात्रा है, प्रेम का भी बोलते हैं, उसमें हलंत है, प्रे प में हलंत है, फिर ए की मात्रा है, फिर माँ है ना, तो फिर कितने हो गए, हलंत को हलंत, हाँ ढाई से ज्यादा हो गया। प्यार में आ की मात्रा भी लगी, पा या
0: फिर आ की मात्रा,
1: तो हाँ प्यार नहीं है, प्यार है, तो आ की मात्रा है, तो पी को भी, तो ढाई अक्षर जो है वो है। फिर अगर अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ढाई अक्षर स्ने का भी बन सकता है फिर तो, और ढाई अक्षर स्वर का है
0: जिसमें कोई एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है।
1: जी जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है। तो ये स्वर जो है प्रभावित करता है, हर मनुष्य को प्रभावित करता है, अच्छे स्वर बोलने के लिए बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर ध्यान भी इतना वो है, इतनी कोमल चीज है, स्वर इतना कोमल है कि एक अक्षर का भी भार नहीं सहन कर सकता, उसी तरीके से ध्यान किस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान का अध्ययन क्या है, अध्याय पढ़ने का, अध्ययन करने का, अध्याय ध्यान, ध्यान क्या है, आधा था
0: या
1: और ना, आ की मात्रा के साथ ध्यान है, वो भी मैं ढाई नहीं बोल रहा उसको, लेकिन वो भी इतनी डेलिकेट चीज है कि उसको भी पूरा धा नहीं दिया, धारणा में पूरा दिया हुआ धा, धारणा में पूरा धा है, धारणा के साथ बैठो फिर ध्यान उसके अंदर, जब आप धारणा के साथ बैठते तो वो फिर ध्यान की प्राप्ति होती है, फिर वो डेलिकेट हो जाता है, वो
0: बहुत सुंदर,
1: फिर ध्यान मिलता है। ध्यान प्राप्त करने के बाद फिर समाधि है। अब समाधि क्या है, समाधि लेकिन मैं उसको मैं समाधि बोल रहा हूँ, समाधि नहीं बोल रहा मैं, जब आप सम का मतलब बराबर आ गया, सम
0: बराबर, आधी मतलब शुरुआत, फिर
1: तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग। अब जिसको ध्यान प्राप्त होता है वही बता सकता है, जो समाधि जिसको मिली है कि वो क्या होता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट या सुपर अनकॉन्शियस स्टेट, कुछ भी सिमिलर, क्या पता, जिनको मिला है वही जानते हैं।
0: ये ब्यूटी है कि हमारे जो पारंपरिक विधाएं हैं, जो शास्त्रीय संगीत है या नृत्य है या कोई भी विधा जो परंपरा से भारत में चली आ रही है, वो अपने आप में बहुत आध्यात्मिक है। और कोई व्यक्ति अगर केवल उसको ऊपर ऊपर से सीखता है, समझता है, या उसको मैं कहूँगा रोजगार का साधन ही समझता है, तो वो कभी इतने गहराई में उसके आध्यात्मिक रस को नहीं ले पाता। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसके गहराई में पहुंचता है, जैसे कि हमारे श्रोता आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं वासिफुद्दीन जी आपको, कि एक आध्यात्मिक पथ जो है वो इजीली कोई भी विधा दे देती है। और कई बार जो हमारे स्पेशली मैं यंग जनरेशन के लिए कहूंगा, क्योंकि पहले शायद जब 1988 में आपने 20 वर्ष की आयु में भारत भवन में पहला अपना परफॉर्मेंस दिया, उस समय शायद कोई जो आजकल के टीवी रियलिटी शोज होते हैं और जो ये चकाचौंध होता है वो नहीं होता था। तो इसलिए जो तपस्या है, जो आध्यात्मिक पथ है, वो चल पाना एक सहज, मैं सहज तो नहीं शब्द यूज करना चाह रहा, लेकिन एकमात्र उपाय होता था। आज इतना ज्यादा प्रलोभन है कि भाई हम इधर स्टार बन जाएंगे, इधर हमारे फॉलोअर्स बन जाएंगे, इधर हमको एक सिंगिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, इधर हमारा एक परफॉर्मेंस हो जाएगा। इन सब के बीच में व्यक्ति भूल ही जाता है कि इन सभी विधाओं का उद्देश्य था कि आत्मा को आध्यात्म से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना। चाहे आप संगीत के माध्यम से जुड़ रहे हैं, चाहे आप नृत्य के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो पर्पस ही कहीं गुम हो गया। कैसे हम उसको ठीक करें, क्या करना चाहिए हमें?
1: भारत एक ऐसी जगह है। देखो, सबसे पहले तो एक भारत क्या विश्व जो है, पूरा हमारा शरीर जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है धरती का, पृथ्वी का। मतलब एक मोटा मोटा एक उदाहरण लें तो जितना पानी उसको जरूरत है उतना हमारे हमारे शरीर को जरूरत है। एग्जैक्टली सेम परसेंटेज, ये तो मोटा मोटा है। फिर और भी चीजों को अगर मिलाए तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिल जाती है। तो फिर शरीर इज अ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान की बनाई हुई वीणा है, गायत्री वीणा है। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। सारे इसी ने बनाए ना, सारे इंस्ट्रूमेंट, सितार है, सरोद है, सारंगी है, हारमोनियम है, जितने भी है वो इसी ने बनाए हैं। साउंड पहले उसमें बैम्बू से पहले साउंड उसको सुनाई पड़ी, उसने कहा कि भाई थोड़ा सा इसके अंदर होल क्रिएट कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो मनुष्य इज कंटेम्पररी ऑफ ऑल टाइम, सदा से वो है। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट। सब्जेक्ट बनाने वाला कौन है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाला कौन है, नहीं समझने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है? तो मनुष्य ही है, सब चीजों के पीछे मनुष्य है। तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे यहाँ जो है हर चीज में, भारत में, ये साउथ साउथ एशिया जो है, जो मैं आई इंक्लूड पाकिस्तान ऑल्सो एंड बांग्लादेश ऑल्सो, ये साउथ
0: जी
1: एशिया जो
0: जी
1: है,
0: अखंड भारत।
1: नेपाल, नेपाल जो ये है, अखंड भारत जो है, इधर ये आध्यात्मिक जो एक स्वरूप है और जो हर चीज में आत्मा डालने की जो वो है, एक ख्वाहिश है। फूल में भी आप फूल की भी आत्मा को तलाश करने की कोशिश करता है, किसी और चीज को भी, पत्थर, जहाँ पे पत्थर, जहाँ पे बूंद गिर रही है जिस पत्थर पे, उसकी भी आत्मा तलाश करने की कोशिश करता है। उसमें क्यों बूंद कहाँ पे पड़ के, वो जो पत्थर जो इतना साफ हो गया है, कभी आपने उधर हाथ तो लगाए होगा, वो जहाँ पे बूंद पड़ती है वो पत्थर
0: जी
1: कितना सॉफ्ट हो जाता है, कितना अच्छा लगता है उस पत्थर पे हाथ लगाना।
0: जी
1: और बूंद की औकात क्या है पत्थर के अगेंस्ट, लेकिन उसके अंदर भी वो छेद कर देता है, उसको भी सॉफ्ट कर देता है। तो भारत का, भारतीयों का, या भारत इंडियन थॉट में यही है कि हर चीज में आत्मा डालता है। बगैर आत्मा के वो अपनी चीजों में भी अपने आत्मा ही तलाश करता है, अपने साज में तलाश करता है, जो बजा रहा है या तानपुरा है या जो भी है, उसके अंदर जो गाड़ी गाड़ी से कमाता है उसके अंदर भी वो गाड़ी से भी वो वार्तालाप करता है, जो टैक्सी से जो करा है वो भी उससे भी बात करता है अपनी गाड़ी से भी। भारत में होता है ये सब, और जगहों में भी होता है, ये नहीं बोलता और जगहों पे नहीं होता, होता होगा कहीं पे, लेकिन हम लोग अपनी चीजों में आत्मा डालने की हमको शुरू से ही वो है, चाहे फूल हो, पुष्प हो, कुछ भी हो, हर चीज है पुष्प, फिर वो आ जाता है कि वो क्या है। तो मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड, दूसरी ओर से सोचने की उसमें क्षमता है। और जो जीव है, जो भी आते हैं, जानवर आते हैं, मरते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूसरे को मारता है, दूसरा वो करता है, वो करता है, वो आके वो खत्म हो जाते हैं। सर इसी कीड़े मकोड़े भी आते हैं, वो करते हैं अपने अपना काम वाम करते हैं, अपना काम, कीड़े मकोड़ों का भी अपना काम है, पानी का भी अपना काम है, उसका भी अपना काम है, वो अपने साइकिल में आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, फिर ये मनुष्य भी यही सोचता है कि आपको कैसे पता वो एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं करते जानवर। तो
0: जी
1: ये मनुष्य के पास, मनुष्य इज ब्लेस्ड टू थिंक फ्रॉम द अदर साइड। तो ये सिर्फ मनुष्य में ही एबिलिटी है कि दूसरी तरफ से भी सोचने की उसमें क्षमता है। तो इसलिए वो सबसे चॉइसेस परमात्मा का वो इसीलिए बन जाता है, दूसरे की तरफ से भी सोचने की कोशिश करता है, दूसरे के भाव को भी लेने की कोशिश करता है, दूसरे के दुख को समझने की भी कोशिश करता है, दूसरे की खुशी को भी महसूस करने की कोशिश करता है। अब वो किसी की खुशी में ज्यादा दुख होते हैं तो वो बात दूसरी है, वो तो एक दूसरा मामला हो जाता है, लेकिन किसी के साथ खुश होने का, खुश खुशी के साथ खुश होते तो खुश है, किसी की डेथ हो गई किसी की दुख है तो उसके साथ दुख में दुख में मनुष्य देखता है बैठता है। तो मनुष्य इज ब्लेस्ड, द मोस्ट ब्लेस्ड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग।
0: एग्री। और इसलिए जो आपका कहना है कि फोकस भी हम ही क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी हम ही खुद को कर सकते हैं, तो ये जो मैंने सवाल पूछा था कि ये जो प्रलोभन है चारों तरफ ये भी हमने ही क्रिएट किया है। और
1: बच्चों को सिर्फ बच्चों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई,
0: बिल्कुल
1: बच्चों को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, प्रोवाइडर्स शुड बी क्रिटिसाइज्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नेट पे और ये हर हर जगह पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सबसे बेतुकी बेहुदा साइट्स हैं, अगर बाय मिस्टेक इफ यू क्लिक इट डजंट गो, सैकड़ों क्लिक के बाद भी वो नहीं जाती है वो, और जो आम साइट्स हैं और जो वो है आराम से बंद भी हो जाती है, खुल भी जाती है बंद भी हो जाती है, लेकिन जो सबसे बेतुकी बेहुदा जो जो साइट्स हैं अगर बाय मिस्टेक इफ यू यू हिट दैट वो हटती नहीं है, कितनी देर तक नहीं हटती है। तो दिस इज टू बी हु टू बी ब्लेम्ड। अब एआई इज देयर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो नीड टू बी You have to command. Human error दे देते हैं, human error computer में, computer को आप type करते रहे, एक हल्के सी भी गलत type हो जाता है तो वो show कर देता है।
0: जी।
1: तो human errors are there, लेकिन you can't just trust के machine हमको संभाल लेगी। machine तो हमको नहीं संभाल सकती ना।
0: ये जो आपने बात कही कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इस तरफ भाग रहा है, लेकिन जो आपने बात कही कि जो प्रोवाइडर्स हैं उनको इन चीजों को पहुंचा कौन रहा है, ये मेकर्स जो हैं उनको ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस प्रकार की चीजों का इन्वेंशन किया जाए या प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लोगों में ये भागम भाग की होड़ कम हो, इनफैक्ट उनके अंदर ये चीज ज्यादा बढ़े कि भाई एकाग्रता, या जो आपने पहले बात कही कि भले आपके पास 100 सब्जेक्ट्स हो लेकिन एक को भी अगर आप सध लेते हैं तो इट्स अ बिग डील, इट्स एनफ फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, कंटेंटमेंट, संतुष्टता उसमें आ ही जाती है।
1: बिल्कुल।
0: मुझे याद आता है मैं बचपन में,
1: takes you into bliss.
0: जी आनंद, ब्लिस।
1: जी, जी.
0: मुझे याद आता है कि मैं बचपन में तबला सीखता था और मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि आपको अभी कहीं परफॉर्म नहीं करना है, ना किसी स्टेज पे जाना है, ना ही कुछ करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको आप कब रेडी हैं। बट हम जैसे आप बता रहे वैसे हम रविवार को, क्योंकि छुट्टी रविवार को ही होती थी, आजकल तो 2 दिन छुट्टी मिलती है बच्चों को भी स्कूल में, हमें तो एक ही दिन मिलता था, तो हम एक दिन जाते थे सुबह से और गुरुजी के साथ और सभी शिष्य मिल करके हम तबला सीख रहे होते थे, घंटों निकल जाते थे हमें पता भी नहीं चलता था। और कब एक समय आया जब उन्होंने बोला आपको यहाँ बजाना है, तो ये जो पेशेंस पकड़ के रखना है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बताना है लोगों को कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैंने कितना सीख लिया है या मुझे क्या आता है नहीं आता है, ये चीज जो है वो गुरु के ऊपर जो ट्रस्ट था एंड जो वर्च्यू ऑफ पेशेंस, धैर्यता, ये कहीं ना कहीं अभी कम होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इससे आपको थोड़ा ये चीज, मेरा सवाल थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे कोई परिचित थे जिन्होंने अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छे संगीत शिक्षक के पास शिक्षा के लिए भेजा था और वो जो संगीत शिक्षक थे उनको हमने ही रेकमेंड किया था और वो संगीत शिक्षक जो है हमें फिर फोन करके कहते हैं भाई इनके पेरेंट्स ने आकर के हमें पहले दिन ही पूछ लिया मेरा बच्चा कब रेडी हो जाएगा, फलाना प्रोग्राम आने वाला है, ऑडिशन के लिए जाना है। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे से गलती
1: parents, हो parents, parents also has to be blamed. एक बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन करवा रख लेते हैं कि ये भी कर ले वो भी कर ले वो भी कर ले, एक तो हर को अपना बच्चा ना प्रोडिजी लगता है वैसे, ये भी एक हो गया है। तो एक बात ये भी है कि टैलेंट, वी नीड टैलेंट एंड यू हैव टू बी टैलेंटेड टू अचीव व्हाटएवर फील्ड यू आर इन, बट एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट। विद एक्सपीरियंस व्हाट यू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, एक्सपीरियंस रिप्लेसमेंट नहीं है टैलेंट का, टैलेंट से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा
0: और हुनर अनुभव
1: है और उसके अंदर अनुभव भी जब आता है, जब आप तप जब आप उसके अंदर होता है आप समय जब बिताते हैं अपनी चीज के साथ, अपने लगाव के साथ, आप वो चीजों के साथ स्पेंड करते हैं, तो फिर उसके साथ लगाव पैदा होता है। तो लगाव जब पैदा होता है तो फिर बात ही दूसरी हो जाती है।
0: तो ये जो कल्चर है, ये जो भागम भाग का कल्चर है, तुरंत हमको जल्दी फेमस होना है, हमें जल्दी पैसा कमाना है, इसमें हम वो तपस्या का पार्ट छोड़ देते हैं। एंड डू यू थिंक इट रिस्ट्रिक्ट्स आर लॉन्जिविटी इन द फील्ड ऑफ आर म्यूजिक और आर आर्ट फॉर्म?
1: एक्चुअली जो है वो तो करवाए ना, फिर वरना उनको इतनी सब चीजें हैं, देयर इज रिप्लाई ऑफ एवरीथिंग। अब वो क्या गूगल कम था, वो एक और भी आ गया, वो जीटीपी पता नहीं कौन सा है, वो चैट
0: चैट जीपीटी
1: है, वो है, पता नहीं कौन कौन से आ गए जो आप ही को आपका जवाब दे रहे। तो मतलब वो तो पागल हो रहे हैं लोग। लोगों का क्या है, लोगों का मत जो है ना बिल्कुल मारी गई है। वो तो खैर चलो ठीक है, दिस दे आर गोइंग आफ्टर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट यू नीड ह्यूमन टच। ह्यूमन टच के बगैर कुछ हो नहीं सकता। या अगर मतलब एक कंप्यूटर के साथ भी जी सकते थे लोग, लेकिन क्यों फिर पेट के साथ क्यों जीने लगे? क्योंकि वो सांस ले रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो इसलिए वेस्ट में जो है बुढ़े लोगों के पास वो पेट वो कर देते, क्योंकि वो उससे वो बात करते रहते, वो अपना रिएक्शन भी देता है, पेट जवाब भी देता है। तो कंप्यूटर को जब तक आप कमांड नहीं करेंगे तब तक रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर पेट जो है वो रिएक्शन दे देगा। अगर उसको कुछ सही नहीं लग रहा तो कहीं पर उसको वो रिएक्शन दे देगा, लेकिन कंप्यूटर बगैर कमांड के नहीं देगा ना। तो ये आर्टिफिशियल वो भी थी ना, कौन सी वो जो पूरे घर का जो कंट्रोल करती थी कि ये वाला भजन सुना दो, ये राग सुना दो, वो सुना दे, एलेक्सा। हाँ वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। तो अब कहाँ गई वो एलेक्सा? जितनी बात हो रही थी अब वो आर्टिफिशियल दूसरी इंटेलिजेंस आ गई। तो ये प्रोवाइडर्स वो उनको चाहिए, आपके एप्पल फोन है या एंड्रॉइड फोन है, वो थोड़े थोड़े दिन में वो कोई एक और चीज उसके अंदर इजाफा कर देते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो वो मार्केटिंग है। तो सबसे पहले मार्केटिंग तो इसी की मार्केटिंग होनी चाहिए कि आपके जो आत्मा की क्योर कैसे है, आत्मा को क्या चीज अच्छी लगती है, आत्मा किससे रिझती है। आत्मा में तम है, तम मतलब अंधेरा है। आत्मा तभी जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं तो आत्मा तम की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तम देन मीन क्या? हाँ यही, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं, हम तो सबसे ही बुरे हैं। वंस यू स्टॉप टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ तो वो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते। तो इसलिए रोशनी की तलाश जरूरी है। सो यू हैव टू नो हाउ टू अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ। मतलब औरों की भी प्रशंसा जरूरी है। फिर मतलब इसके अंदर भी तो इम्बैलेंस हो जाए ना, सिर्फ आप अपनी अपनी अपनी कोई अप्रिशिएट करते रहे और किसी और को नहीं अप्रिशिएट करे, दैट इज आल्सो बैड। टू फाइंड द राइट बैलेंस के मतलब औरों से भी प्रशंसा जरूरी है, आपको अपने को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए स्वर स्वर को लगा के जो हमको आनंद जितना आता है वो लोगों को पता नहीं आता है, नहीं आता है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो है। अब आप जो जो, जो क्रम कर रहे हैं आज जो टीवी मतलब इसमें जो रेडियो जॉकी जो है या जॉकी है जो भी है, तो इसमें पहले जॉकी तो पहले एक तो शब्द मुझे सही नहीं लगता है वैसे तो, क्यों पता नहीं क्यों रेडियो जॉकी बना दिया, मुझे समझ नहीं आता जॉकी क्यों नाम दे दिया। जॉकी का मतलब है, जॉकी जो है पहले से उसमें इस्तेमाल, आई एम सॉरी अगर बुरा लगा तो मुझे माफ कर
0: देना। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट।
1: जॉकी किसके लिए बोलते थे? आप सुकून से बैठे हुए फिर भी जॉकी क्यों बने? जॉकी तो बैठता ही नहीं है, उसको तो रिब्स दबाने होते हैं, तो इसलिए वो मुकर रिब्स दबाते दबाते वो हो जाता है। वो तो सुकून से वो कहाँ बैठता है? वो
0: आपकी बात एकदम राइट है कि लोगों ने जो चीज बोलना शुरू कर दिया बगैर सोचे समझो उसको आगे बढ़ाते भी गए, वो आगे बढ़ाते भी गए, कभी सोचा भी नहीं कि इसको क्यों बोला जा रहा है, बस एक धुन सी थी कि भाई हमको उस होड़ में पार्ट लेना है। एकदम एक्यूरेट है आपका कहना।
1: तो अब बुरे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा जो मैं बात कह रहा हूँ, भैया आई एम सॉरी, मैं पहले से उसके लिए अपोलॉजी कहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है। मतलब जो और जो है आप सुकून से सुन रहे हैं ना, और लोग सुकून से सुनते ही नहीं है, सवाल गाने से पहले भी बात करने लगते हैं, गाना खत्म होने से पहले भी बात करने लगते हैं। तो भाई संभालो, संभालना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं, अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक धैर्य लाना भी बहुत जरूरी है। आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो धैर्य जो है वो बहुत बहुत जरूरी है, और अपने पे विश्वास भी जरूरी है। हम किसी औरों पे ज्यादा देखने लगते हैं, अपने से ज्यादा कुछ और लोगों को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको सुकून नहीं मिल पाता है। हम दूसरों की तरफ इतने अपने रुझू कर लेते, इतना उनके बारे में सोचने लगते या इतना उनके लिए वो करने लगते कि हम अपने अपने आप को देखना बंद कर देते। तो उनको भी देखिए, अपने आप को भी देखिए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, हर राग में हमारे सा जरूर होता है, सा के बगैर कोई भी राग नहीं। सा से संगीत है, सा से संगति है, सा से सूक्ष्म है, सा से सारांश है, सा से संचार है, सा से संस्कार है, सा से संस्कृति है, सा से सृष्टि है, सा से सूर्य है, सा से समंदर है, सा से समक्ष है, कितनी चीजें हो गई सा से। सा से स्वर है, सा से सरस्वती है, सा से स्थापना है, सा से स्थापित है, सा से स्थान है, कितनी सारी चीजें है इससे। तो संतुलन भी सा से है, संघर्ष भी सा से है, और सरेंडरनेस को क्या बोलते हैं,
0: समर्पण।
1: समर्पण, समर्पण भी सा से है। समर्पण करना पड़ता है, आपके श्वास को समर्पण करना पड़ता है, तब आपको सही तरीके से स्वर भी, स्वर की भी ध्वनि समझ आती है। बहुत मुश्किल से ध्वनि, ध्वनि भी वैसे ही है आदेशा से, स्वर भी आदेशा से है। इसके अब इसकी हर चीज की गहराई में जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता है, चला जाएगा।
0: ये आपके साथ तो ऐसे लग रहा है कि दिन पर दिन निकल सकते हैं गहराइयों में जाते जाते, लेकिन पेट नहीं भरेगा हमारा। लेकिन जैसे आपने बताया कि धैर्य, संतुलन, समर्पण और विश्वास, ये सारी चीजें जो हैं किसी व्यक्ति को महान बनने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और

0: है स से समर्पण है और स से है सुनते रहने का हमारा सिलसिला, स से सिलसिला भी है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ स से साथ जुड़े रहें, ताकि वसीफुद्दीन डागर जी के साथ हम उनकी और भी गहरी गहरी ज्ञान भरी बातों को सुनेंगे और उनसे कुछ सुनने का भी हम आग्रह करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगले एपिसोड में भी आप हमारे स से साथ रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं वापस लौटूंगा वसीफुद्दीन डागर जी के साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। जैसे एक संगीत शिल्पी कोई एक राग का संपूर्ण परिचय देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आलाप के माध्यम से, आलाप माना ही विस्तार, जिसके माध्यम से उसके शैल्पिक चेतना प्रस्फुटित होती है। जैसे भाषा के माध्यम से साहित्यकार के साहित्य प्रकाशित होते हैं, रंग और तुली द्वारा एक चित्रकार अपने मन के दर्पण में एक चित्र अंकित करता है, ठीक ऐसे ही एक गायक भी स्वर, विस्तार या आलाप के द्वारा राग की रूपरेखा परिवेशन करता है। जैसे पिछले एपिसोड में हमने यमन राग के ऊपर विलंबित ख्याल शुरुआत की थी, आज हम उसके ही बारे में श्यामली जी से और जानकारी लेंगे। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं सबको नमस्कार जनाती हूँ।
0: श्यामली जी, आज शायद आप वही लाए हैं ना?
1: हाँ जी, आपने अभी बताया विस्तार और आलाप, या बोलते हो आलाप की बहुत जरूरी है, विस्तार सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गीत में अगर सरगम की जो सजावट है
0: जी,
1: कभी कभी होता है ना, कोई अच्छा गीत गाने के टाइम अगर कोई गाने का जो डिजाइन होता है, जैसे हम अलंकार के सजाते हैं, ऐसे गीतों का भी अलंकार होता है।
0: माना जब हम श्रृंगार करते हैं वैसे ही गीतों
1: ये भी श्रृंगारी भी है, गीत के श्रृंगार है। मैं थोड़ा करके सुनाती हूँ, चार लाइन फिल्म का गीत। अच्छा। देखिए क्यों हम विस्तार सीखना जरूरी है, ठीक है।

0: हमने थोड़ा सुनाया है। ये जो गीत की आप देखिए, इस गीत का कितना अच्छा सिंगर है जिन्होंने ये निभाया है
1: जी।
0: पहले उन्होंने यही राग सीखे हैं, बिस्तर की है, कुछ भी किए हैं, उसके ऊपर दखल लिए हैं, तब तो जाके एक राग परिवेशन कर सकते हैं। इसलिए बिस्तर बहुत बहुत बहुत जरूरी है। तो आज हम वही बिस्तर थोड़ा सिखाएंगे, विलंबित ख्याल के बिस्तर सिखाएंगे।
1: हाँ, तो श्यामली जी, मैं समझती हूँ यमन राग की विलंबित ख्याल की बंदिश एक बार हमारे श्रोता मित्रों को फिर से सुना देंगे, जो लास्ट एपिसोड में हमने किया है।
0: हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि शायद लिसनर भूल भी गए हैं, तो थोड़ा ताजा हो जाएंगे। यमन राग की विलंबित आपने पहले बताया, एक तल की ऊपर है, एक तल की चार चार चार मात्रा करके, अगर उसको 48 मात्रा में है, तो इसको पहले अपने पिछले एपिसोड में हमने बोल जो है तबला की, जो ठेका की बोल जो है, वो भी दे दिया। अभी फिर से विलंबित ख्याल दोहराती हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, ठीक है
1: जी।

0: हमने क्या किया है, ये विलंबित ख्याल को फिर से रिपीट कर दिया, ऐसे करना है। अभी बिस्तर की सवाल है। बिस्तर जो है, पहले अगर लिस्टनर लिखते नहीं थे, दो तीन चार मैं दे देती हूँ, उसी अनुसार पहले तो शुरुआत तो करना ही है, क्योंकि उसको कंठस्थ करना है।
1: अच्छा, पहले कंठस्थ तो करना पड़ेगा।
0: पहले आप देखिए, मैं जब ये राग शुरू किए हैं, पहले थोड़ा बिस्तर किया है, अलग किया है, जब तक हम इसमें दखल ना हो जाए
1: जी,
0: मेरे अंदर वो नहीं आ जाए,
1: मन अंदर उतर ना जाए,
0: उतर ना जाए, तब तक मैं ये नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए बिस्तर बहुत जरूरी है
1: जी।
0: थोड़ा छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, थोड़ा बिस्तर, तो छोटा ख्याल में छोटा बिस्तर और बड़ा ख्याल में बड़ा बिस्तर। तो अगर लिख लेते हैं, जैसे 48 मात्रा है, अगर मेरा मन वाह, बा तक बा चार मात्रा है, मेरा मन चार मात्रा है, ये 8 मात्रा हो गया, और बाकी अगर 48 मात्रा है, 40 मात्रा बचे हुए हैं
1: जी।
0: अगर बिस्तर 40 मात्रा में करते हैं तो बहुत अच्छा है। पहले पहले ऐसे करना है, क्योंकि ग्रामेटिकली मैथमेटिकली जाना है, जब हम नहीं जाएंगे तब हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं सीधा साधा वे सरल गति से हम दे देते हैं
1: जी,
0: एकदम सहजता से वो कर पाएंगे। तो अगर लिसनर लिख लेता है, दो पहले देती हूँ
1: जी जी,
0: तो एक नंबर नी ई रे ए, नी ये जो नी है, नीचे नी, मंद्रसर के नी, नी ई रे ए गा आ आ आ, चार गा मतलब चार मात्रा, नी ई रे ए मतलब चार मात्रा, और गा चार मात्रा, तो इसमें हो गया 8 मात्रा। तो ऐसे करना है, नी ई रे ए गा आ आ आ, मा आ गा आ, करीमा है, मा आ गा आ, रे ए ए ए, नी ई रे ए, ये जो नी है, नीचे नी, मंद्र सर की नी, उसके बाद गा चार मात्रा, गा आ आ आ, मा आ रे गा, रे ए रे ए, नी ई रे ए, सा आ आ आ, मेरा मन वा। बा चार मात्रा करने के बाद अगर कटते हैं, पहले एक सुनाती हूँ कैसे करना है, तब जाके
1: एक आप बताएंगे तो उनको थोड़ा सा पता चलेगा कि किस प्रकार से ये करना है।
0: अगर हाथ में गिनती कर लेते हैं
1: जी,
0: फिंगर में गिनती कर लेते, एक एक मात्रा गिनती कर लेते हैं, देखिए वही आ जाएंगे, ठीक है।
1: अच्छा।

0: आपने देखा ना कि इतना इजी प्रोसेस से सहजता से हमने किया है, आठ मात्रा किया है मुखरा के साथ, चार मात्रा स्वम के बाद चार मात्रा किया है, उसके बाद हमने जितना किया है 40 मात्रा हमने किया है।
1: अच्छा,
0: पहले चार मात्रा मुखरा किया है, उसके बाद स्वम गिरते हैं चार मात्रा किया है, मतलब चार मात्रा आठ मात्रा चले गए, बाकी 40 मात्रा में हम ये विस्तार किया है।
1: अच्छा,
0: अगर अभी आ करेंगे देखो कितना सुंदरता है,

0: तो ये यमन राग का विस्तार आपने बताया।
1: हाँ, मैं सहजता से सिखाती हूँ।
0: हाँ, सहजता से माना छोटे छोटे विस्तार से ही वो पकड़ पाएंगे
1: है ना।
0: हाँ जी, श्यामली जी, इसी विस्तार के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में हम यमन राग से ही संबंधित एक सुंदर सा मीठा सा गीत का आनंद लेंगे। हम फिर लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक के पहले हमने श्यामली जी से यमन राग के विस्तार के बारे में सुना भी और समझा भी कि विस्तार कितना जरूरी है,
1: है ना? आगे आगे और भी सिखाएंगे
0: जी,
1: तो आपको पता लगेगा कितना जरूरी है
0: जी। और बहुत सहजता से उन्होंने हमको बताया कि विलंबित ख्याल इतना जरूरी है श्रृंगार के, जैसे हाँ हम श्रृंगार करते हैं उसके लिए, जैसे
1: हाँ जी
0: अपनी सुंदरता की अभिव्यक्ति करने के लिए
1: हाँ जी
0: श्रृंगार करते हैं, वैसे संगीत में भी,
1: संगीत की भी वो भी जान है ना, संगीत में भी जान
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: तो उसका अगर सिंगर करते हैं तो इसके लिए विस्तार बहुत बहुत बहुत जरूरी है
0: जी। तो आगे आप हमको क्या बताना चाहेंगे?
1: जैसे आपको बताइए ये जो विस्तार कैसे हम उसके ऊपर लाएंगे, जैसे आकर के सुनाए, आकर करके सुनाए, थोड़ा सुनाती हूँ।

0: जो हमने बिस्तर किया है बोल के ऊपर बिस्तर किया है, अभी विलंबित में बोल के ऊपर बिस्तर करना ही है। अच्छा। पहले ये जो हम आकार करके किया है, सरगम किया है, वो तो करना ही है। पहले इसको कंठस्थ करेंगे, अगर वही जो सरगम है अभी जो सरगम दिया है उसके ऊपर आकार किया है, उसके ऊपर अगर बोल जो है मेरा मन बाधली, ये जो बोल बिठाते हैं तो सहजता से वो कर पाएंगे।
1: जी, मन आकार के साथ साथ बोल भी बिठाएंगे।
0: हाँ, बोल तो भी वो जो सुर में हम यमन रग की जो स्वर जो है सर बिस्तर पहले कर लेंगे, उसके अगर बैठेंगे तो इजीली हो जाएंगे।
1: जी जी,
0: तो मैं चाहती हूँ ये सरगम दो देती हूँ, बाकी फिर से थोड़ा सुनाती हूँ बिस्तर कैसे करना है। ठीक है, तो नंबर दो अगर लिख लेते हैं लिसनर। नी ए रे ए, ऑब्वियसली ये जो नी है मंद्र सर की है। नी ए रे ए गा आ मा आ पा आ मा आ रे गा रे ए ए ए नी ए रे ए गा आ रे ए मा आ गा रे गा मा गा रे नी रे सा आ, नीचे नी है। ठीक है, तो अभी मैं एक और भी एक बात बताना चाहती हूँ। आठ मात्राएं अगर माइनस करना है ऐसे भी नहीं, 40 मात्राएं बिस्तर करने ऐसे भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, मी

0: हम यही ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा। ये तो जैसे ग्रामेटिकली मैथमेटिकली हो गया, ये तो उठाने के लिए सही है, लेकिन बाद में फ्रीडम, ये जो बिस्तर है सुर में बैठा कर फ्रीडम से करना है।
1: ओके।
0: हम खाली ये कंठस कर लिया इसके मतलब ये नहीं हर टाइम कंठस करेंगे। अच्छा। हमने ये जो आठ मात्रा हमने किया है, मेरा मन बा के चार मात्रा किया है, हम आठ मात्रा में भी कर सकते हैं, आठ मात्रा के बाद भी स्वर्ग में उठा सकते हैं। यही आप
1: थोड़ा आराम से अपनी मर्जी से कर सकते हैं,
0: कर सकते हैं ताल के साथ। लेकिन याद रखना है वो लास्ट में जो सम की जो है, सम गिनने के चार मात्रा पहले आपको मेरा मन उठाना ही है। अच्छा। मेरा मन बाकी ऊपर सम उठाना ही है।
1: Okay.
0: जैसे अभी मैं करती हूँ। अच्छा, और भी एक सरगम दे देती हूँ, हम दो करके सुनाती हूँ
1: जी।
0: नेक्स्ट करती हूँ, नी ई रे गा मा आ गा आ मा आ रे गा रे ए ए ए नी रे गा आ मा पा मा गा रे नी रे गा रे सा, चार मात्रा। अभी ये दो जो हमने दिया है थोड़ा करके सुनाती हूँ, ठीक है, जिसके बाद थोड़ा बिस्तर भी करेंगे।

0: ये तो हमने क्या किया, एकदम सहजता से सिखाने के लिए दिया है। तो आपको ये जो बिस्तर है, बिस्तर दिखा दिया है कैसे करना है।
1: अब श्यामली जी, जाते जाते आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं?
0: हाँ, एक बहुत सुंदर गीत है, ये चित्रलेखा बहुत पुराने फिल्म का गीत है, रफी साहब ने गीत गाए थे, इतना सुंदर है। मन रे तो काहे न धीर धरे, बहुत सुंदर
1: बोली उसके, बहुत सुंदर है। जी जी,

0: बहुत सुंदर, पूरा गीत के जो बोल है वो भी इतने अर्थ सहित है।
1: हाँ जी,
0: पुरानी फिल्मों के ऐसे भी गीत अर्थ सहित ही थे,
1: भजन भी हो सकता है, भजन टाइप का है
0: जी,
1: लेकिन इतना सुंदर रफी साहब जी ने बहुत सुंदर निभाया।
0: तुम हमारा मन भी अभी अधीर हो रहा है। ऐसे तो समय अभी हमको देता है इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ बात करना चाहते हो तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मदरो।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जब हम हिंसा की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हिंसा की वजह बन जाती है और हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक चीज है पितृसत्तात्मकता। लेकिन ये पितृसत्तात्मकता क्या है और कैसे हमारे दैनिक जीवन को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आइए सुनते हुए देखते हैं इस नाटक के माध्यम से।
2: माँ, मारे तो पढ़नो है आगे, और तू मारी शादी की बात कर रही। कॉलेज को पहलो साल बीच में छुड़ावा को केरी। माँ, कॉलेज तो कम से कम पूरो होवा दो, प्लीज मारो सपनो मत तोड़ो माँ, प्लीज।
3: देख बेटा, थारो सपनो थारा हावरा वाला पूरो करी। सारी बाता होगी है वे थन आगे पढ़वा दे, मैं थन आगे पढ़ाऊ तो दहेज खूब देनो पड़ी, और थारी दो छोटी बहन भी है वाको भी सोचनो है मारे।
4: देख बेटा, मारी माँ भी मने यही सलाह दी थी और मुँह भी थाने यही सलाह दे रही हूँ, बस कोई शिकायत मत लाइजे, ठीक है ना?

0: राजू की माँ, राजू का हारों दहेज तो खूब आयो, पर टीवी, वॉशिंग मशीन ये सब चलावा तो लाइट बिल कौन भरी, यो विचार की दो।
1: राजू का बापू थे कई चिंता करो, मैं यो सब चला भी नहीं देऊ तो पछे बिल भरनो ही नहीं पड़ी।
0: वाह राजू की माँ वाह, मान गयो मैं थने, थारो नाम शानी यूं ही को नहीं राख्यो थारा माँ बाप।
2: सुनो, मारे आगे पढ़ाई करनी है, थे केवो तो मैं आगे पढ़ू।
3: मानी माँ ने पूछे बताओ।
1: बेटा बींदनी तो घनी अच्छी है ये, पर गुंग तो घणो ओछो काढ़े, यो भी को पीर कोई नहीं है, हारो है।
3: ठीक है माँ, माँ सीता आगे पढ़वा को कह रही है।
1: पॉटन कसी मास्टर जी बन जाई, घर को काम कुन करी, थू करी गई।
4: माँ केड़ी बात करे थू, भाभी की इच्छा है पढ़वा की तो पढ़वा दे, मैं भी तो कॉलेज कर रही हूँ, पछे भाभी क्यों नहीं।
1: छोरी तू पढ़नी कोई नहीं है जो मने अतरी शिक्षा दे रही है।
5: सीता ए सीता होबर, तू घूंघट वदारा काढ़िया कर, अटे थारो हावरो है हजमी के।
2: थे केड़ी बात कर रहा, मैं सगला जाना रो अतरो ध्यान राख रू, फिर भी थाने शिकायत है मारा सु।
5: मने को नहीं, मारी माँ ने। देख सीता, अपना घर में माँ की इच्छा ले, माँ जो केवे वा पत्थरी लकीर होवे है, इन वास्ते अरे मारी मारो केणो माननो इस पड़ी।
4: अरे भाभी जदी देखो जदी थे ठंडो खानो ही खावो, माँ भाभी तो कई नहीं बोले, पर थू तो समझदार है, बहू भी चाहिए और बहू का साथ में भेदभाव भी।
1: बेटा केड़ी बात करे, मैं और बींदनी का साथ में भेदभाव।
4: हाँ माँ, अगर भेदभाव नहीं हो तो थू भाभी ने भी साथ में खानो खिला दी, सगला जना साथ में बैठन भोजन करा तो प्रेम बढ़े और एक दूसरा को ध्यान भी रेवे। माँ बहू और बेटी ने समान समझ, यदि घर में खुशियाँ बनी रही।
1: ठीक है ज्यादा शिक्षा मत जाग, मैं देख ले मारे आगे कई करनो है।
2: अरे रीटा तू बोल, घड़ा दिन बाद मने याद की दी।
6: सीता मने ठा पड़ी कि मैं मौसी बनवा वाली हूँ तो मने खूब खुशी हुई। सुन हॉस्पिटल तो घी न, और सुन टीवी में कोई अच्छो प्रोग्राम देख जे ताकि बच्चा में संस्कार हाउ उतरे, ठीक है। वॉशिंग मशीन तो चालू की दी ना।
2: हाँ रीटा हाँ।
6: अरे सीता तू डरती डरती क्यों बोल रही, सब ठीक तो है ना।
2: रीटा मैं थारा हूँ कई छुपाऊ, तू जो सोच रही है कोई भी चीज नहीं वेनी है, सासू माँ घना कड़क है, टीवी और वॉशिंग मशीन तो चालू भी कोनी की दी।
6: कई बात कर रही थी, आज का जमाना में टीवी नहीं देखवा दे, वॉशिंग मशीन में कपड़ा को नहीं धोबा दे, या कई बात मारा समझ में को नहीं आ रही। थने तो अंकल जी अतरो दहेज दी दो, पछे तू काई करे अतरा सामान को।
2: रीटा कतरो भी दहेज में सामान दी दो वे, पर हारा में वही सामान पे बहुरो कोई अधिकार को नहीं वे वे है।
6: सीता मैं तो सोच रही थी कि आज को समय बदल गयो और लोगा की सोच आधुनिक भी, पर बहू का प्रति तो आज भी वही पुरानी सोच।
2: हाँ रीटा, पर सुन मारा मम्मी पापा ने कोई बात मत कीजे, नहीं तो वे टेंशन में आ जाए। चल रखू फोन है ना।

0: माँ सीतन शक्कर आवेरी है नवा घबराए रही है, तो मैं बड़े हॉस्पिटल ले जाओगे?
1: चुप बे चोरू का गुलाम, थोड़ा चक्कर कहीं आ गया जी? ऊंचो नीचो वे गयो, यो तो चालिया करे, जा तू काम पे जा।
0: ठीक है माँ।
2: अरे राजू भाई बिनणी क्या ने, मने खबर पड़ी कि थे पिता बनवा वाला हो।
0: भाभी ते सही हो ब्रावियो।
2: अरे मैं कई हर मानू, यो बताओ थे बिनणी को चेकअप करवायो कि नहीं, तबीयत तो ठीक है?
3: भाभी थे जानो माने, मैं कई बोल को नहीं सकू, आज भी सीता ने खूब चक्कर आ रहा है, पर माँ हॉस्पिटल जावा के वास्ते मना कर दियो, थे समझाओ माने।
2: थे कई चिंता मत करो, मैं सब देख लू, थाका घर में ही जा रही हूँ।
0: थैंक यू भाभी।
2: राम राम काकी सा, राम राम।
1: आओ भाई राधा आओ। राम राम। अरे बीनड़ी देख अपना घरे कौन आया।
4: हाँ सासू माँ आई, पावा दो।
2: खुश रहो। अरे बीनड़ी नीचे क्यों बैठ रहा हो, थे कुर्सी पे बैठो।
1: राधा केड़ी बात करे, छोटा मोटा रो कायदो होवे के कोनी होवे, तू तो आशा सहयोगी ने की बगै छोटा मोटा रो कायदो ही भूल गई।
2: काकी सा आप सही कह रहा हो, पर बीनड़ी पेट से है और घर की बहू भी, ये पछे क्यों जमीन पे बैठी है? अरे बीनड़ी की जांच कराई कि नहीं?
1: देख राधा आपरे भी टाबर व्या, एक भी दिन दवा खाने को नहीं गया, पछे बीनड़ी ने क्यों ले जानो दवा खाने?
2: काकी सा आपनो टाइम अलग हो, आपना छोरा छोरी अबे मोटा हो गया परण गया, समय गणो बदल गयो, आजकल केड़ी केड़ी बात सुनवा में आवे, फलाना बालक के गला में नाल लपट गई, फलानी के ऑपरेशन हो गयो, डीकड़ी के बालक गर्भ में ही खत्म हो गयो, वगैरह वगैरह।
1: तो दरपा मत राधा।
2: दरपावा की बात को नहीं का किसा, आजकल एड़ो हुए रहे है। मैं आई बीनड़ी ने दवा खाने ले जावा वास्ते, पर मने लाग रही है बीनड़ी के साथ में आपे भी ले जाऊं दवा खाने, तो चलो दो ही मारा साथे।
1: चलो बीनड़ी दवा खाने चला।
5: बहुत अच्छा किया माता जी जो आप अपनी बहू को यहाँ जांच के लिए लेकर आए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला की समय समय पे जांच बहुत जरूरी होती है, जैसे पहले 3 महीने में कम से कम एक बार जांच अवश्य कराना है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है कि नहीं, कोई कमी है या उसकी कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो जरूरी हो जाती है। फिर अगले तिमाही में जो बीच के 3 मास होते हैं, चौथा पांचवा और छठवा, उसमें कम से कम 2 बार जरूर जांच करा लेना चाहिए, और आखिरी के तिमाही में तो हर महीने में एक बार लाके जरूर जांच करानी चाहिए महिला की, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा होता है, तो कोई उसकी तकलीफ होगी या माता को कोई प्रॉब्लम होगी, बच्चे की कोई प्रॉब्लम होगी।

0: तो पता चल जाती है, इसलिए अच्छा किया जो जांच कराने लेकर आए। इसी तरह हर महीने में लेके आते जाना। साथ ही गर्भावस्था के दौरान खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी खून जा रहा है माँ के शरीर से, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां मिलती है हर गर्भवती महिला को, वो लेते रहना है प्रॉपर। उसके साथ साथ खाने में भी ध्यान देना है कि हरे पत्तेदार भाजियां, फल जो आपके आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करते रहें, ताकि जच्चा और बच्चे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा मेंटेन रहे, वजन अच्छे से बढ़े, माता का भी बच्चे का भी, और हीमोग्लोबिन की भी कमी ना हो, नहीं तो खून की कमी हो जाती। क्योंकि आजकल के खान पान में पहले जैसा समय नहीं रहा कि वही सारी चीजें मिल जाएगी, आजकल खान पान में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, कितने कीटनाशक वगैरह मिलाते हैं तो पूरा पौष्टिक आहार नहीं पाता है। इसलिए पहले का समय और अभी का समय बहुत बदल गया है, इसलिए जागरूक रहना, स्वास्थ्य के विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहें, अच्छा लिखाना पढ़ाना चाहें, तो जरूर पढ़ाएं, ताकि जितनी समझदार महिला होगी, पढ़ी लिखी महिला होगी, तो अपना स्वास्थ्य का देखभाल अच्छे से कर पाएगी। अगर आपकी बहू पढ़ना चाहती है तो उसे जरूर पढ़ाइए, क्योंकि उसको जितनी जानकारी होगी, अच्छी पढ़ाई होगी, तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएगी, तो अपने बच्चे का भी रख पाएगी और घर बार का भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी, तो इसलिए
1: बीनड़ी, आज सो थाने खुद को ध्यान रखनो है। डॉक्टर का अनुसार आर्यन की गोली टाइम से लेनी है। जो भी सलाह देवे वनी अनुसार थारे चालनो है। एड़ा टाइम पर तू खुद पे अकेली मत समझे, मार सब अगला थारा साथ में हाँ, ठीक है? राजू सुन, तू बीनड़ी को पूरो ध्यान रख जे।
2: देखा दोस्तों, एक सास अपनी बहू को बेटी बनाती है तो कितना बदलाव आता है। और हम ये सीखते भी है कि महिला महिला की दुश्मन नहीं, दोस्त भी बन सकती है। दोस्तों, पितृ सत्तात्मकता हमारे घर परिवार और व्यक्तिगत जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है। पितृ सत्तात्मकता हमारी मानसिकता है और ये कैसे घरेलू हिंसा का जरिया बनता है, आइए सुनते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट के द्वारा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कंचन मलिक जी। आप यूनेस्को के द्वारा बनाए गए किताब जेंडर मैनुअल के लेखिका है। आप फैकल्टी फेलो है यूनेस्को चेयर ऑन कम्युनिटी मीडिया के। आप प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के। तो आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट कंचन जी के द्वारा।
3: तो पेट्रियार्की या पितृसत्ता एक प्रकार की मानसिकता है, इट्स एन आइडियोलॉजी, और एक प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सोसाइटी का एक प्रकार का बिलीफ सिस्टम समझ लीजिए वो है, जिसमें जो मेन हैं उनको एक प्रकार से विमेन से सुपीरियर माना जाता है, तो और विमेन को एक तरह से सबॉर्डिनेट माना जाता है। सो ये जो सोच है, इस सोच को हम पेट्रियार्की कहते हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इसका जो थोड़ा कनेक्शन हम बना सकते हैं वो इस बात से बना सकते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हम यू नो एक सोशल पैकेज सा होता है जो उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अब ये लड़का है तो ये सब करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ये पहनेगा, और लड़की हुई है तो ये इस प्रकार रहेगी, इस प्रकार से इसको बड़ा करेंगे, इसको ये सब सिखाएंगे। सो कुछ रोल्स और कुछ रूल्स बना देते हैं हम उनके लिए, तो वहां तक तो कुछ चलता है, ठीक है। यू नो कुछ चीजें इसलिए भी बनाई जाती हैं क्योंकि वो यू नो सोशली कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं या ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है कि जो हम रोल उनको देते हैं, जैसे कि घर संभालने का काम है या केयर गिवर का काम है, तो वो जो हम जैसे औरतों को देते हैं और जो आदमी हैं या मर्द हैं उनको जो हम काम देते हैं कि वो जो हैं वो घर के लिए कमा कर लाएंगे, और तो वो जो रहता है उसको हम एक बड़ा काम समझने लग जाते हैं और इसको एक सबॉर्डिनेट काम समझने लग जाते हैं, तो हम एक हायरार्की क्रिएट कर देते हैं काम की भी। सो उसके होते हुए समवेयर जो पावर है वो डिसीजन मेकिंग की या किसको क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो आदमियों के हाथ में चले जाते हैं, तो उससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां पर जो मेन हैं दे हैव बिकम यू नो दे होल्ड अ हायर स्टेटस इन सोसाइटी, अ हायर सोशल पोजिशन है उनकी सोसाइटी में विमेन के कंपैरिजन में.
0: जी
3: उस चीज को हम पेट्रियार्की कहते हैं. पेट्रियार्की का इश्यू है, ये सोच का है कि भाई कौन किसको दबा रहा है और कौन किसको अपना लाइफ में डिसीजन और चॉइस लेने की छूट नहीं दे रहा है. तो जैसे आपने कहा, अगर सास वो नहीं करने दे रही है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आया कहाँ से है ये देखने की बात है. आया सारा पेट्रियार्कल वैल्यूज से है, पितृसत्ता की वैल्यूज से है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये होती है आपसे कि आप वो करें जो आपसे जो रूल बने हुए हैं, जो रोल बने हुए.
2: दोस्तों, मैं तो कंचन जी से सहमत हूँ। घर में नियम भले कोई भी बनाए, लेकिन उसको लागू करने में महिलाएं कसर नहीं छोड़ती है। अगर हम पितृसत्तात्मकता में बदलाव लाना चाहते हैं, तो बदलते समय के साथ हम एक दूसरे को समझे और सहयोग भी करें, तभी हम कह सकते हैं, सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं एक गीत आरजे उषा के द्वारा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम का नाम है नई दुनिया नया जमाना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सतत विकास के बारे में बात करेंगे। कई बार सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सुन करके हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके बीच कभी कभी हम चाहते हैं कि इन चेंजेस को अपनाए। हम सोचते हैं कि प्लास्टिक फ्री दुनिया बने तो बेहतर होगा, लेकिन इस दुनिया को कैसे बनाया जाए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या योगदान है, या फिर जो जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले चीजें हैं वो कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें जो चीजें अच्छे भी लगती है, लेकिन फिर हम कहते हैं कि छोड़ो, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने, तो एक दिन तो संसार से जाना है, लेकिन संसार को दे के क्या जाना है? क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की दुनिया देना चाहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें आसपास प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड प्लास्टिक दिखाई दे हो? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूथ हैं जो इस संसार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम और आप मिलकर के उन्हें सुने, उनके बारे में जाने, और वो हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम इस प्रकार की दुनिया बेहतर बना सकते हैं और चीजें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ को सस्टेनेबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, प्रकृति को कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदुला जोशी जी हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके साथ साथ आप उड़ीसु एक प्लेटफॉर्म का फाउंडर हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे आपको उनके बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ वो इस जीवन को कैसे जी रहे हैं आज उनके मुख से हम जानेंगे नई दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन।
1: शुक्रिया शुक्रिया हमें बुलाने के लिए।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक और श्रोता बंधु अभी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब क्या है।
1: सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेरे लिए इसका मतलब ये है कि हम जैसा भी जीवन जिए, हम इस तरह जिए कि हम अपने पीछे जितना कम प्रदूषण और कचरा और जितना भी कम नेगेटिव इम्पैक्ट हम छोड़ पाए उतना कम करें, ताकि हमारे जाते हुए बस हमारी हमारा शरीर और बस कुछ ही चीजें हों जो हमारे आगे की पीढ़ी को जाएं, लेकिन हमारे वजह से कोई प्रदूषण ना फैले या फिर कोई बुरा ना हो हमारी वजह से। इसका मतलब मुझे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लगता है। और ये भी कि हम इस तरह जिए कि हम कम से कम रिसोर्सेस को यूज करें ताकि आगे की पीढ़ी के लिए और भी बचा रहे।
0: जी, जैसे आप जब आप अभी भी यूथ हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में एंटर किए होंगे तभी आप सब इसके बारे में आपने पढ़ा ही, या फिर आपको कैसा लगा, मतलब क्यों लगा कि आपको ये जीवन जीना है और लोगों को भी प्रेरित करना है?
1: तो जब मैं कॉलेज में थी 5 साल पहले, सस्टेनेबिलिटी इतना बड़ा शब्द नहीं बना था, तब बहुत ही नया था। और मैं एक्चुअली निफ्ट मुंबई से हूँ, तो फैशन में मेरा पढ़ाई था, और आपको पता होगा फैशन इंडस्ट्री में कैसा कितना खरीदारी होता है, कितना कंज्यूमरिज्म होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब बेचना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहां पे। तो ऐसी दुनिया में मुझे इंटरेस्ट था कि इसे हम सबसे अच्छे तरीके में कैसे बनाएं, फैशन कैसे हम ऐसे तरीके में बनाएं कि ये लोगों के लिए अच्छा हो। और मैं जिस जॉब में काम कर रही थी वहां पे मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा था, तो मैं अपने हिसाब से ही यूट्यूब में वीडियोस देखने लगी, लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत होती है ताकि अपना इम्पैक्ट हम कम कर पाए। और इसी तरीके से मुझे कुछ वीडियोस ऐसे दिखाई दिए जहाँ पे कुछ लोग जीरो वेस्ट रह रहे थे, बेसिकली वो इस तरह से जी रहे थे कि उनके घर पे कोई डस्टबिन नहीं था, उनके घर से कोई कचरा नहीं जाता था। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये काफी मुश्किल चीज लगी मुझे, क्योंकि हमारे जीवन में तो हम रोज रोज कचरा बाहर फेंकते हैं, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनका 4-4 साल से कचरा एक छोटे से डब्बे में फिट हो जाता है। तो मैं सोचने लगी, पहले तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ये सोचा भी नहीं कि मैं कभी कर पाऊंगी ये, लेकिन मैं बस सोचने लगी ये छोटी छोटी चीजें ये लोग क्या कर रहे हैं, तो उसी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से मैं और देखने लगी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो छोटी एक्शंस है ये काफी ही छोटे एक्शंस हैं। मतलब हम सब कर सकते हैं, हम सब एक बैग उठा के जा सकते हैं, हम सब कुछ प्रोडक्ट चेंजेस ऐसे कर सकते हैं घर पे, कॉम्पोस्ट कर सकते हैं, और वो थोड़ा ही टाइम लगता है और थोड़ा ही स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन हम सब कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक एक से शुरू करते हैं और फिर आगे देखते हैं ये कैसे बनता है, और 4 साल बाद हम भी काफी हद तक हम जीरो वेस्ट रहने लग गए हैं अभी। तो हमारा इंटरेस्ट भी ऐसे ही कुछ शुरू हुआ, कॉलेज के टाइम शुरू नहीं हुआ था लेकिन कॉलेज के बाद ये इंटरेस्ट डेवलप होने लगा।
0: जी, तो क्या स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स आपने लिया था अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने?
1: सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये लिया था कि घर, मतलब मुंबई में तब हम रहते थे और वहाँ पे हमें 2 डस्टबिन दिए गए थे हर घर को अपार्टमेंट में कि आप अपना गीला कचरा और सूखा कचरा सेपरेट कीजिए, और मैं काफ़ी रिलीजियसली उसे मतलब सेपरेट करने लगी, मुझे ठीक से करना था, लेकिन मैंने देखा वो लोग वो दोनों डब्बा लेते थे और एक ही ट्रक में फेंक देते थे साथ में। फिर तो तब मुझे लगा कि मुझे अपने घर पे ही कुछ करना चाहिए या कि अपने घर पे ही कुछ करने की आदत डालनी चाहिए ताकि जहां भी रहूं मेरे पे डिपेंड हो कि मेरा कचरा कहाँ जाता है। तो मैं कॉम्पोस्ट करना शुरू किया, मैंने वेट वेस्ट को बेसिकली ऐसे एक डब्बे में जिसमें होल होता है हवा पास होने के लिए, नॉट लाइक आर डस्टबिन, डस्टबिन में हम जब वेट वेस्ट डालते हैं तो वहां पे बहुत गंदगी मतलब स्मेल आता है, फ्लाइज आते हैं, लेकिन कॉम्पोस्ट में क्या होता है जैसे एक फॉरेस्ट में आप अगर बनाना पील फेंकते हैं तो वो जैसे रॉट हो जाता है सेफली, वैसे कॉम्पोस्ट में रॉट होता है। तो वो मैं कॉम्पोस्ट बनाने लगी जिससे मुझे खाद मिलने लगा अपने घर पे, उस खाद से मैं हाउस प्लांट्स लगाने लगी अपने घर पे, और इससे मेरा घर का ऑलमोस्ट आधा 50% मतलब वेस्ट कम हो गया इमीडिएटली। उसके बाद मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढने लगी जहाँ पे मैं अपना प्लास्टिक भेज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जो ट्रक में हमारा प्लास्टिक या ड्राई वेस्ट भी फेंकते हैं वो लैंडफिल में जाता है, और लैंडफिल आपने देखा है कैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, दिल्ली में भलसवा लैंडफिल आग लग गया था वहाँ पे, एंड आते जाते वहाँ के गांव के लोगों को बहुत ही प्रदूषण के इम्पैक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो मैंने डिसाइड किया मेरा ड्राई वेस्ट भी बाहर नहीं जाएगा, तो ड्राई वेस्ट को मैंने ये सीखा कि अगर ड्राई वेस्ट गंदा होता है तो वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, अगर साफ होता है आप स्वच्छ करके रखते हैं तभी वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। तो मैं कबाड़ी वाले ढूंढने लगी अपने एरिया में, और मैंने रियलाइज किया कि आजकल कबाड़ी वाले बहुत कम लोग ढूंढते हैं, तो मैं रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने लगी और वहां पे मेरा ड्राई वेस्ट देने लगी। तो अभी आधे प्रतिशत से ऑलमोस्ट 80-90% मेरा वेस्ट सब मैनेज होने लग गया। तो वैसे मैं जीरो वेस्ट रहने लगी, अपने डे टू डे लाइफ में भी मैंने काफी सारी चीजों में बदलाव लाई, मैंने लिक्विड शैम्पू बॉटल्स के जगह शैम्पू बार्स यूज करना शुरू किया, चीजें जो पेपर पैकेजिंग में आती हैं ताकि मैं उसे कंपोस्ट कर सकूं, बैम्बू टूथब्रश, मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड जो फेंकना पड़ता है उसके जगह सैनिटरी कप, मेंस्ट्रुअल कप यूज करना शुरू किया मैंने। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस थे जिसके वजह से मेरा घर से कचरा निकलना काफी कम हो गया, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जब मैं भी कलेक्ट करके दिखा सकती थी कि मेरा 1 साल का कचरा सिर्फ एक ही बैग में फिट होता है। तो लेकिन ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, और वो भी ठीक है, ये एक चैलेंज है जो मैं हमेशा डे टू डे ट्राई करती हूँ, अगर परफेक्ट नहीं है तो चलता है, इस दिमाग से मैं रहती हूँ बस।
0: मैम, जैसे आपने कहा कि आप गीले कचरे और सूखे कचरे को फिर आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको अलग किया और कबाड़ी वाले को आपने ढूंढा, तो क्या हर कोई व्यक्ति अभी जो आपको सुन रहा है इससे शुरुआत कर सकता है?
1: डेफिनेटली आप अपने एरिया में ढूंढिए कि ये रिसोर्सेस है कि नहीं। हाँ, काफी बार हमारे एरिया में है कबाड़ी वाला, कुछ लोग इसे बंगाल वाला बोलते हैं, रद्दी वाला होते हैं, जो आजकल मुश्किल से ये सब ढूंढ पाते हैं ये रिसोर्सेस, क्योंकि हम सारा अपना कचरा मिक्स करके फेंक रहे हैं आजकल। तो उनके लिए भी वो वैल्यूएबल नहीं होता है, वो भी वो उसमें से निकाल नहीं पाते हैं. और ये भी काफी अनडिग्निफाइड है, मतलब वो अपना हाथ हमारे कचरे में डाले और ये सब चीजें निकाले. इससे अच्छा ये है कि हम साफ करके उन्हें अपने हाथों से ही दे. तो ये चीज आई थिंक हम सब कर सकते हैं. उनके पास नंबर भी होता है, आप कॉल करके भी बुला सकते हैं जब आपके घर में आप सब कलेक्ट करके रख सकते हैं. तो ये प्रैक्टिस हमें डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए. एक टाइम पे इस प्रैक्टिस करने का हमें जो थोड़ा सा यू नो चेंज 20 रुपए या 50 रुपए देते थे, इससे लोग खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल उसका वैल्यू भी नहीं है किसी को. लोग समझते हैं कि फेंकना ज्यादा आसान है और यू नो इसलिए हम फेंक देते हैं अभी. तो ऐसी छोटी चीजें हम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं. छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी हम खरीद सकते हैं अगर हमें इतना मेहनत करने का

0: इमीडिएटली मन नहीं है लेकिन हमें मोटिवेट करना है, तो काफी बार ये भी होता है कि अगर आपके बाथरूम में कुछ प्रोडक्ट्स जीरो वेस्ट आपने खरीद लिए हैं, आपको देखने से पता चलता है जैसे प्लास्टिक कम हो गया है आपके बाथरूम में, अभी आपने शैम्पू बार ले लिया, बैम्बू टूथब्रश ले लिया, तो आपको रोज सुबह वो एक उत्साह आता है कि हाँ मुझे और कुछ करने का मन है, मैं और कुछ टिप्स देखूंगी और कुछ ट्राई करूंगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप डेफिनेटली ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको दूसरे लोगों को देखना चाहिए जो इस तरह रह रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम में हमेशा ऐसे लोगों को देखते हैं जो खा पी रहे हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में, या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, और हम ऐसे लोगों को कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, इनसे इंस्पायर होते रहते हैं। इससे अच्छा अगर हम ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जो जीरो वेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे प्रैक्टिसेस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में आ जाता है और इनसे हम सीख भी लेते हैं, इनसे हमारे दिमाग में नॉर्मल भी हो जाता है ये सब प्रैक्टिस। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टिप है अगर आप इमिडिएटली स्टार्ट करने के मन में अभी नहीं है तो।
1: आपने एक बात कही मृदुला जी कंपोस्ट के बारे में कि खुद कैसे खाद बना सकते हैं और खुद अपने घर पर प्लांट्स आप उगा सकते हैं, तो क्या ऐसे बेसिक प्लांट्स हैं जो बहुत सहज तरीके से हम अपने घर पे उसे उगा सकते हैं, और सहज तरीका क्या है कंपोस्ट बनाने के?
0: प्लांट्स का क्या है ना, एस्पेशली ऐसे उगने लगे क्योंकि कॉम्पोस्ट में हम जो खाते हैं अपने लंच डिनर या जो भी हम पकाने के लिए सीड्स हमारे कॉम्पोस्ट में चला जाता है, वही सीड्स प्लांट्स में उगने लग जाते हैं हमारे कॉम्पोस्ट से। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि टोमेटो के प्लांट्स उग गए हैं, पपाया के प्लांट्स उग गए हैं, क्योंकि दो तीन हफ्ते पहले मैंने टोमेटो या पपाया के मतलब फ्रूट्स खा के मैंने उसके सीड्स फेंक दिए थे कॉम्पोस्ट में। तो प्लांट्स ऐसे हैं जो वो खुद अपने मन से ही उगने लग जाते हैं, आपको बस पानी देना है और धूप में रखना है और वो आराम से अपना काम कर लेगा। कॉम्पोस्ट बनाना अगर आपको कोई उसमें डिफिकल्टी होती है तो आप हमेशा हमारे पेज पे आ सकते हैं और हम हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। उलिसू का के माध्यम से मेरा यही मकसद था कि जितना टाइम मुझे लगा, एक साल ऑलमोस्ट लगा सीखने में जीरो वेस्ट जाने में, उतना टाइम किसी और को नहीं लगना चाहिए अगर उन्हें इंटरेस्ट है कि उनका लाइफ भी जीरो वेस्ट हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे आज से कचरा कम करना है और मुझे सीखना है कैसे करना है, तो उलिसू के माध्यम से आप वो कर पाएंगे। हमारे वेबसाइट में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है, हमारे वेबसाइट में आप वर्कशॉप के सजेशंस भी ढूंढ सकते हैं, आप रिसाइकलिंग सेंटर्स भी ढूंढ सकते हैं, एक मैप प्रोजेक्ट है पैकेज फ्री मैप करके, जहां पे हम इतने सारे रिसोर्सेस पिन करते हैं हर शहर में कि आप यहां जाके अपना रिसाइकलिंग कर सकते हैं, आप यहां जाके पैकेज फ्री बिना प्लास्टिक पैकेट के सामान खरीद सकते हैं। और हम लोगों से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं इन सब शॉप्स के। अगर आपके घर के पास कोई किराना शॉप है जहाँ पे बिना पैकेजिंग के खुले में चीजें बिक रही है, तो हम वो चीजें भी पिन कर सकते हैं इस मैप पे। तो हमारे वेबसाइट का यही मकसद है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए ईजी हो जाए और आपके लिए भी ईजी हो जाए, और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं क्योंकि आदत हो गई है और हमें भी काफी सारे टिप्स और एक्सपीरियंस से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं।
1: मैम उलिसू ही क्यों नाम आपने रखा, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के उच्चारण करने में भी प्रॉब्लम है, क्या मकसद है इसका?
0: हाँ, हिंदी बोली के लोगों को काफी मुश्किल होता है उलिसू बोलने में, क्योंकि उलिसू मेरा मदर टंग कन्नड़ा का वर्ड है। उलिसू का मतलब ये है कन्नड़ा में बचाना। अगर आपको पैसे भी बचाने हैं क्योंकि आप सस्टेनेबली रह रहे हैं, अगर आपको रिसोर्सेज बचाना है, पृथ्वी बचाना है, पानी बचाना है, जो भी सीखना है आपको बचाने का, कचरा बचाना है, तो आप सीख सकते हैं उलिसू से। तो इसलिए इस मकसद से मैंने उलिसू करके नाम रखा था। और मुश्किल होती है कुछ लोगों को बोलने में, लेकिन आई थिंक मराठी में भी ळ करके काफी लोग प्रोनाउंस कर पाते हैं तो वो आसानी से बोल लेते हैं।
1: आपने कहा कि जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, सतत विकास को अपनाना सहज है, लेकिन देखा जाता है कि जो सतत विकास के प्रोडक्ट्स है वो के जो रेट्स है वो बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, तो लोगों को लगता है कि हम क्यों ना वो प्लास्टिक यूज कर ले इसके बदले या दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कर ले, ये क्यों?
0: तो अगर आप देखा जाए तो जो भी सुपरमार्केट में ब्रांड्स हमें मिलते हैं वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और काफी लाखों पीसेज में बनाए जाते हैं, तो उस वजह से उनका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा लोग खरीदते हैं उतना ज्यादा पीसेस बनते हैं और उसके वजह से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि उतना आप बल्क में इंग्रेडिएंट्स खरीद पाते हैं। अभी सस्टेनेबल क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं, कम लोगों को इंटरेस्ट है, कम लोगों का डिमांड है, इसके वजह से छोटे छोटे बैचेस बनते हैं इन प्रोडक्ट्स के। लेकिन हमने देखा है 4 साल में जैसे बैम्बू टूथब्रश बहुत ही महंगा हुआ करता था, 250 रुपए का हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखे तो अभी वो काफी पॉपुलर हो चुका है और अभी आपको 60 रुपीज में मिल जाएगा, 70 रुपीज में भी मिल जाएगा। हालांकि प्लास्टिक टूथब्रश आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन ये डिमांड सप्लाई का ही खेल है मोस्टली। और फ्यूचर में जैसे ज्यादा ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, जिनकी खरीदारी का शक्ति है वो खरीद पाएंगे, तो वैसे वैसे ज्यादा लोगों के लिए ये आसान होता जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपके बजट में है तभी आप इसके बारे में सोचें, अगर बजट में बिल्कुल भी नहीं है और ये आपको बहुत ही सिवियरली इम्पैक्ट हो सकता है कि इतनी महंगी चीज आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो ये आपका टेंशन नहीं है, ये किसी और का काम है कि वो डिमांड ज्यादा करे ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए एक दिन। तब तक आप ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपका पैसा बच सकता है। जैसे कि माना गया है कि बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज्यादा कपड़े खरीदना, बाहर से खाना मंगवाना जो डब्बे में आते हैं, ये सबसे भी काफी प्रदूषण फैलता है। तो आप ज्यादा चलिए, ज्यादा बसेस लीजिए, कार में कम जाइए या कार शेयर कीजिए, ऐसे सारी प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आपका पैसा कम पैसा बच सकता है। जैसे कि फास्ट फैशन एक चीज है जिससे बहुत प्रदूषण फैलता है, हमें महीने महीने खरीदने का मन करता है, हम अपने कपड़ों से बोर हो जाते हैं, और आजकल शॉपिंग जरूरत के हिसाब से लोग बहुत कम करते हैं, आजकल लोग शॉपिंग मूड के हिसाब से करते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हमें कम करनी चाहिए, हमें साल में 1 या 2 बार सिर्फ हमारे नीड्स के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। और इस चक्कर में अगर आप अपने बहन से कोई कपड़ा ले या भाई से ले या बोरो कीजिए, सेकेंड हैंड लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि फेंकने के जगह आप वो रिसोर्स ज्यादा साल तक चला रहे हैं, इसका मतलब उसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा। तो मैंने 4 साल से ब्रांड न्यू कपड़े मैंने खरीदे नहीं है, मैंने सिर्फ सेकेंड हैंड शॉपिंग की है, तो इसके वजह से मेरा बहुत सारा पैसा बच जाता है। जो अगर 20-30 रुपए एक्स्ट्रा अगर मैं अपने शैम्पू बार्स या इसमें भी खर्च कर लो तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता। तो आप इस हिसाब से देखिए, पहले आप ऐसी चीजें कीजिए कि अपना लाइफ का जो कंज्यूमरिज्म है आप थोड़ा कम कीजिए, जितना कम हो सके, मिनिमलिस्टिक रहिए, तो ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ये ट्रू सस्टेनेबिलिटी इसी में है कि घर पे जो है उस चीज को पहले इस्तेमाल कीजिए और खरीदारी के बारे में बाद में सोचिए, बस जब जरूरत पड़े तभी खरीदारी कीजिए।
1: जी मैम, एक महिला अगर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में, और जैसे आपने कहा कि मिनिमलिज्म, लेकिन बच्चे जिद करेंगे कि फ्रेंड्स के पास इतने सारे कपड़े हैं और मेरे पास भी होना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट ये उनके लिए शायद टेक्निकल होगा, तो उन्हें कैसे समझाएं?
0: आपने ऐसे सिचुएशंस तो देखा होगा जहां पे घर वेजिटेरियन है लेकिन बच्चे बाहर जाके नॉन वेजिटेरियन खा के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं कि इस घर में तो नहीं चलेगा, आप बाहर कुछ भी कर लीजिए लेकिन घर आएंगे तो घर के रूल्स फॉलो करेंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिलीज देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स मिनिमलिस्टिक होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को वो बचपन से सिखाया होता है कि जरूरत से ज्यादा खिलौने नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पास कोई खिलौने हैं जो आप अभी उसके साथ खेल नहीं रहे हैं तो हमारे साथ बैठिए, चलो निकालते हैं, जो खिलौने आपको पसंद है वो रखिए, जो पसंद नहीं है वो हम डोनेशन के लिए दे देते हैं या फिर किसी और को दे देते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिसेस रखने वाले फैमिलीज मैंने देखे हैं जहाँ पे बच्चों को आदत पड़ जाती है कि हाँ इस महीने हम हमारे वार्डरोब से कुछ खिलौने जाने वाले हैं। तो जब वो वैसे बड़े हो जाते हैं उनके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। अगर वो दूसरे बच्चों से कुछ सीख भी ले नया या फिर कुछ कर भी ले, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे उन्हें समझ में आ जाता है खुद से कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया था वही ठीक था। तो बच्चों को जो करना है हमें उन्हें करने देना चाहिए जरूर, लेकिन घर पे हम जितना उन्हें सिखा सके हमें सिखाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के मामले में नहीं, जैसे मैंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी एग्जाम्पल दिया, काफी लोग ऐसी चीजों में भी सिखाते हैं। हर घर के अपने अपने नियम होते हैं और अपने अपने घर के नियम आप बना सकते हैं, लेकिन फोर्स तो जरूर हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं। मैं खुद जब सस्टेनेबली रह रही थी और मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे मेरी बात, तो मैं भी उन्हें फोर्स नहीं कर पाई, लेकिन देखते देखते 1-2 साल बाद वो भी समझने लगे और वो भी प्रैक्टिस करने लगे। तो आपको बस भरोसा रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए कि आपने अपना ड्यूटी किया है और आपने अपने तरफ से जितना समझाने की कोशिश की है, आगे उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपनी दुनिया को कैसे परखेंगे और क्या क्या समझेंगे।
1: बिल्कुल, और आपने ये सही कहा कि बचपन से वो संस्कार, अगर वो प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में है तो हमें बहुत इजी होगा वो चीजें अडॉप्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि एक व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक अपने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो करना है, मतलब क्या क्या रिप्लेस करना होगा अभी।
0: सुबह से लेकर रात तक तो मैं सोचती भी नहीं हूँ आजकल, लेकिन मैं
1: क्योंकि
0: ये भी
1: आपके
0: सोचती
1: प्रैक्टिसेस
0: हाँ,
1: में है
0: ये चीजें आदतें बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि मुझे सस्टेनेबल बनना है, तो मतलब आप अभी नए हैं और आप शायद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते देखते ये आपकी आदतें बन जाएगी। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है, तो काफी बार मैं अपना मोबाइल निकाल के स्विगी मार्ट क्लिक करने से पहले मैं सोचती हूँ मेरे घर के नीचे क्या ये चीजें मिलती हैं, या क्या मुझे सिर्फ थोड़ा सा वॉकिंग करके ही एक नियर बाय दुकान से अगर मैं खरीद के ला सकती हूँ तो क्या ये आसान हो सकता है। काफी बार उस डिलीवरी बॉय का आना जाना में का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है हमारी जनरेशन का। तो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस जो शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते थे ऑटोमेटिकली, हमें सोच सोच के फॉलो करना पड़ रहा है। शायद वो एक डिफिकल्ट चीज है जो हमें आदतों में लानी पड़ेगी। बाकी चीजें प्रोडक्ट्स में आसानी से चेंजेस हो जाती है। मुझे अभी जब भी मैं सब्जी काटती हूँ तो डस्टबिन में डालने की आदत नहीं है, क्योंकि घर पे कॉम्पोस्ट है, तो मैं एक छोटा सा कलेक्शन बोल में डालती हूँ और जैसे ही मेरा खाना पकाने का काम कंप्लीट हो जाता है मैं सारे वेट वेस्ट जाके कॉम्पोस्ट में डाल के आ जाती हूँ। तो वही प्रैक्टिस है, वही टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है और बस उसके वजह से मेरा दिन शायद वैसे ही दिखता है जैसे बाकी लोगों का दिन दिखता है, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ चीजें अलग कर दी है उसके वजह से इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अगर मुझे शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो मैं मिंत्रा पे नहीं जाती हूँ, मैं ये रिलायंस या जियो वेबसाइट्स पे नहीं जाती हूँ, मैं शायद एक सेकेंड हैंड स्वॉपिंग ऐप पे जाती हूँ जहाँ पे पूरे भारत के कई कई महिलाएं अपना वार्डरोब्स डालते हैं और मैं उनके ऑप्शन से देखती हूँ मुझे क्या खरीदने का मन कर रहा है। तो ऐसे एक ऐप है दिस फॉर दैट क्लोजेट, ये जरूर चेकआउट कीजिए। मैं वही वही लाइफ जीती हूँ जो बाकी युवाएं जीते हैं, लेकिन शायद हम जिस माध्यम से मैं ये करती हूँ वो अलग है। तो मेरा दिन काफी ऐसे ही दिखता है।
1: जी। तो सुबह उठ के हम अपने ब्रश से लेकर, जैसे आपने कहा कि आप सब्जी बना रहे हैं तो उसे आप कंपोस्ट के लिए डाल दीजिए, तो इस प्रकार चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, आपके लंच बॉक्स, सब आप रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे, स्टील पर आ ही सकते हैं आई थिंक
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो।
0: और जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपना बॉटल बैग हैंडकरचिफ ये सब चीजें रख के रेडी होती हैं। तो मेरे मेरे डोर के पास ये सब बैग्स रेडी होते हैं ताकि मैं कभी भूल ना जाऊं बाहर निकलने से पहले कि मुझे ये चीजें लेकर जानी थी। तो ऐसे सेटअप कर दिया है कि ताकि मेरे आदतों में ही आ जाए कि जब भी मैं कुछ भी करती हूँ तो ये सब पकड़ के ही निकल जाती हूँ मैं।
1: जी, अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कैसे लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं।
0: तो हमारे वेबसाइट में हमने सबसे पहले ये प्रायोरिटाइज किया कि आपको मतलब रोजाना क्या जरूरत पड़ सकता है, किचन में साफ सफाई के लिए कैसी चीजें जरूरत पड़ सकती है, पॉलिएस्टर स्क्रब के जगह कॉयर बेसिल स्क्रब बर्तन धोने के लिए जो कोकोनट कॉयर से बना है, ताकि वो कॉम्पोस्ट में इजिली जा सके। नहीं तो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, जो स्कॉच ब्राइट यूजली होता है वो प्लास्टिक का होता है। केमिकल क्लीनर्स जो हम यूज करते हैं जिसमें ब्लीच होता है, फिनाइल होता है, ये सब चीजें ड्रेनेज में जाके हमारे लेक्स और रिवर्स में जाके काफी प्रदूषण फैलाता है, और इसके वजह से फिशेस हार्म होते हैं और काफी अक्वेटिक एनिमल्स का डेथ होता है। तो इसके जगह क्या नेचुरल क्लीनर्स है जो हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाथरूम के लिए ऑब्वियसली शैम्पू, बॉडी सोप, कंडीशनर, ये सब भी मिल जाएगा। पेट प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कैट लिटर होता है जिसमें जो लोग खरीदते हैं वो कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता है और वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है, तो बायोडिग्रेडेबल कैट लिटर भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर पे प्लास्टिक जिसमें होता है, या फिर केमिकल्स या टॉक्सिक केमिकल्स जिसमें होता है। और प्लास्टिक भी आपको सोचना चाहिए, ये फॉसिल फ्यूल से डराइव्ड है, बेसिकली ये पेट्रोलियम से डराइव्ड है। तो हम जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं उतना ज्यादा हम पेट्रोलियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे वेबसाइट्स पे आपको ऐसी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिससे आप पेट्रोलियम से भी मुक्त हो सकते हैं। और आप इस सोच से चलिए कि क्योंकि आप वो चीजें यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका प्रदूषण का इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। और अभी हमने एसेंशियल्स सब रख दिए हैं, तो डिटर्जेंट, यू नो, क्लीनर्स, हाइजीन के लिए जो भी चाहिए सब है। ट्रैवल, आउटडोर ट्रैवलिंग आइटम्स भी है, तो अगर आपको बाहर जाके चाय कॉफी ऑर्डर करना है तो पेपर कप में लेने से अच्छा आप अपना एक स्टील कप दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं हमारे स्टील कप में आप हमारा ऑर्डर दीजिए, ताकि आप आपके हर ऑर्डर पे डिस्पोजेबल कप्स ना फेंके जाए। तो वैसे रियूजेबल आइटम्स हैं हमारे वेबसाइट पे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए कॉयर स्क्रब्स हैं। अगर आपको प्लास्टिक ब्रशेस है घर पे क्लीन करने के लिए, तो आपको कॉयर ब्रिसल्स के, यू नो, ब्रशेस मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सारी प्रोडक्ट्स हैं, और अब हम धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा मजा भी आए। हम गेम्स ऐड कर रहे हैं, हम डेकोर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि सबसे पहले एसेंशियल्स ऐड हो जाए, ताकि हमारी जरूरत की जो चीजें हैं वो सब लोगों को मिले। तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी ओलिसो.com पे।
1: जी मैम, यूथ का कुछ सवाल होता है कि मान लीजिए हमने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना लिया, तो बाकी लोग नहीं अपना रहे हैं, तो क्या हमारे अपनाने से क्लाइमेट चेंज में कुछ इम्पैक्ट आएगा, कुछ ही लोग अपनाने से?
0: मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 4 साल से लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 4 साल में काफी लोगों ने अपना लिया है, तो यही इम्पैक्ट है लोगों का। अब हम सब सोचते हैं हम बहुत ही छोटे हैं और हमारे अपनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि हमारे एक एक के अपनाने से काफी सालों बाद काफी इम्पैक्ट हो जाता है। आपको लगता होगा आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस वाले आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं। वो चाहे ही आपका थोड़ा मजाक उड़ाए, लेकिन क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, उनके मन में विश्वास होगा कि ये कोई कर सकता है। जब उन्हें पहले विश्वास नहीं था, अब उनके मन में विश्वास होगा कि ये कोई कर सकता है। तो आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं जब आप ऐसे रहने लगते हैं। मेरे घर में कोई भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सीखता अगर मैं नहीं रहती तो। क्या मेरे घर में सब सस्टेनेबली रह रहे हैं? नहीं, लेकिन अभी उन्हें पता है, और मेरे वजह से वो ऐसी चीजों से ज्यादा ओपन अप हो जाएंगे, ऐसी चीजें ज्यादा ट्राई करेंगे, शायद वो एक प्रोडक्ट ट्राई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनके घर में कोई है जो ऐसे रह रहा है। तो उनके पास भी, उनके सर्कल में भी कोई है जिनसे वो क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, जिनसे वो डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो सब, जो भी कन्वर्ट होता है, जो भी सस्टेनेबली रहने की कोशिश करता है, सबका एक वैल्यू होता है। तो आप खुद को कभी भी छोटा मत समझिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति एटलीस्ट 100 लोगों को जानता है। आप शायद 100 लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 लोग जानेंगे आपके वजह से कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। तो हाँ, जरूर।
1: जी बिल्कुल। और जैसे आज से 50 साल पहले भी अगर हम देखें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, तो वो काफी मतलब सतत विकास को अपनाते थे, प्लास्टिक फ्री ही रहते थे, लेकिन हम धीरे धीरे इसको अपना अपना के अभी आज हम पछता रहे हैं कि क्यों हमने इसे अडेप्ट किया। और उम्मीद है कि जो इसे सुन रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अपने लाइफ में करने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे। एक क्वेश्चन महिलाओं के साथ, महिलाओं के हाइजीन के साथ मैं पूछना चाहूंगी। आपकी वेबसाइट पर मेंस्ट्रुएशंस के दौरान जो हम पैड्स यूज करते हैं वो एक सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्ट्स भी वहां पर उपलब्ध है, क्या वो उतना हाइजेनिक है जितना हम वो पैड्स यूज करते हैं, कमर्शियल पैड्स यूज
0: बिल्कुल बिल्कुल। ये मेंस्ट्रुअल कप काफी डॉक्टर रेकमेंडेड भी है, और हाइजीन हमारे हम पे डिपेंड होता है हम कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं उन्हें। लेकिन मेंटेन करना अभी मुश्किल भी नहीं है, ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे हम कप को अगर बॉइलिंग वाटर भी नहीं है सैनिटाइज करने के लिए तो एक कप का सोप क्लेंजर भी मिलता है जो आपके लिए सेफ है अंदर और कप के लिए भी, तो आप उससे साफ कर सकते हैं इजीली और उन्हें फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसे सिचुएशंस कैंपिंग या फिर बाहर आउटडोर्स ट्रेकिंग भी जब मैं गई हूँ तब भी मैंने कप को यूज किया है और वो काफी सेफ और हाइजीनिक भी रहा है मेरे लिए। इनफैक्ट जो हाइजीन के इश्यूज होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट से आते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के पास बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा हाइजीन इश्यूज होते हैं। वेरैज अगर आप कप को देखें तो वो बस कलेक्ट करता है एंड यू कैन एम्प्टी इट वेरेवर, खाली करके वापस आप यूज कर सकते हैं। तो हाइजीन में इश्यू नहीं है, अगर किसी को भी डाउट है तो वो काफी सारा इंफॉर्मेशन भी है यूट्यूब पे, वो सीख भी सकते हैं इससे। और मेंस्ट्रुअल का आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन आपके कचरे के थ्रू हाथ डाल के साफ कर रहा है, बाहर कोई है जो इस सब कचरे के थ्रू अपना हाथ डाल के साफ कर रहा है, और उनके हाइजीन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ऐसी चीजें किसी के भी हाथ में नहीं आनी चाहिए। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना भी हो सके कि हम ये शिफ्ट करें कि हमारा मेंस्ट्रुएशन भी जीरो वेस्ट हो और हम अपने बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए।
1: जी, कपड़े के भी पैड्स आपके उस वेबसाइट पे मैंने देखा था, तो उसे कैसे यूज करना होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे शायद हम उसे यूज नहीं कर सकते।
0: यूज कर सकते हैं, वैसे एक पाउच भी होता है, आप पाउच भी खरीद सकते हैं और उसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं, जो ओडर फ्री पाउचेस होते हैं, मतलब वो स्मेल भी बाहर नहीं आता है, और फिर घर आके आप सब सोख करके उसे साफ कर सकते हैं। माना कि वो थोड़ा मेंस्ट्रुअल कप से थोड़ा ज्यादा काम लगता है, लेकिन ये भी मुमकिन है। काफी लोग जो कप यूज नहीं करना पसंद करते हैं वो क्लॉथ पैड ऐसे यूज करते हैं, लेकिन वो आदत आदत की चीज है। हमें हमें फेंकने की आदत है तो हम सोच नहीं पाते हैं हम ऐसे कैसे पकड़ के घर आए, ये तो बहुत ज्यादा काम लग रहा है, लेकिन ये बस एक आदत है जो 2-3 महीने में हो जाती है और आप सीख सकते हैं। हमें हाइजीन का इश्यू मेनली इसीलिए लगता है क्योंकि पुराने जमाने में जब लोग क्लॉथ यूज करते थे तब काफी शर्माते थे लोग और काफी टैबू भी था, मतलब छुपा के रखो, किसी के आगे मत दिखाओ, तो उसे सनलाइट नहीं मिलता था, क्लीन कपड़ा नहीं यूज किया जाता था, गायनोकोलॉजिस्ट से किसी का संबंध नहीं था तब, तो काफी गंदी तरीके से मेंटेन किया जाता था तब, इसलिए हाइजीन प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन आज के जमाने में हमें ये प्रॉब्लम्स कम होते जा रहे हैं, हम युवा पीढ़ी काफी बोल्ड हैं, हम अपने पेरेंट्स को समझा देते हैं कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्लॉथ पैड्स क्लीन होने चाहिए, ठंडे पानी में मतलब साफ करके, क्लीनर्स के साथ साफ करके, आप सनलाइट में अगर उसे ड्राई करने रखे तो वो कंप्लीटली स्टेरिलाइज हो जाता है, कोई जर्म्स नहीं होते हैं और उसे रियूज आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारा इनरवेयर भी हम साफ करते हैं या फिर बेडशीट भी साफ करते हैं, वापस यूज तो करते ही हैं हम बेडशीट तो फेंक नहीं देते हैं हमेशा, तो वैसे ही ये भी यूज हो जाता है। और काफी लोग 5 साल, 4 साल, 6 साल से क्रॉप पैड यूज कर रहे हैं एंड उनका हेल्थ कंप्लीटली नॉर्मल है, तो ये गारंटी तो है, हाइजीन तो है, हमें हाइजीन का बस ख्याल रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बस शुरुआत करना है और आदत धीरे धीरे आपकी
0: डर
1: तरफ।
0: डर नॉर्मल है, डर सबको लगता है, अगर आपको किसी से बात करना है इसके बारे में तो आप हमारे पास आ सकते हैं और मैं भी काफी लोगों को कांटेक्ट दे सकती हूँ जो इसके बारे में आपके साथ बात कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ऑफिसेस को ग्रीन कैसे बनाया जाए, क्या ऐसे और आदत डाल सकते हैं?
0: ऑफिसेस में सेम जैसे हम घर पे अपना वेट वेस्ट कंपोस्ट करते हैं, ड्राई वेस्ट रिसाइकल करते हैं, वैसे ऑफिसेस में भी ये रूल्स बनाए जा सकते हैं। ऑफिसेस में पेपर काफी वेस्ट हुआ जाता है तो

0: जितना डिजिटाइज हो सके उतना अच्छा होता है। अपने ईमेल बॉक्सेस चेक कीजिए, अगर कोई ईमेल नेसेसरी नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इनबॉक्स में जितना ज्यादा ईमेल बैठता है उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट सर्वर्स यूज करते हैं। और अपने कॉफी स्टेशन में जहां भी डिस्पोजेबल पेपर कप्स हैं उसे एक रियूजेबल मग से कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप खुद का एक रियूजेबल मग रखिए अपने डेस्क पे और सिर्फ उसी को यूज कीजिए अपने पूरे दिन के कॉफीज या ड्रिंक्स के लिए, ताकि आपके ड्रिंक्स की वजह से कोई डिस्पोजेबल कचरे में ना जाए। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अपना हैंकरचिफ यूज कीजिए, अपना वाटर बॉटल यूज कीजिए, और ऑफिसेस को प्लास्टिक बॉटल्स या फिर टिश्यू पेपर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एचआर से बात कीजिए और उन्हें हमारे संपर्क में रखिए, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि वो चेंजेस कैसे ला पाएंगे। और ऑफिसेज में मैं एक वेबिनार भी कंडक्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं सारे एम्प्लॉयज को जीरो वेस्ट के बारे में सिखाती हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सिखाती हूँ, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम बताते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, और उन्हें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के थ्रू भी ले जाते हैं, जिससे वो सोच पाते हैं हर वेस्टफुल प्रॉब्लम का एक जीरो वेस्ट सोल्यूशन खुद वो सोच पाएंगे। तो हम ऐसी एक्टिविटीज भी कंडक्ट करते हैं ऑफिसेज में, जिससे सारे एम्प्लॉयज को हेल्प होता है।
1: जी, और जैसे आप लाइफ स्टाइल्स की भी बात कर रहे हैं और महिलाओं को ज्यादा अपने सौंदर्य का ख्याल रखना पसंद है, अपने बॉडी का ख्याल रखना पसंद है, आप अगर शैम्पू की बात करें, आप सोप्स की बात करें, इवन अभी जो SPF क्रीम्स है तो वो उसके चलन ज्यादा बढ़ चुका है, तो उससे क्या उसका भी कुछ रिप्लेसमेंट्स है क्या, क्योंकि हम भी प्लास्टिक की बॉटल्स में वो सब खरीदते हैं।
0: नहीं, मतलब हर हर इसका रिप्लेसमेंट तो अभी तक हमने सुना नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न क्या होता है, पैकेजिंग कैसा है। अगर पैकेजिंग एक ट्यूब में है, इसका मतलब वो ट्यूब हम वापस कभी उसे यूज नहीं कर पाएंगे, हमें एक बार वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो हमें वो फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स जब ऐसे डब्बे में खरीदते हैं जिसका लिड होता है, आप उसे खोल सकते हैं और वो खत्म होने के बाद अपने किचन में मसाले के डब्बे जैसे भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसी चीजें ज्यादा रियूजेबल होती हैं और इससे वेस्ट नहीं आता है घर पे। तो आप जब भी सामान खरीद रहे हैं तो ऐसे पैकेजिंग प्रैक्टिसेस देख के शायद आप खरीदने की कोशिश कीजिए। SPF का ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर आपको आपने SPF प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपका क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आप खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट, वो क्वांटिटी ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा देर तक चले। छोटे छोटे सैशेज में खरीदना या सिर्फ छोटे छोटे ट्रायल्स में खरीदना ये कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा मतलब एडअप हो जाता है और ये रिसाइकल इजिली नहीं होता है। तो ऐसी छोटी टिप्स है जो आप शायद देख सकते हैं, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स हमारा स्किन हैज मतलब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, हम कुछ ज्यादा ही उस पे डालते रहते हैं। अगर आप मिनिमली अपना स्किन का भी ख्याल रखें तो वो खुद खुद अपना करेक्ट भी कर लेता है। मेरा पर्सनल रूटीन, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। तो ये पर्सनल मतलब हर हर व्यक्ति के प्रकार ये चेंज हो सकता है, तो मैं इस पे ज्यादा एडवाइस नहीं दे सकती। तो हाँ
1: बिल्कुल, और जैसे आयुर्वेदा और नेचर क्योर में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हैं, अगर आप पे वो सूट होता है तो आप जाकर के डॉक्टर्स को भी, नेचुरोपैथ या फिर डॉक्टर्स को पूछ के भी आप यूज कर
0: हाँ
1: सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: अगर आपको बस मतलब घर पे थोड़ा फेस पैक से ऐसा कुछ करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप घर पे ही कुछ बनाइए। लेकिन अगर कुछ स्किन सीरियस स्किन इश्यूज है जिससे डॉक्टर रेकमेंडेशन की जरूरत है तो प्लीज आप डॉक्टर की ही सुनिए। लेकिन अगर बस आपको थोड़ा सुंदर लगने का मन कर रहा है, कुछ क्रीम लगाना है, कुछ फेस पैक लगाना है, तो आप घर पे काफी सारे नुस्खे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे दादी दादियां भी ये सब बनाती थी घर पे, तो आप वैसी चीजें ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि आप घर के किचन के इंग्रेडिएंट से कुछ बना के अगर आप लगाएंगे तो कुछ वेस्ट भी नहीं होगा। आजकल लोगों को ये कोरियन शीट मास्क का बहुत ही ट्रेंड लग रहा है, आपको ये सही समझना चाहिए वो शीट मास्क लगाने के बाद एक बार हमें फेंकना पड़ेगा, और उसके बाद वो शीट मास्क जिस पैकेट में आता है वो भी फेंकना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम खरीदते हैं, वो उसका जब काम हो जाता है, काम होने के बाद क्या मुझे उस चीज को फेंकना पड़ेगा या फिर काम होने के बाद कोई वेस्ट बचा नहीं है, यू नो. तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम कुछ करते हैं, क्योंकि एंड में हमारा मकसद बस यही है कि हमें त्वचा थोड़ा मॉइस्चर चाहिए और थोड़ा सुंदर लगना है, और इसके तरीके हजार हैं, तो उस हजार तरीकों से कुछ कुछ और ट्राई कर लीजिए जिससे
1: आगे. मृदुला जी, आपका क्या प्लान है आगे? क्या
0: आगे का प्लान हमारा ये है कि मैं चाहूंगी कि जैसे 20 साल में लोगों को जिम जाने की यू नो ट्रेंड बन गया है और लोगों को बहुत इजी हो गया है अपने हेल्थ का यू नो ख्याल रखने का, या फिर कहीं भी जाके यू नो अपने सुंदरता का ख्याल रखने का, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे यू नो सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगों को इन चीजों में हेल्प करने के लिए. उसी प्रकार मुझे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी इतने सारे सर्विसेज यू नो शुरू करने हैं, जिससे अगर कोई एक व्यक्ति डिसाइड करे कि मुझे सस्टेनेबली रहना है तो वो एक सेंटर आ सकते हैं, एक कोर्स ले सकते हैं और आसानी से 3 महीने में वो खुद को सस्टेनेबल बुला सकते हैं. तो हमारा एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं जिससे आपके लाइफ के हर एरिया में आप सस्टेनेबल चेंजेस कैसे बना सकते हैं और धीरे धीरे कैसे बना सकते हैं, ताकि आपके लाइफस्टाइल को भी ज्यादा इम्पैक्ट ना हो और अपने लेवल पे आप जितना कर सकते हैं उतना आप उस वहां से शुरू किया जा सकता है. वैसा एक प्रोग्राम हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और हाँ, हम आशा है कि जितने लोग इंटरेस्ट दिखाए उन उतने लोगों के लिए ये इजीली अवेलेबल.
1: एक और क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जो हमारे यूथ के हैबिट्स अभी है, पार्टी करना, अल्कोहल लेना, स्मोक करना या कैफीन इस्तेमाल करना, ये भी एनवायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है?
0: बताया गया है कि दुनिया का काफी सारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है. और ये इस चीज से मैं काफी डर गई थी, लेकिन इससे मेरा खुद का बियर कंजम्पशन तो कम नहीं हुआ फिलहाल. लेकिन मैं इस चीजों के बारे में सोचती तो हूँ काफी, लेकिन हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप जहां पे चेंजेस ला पाएंगे चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए. शायद हम ये चीज कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये कम कर पाएंगे. और इससे मतलब लाइफ तो एंजॉय करना है यू नो, और लोग शायद लाइफ एंजॉय करना बंद तो नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजों पे रोक डालने से शायद दंगे हो जाएंगे. लेकिन जिस चीज पे रोक डालना सही है, जिस चीज पे आप रोक डाल सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए. छोटी छोटी चीजें जो ट्राई कर सकते हैं जरूर ट्राई कीजिए. तो यही इम्पैक्ट है. सिगरेट स्मोकिंग से एक बहुत ही हानिकारक प्रदूषण फैलता है, जो ऑब्वियसली स्मोक से तो फैलता ही है, और सिगरेट बट दुनिया का सबसे ज्यादा लिटर्ड आइटम है. मतलब ये सबसे ज्यादा फेंकी हुई चीज है सिगरेट बट, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है, पानी में चला जाता है, पानी में टॉक्सिसिटी फैल जाता है, फिशेस भी खा सकते हैं. तो सिगरेट बट रिसाइकल करने का एक यूनिट नोएडा में है, जहां पे वो सिगरेट बट्स को रिसाइकल करके उसे प्योरीफाई करके सारे टॉक्सिन्स रिमूव करके उसे गद्दे के स्टफिंग के जैसे यूज करते हैं. तो हम ये वाले गद्दे भी बेचते हैं अपने वेबसाइट पे. तो अगर आपको सिगरेट एडिक्शन है, आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और या फिर आपके दोस्त हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उन्हें प्लीज बताइए कि सिगरेट बट्स वो सेव करके रखें, कलेक्ट करके रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे हम वो भेज सकते हैं और हम उस चीजों का लिटर भी कम कर सकते हैं. तो ये दो चीजें मुझे याद आ रही हैं जो इस चीज से हो सकता है. तो शायद पार्टीइंग कम ना हो, लेकिन अगर पार्टी के बाद जो कचरा बचता है वो आप अगर साफ कर पाएंगे तो वो अच्छा होगा. ये मेरा ख्याल है.
1: सस्टेनेबल पार्टी रखें आप, जैसे आपने कहा कि आप एंजॉय करें, लेकिन उससे सही जगह पे पहुंचा है जो भी उससे निकल रहा है.
0: प्रकृति में जाके बियर पी के कैन फेंकना, यू नो, ये सब चीजें करना, ये काफी काफी गंदी लगती है, क्योंकि वहां पे और लोग आते हैं, और लोग भी प्रकृति एंजॉय करना चाहते हैं. तो बुरा लगता है जब लोग इस तरह से पार्टी करते हैं बाहर जाके. तो जो भी आप करते हैं आपके साथ आप हमेशा वापस लेकर आइए।

0: और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मुझे 1 घंटे के लिए हिंदी में बात करवाने के लिए। मेरी भी आदत काफी निकल गई थी, हम बचपन में नोएडा में रहा करते थे। तो मेरा बस यही बोलना है लोगों के लिए कि आप जब सस्टेनेबली रहना चाहते हैं, दुनिया भर का पीड़ा अपने कंधे पर ना उठाएं, बस खुद के बारे में सोचें, खुद की आदतों के बारे में ही सोचिए और बस अपनी आदतों पे ही काम कीजिए। अगर आप रोज उठ के बिना सोचे कोई सस्टेनेबल काम कर पाते हैं तो वो आपका सक्सेस है। और बस उसी के तरफ आप ध्यान दें, लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपसे सीख रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली, जैसे बोलते हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, फैलने लग जाएगा। तो ज्यादा एंग्जाइटी या फिर ज्यादा टेंशन ना ले सस्टेनेबिलिटी के बारे में।
0: बिल्कुल, स्ट्रेस ना ले, जितना हो सके उतना अपनाने की कोशिश आप जरूर
1: हाँ,
0: करें।
1: बिल्कुल।
0: आप हमारे बीच आए आज, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की और आप खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं सभी यूथ्स के लिए। थैंक यू, और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी आप आते रहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रूपा।
0: जी, तो हमारे बीच थे आज मृदुला जोशी जी, और उन्होंने काफी बहुत अच्छे अच्छे जानकारी उन्होंने दिया। वो प्रयास कर रहे हैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए और वो 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ और चीजें भी आप ऐड करिए और हमें बताइए कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा। क्या एक चीज जो आप आज से शुरू करेंगे और अपने जो प्रतिदिन के बिहेवियर्स हैं या कह सकते हैं जो लाइफ स्टाइल है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आएंगे, तभी हम सब मिलकर के इस दुनिया को नई दुनिया और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते नई दुनिया नए जमाना कार्यक्रम में एक और नए गेस्ट के साथ। उनसे भी कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। नमस्ते।

शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और हर हफ्ते शनिवार के दिन आप ये कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें आपको अलग ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। आजकल हमने पिछले कुछ समय से आपको जो है नए ट्रेड्स के बारे में बात करने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग ट्रेड जैसे कि मशीन लर्निंग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बातें की थी। अब उससे आगे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे यूनिक जो है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है करियर का विकल्प है और जिसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और ये डिजिटल दुनिया के अंदर तेज़ी से डिजिटल होते समय में हर कंपनी, स्टार्टअप या सरकारी संस्था हो या ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रही है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल और स्मार्ट डिवाइस, इन सभी को उपयोग करने के लिए अनुकूल जो चीज़ें हैं यूज़र फ्रेंडली बनाने में जिस बात की भूमिका होती है, सबसे अधिक आवश्यक होती है, वो होता है यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की। साथियों, आप नाम सुनकर थोड़ा चौंक तो गए होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूआई यूएक्स डिज़ाइन की। आज के समय का सबसे लोकप्रिय क्रिएटिव और हाई डिमांड करियर है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन का काम नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता की मनोविज्ञान, व्यवहार, रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर बेहतर डिजिटल अनुभव एक्सपीरियंस तैयार करने की कला है। तो डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। तो आइए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूआई का मतलब है वो दृश्य, विजुअल इंटरफेस जो उपयोगकर्ता देखता है, जैसे बटन है, रंग है, फॉन्ट है, लेआउट है, आइकॉन है, मेनू है, नेविगेशन है, आदि यूआई डिज़ाइनर का मुख्य काम है। स्क्रीन का सुंदर व प्रभावी डिज़ाइन ही लोगों को आकर्षित करता है। ब्रांड के अनुसार रंग और स्टाइल, उपयोगकर्ता को आकर्षित करने वाला इंटरफेस जिसको यूआई कहते हैं। दूसरी बात इसमें, जैसे कि यूएक्स बोला था मैंने, यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर आता है। यूएक्स का अर्थ है उपयोगकर्ता का अनुभव। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि किस वेबसाइट या ऐप को इस्तेमाल करते समय यूज़र को कोई परेशानी ना हो, इसके काम में शामिल है यूज़र रिसर्च, यूज़र की ज़रूरतों को समझना, वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप बनाना, यूज़र टेस्टिंग, आसान और सामूद नेविगेशन डिज़ाइन करना। यूआई जहां सुंदरता, ब्यूटी की बात करता है, वहीं यूएक्स प्रक्रिया, प्रोसेस और अनुभव की बात करता है। दोनों मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की बात हम लोग आज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और एक नए करियर के बारे में सुन रहे हैं। शायद आप सभी को इसके बारे में अभी ही जानकारी मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो आईटी सेक्टर में है या इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये शायद पुराना शब्द हो गया होगा। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का काम क्या होता है, आइए इस बारे में अभी बात करते हैं। एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के दायित्व तो बहुत ही अलग अलग होते हैं। देखने में बिल्कुल ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका काम बहुत विस्तार से है। जैसे कि यूज़र के व्यवहार का अध्ययन करना, माना जो भी मोबाइल का या एप्लीकेशन को या वेबसाइट को यूज़ करता है तो उसका व्यवहार, माना वो क्या क्या कर रहा है, उसका अध्ययन करना, डिज़ाइन समस्या की पहचान करना, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाना, प्रोटोटाइप तैयार करना, वेब और मोबाइल दोनों के लिए लेआउट डिज़ाइन करना, डेवलपर के साथ मिलकर काम करना, यूजर से टेस्ट कराना और सुधार करना, डिज़ाइन सिस्टम और स्टाइल गाइड बनना, ये एक रचनात्मक क्रिएटिव वर्क है और विश्लेषणात्मक एनालिटिक दोनों कौशल का मिश्रण है। अब देखेंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी कौशल है, स्किल रिक्वायर्ड जो है, एक डिज़ाइन थिंकिंग, समस्या को समझकर समाधान केंद्रित डिज़ाइन बनाना। दूसरा है क्रिएटिव और विजुअल सेंस, रंग फॉन्ट लेआउट टाइपोग्राफी की अच्छी समझ होना, प्रोटोटाइपिंग टूल्स का ज्ञान जैसे कि फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच, इन विजन, कैनवा, बेसिक डिज़ाइनिंग। चौथा है यूज़र रिसर्च, लोग किस तरह ऐप का उपयोग करते हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या सुधार चाहिए। पांचवी बात आती है HTML, CSS, JavaScript, बेसिक, डेवलपर से बातचीत और डिज़ाइन की समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। और छठवां आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट या टीम को अपने डिज़ाइन की रीजनिंग समझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन के माध्यम से जटिल समस्याओं को सरल बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये है ख़ास जो एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर को समझना। ये अगर स्किल्स आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर का रास्ता खुला हुआ है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने का रास्ता, पहला है स्टेप वन जिसको कहते हैं, डिज़ाइन फाउंडेशन सीखे, रंग सिद्धांत को समझे, टाइपोग्राफी को समझे, ग्रीड और लेआउट को समझे, दृश्य संतुलन विजुअल बैलेंस रखने का तरीका आ जाए। सेकेंड स्टेप में आता है कोर्स करें आप इससे रिलेटेड, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसके बारे में हमने पिछले बार भी बताया था, वही क्यूरोसिया, कोर्सिया, गूगल यूएक्स सर्टिफिकेट, यूडेमी, इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन, ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो डिज़ाइनिंग कोर्स को सिखाते हैं। तीसरा स्टेप आता है टूल्स सीखे, क्योंकि फिग्मा और एडोब एक्सडी मुख्य है। चौथा है स्टेप फोर, पोर्टफोलियो बनाए, 3 से 5 अच्छे केस स्टडी, मोबाइल ऐप और वेब डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग, यूज़र रिसर्च के स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखिए। स्टेप 5, इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम, छोटे प्रोजेक्ट ले और अनुभव बढ़ाए और काम करना शुरू कर दें, तो इससे क्या होगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह के काम या किस जगह पे आप बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप किस जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर एक जगह भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप सपोर्ट ले सकते हैं जो अच्छा करने वाले हैं, तो एक टीम वर्क के साथ ये पूरा काम बढ़िया बन जाता है। तो हमेशा अपनी टीम को बना के रखिए, टीम से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, लेकिन आपको काम पहले करना होगा, है ना। कई लोग डायरेक्टली काम करते हैं, वो मैनेजर का काम करते हैं, अपने काम को समझ नहीं पाते तो बाद में मुश्किल आती है। तो इसीलिए A to Z आपके पास जानकारी हो, ये कैसे किया जाता, ये कैसे होता है, तो चीज़ें आसान हो जाए।
अब यूआई यूएक्स डिजाइनर की जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, इंटरैक्शन डिजाइनर, विजुअल डिजाइनर, यूजर रिसर्च, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूएक्स राइटर, तो ये जॉब प्रोफाइल में आता है। तो जब आप इन चीज़ों को ले लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए, आपका रास्ता और अच्छी तरह से आप उड़ान भर सकते हैं इस करियर में। तो चलिए आप थोड़ी देर में बात करते हैं स्टार्टअप कौन कौन से हैं, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे आप अपने करियर को चुन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बात कर रहे हैं हम लोग UI UX डिजाइनर के बारे में। चलिए बात करते हैं करियर स्कोप किन किन जगह पे आपके लिए मिल सकता है, कहाँ कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आपकी लिए वेट कर रही है। तो आज हर कंपनी को UI UX डिजाइनर की आवश्यकता तो है ही है। सबसे पहला आता है IT कंपनियां, दूसरा आता है मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियां, ई कॉमर्स वाली कंपनियां, स्टार्टअप नए जो हो रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी, गेम डेवलपमेंट, सास कंपनियां और सरकारी डिजिटल भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। भारत में UI UX डिज़ाइनर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सारे जो अलग अलग मैंने स्टार्टअप्स बताए हैं, कंपनियां बताई हैं और विभाग बताएँ जहाँ पर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। भारत में औसत सैलरी 25,000 से 50,000 रुपये हर महीने की फ्रेशर के लिए है। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है और 1-2-3 साल का अनुभव होने के बाद ये सीधा दुगना हो जाता है, 50,000 से 90,000 रुपये हर महीने आपको मिल सकते हैं। फिर अगर आप सीनियर UI UX डिज़ाइनर बन जाते हैं तो भैया आपको 1 लाख से 2 लाख हर महीना आपको पेमेंट मिल सकता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात करें तो फिर वो अलग पैसे कमाते हैं और एक पूरे पैकेज में आता है, तो 1 साल का 2 साल का। तो साल का पैकेजिंग, ईयरली पैकेजिंग होता है जो 15 लाख से 25 लाख तक होता है। और आप फ्रीलांसर है तो फिर आप जो है ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना। हर प्रोजेक्ट के लिए आपको जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसे ही आप उसको फ्रीलांसर के रूप में पूरा प्रोजेक्ट आप लेके उनको फाइनल करके डिज़ाइन बना के दे देना होता है। तो इसमें 50,000 से लेकर 2 या 20 लाख तक का प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसा भी। अब ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है इसके ऊपर, जितना आपका स्तर है, आपका टीम कितना बड़ा है, आप कितना अच्छी तरह से काम फ्रीलांसर बन के करके दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं करियर के बारे में। तो UI UX डिज़ाइनर में करियर क्यों चुने, आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें ही क्यों जाए, तो क्योंकि भैया अब ये लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरा, शानदार क्रिएटिव फील्ड है, वर्क फ्रॉम होम के अवसर इसमें ज़्यादा है, हाई पैकेज है, फ्रीलांस और ग्लोबल जॉब्स यहाँ पर मिलते हैं, टेक प्लस क्रिएटिविटी का मिश्रण है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिविटी का मिश्रण बहुत सुंदर है। समाज के लिए उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ये समाज के लिए भी आपका एक सही दायित्व बनता है, तो इसमें समाज सेवा भी जुड़ा हुआ है। ये करियर उन लोगों के लिए है जिन्हें डिज़ाइन कला, क्रिएटिव सोच और तकनीक इन सब का संयोजन पसंद हो, है ना। तो इसीलिए भी आपके लिए ये करियर बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर स्कोप बहुत है, जैसे कि AI, AR, VR, स्मार्ट डिवाइस और मेटावर्क्स के आने से UI UX डिज़ाइन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले वर्षों में एक्सपीरियंस डिज़ाइन XD, वॉइस UX, मोशन डिज़ाइन और AI असिस्टेंट डिज़ाइन की भी मांग बढ़ेगी। तो ऐसे में डिज़ाइनर बनना आज के समय का सबसे बड़ा स्मार्ट और रचनात्मक करियर विकल्प है। ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि लोगों के जीवन को डिजिटल रूप से आसान बनाने की कला भी है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो लोगों के व्यवहार को समझना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो UI UX आपके लिए एक बेहतरीन और उभरता हुआ करियर है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे थे खास युवा यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में। कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस करियर में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जोनाथ आइव, ये जो है एक व्यक्ति है जोनाथ, इनके बारे में बात करते हैं। एप्पल के जादुई डिज़ाइनर कहते हैं इनको। जोनाथ आइव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट डिज़ाइनर में से एक है। एप्पल के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट, आईफोन हो, आईपैड हो, आईमैक हो और एप्पल वॉच हो, इन सभी का डिज़ाइन इनके द्वारा ही बनाया गया। जोनाथ छोटे थे तब उन्हें चीज़ों को खोलकर समझने की आदत थी। अक्सर रेडियो, पेन, खिलौने खोल देते और फिर उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ कर एक नई चीज़ बना देते। उनके पिता वुड वर्किंग और डिज़ाइनर सिखाते थे, इसलिए बचपन से ही डिज़ाइन की समझ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। करियर का मोड़ तब आया, उन्होंने डिज़ाइन में पढ़ाई की और कई सालों तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन असली सफलता तब मिली जब वे एप्पल कंपनी से जुड़े। उस समय एप्पल मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन स्टीव जॉब ने जॉन एलन की प्रतिभा को पहचान लिया था और फिर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। डिज़ाइन फिलॉसफी, जोनाथ हमेशा कहते थे सबसे अच्छा डिज़ाइन वही है जो देखने में जितना सुंदर हो, इस्तेमाल में उतना आसान भी हो। अब बात करते हैं उपलब्धियाँ इनकी, तो उन्होंने आईफोन का यूआई इतना सरल बनाया कि कोई भी बिना सीखे इस्तेमाल कर सके। एप्पल के सुंदर, सिंपल और क्लीन इंटरफेस को विश्व भर में पसंद किया गया। उनकी वजह से यूआई यूएक्स दुनिया में मिनिमलिज्म सबसे बड़ी डिज़ाइन ट्रेंड बन गया है। सी जोनाथन आइव की कहानी बताती है कि रचनात्मकता और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। उपयोगकर्ता की ज़रूरत को समझकर ही महान डिज़ाइन पैदा होते हैं। तो ये थी कहानी जोनाथन आइव की, एप्पल में जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है। अब बात करते हैं एक और शख्सियत की, जूली जो। जूली जो दुनिया की सबसे सफल यूएक्स लीडर में से एक है। वो फेसबुक, अब मेटा में 25 साल की उम्र में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मैनेजर बनी और फेसबुक के यूआई यूएक्स को दुनिया का सबसे इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जूली एक साधारण परिवार से जन्मी थी। उन्हें बचपन में ड्राइंग और लिखने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिज़ाइन में करियर बनेगा। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय उन्हें पता चला कि यूआई यूएक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रचनात्मकता का और टेक्निक दोनों का मेल है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको अच्छी तरह से सीखा। फेसबुक उस समय एक छोटी सी कंपनी थी। इंटरव्यू में जूली ने यूआई यूएक्स के बारे में गहरी समझ दिखाई और उन्हें नौकरी मिल गई। शुरू शुरू में उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ा और कई गलतियां भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गलतियां करते हुए सीखते गए और आगे बढ़ते गए। सबसे बड़ा योगदान तब आया जूली ने फेसबुक के न्यूज़ फीड और प्रोफाइल पेज के यूआई यूएक्स को नया रूप दिया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था ऐसा डिज़ाइन बनाना जिसे दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। उनके नेतृत्व में फेसबुक का इंटरफेस सरल, तेज और यूज़र फ्रेंडली बन गया। लेखन और अनुभव साझा जो है उनको अच्छा लगता था। जूली ने अपने अनुभवों पर एक मशहूर किताब लिखी और द मेकिंग ऑफ ए मैनेजर, जिसे दुनिया के यूएक्स डिज़ाइनर आज भी गाइड की तरह पढ़ते हैं। तो बात आती है कि जब आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल करते हैं तो उसी महारत को आप बुक में कंपाइल करते हैं, तो लोग जो आपकी तरह वो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए उनका किताब एक मास्टर गाइड बन जाता है। और मेकिंग ऑफ ए मैनेजर ये उनका मास्टर गाइड यूएक्स डिज़ाइनरों के लिए है। जूली की कहानी हमें ये बताती है कि चाहे पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लगन और सीखने की इच्छा आपको बहुत आगे ले सकती है, ले जाती है। यूआई यूएक्स में सफल होने के लिए उपयोगकर्ता के अनुभव को समझना सबसे ज़रूरी है। साथियों, इन दोनों कहानियाँ बताने का मतलब यही था कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन सिर्फ तकनीक नहीं, एक कला, शोध और मनुष्य को समझने की क्षमता है। जोनाथन आइव और दुनिया के सबसे सुंदर इंटरफेस बनाए, जबकि जूली जोहा ने अरबों लोगों के लिए फेसबुक का अनुभव आसान बनाया। दोनों ने साबित किया कि इस क्षेत्र में रचनात्मक सोच, उपयोगकर्ता की समय, मेहनत बहुत मिलाकर एक असाधारण सफलता को हासिल करती है। तो साथियों, ये थी कुछ खास बातें दो विशेष व्यक्तियों की कहानी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर की आपके लिए, ताकि आप इस फील्ड में कहाँ पहुँच सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। मेरी शुभ आशाओं के साथ छोटा नहीं बड़ा सोचिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि आप सफलता उसको सफलता आपको मिल सके और आपकी सफलता दुनिया के जितने भी यूज़र हैं उन सब की सफलता हो सके। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणेशा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और आप सभी को हमारा आदाब। हमें शरद त्रिपाठी, आपका आरजे, आपके फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। और जुनून में हमारे साथ हैं आज फिर से एक जुनूनी है और आप आते हैं अहमदाबाद गुजरात से। हमारे साथ हैं मिलन बुचीवाल जी। और मिलन बुचीवाल जी एक टाउन हीलर हैं, यूथ अवार्डी हैं, उनके बारे में हम जानेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में समझेंगे और उनके जुनून के बारे में जानेंगे। तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM में माउंट आबू की वादियों से और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से लाइव। और हर शनिवार 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। तो मिलन बुचीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम।
1: धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद।
0: आपकी जो जुनून की यात्रा है उसके शुरुआती दिनों में जब आप जुनूनी हुए होंगे या कहें कि आपके ऊपर ही टैग लग गया होगा कि ये तो जुनूनी है, ये किसी की नहीं मानेगा, तो वो क्या समय था और ये कहाँ हो रहा था?
1: तो शुरुआत तो अहमदाबाद से हुई थी और मेरी पैदाइशी हुई भी है बंगाल में। तो बंगाल में बोलते ना कि जो अगर आप पैदा ही होते हो तो आपके ख्याल थोड़े क्रांतिकारी तो होते हैं। सो ऐसा है। और जैसे आपने जो शब्द चुना जुनून, तो मैं इतना सही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में जुनून है तो सुकून है। अगर आपके जीवन में जुनून नहीं है ना तो आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज है। तो मुझे वो सुकून चाहिए था, तो हर बार कुछ ना कुछ जुनून जीवन में आता गया। और हर चीज को अगर आप जुनून बना लेते हो तो फिर वो आशीर्वाद स्वरूप उसका फल इतना अद्भुत मिलता है कि आप बताए नहीं। तो मुझे क्लाउनिंग का बहुत शानदार अद्भुत एक्सपीरियंस मजा आता था कि जब हम लोग शुरुआती दौर से मेरी सोशल एक्टिविटीज में आने की क्लाउनिंग से हुई थी कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जो कैंसर अफेक्टेड बच्चे होते थे वो उनको हॉस्पिटल में, अभी कोरोना आया तो हमको पता चला कि घर में कैद रहना कितना टफ होता है। तो ये तो मैं आज से 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब छोटे बच्चे हॉस्पिटल में 15-15, 20 दिन, 25-25 दिन, महीने 2 महीने, तो हम लोग बैलून लेकर के उनके पास जाते थे और अपने आप को जोकर बना लेते थे और उनके साथ में खूब, मतलब 2-3 घंटे खेलते थे, मस्ती करते थे। तो बस वहां से सोशल वर्क में आना शुरू हुआ, तो उनको बहुत मजा आता था। फिर हम नहीं जाते थे तो वो बोलते थे, अरे ये शनिवार को भैया लोग नहीं आए, हम लोगों ने खेला नहीं, मजा नहीं आया। तो इस तरीके से लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो वहां से शुरुआत करी। तो किसी ने बोला कि नहीं यार ये एक्टिविटी करते हैं। फिर हमने रंग रोगन का काम किया शहर के अंदर में, आर्टिस्ट लोगों ने मिलकर के, जहाँ पे भी जो गंदगी वाली दीवारें होती थी, रंग दे बसंती था हमारे उस प्रोजेक्ट का नाम। तो वो जो 15-20 दोस्त मिल गए थे, हम लोग एक दूसरे के जुनून को फुलफिल करने में लग गए थे। किसी को क्लाउनिंग पसंद है तो बोलता है यार मैं क्लाउनिंग करूंगा, तो ठीक है हम तेरे लिए आ जाएंगे। किसी ने बोला अरे यार मुझे वो गंदगी साफ करनी, अच्छा ठीक है हम फावड़ा लेकर के आ जाएंगे, दीवारें रंगनी पोतनी है तो आर्टिस्ट बुला लेना। तो हम लोग ने शनिवार और रविवार हमारा डेडिकेटेड ही कर लिया था इस चीज के लिए ही। इसी टाइम के अंदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा था। बैंगलोर के अंदर में था मैं, और मैं तो गया था घूमने के लिए, और वहां मैंने देखा कि एक बच्चा हथौड़ी लेकर के पेड़ों में से खील निकाल रहा है। वो नेल्स होते हैं ना, अचंभित हुआ। मैंने बोला यार ये क्या कर रहा है? तो बोला नहीं मैं कुछ नहीं, मैं पेड़ नहीं लगा सकता, पर मैंने सोचा कि यार पेड़ों के अंदर में लोगों ने नेल्स बहुत लगा दिए हुए हैं, तो इनको भी दर्द होता होगा, या फिर ये है तो आयरन रस्ट, तो अगर रस्ट के कारण उसको जख्मी हो जाता है तो मैं ये निकालने का काम करता हूँ। यार अद्भुत बात है। और उसके साथ में अचंभा ये हुआ कि इतना अच्छा कार्य करने के टाइम पे भी कोई उसके साथ में नहीं था। ठीक है चलो मैं जुड़े जाता हूँ। और हमने ऐसे करते करते लगभग उस दिन 12-13 पेड़ में से पूरी खील निकाल करके उसको हील करके ठीक किया। मैं बोले अब कब आना है? तो बोले भैया अगले शनिवार को। फिर हम चले गए। अगली बार मैंने 5-6 दोस्तों को उठा लिया क्योंकि वही जुनून वाला हौसला था। तो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत, एक हथौड़ी चाहिए होती है, तो वो हर शनिवार की मेरी आदत बन गई थी क्योंकि बैंगलोर में शनिवार रविवार छुट्टी होती थी
0: जी।
1: अब आप मानेंगे नहीं, वो 3-4 वीक तो मेरे साथ में आया, 3 या 4 वीक तक हम रेगुलर आया। 5वें-6वें वीक मैंने सोचा अगर वो नहीं है तो मैं तो काफी टाइम के लिए था, तो मैं खुद चला गया। फिर मैंने फोन किया, मैं बोला भाई, अरुण नाम था उसका, बोला अरुण भाई आप क्यों नहीं आए हो? बोले भैया मेरी जॉब लग गई है, और तब मैं फ्री था तो मैं ये काम कर रहा था, पर अब मेरी जॉब लग गई है तो अब मैं तो नहीं आ पाऊंगा।
0: जी
1: मैंने बोला यार ये गजब बात है। बोले तो फिर, बोले नहीं मैं तो फ्री था तो मुझे लगा मैं फ्री बैठे बैठे क्या करूं, मैं ये पेड़ों को हील कर देता हूं, मैं रेगुलर, तो अब तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको करना है तो आप चालू रखो। तो
0: जी
1: सोचो कि जो अब आपको कुदरत आपको निमित्त बनाने वाली होती है, इनको कहीं से भी कुछ ना कुछ तो वो संयोग स्थापित कर ही देती है। तो
0: जी
1: बस वो संयोग इसी तरीके से स्थापित हुआ, और मेरे को लगा कि नहीं यार इस प्रोजेक्ट को थोड़े और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। और उसके बाद में फिर अहमदाबाद से शुरुआत करी, बैंगलोर के अंदर में अलग अलग जगह लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ों को इस तरीके से हमने मुहिम छेड़ करके, और पेड़ों में से कील और जो भी एक्स्ट्रा ट्री गार्ड होते हैं तो वो सब अंदर चला जाता है, तो उसको गैस कटिंग से निकाल करके पेड़ों को एक अभियान से कीलों से और रेलिंग से मुक्त करने का काम किया। तो
0: क्या
1: बस के बाद में संस्था ने मुझे नवाजा।
0: बात, क्या बात। तो आपकी बातचीत में एक बात निकल कर आई कि मैं उस समय फ्री था इसलिए कर रहा था।
1: हाँ
0: हाँ जी। तो यहीं पर जुनून की बात आ जाती है कि वो क्या जुनून है, ऐसे कैसे ये आदमी को अपने पर हावी हो जाता है, कैसे हमारे मस्तिष्क में जुनून आ जाता है, आपको ये जुनून कहाँ से मिला, किसी
1: मुझे
0: को
1: तो
0: देखकर या अपने आप ही आया? क्या
1: अपने आप ही,
0: प्रॉब्लम,
1: मुझे
0: तो मैं वो प्रोसेस समझना चाहता हूँ आप जैसे एक समझदार व्यक्ति से जिसने जुनून खुद देखा है, और अब तो आप एक नहीं दो जुनूनों पे काम कर रहे हैं।
1: मैं लगभग 20 से ज्यादा जुनूनों पे काम कर रहा हूं।
0: क्या बात है, फिर तो आप जुनून मैन हो गए।
1: यही चीज मैं बोलता हूँ ना कि आप सोच लो ना तो माता रानी सब कुछ निमित्त तो कर ही देती है। और
0: जी
1: मेरे सारे, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा चोर हूं,
0: जी
1: मेरे से अच्छा चोरी कोई नहीं करता है।
0: जी
1: और मैं क्या चोरी करता हूँ, मैं आइडियाज चुरा लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि यार आप ही अच्छा काम कर रहे हो ना, चलो ना मैं भी करूंगा।
0: जी
1: यही चीज, अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे होंगे ना, मैं बोलूंगा कि यार मैं आपसे इंस्पायर हो गया हूँ, अब ये काम मेरे को भी आप या तो साथ में जोड़ लो, या फिर यही चीज आइडिया मैं कहीं ना कहीं रेप्लीकेट कर लूंगा। और एक बहुत अच्छी पिक्चर है, वैसे मैं बहुत सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब
0: जी
1: सलमान खान का नहीं, सलमान खान की पिक्चरों का। तो जो रियल लाइफ
0: हाँ
1: वाला सलमान खान है वो थोड़ा मेरे को कम पसंद है, पर वो रियल लाइफ के अंदर में है ना,
0: हाँ
1: उसमें बहुत अच्छी पिक्चर है किक। जैसे आप वर्ड यूज करते हो ना जुनून, वैसे वो पिक्चर है किक। तो मैं लोगों को
0: हाँ
1: ये यार मेरे को किक नहीं मिलती है, मतलब
0: हाँ
1: तो वो
0: जी
1: तीन काम तो आप आसान से कर लोगे, एक जीवन मिला है आपको, उसमें अगर आप एक ही चीज करते रहे, चलो आप उसमें निपुण बनते हो निष्ठावान बनते हो वो अच्छी बात है,
0: जी
1: पर अगर आप अपना भाव थोड़ा और उजागर करोगे ना तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। और कोई भी सारी चीजें, गुण कैसे सीखने चाहिए ना, उसके लिए कृष्ण भगवान को आपको आदर्श मानना चाहिए। 64 गुण से वो निपुण थे, तो
0: जी
1: आपको एक अच्छा नृत्यकार भी होना जरूरी है, आपको अच्छा संगीतकार भी अच्छा, आपको खाना भी अच्छा बनाना आना चाहिए, आपको बातें भी अच्छी करनी आनी चाहिए, सब चीज का जीवन के जो नवरस है ना उस सब चीज में आपको एफर्ट डालने चाहिए। और आप माता का आशीर्वाद रहेगा, आप दिल से करोगे ना तो बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। तो वही सोशल वर्क के वो एंगल तो था ही कि हाँ एक जीवन मिला है तो समाज को थोड़ा सा, ज्यादा आप बदलाव नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा भी अगर आप किसी एक की भी जिंदगी बदलोगे ना तो आपको वो अपनी जिंदगी बना लेगा। तो मेरे को दुनिया की जिंदगी नहीं बदलनी है, पर किसी एक की पूरी दुनिया बदल देनी है। तो जिससे भी अगर जुड़ते हैं बस आप कोशिश करते रहिए, रिजल्ट पे आप फोकस मत करो कि यार आज मैंने क्या बड़ा कर दिया या कुछ, आप एक के लिए भी मदद कर रहे हो ना। जैसे हम लोग सेंचुरियन डोनर हूं मैं, मतलब 180 बार ब्लड और एसजीपी डोनेट किया हुआ है।
0: जी
1: तो मुझे लोग वो बोलते हैं यार क्या मिलता है तुमको, मैंने बोला यार मेरे को कुछ नहीं मिलता, मेरे को मजा आता है।
0: जी
1: पर वो जो बंदा, उसको समय पर खून मिल गया या एसजीपी मिल गया, उसकी पूरी जिंदगी उसने वो झेल ली होगी।
0: जी
1: तो छोटा छोटा से ही आप काम करते हो ना, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, आप छोटा छोटा काम करो, बहुत बहुत आनंद आएगा। और वही एक किक मिलेगी आपको, वही जो जुनून होगा तो सुकून होगा।
0: जी, तो जुनून से सुकून तक की यात्रा हम देख रहे हैं, और सुकून के ही पलों में आप साउंड हीलिंग के की सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो उस
1: जी
0: पर भी हम आपसे बात करेंगे तफसील से। तो जो जो श्रोता अभी हमसे देरी से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ मिलन बुचीवाल जी हैं, जो अहमदाबाद से आते हैं, आप राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं, और इसके साथ साथ आप एक जुनूनी हैं, और जुनूनी होने के साथ साथ आप लगभग आप 20 से ज्यादा शेड्स में काम कर रहे हैं सोशल सर्विस को लेकर। तो वो अभी हम कुछ तो जान पाए हैं, जैसे आपने इशारा किया कि आप वंदे बसंती एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और मैं दिल्ली में जब था मिलन जी, तो आपको बताऊं कि जो ओवर ब्रिजेस होते हैं उनके जो अंधेरे कोने होते हैं, उनमें 8 गैलरीज डेवलप की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन को श्रेय भी दिया जा सकता है, इस मंच पर बात की जा सकती है उनके साथ में भी। तो
1: जी
0: उस 8 गैलरीज में उन्होंने बहुत सारी एक अच्छी रोशनी की व्यवस्था कर दी, और अपनी कुछ कलाओं को वहां पर प्रस्तुत किया डिफरेंट डिफरेंट शैली में, तो बस लोग वहां पर जुटने लगे देखने के लिए। तो वो और वो अंधेरे कोने जो शायद अपराधों के लिए काम आते थे, वो रचनात्मक तरीके से काम आने लगे। तो शायद कुछ ऐसा ही आइडिया पे आप भी काम कर रहे होंगे, क्या अनुभव रहा है इस दौरान?
1: अनुभव बहुत शानदार रहा, और जिनको पेंटिंग नहीं आती थी ना, वो भी अपना हौसला लेकर के आ गए थे कि चलो हम आर्टिस्ट जितना अच्छा पेंट नहीं कर सकते, पर आर्टिस्ट को पेंट करने के लिए बेस तो चाहिए होगा ना, उसके आजू बाजू की जगह तो साफ सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। और लोग हमेशा बोलते कि अरे यार मेरे पास फंड नहीं था, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे आ जाते ना तो मैं और भी अच्छा काम कर सकता था। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, क्या पता शायद वो फंड भी आप ही का इंतजार करोगे, यार तुम कुछ काम करने लगोगे ना तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
0: क्या बात है जी
1: तो आप मानोगे, एक भी प्रोजेक्ट में मैंने आज तक कभी किसी को हाथ नहीं फैलाया कि यार मुझे पैसे चाहिए होंगे, और चाहिए भी नहीं होते। आप मानोगे नहीं, हमने लगभग 200 से ज्यादा जगहों को तब्दील किया होगा अहमदाबाद के अंदर में। हम लोगों को बोलते हैं कि यार प्लीज तुम इस समय पे आना, पेंट वाली कंपनी सामने से आके बोलती है कि यार ये हमारे पास में रहा 100 लीटर 200 लीटर, जो भी आपको पेंट चाहिए आप आके ले जाना। आजू बाजू के कैफे वाले होते हैं वो सामने से बोलते भैया इतनी सारी भीड़ आएगी, हमारा एक पोस्टर लगा देना, आपके लिए नाश्ता हम भेज देंगे।
0: जी
1: जो खुर्ची और कुर्पी चाहिए होते हैं वो सब लोग अपने आप ले करके आ जा रहे होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो अभी तो खैर मैं तो उस जमाने से हूँ जब मैं लोग बोलते थे या तो तुम चुरकटों में हो या ऑर्कुटों पे हो ऐसा है तो मैं तो वो ऑर्कुट के जमाने वाला हूँ, वो इंस्टाग्राम फेसबुक तो अब नई तकनीकें आ चुकी है तो लोग थोड़ा सा और चीजों को बड़े पैमाने पे लेके चले जाते हैं। तो हम वही ऑर्कुट का इस्तेमाल करते थे और लोगों को बोलते थे कि मुहिम छेड़ी है तो आप आना, और कंपनी बोलती थी कि यार आप नाम लो ना लो वो आप पे जाना जाएगा। तो बस इस तरीके से पूरा एक माहौल बना। फिर म्यूजिशियंस आ जाते थे कि आप लोग, हमको आर्ट तो आता नहीं है, हम वहां पे बैठ के गाना बजाना करते रहेंगे तो एक अच्छा माहौल जम जाएगा। तो सोचिए और क्या चाहिए मुझे, ना मैंने पेंट के पैसे दिए, ना चाय नाश्ते के पैसे दिए, ना वो संगीतकारों को कोई पैसे दिए, सब अपने अपना टैलेंट लेकर के आए थे और वो इवेंट पूरा अच्छा बन
0: जी
1: गया। तो ऐसे अलग अलग अलग अलग अलग सोच चलती रही। तो हमारे यहाँ पे नैन्सी करके बंदी थी, नैन्सी का ये प्रोजेक्ट था, और वो भगत सिंह साहब को बहुत अच्छा, मतलब बहुत धुनी बच्ची थी, तो उसने वही बोला कि यार मेरे को रंग दे बसंती नाम रखना है, और ये जितना भी शहर गंदा है ना, मतलब इतनी जुनूनी थी कि उसका तो बस चलता तो वो रातों रात पूरा शहर तब्दील कर देती।
0: बढ़िया। तो ये रंग दे बसंती की कहानी के लिए हम कभी नैन्सी से भी बात करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और दूसरा, ये जो पुरस्कार आपको राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया, ये क्या काम कर रहे थे? आपने बताया, इशारे में तो बताया आपने कि आप पेड़ों के साथ काम कर रहे थे, उनके आसपास जो जिस गिरफ्त में थे उस गिरफ्त से उनको आजाद दिल करा रहे थे। तो क्या लर्निंग रही और क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, उपलब्धियां रही इस बीच में, इस पूरी प्रक्रिया में?
1: तो क्या होता था,

0: जाने अनजाने में लोग जो पेड़ों को भी है ना एक एडवर्टाइजमेंट का माध्यम बना दिया था, अब थोड़े खैर कम हो गए हैं। तो लोग क्या करते थे कि कील से नेल से इंटैक्ट करके पेड़ों पे अपने एडवर्टाइजमेंट भर भर के लगा देते थे, पीजी के, स्कूल के, इसके, उसके, सब चीज के। अब वो एक बार लगाया जाए तो समझ में आता है। अब एक पेड़ पे कम से कम 250, 300, 400 कील से पूरा ठोक ठोक करके वो बोर्ड, पूरी जो उसकी ट्रंक है उसको बर्बाद तहस नहस कर देते। अब होता क्या है कि है तो वो लोहा और लोहे में लगती है जंग, और वो जंग के कारण ट्री का जो पूरा ट्रंक है ना वो कमजोर हो जाता था। अब उससे क्या होता था, आपका जो तना अगर कमजोर हो गया है तो हल्की भी बारिश या फिर थोड़ी भी आंधी टाइप की आती थी तो वो पेड़ गिर जाता था। तो ये जो किस्से हमने अभी सुनने बहुत ज्यादा हो गए कि हाँ हल्की बारिश आई और फलानी जगह के 20 पेड़ गिरे, कारण उसका यही होता है कि आपका जो तना है पेड़ का वो बहुत कमजोर हो गया होता है वो लोहे की जंग के कारण। आपके शरीर के अंदर में भी जैसे हमको अगर लोहे का कुछ लगता है तो पहला हम बोलते हैं यार टिटनस का इंजेक्शन ले लो, नहीं तो जंग के कारण सेप्टिक हो जाएगा। सो वैसे ही वो सेप्टिक पेड़ों को हो ही जाता है। अगर आप देखेंगे तो छाल से जब आप कील निकालेंगे तो एक अद्भुत करुणा का आभास आपको होगा। तो वो चीज को खत्म करने के लिए हम लोग जितने भी पेड़ों से वो कील निकाल करके फिर एक वैक्स बना करके नेचुरल पद्धति से कैसे हम लोग कुदरती तरीके से वो पेड़ को हील कर सकते थे, तो वो हील करने का काम हम लोग, क्योंकि क्या होता है घाव होता है अगर वो वहां पे से अगर हमने उसको भरा नहीं तो वहां पे फंगी लगने का चांसेस हो रहे होते हैं, वो फंगस के कारण फिर वो दीमक और सब पेड़ को खोखला कर देगी। तो वैक्स आता है, वो वैक्स के थ्रू से कील निकाल करके वो वैक्स से कील को वो छेद को भरना होता है। तो ऐसे लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ों को अलग अलग शहरों में जा करके लोगों को जागरूक करके हमने पेड़ों को बचाने का एक छोटा सा अभियान 2016 से शुरू किया था। आशीर्वाद ये है कि अब वो अभियान को बहुत ज्यादा उग्र कार्यशैली में करने की जरूरत एटलीस्ट गुजरात में तो मुझे नहीं पड़ी ऐसा, बिकॉज अब सरकार ने ही यहाँ पे बैन करके रखा हुआ है कि अगर आपका लोकल म्युनिसिपैलिटीज में से हमने फरमान जारी करवाया कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट पेड़ों पे दिखाई देगा तो एक अच्छा खासा दंड आपको भरना पड़ेगा। तो लोकल बॉडी से अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है।
1: जी, और हमारे देश में लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम भी काम कर रहा है,
0: जी
1: और पेड़ हमारी लोक संपत्ति है,
0: जी
1: निश्चित
0: जी
1: रूप से अगर उसको कोई खराब करेगा तो उस अधिनियम की धाराओं में उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई भी बनती है।
0: तो वही वही चीज था ना कि कुछ अपराध जानबूझकर होते हैं, कुछ अनजाने में भी हो जाते हैं। जैसे बाद में हमको पता चला कि जैसे म्युनिसिपैलिटी भी अगर पेड़ लगाती है तो आप देखेंगे वो लोहे की जाली लगा देती है ताकि गाय या कोई पशु आकर के उनका विनाश ना कर दे। अब वो जाली लगा तो देते हैं पर पेड़ तो पेड़ है, वो तो बड़ा होगा, एक समय पर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जाली उसके अंदर चल जाती है। तो फिर उसके बाद में हमको बताया कि अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो एक उसका ये भी देखो कि एक टाइम के बाद में आपको वो जाली निकाल लेनी हो रही होती है। तो अब गुजरात में तो खैर अच्छी बात ये है कि अब उन्होंने वो जाली फाइबर वाली लगाने शुरू कर दी है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही लोहा तो क्या होता है टूट नहीं पाता, अंदर सिकुड़ जाता है ना, ये वाला सिस्टम ऐसा है कि जैसे पेड़ बड़ा होता है वो जाली अपने आप फट जाती है। तो फाइबर की होती है, लॉक लगे हुए रहते, तो पेड़ का तना तो जैसे ही फैलता है तो वो अपने आप निकल जाता है। अगर कोई भूल भी गया हो भूल से कि ये ट्री गार्ड हम कैसे निकाले तो वो अपने आप निकल जा रहा होता है। तो संस्थाएं हैं अगर आपको उनको भी आप समझाते, जैसे ट्री गार्डनिंग बैरिकेडिंग जो होता है अभी सब क्या करते हैं वो पाइवोटल्स उनके मिट्टी के पूरे बना देते हैं। अब उससे क्या होता है वो करना चाहते हैं कि वहां पे आके बैठ सके लोग और अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सके, या फिर चबूतरे जैसा बना करके वहां पे गाय के लिए रोटी या फिर पक्षियों के लिए अनाज डाल सके, तो अब उससे होता है क्या, जाने अनजाने के अंदर में कि हम पेड़ को पानी देने का रास्ता ही जो है वो खत्म कर देते हैं। सो हमने उनको समझाया कि अगर आपको ये बैरिकेडिंग कर रही है या पाइवोटल्स बनाने हैं तो आप थोड़ी जगह ऐसी रखें जो जमीन दोस्त हो, ताकि बारिश का पानी या किसी को पानी ना तो चाहिए ही ना, मतलब सबको स्रोत तो चाहिए जीवन का। तो ये छोटी छोटी चीजों का अभियान हमने छेड़ा था और एक अच्छा मार्गदर्शन मिला सारे दोस्तों का, अनुभवी लोगों का, और कार्य प्रणाली को हमने थोड़ा सा और विस्तृत करने की कोशिश करी तो अच्छा रिजल्ट आया। अब पेड़ गिरने कम हो गए और लोगों को और अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ नई सोच नई विचारधारा पे भी काम हुआ।
1: जी श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं मिलन बुजीवाल जी जो अहमदाबाद से आते हैं और आप उनको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के अपने फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। तो मिलन जी से हमारा मिलन आज हो ही गया और इस मिलन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिल रही हैं। तो इस अभियान का क्या नाम रहा, ये अभियान किसी बैनर के तले रहा या एक इंडिविजुअली आपने वॉलंटियर्स की टीम के माध्यम से किया? और आपको बताऊं मिलन जी, और आपको बताऊं कि दुनिया को बदलने में वॉलंटियरिज्म का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। और लोग कहते हैं कि दुनिया को वॉलंटियर्स बदलते हैं ना कि शासक या राजनेता। जी आपका क्या मानना?
0: बिल्कुल सही बात है, और आपको सिर्फ सोच से जुड़ना होता है और आप मानेंगे नहीं कि वो पहला कदम उठाना ही टफ है। आप वो पहला कदम एक बार उठा लेंगे क्योंकि हर वो बंदा संकोच में है कि यार मैं वो काम करूं या ना करूं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना मजाक मजाक में कि यार मैं बहुत अच्छा चोर हूँ, वो पहला कदम उठाना मेरे को बहुत अच्छा आता है। तो जो भी आइडिया अच्छा लगता है मैं उसको, आप कुछ नहीं दे सकते किसी को तो एक उत्साह दे दो। वो उत्साह ही इतनी अद्भुत चीज है ना, फिर लोग वो प्रोजेक्ट को अपने आप आगे ले जाएंगे। तो सेव द ट्री भी यही चीज था कि हमने इसका नाम बहुत सिंपली रख के रखा सेव द ट्री, क्योंकि हम पेड़ को बचाते और कुछ करते नहीं है, तो बहुत अतरंगी नाम रखने का दिमाग चलता नहीं क्योंकि ज्यादा बड़ा दिया नहीं है भगवान ने, बहुत छोटा सा दिमाग देके रखा हुआ है
1: जी।
0: तो और जितना सरल होता है ना उतना संचय होता है कि हाँ इसको रखा जा सकता है दिमाग में। इतनी मेरी 1 TB या 5 TB की मेमोरी है नहीं, 512 MB का ही है मेरा दिमाग, तो जितना चलता है उतना चला लेता हूँ। तो इस तरीके से हुआ था और बस लोगों से बात करी और जो भी थोड़े आरजे थे अहमदाबाद के, मीडिया थी, तो उनसे हम लोग यही रिक्वेस्ट करते थे कि ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं, आप सिर्फ आपको अच्छा लगता है तो आप अपने न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में इसका आर्टिकल डाल दीजिए, तो अगर किसी को जुड़ना होगा तो वो अपने आप हम लोग से संपर्क में आ जाएगा। क्योंकि अच्छा कार्य होता है ना तो जुड़ना सबको होता है, पर वो यही सोचता है कि यार मैं कहाँ कनेक्ट हूँ। तो हम लोग वो अवेयरनेस के लिए लोगों को बोल देते कि यार आज के टाइम के अंदर में जैसे मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मुझे तो डोनेशन मांगने का अधिकार है। मैं हमेशा मजाक मजाक में बोलता हूँ कि यार मेरे को तो दान मांगने का कुदरती और कार्मिक आधार है मेरा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये भी दान स्वरूप ही होगा कि अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ अच्छा रखा है तो उसका शेयर का बटन आप दबा दो, उसको भी मैं दान स्वरूप ही मानूंगा। और वो भी आपको 11 गायों का जो दान आपने किया ना उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, ये एक ब्राह्मण का वचन है। तो वो इतनी सरल भावना के कारण बोले हाँ ठीक है चलो अच्छी चीज शेयर ही कर देते ना। अब उनके नेटवर्क में शेयर होती है, बात लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को लगता है हाँ यार इस चीज से जुड़ सकते हैं, ये सरल सा काम है, ये कर लेते हैं। बस इस तरीके से ही हम लोगों को जोड़ते गए और अलग अलग चीजें होती रही। एक बहुत अच्छा इसी अनुभव के साथ में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने किया था जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके एग्जाम के पेपर लिखने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और आज भी ये बहुत बड़ी दिक्कत है।
1: क्या
0: इतने हुनर वाले बच्चे होते हैं, इतने अच्छी पढ़ाई करी भी होती है पर एग्जाम का पेपर उनको लिखना पड़ रहा होता तो उनको राइटर की जरूरत पड़ रही होती है। और कुछ बच्चे हमेशा सदमे में रहते हैं कि अरे यार मैंने पढ़ लिया है सब कुछ आता है मेरे को, मैं लिख पाऊंगा या नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा विद्युत करके बच्चा है, उसने बोला बोले भैया अगर आप मदद करोगे ना तो मैं ब्लाइंड पेपर्स के बच्चों के एग्जाम लिखने के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो आज भी अहमदाबाद के अंदर में हम हर रोज लगभग 150 से 200 ब्लाइंड बच्चों के पेपर लिखने के लिए जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरी टीम अलग अलग जगह, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही होती है कि हाँ यार ये पूरा लिस्ट बनता है, इस फलाने बच्चे का एग्जाम का सेंटर ये है, तो नवीन भाई उसका एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे तो एक बंदा नवीन को बताएगा कि नवीन भाई तुम्हारा सेंटर यहाँ पे है और तुमको आशीष का एग्जाम लिखना है, इस तरह के पूरे क्यूरेटेड वे। एक भी बच्चा जो थोड़ा भी भले उसको कुछ नहीं आता हो पढ़ना लिखना, और उसको एग्जाम देने की इच्छा अगर जागृत हुई भी है तो उसको जितना आता है उतना लिखने के लिए राइटर उसको मिल जाएगा। ये एक्टिविटी काफी, ये भी मेरे को बहुत दिल से छुई हुई है कि हाँ यार एटलीस्ट किसी को, ये तो नहीं था कि यार मेरे को आता सब कुछ था पर मेरे को लिख नहीं पाया।
1: जी, और बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड व्यक्ति मैं समझ सकता हूँ इस बात को। मेरी परीक्षाओं के दिनों में मुझे कितना स्ट्रेस होता था ये मुझे मालूम है।
0: अच्छा?
1: जी जी जी जी जी जी, तो मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ, और इसको लेकर स्क्राइब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को उतना ही दिखा सके जितना आप हैं।
0: जी जी जी जी, हाँ
1: मैं भी इस मुहिम को लेकर सपोर्ट करता रहा हूँ और अपने शहर में कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है या जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पर कुछ कर सकूँ। तो मैं मज़ा आ गया इस बात को लेकर कि भी आपने इसको भी लेकर भी आपने एक पहल की, इस अभियान को भी कुछ आपने नाम दिया या ये
0: नहीं कुछ नाम नहीं कुछ ना, वो शेक्सपियर ने बोला ना नाम में क्या रखा है, वो पता लगा उन्होंने नीचे अपना नाम लिखा है। हमने सिंपल की ब्लाइंड स्टूडेंट्स के एग्जाम लिखने हैं तो आप आ जाइएगा, अद्भुत। और यही ये जो आपने बात बहुत अच्छी करी, कुछ बच्चे ऐसे बोल देते कि अगर आपको आता है तो आप लिख दो, तो हम लोग बहुत रिक्वेस्टफुली बोल देते कि यार प्लीज ये मदद मत करना, बिकॉज क्योंकि शायद कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसने अपनी मेहनत का ही लिखवाया हुआ होगा, तो उसके साथ में ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको आता है तो आप पूरा पेपर भी शायद लिख दोगे या फिर आप एक एहसान कर दोगे उसके ऊपर, पर आप उसको कोई काम नहीं आने वाला है उसके, क्योंकि उनके पास में पूरे साल एक ही चीज का काम है कि वो पढ़ाई करे अच्छे से, जितना उनको आता है तो उतना ही आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा
1: रिक्वेस्ट है, एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात है जो हमारे वॉलंटियर में होनी चाहिए। हम सभी बच्चों के साथ भी न्याय कर पाएंगे और उन बच्चों के बीच में आपस में भी न्याय कर पाएंगे।
0: जी,
1: ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक बेहतरीन बात। अब हम आपकी एक और दूसरे जुनून की तरफ बढ़ते हैं जो शायद स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, या कहें तो ऐसा काम है जो हीलिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब सेवा का काम है, मानवता की सेवा का काम है एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस विधा को लेकर आपने कैसे शुरुआत हुई और इसकी दुनिया के बारे में बताइए ना थोड़ा सा, क्या है ये?
0: तो मेरा बैकग्राउंड, मैं पहले बजाया करता था गिटार, मैंने जिंदगी के लगभग 10 साल मैंने गिटार की सेवा वेस्टर्न म्यूजिक में अपना समय बिताया
1: जी।
0: और उसके बाद में वो बहुत शोर शराबे वाला जीवन था, मतलब आप रॉक बैंड में होते हैं और आप मतलब इतना डिस्टॉर्टेड म्यूजिक आप बजाते हो और आप सुनते हो ना, तो अच्छा था वो भी एक अनुभव, अच्छा अनुभव था। मैंने बोला जीवन के नव रस होते हैं, सब रस का एक अपना ही मजा है, पर कहीं ना कहीं वहां से अपने आपको आजाद करके मैंने सितार को अपनी सेवा देने की कोशिश करी और लगभग 6 साल सितार सानिध्य में मैं रहा, और फिर उसके बाद में कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सितार के साथ में आने से ही हुआ कि अलग अलग स्पिरिचुअल हीलर्स से मैं मिला। और फिर एक बार मैं ट्रिप कर रहा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ पे भालुकपोंग नाम की एक जगह है, हाँ, तो वहाँ पे मेरा परिचय हुआ हिमालयन गोल्स से, और बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा कि जैसे जल तरंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे कांसे के 5 धातुओं के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उससे आप डीप मेडिटेशन करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स फिर उसमें ऐड होते हैं, उसमें रैटल्स ऐड होती है, मतलब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी आपको मिलेंगे नहीं, ये हाथ से खुद ही आपको बनाने पड़ते हैं अलग अलग चीजों उसको मिला करके। क्योंकि संगीत से अनुभव था और स्पिरिचुअल वर्ल्ड थोड़ी प्रेरणा स्वरूप था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ताकत है, तो मैं ये ताकत में जरूर मानता हूँ कि कुदरत में मैं जैसे ये पेन अगर मुझे दे दिया गया है, अगर ये पेन मुझे बोला जाए कि एक घंटे ऐसे पकड़ के रखना है, ये मैं पेन कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये शायद मुश्किल से 15-20 ग्राम का पेन होगा, पर कहीं ना कहीं ये इतनी इतनी बड़ी जो पूरी माँ हमारी धरती है, ये बिना किसी सहारे के खड़ी अपने समय से घूम रही है, सारे के सारे जो पर्यावरण है, नीति नियम, आप 1-2 घंटा शायद लेट हो जाते होंगे उठने में, छुट्टी भी मना लेते होंगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर में, और जो कुदरत ने अपने साइकिल बनाई हुई है उसमें किसी की कोई छुट्टी नहीं है, और अनंत वर्षों से, तो आप मानो या ना मानो कुछ तो पावर है, कुछ तो शक्ति है जो ये सारी चीज को नीति और निमित्त दोनों ही साक्षर कर रही है। बस वो खोज के अंदर में लग गए, और कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कुछ आप जीवन में करते हो और आपको पता ही नहीं होता है कि यार ये कैसे हो गया। अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दूं तो भारत पाकिस्तान का मैच था, विराट कोहली, हम सब जानते हैं कि विराट कोहली को हम सिक्स मारने में कभी फेमस नहीं है, वो चौके बहुत अच्छा मारते हैं, कवर ड्राइव बहुत अच्छा मार रहे होते हैं, पर वो हाफिज भाई साहब को जो उन्होंने सामने छक्का मारा था, वो आज भी उससे अगर पूछो इंटरव्यू, बोलते यार मुझे नहीं पता है कि वो सिक्स कैसे लगा था, बस कोई चमत्कार था वो, उस दिन वो लग गया। आज अगर अब आप मेरे को वापस से बोलोगे ना, और ये खाली नहीं कि बड़े बड़े लोगों के जीवन के अंदर में ही, सूर्य कुमार यादव को आज भी अगर आप पूछोगे ना यार वो कैच कैसे किया, उसने बोला था कि मैंने प्रैक्टिस करके रखी हुई थी, पर उस टाइम पे कैसे हो गया उसी क्षण के अंदर में। तो ऐसा आपके जीवन में भी बहुत बार हुआ हुआ होगा कि सब आपने अपने जो भी कुल है, जो भी भगवान में आप मानते हो, आप अल्लाह में मानते हो, आप यीशु में मानते हो, या आप भगवान में मानते हो, माता रानी में मानते हो, किसी में भी मानते हो, किसी भी जीवन में जो साक्षर रूप आप मानते होंगे, वो यथाशक्ति आपके जीवन में स्तोत्र रूप आकर के आपको मदद करता है। आपको लगता है कि यार ये शायद नहीं होता, पर कुछ तो मैजिक हुआ और ये हो गया। तो बस उसी चीज के साथ में मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ मेडिटेशन के थ्रू से, और अध्यात्म से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ कि यार ये शक्तियों को जितना और अनुभव कर सकूं, क्योंकि लाइफ में एक ऐसी चीज जो अगर मैं बोलूंगा ना कि आपके जीवन में वो होना ही चाहिए, वो है बिलीफ। आप कुछ भी चीज अगर आप सोचते हो कि आप जर्नलिस्ट बनोगे, तो आप पहले जर्नलिस्ट अपने दिमाग में बन जाते हो। फर्स्ट थिंग इज यू बिलीव कि यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, और आप सोचते हो कि आप इतना बड़ा इंटरव्यू करोगे या फिर इतने लोगों के लिए इंटरव्यू करोगे, आप ये बिलीव निकाल दो अपनी लाइफ के अंदर में से, साहब आपका जीवन जो है ना वो रक्ति भर हो जाएगा। द पर्सन हु डोंट हैव बिलीव इज हेल्पलेस, इज जस्ट गुड टू लिव लाइक दैट्स इट। तो आप हर काम, आप बड़े से बड़ा रिजॉर्ट भी बनाते हो, आप ब्रह्मा कुमारीज का इतना शानदार स्थल आप लोगों ने बना के रखा है, तो शायद वो किसी एक बंदे का बिलीव था कि यार ऐसा कुछ इतने आध्यात्म रूप में बन सकता है या बनाया जा सकता है। और उसके बाद में फिर लोग आते जुड़ते, एक अच्छा शिल्पकार आता है, मैं मेरी मेहनत से यहाँ करूंगा, एक अच्छा रंगकार आता है, वहां से वो कलर करूंगा, एक अच्छा बढ़ई आता है, वो बोलता है मैं यहाँ का फर्नीचर बनाऊंगा, पर वो बिलीफ किसी एक इंसान का होता है। इतनी शानदार लोगों, इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना है, तो एक रेडियो का माध्यम वो एक इंसान का बिलीफ होता है कि यार उस तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जहां पे लोग अपने समय के अंदर में आकर के बैठेंगे और सुनेंगे। वो बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए जो सब चमत्कार है ना, वो बिलीफ ही है, और आई बिलीव सब चीजें पॉसिबल होती है साहब, सब चीजें पॉसिबल।
1: आप डेथ मेटल से लाइफ म्यूजिक की तरफ चले गए, तो आप कुछ दिखाना चाहेंगे लाइव हमारे श्रोताओं को, कुछ साउंड से परिचय कराना चाहेंगे?
0: बेसिकली बोल है, इसको हिमालयन बोल भी बोलते हैं, सिंगिंग बोल्स भी बोलते हैं, हीलिंग बोल्स भी बोलते हैं, पर जहां मैंने सीखा है वहां हमारे यहाँ इसको हिमालयन बोल्स कहा जाता है। सो ये वाइब्रेशन पे भी काम करता है और फ्रिक्वेंसी पे भी काम करता है। सो आई डोंट नो आप इसकी आवाज सुन पा रहे हैं?
1: हाँ, सुन पा रहे हैं।
0: तो ऐसे लगभग 7 अलग अलग टोन्स होते हैं, तो अलग अलग साइजेस के अंदर भी, जैसे ये है, ये थोड़ा और बड़ा साइज है, सो अलग अलग साइजेस पे ये काम कर रहे होते हैं। फिर ये टाइम्स है,
1: क्योंकि हम रेडियो के माध्यम पे हैं, तो आपको इसका तो नाम और साउंड से परिचय कराना होगा हमारे
0: जी। इसका साउंड, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोशी चाइम्स
1: जी। और इसका साउंड कैसा हुआ?
0: मैं आपको रैटल्स की आवाज सुना देता हूँ।
1: हाँ,
0: ये रैटल्स है, ये बनते हैं कनेर की गुठलियां आती है, और कनेर की गुठलियों को जोड़ जोड़ करके, ये अगर आप सुनेंगे तो झरने में से पानी बह रहा हो उसके जैसी आवाज इसकी आ रही होती है। फिर ये है कोकोनट रैटल, ये कोकोनट के जो सीड्स आ रहे होते हैं, छाल, सॉरी, कोकोनट की जो छाल है उससे ये इंस्ट्रूमेंट बना होता है। फिर जो घुंघरू होते हैं, वो घुंघरू से ये रैटल बनता है। तो ऐसे अलग अलग लगभग 50-60 से ज्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर चिड़िया की आवाज के लिए एक पिकॉक इंस्ट्रूमेंट आ रहा होता है, उससे अगर आप सुने।
1: तो श्रोता हूँ, तकनीकी खामी की वजह से अभी हम आपको साउंड से तो परिचय आप नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे मिलन जी को कि वो इस दुनिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, इसके दर्शन पे बात करें, और ये कैसे लाभकारी है हम लोगों के लिए पर बात करें।
0: सो लाइफ इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन, मतलब अगर आपके जीवन में वाइब्रेशन है, इसका अर्थ है कि आप जीवित है। वाइब्रेशन हर एक वो नब्ज, हर एक वो अंग, हर एक वो चीज जिसके अंदर में थोड़ा भी वाइब्रेशन है, मतलब वो चलायमान है। अगर आपके हार्ट में वाइब्रेशन है, मतलब आप जीवित है। अगर आपके ब्रेन में वाइब्रेशन अगर बंद हो गई है, मतलब अब आप कोमा में जा चुके हैं। तो वैसे ही आपके पूरे शरीर के अंदर में हजारों प्रणालियां ऐसी है जो रक्त संचारित होती है, और वाइब्रेशन एक अच्छा माध्यम है अपनी कोशिकाओं को और अपने पूरे के पूरे शरीर को एक अच्छा सरल और अनुभव कराने का कि आप शांत रह सकते हैं। तो इनके जो साउंड होते हैं वो वाइब्रेशंस, और इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो आपके मन को खाली काम करती है। तो साउंड हीलिंग में बहुत सारा ऐसा मिथ है कि साउंड हीलिंग कैंसर ठीक कर देता है, साउंड हीलिंग आपका डायबिटीज ठीक कर देता है, साउंड हीलिंग आपका मोटापा ठीक कर देता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो बातें हैं, मैं इससे थोड़ा सा परहेज ही रखता हूँ। ये प्रचार नहीं है, ये किसी भी चीज का दुष्प्रचार है, क्योंकि सोशल मीडिया में कंटेंट के नाम पे कुछ भी बता दिया जाता है कि हाँ साउंड हीलिंग से डायबिटीज ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। साउंड हीलिंग सिर्फ चार ही चीजों पे काम करता है। फर्स्ट, अगर आपको इंसोमनिया है, अगर आपको नींद की शिकायत है। सेकेंड, आपको अगर ओवर थिंकिंग है, सो उसके लिए। तीसरी जो चीज है, स्ट्रेस। और चौथी और बहुत शानदार जो दोस्त हमने बना करके रखा हुआ है, उसका नाम है डिप्रेशन। तो ये जो चार चीजें हैं, उसमें एक ही चीज की जरूरत, आपको अपने मन को काम, दैट्स इट। और साउंड हीलिंग आपके अंदर एक कामनेस लाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब चीजों की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग हर चीज में इवॉल्व हुए। जैसे अगर मैं सरल भाषा में आपको, लोग बोलते हैं कि यार साउंड हीलिंग से क्या होगा, क्या फायदा होगा, व्हाई वी शुड ट्राई साउंड हीलिंग, मतलब क्या जरूरत है इसकी। तो मैं एक साधक के रूप में ये बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है, और किसी ने भी नहीं बोला है कि आप रेगुलरली इसको अपनाओ, ये वो। ये सिर्फ धीरे धीरे हम जैसे इवॉल्व हुए, जैसे खाना खाने की अगर मैं बात करूं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी, इससे आपका पेट भर सकता है?
1: जी बिल्कुल,
0: जी बिल्कुल भर सकता है ना
1: जी।
0: तो फिर पहले यही था कि अगर अच्छा खाना घर में बना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बस बन गया, आपने अपना जीवन अच्छे से निश्वर कर लिया। अब धीरे धीरे हम इवॉल्व हो गए, तो हमारे दाल चावल रोटी सब्जी में सब्जी के प्रकार हो गए चार,

0: दाल के प्रकार हो गए, तीन तड़का दाल, मखनी दाल।
1: जी
0: तो ऐसे ऐसे जीवन इवॉल्व होते रहा। उसके बाद में हमने दाल चावल के साथ में आप पिज्जा लेकर के आ गए, आप बर्गर लेकर के आ गए, आप भाकरी लेकर के आ गए, आप खांडवी लेकर के आ गए। तो सब चीजें जैसे हमारा खाना इवॉल्व हो गया, पेट तो भर सकता था खाली दाल चावल रोटी सब्जी खाकर, वैसे ही बेसिक मेडिटेशन साधना से ही आप अपने जीवन के अंदर में सोलफुल कनेक्शन में जा सकते थे। पर क्योंकि लोगों को मेडिटेशन बहुत टफ लगने लगता है कि अरे कैसे ध्यान करे, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको सहारा देते हैं। तो
1: जी
0: वैसे खाना दाल रोटी से पेट भरता था, पर ये चार पांच चीजें और आ गई। तो किसी को तोरू की सब्जी नहीं अच्छी लगती है, तो वो पनीर की सब्जी खा करके अपना प्रोटीन ले सकता था, या तो ऐसे अलग अलग चीज। तो वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट आपको मदद करते हैं और काम होने में, और एक गाइडेंस मिलता है कि हाँ आप अपने आप को और काम कर सकते हैं, और एक कनेक्ट थोड़ा इजीली और जल्दी बैठ जाता है। तो जरूरी नहीं है खाली हिमालयन बोल से ही आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से, अगर आप सुन रहे हो तो 2-30 सेकेंड के अंदर में मैं आपको मेडिटेशन का एक सरल सिंपल ट्रिक बता दूंगा। अपने
1: जी
0: हाथों को लीजिए
1: जी
0: और ताली धीरे धीरे जोर जोर से बजाने का कोशिश करिए।
1: जी
0: आप भी करिए।
1: हाँ हाँ
0: अब आप सिर्फ अपने आप को अनुभव करिए, अपने हाथों को और वाइब्रेशन को।
1: जी बिल्कुल
0: मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आप और आपके श्रोता गण ये 15-20 सेकंड शायद कुछ सोचने की कोशिश भी करी होगी ना, नहीं कर पाए होंगे, और अभी भी आप उसका वाइब्रेशन अनुभव कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल
0: और आपके शरीर के हाथों के अंदर में ये जितने भी नसें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी अंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि एक 10 मिनट का क्लैपिंग, ताली बजाना कोई बहुत बुरा काम नहीं है, आशीर्वाद ही मिलता है, अच्छा ही लगता है, माहौल अच्छा ही बनता है। तो दिन में 15-20 बार आप अपने सेहत के लिए ताली बजा ही लीजिए करिए, और ये वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करिए, और मेडिटेशन में आपका ध्यान बिल्कुल जाएगा। तो ये सबसे सस्ता, सुंदर और सरल तरीका है मेडिटेशन करने का कि आप ताली बजाइए, और जब तक वो वाइब्रेशन आपको आ रहा है, मैं ये लिख करके दे सकता हूं कि जब आप वो ताली बजा रहे होंगे और वो वाइब्रेशन फील कर रहे होंगे, ना आपको ओवर थिंकिंग आएगी, ना डिप्रेशन आएगा, ना इंसोमनिया, कुछ भी असर नहीं रहेगा, क्योंकि तो आप अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर देते। सो बस यही सब चीजें हो रही होती है, और यही वाइब्रेशन आपके शरीर को मदद रूप बनते हैं।
1: जी। तो आपने बहुत सारी बातें विस्तार से आज की है, और हम अभियानों से आध्यात्म की तरफ निकल गए। तो
0: जी
1: एक एक ही कार्यक्रम में अभियान पर भी बात हो गई और आध्यात्म पर भी बात हो गई, और शायद
0: जी
1: ये दोनों पक्ष मानवता के लिए जरूरी हैं। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसी कोई बात जो हम चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप साझा करना चाहेंगे, तो प्लीज आपके लिए मंच खुला है।
0: सिंपल सी चीज है। मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं कि आप अध्यात्म से जुड़े रहें, बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बिलीफ अगर होगा तो आप अपने आप को किसी भी फॉर्म में हील कर सकते हैं। नॉट ओनली हीलिंग, आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। कोई ना कोई, मेरे को जापानीज लोगों का एक प्रोवर्ब है बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं इंस्पायर करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ कार्य जीवन में किया है तो तुम कर सकते हो, अगर किसी ने कुछ कार्य कहीं पे भी किया हुआ है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर किसी ने कोई कार्य नहीं ही किया है तो तुम्हें कर ही लेना चाहिए।
1: क्या बात, बहुत ही बहुत
0: शायद तुम्हें ही उस चीज को करने के लिए निमित्त किया गया हुआ था। तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो अगर किसी ने किया है तो आपको तो कर ही लेना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप
1: जी
0: उसको कर ही लो। तो बड़े तेजस्वी लोग हैं साहब, और बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं अपने अध्यात्म से और अपने कल्चर से, तो बहुत सीखने जैसा है। तो उनसे मैं, उन्हीं की जो आदर्श है उनको मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में चुरा ले उसे, कि नई नई गतिविधियों में अपने आप को शामिल करे और अध्यात्म से जुड़े और बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग बनाए कि हाँ आप ये चीजें कर सकते हो, और बहुत पावरफुल मैग्नेट है ये मेडिटेशन। सो योग तो है ही, योग के साथ में ये जो जोड़ है मेडिटेशन का, ध्यान का, वो ध्यान पे अपने आप को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और अद्भुत शक्तियों से अपने आप को साझा करेंगे। अगर बस जुड़ने की देरी है, वो बोलते हैं ना कि आपका मोबाइल तब तक ही ड्रेन्ड है जब तक वो कनेक्ट नहीं होता है सॉकेट के अंदर में। एक बार जैसे ही कनेक्ट हो गया ना, एनर्जी फास्ट चार्जर के रूप में काम करती है, तो वैसे ही कॉस्मिक कनेक्शन है। वो सॉकेट में आपको अपना जो प्लग है ना वो कनेक्ट करना है, अद्भुत एनर्जी चैनलाइज होगी और ऐसी ऐसी चीजें आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे कि यार शायद ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था, पर इफ यू वांट टू बी फ्रॉम ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन यू हैव टू कनेक्ट विद कॉस्मिक एनर्जी आपको, और वो अध्यात्म के थ्रू से ही आती है। आप मुझे सुन लीजिए, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करना हो, मुझे मेरे शब्दों के लिए थोड़ी मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कुछ खराब भी करना हो तो भी वो अध्यात्म का पावर ही आपको उस शैली तक लेकर के जा सकता है। सो मैं विनाश की बात करने वाला इंसान नहीं हूं, पर मैं हमेशा यही बात करता हूं कि विकास का स्वरूप ही अध्यात्म है। तो बी कनेक्टेड एंड स्प्रेड ग्रेट पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड ग्रेट अवेयरनेस जस्ट बाय कनेक्टिंग विथ योर कॉस्मिक एनर्जी।
1: और आपकी बात आप कह रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि जब हिरोशिमा के ऊपर जब जिस टीम ने जिस फ्लाइट ने बॉम्ब गिराया, तो उनके पायलट ने और क्रू ने फिर बाद में किताबों में शेयर किया, अपनी अपनी बायोग्राफी में शेयर किया कि नॉर्मली हम जब बमबारी करके जब आते थे तो लौटते थे तो हम आपस में बात करते हुए आते थे और हमारे बीच में हल्की फुल्की हंसी मजाक होता था, चिट चैट होती थी। लेकिन जब हमने हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया और जब हमने देखा कि पीछे देखा तो बैंगनी कलर का मशरूम बन गया था उस शहर के ऊपर, तब हम पूरे रास्ते जब हम लैंड कर, 6 घंटे की यात्रा थी मतलब हिरोशिमा से वापस उनको लैंड करना था अपने बेस पे जहाँ से वो उड़े थे, उस 6 घंटे की यात्रा में हमने हम में से कोई बात नहीं कर पाया। तो शायद विनाश की बात पे ही एक वो लोग भी एक उस पर आत्ममंथन कर रहे होंगे कि हमने आज ये क्या किया है, दुनिया को ये क्या दिया है। खैर, तो जापानीज फूड के साथ में इस शो को ख़त्म किया जाए कि आप दुनिया में अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो आपको वो कर लेना चाहिए,
0: कर लेना चाहिए।
1: शुक्रिया मिलन जी, बहुत ही थॉटफुल और क्या कहें कि एक आत्ममंथन वाला आपने शो दिया, और मेरे लिए तो है ही है। और आपने बहुत सारे रंगों के साथ, चाहे वो ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए स्क्राइब को लेकर एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे रंग दे बसंती के माध्यम से अपने शहर को बेहतर बनाना हो, और चाहे उन पेड़ों को जो शहर में विज्ञापनों की भेंट चढ़ गए हैं उनको उससे बाहर लाना हो, और आपको राष्ट्रीय युवा अवार्ड मिला इस कार्य के लिए, आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं, और आप जीवन में ऐसे ही कार्य करते रहें। तो श्रोताओं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, और मैं आपका आरजे शरद साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू,
0: धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना सुंदर लगता है जब प्रोग्राम का नाम सुनते हैं। कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव और मेरा अंचल। जिस गांव और जिस अंचल में हम रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल को कभी नहीं भूल पाते, क्योंकि वो उसका जो देन है स्वर्ग जैसे लगता है। अपना गांव स्वर्ग हेवन, क्योंकि उससे हम जुड़े रहते हैं, पंच तत्व से बने हुए और यहाँ तक बड़े हुए हैं। तो सरकार का जो मंशा है, आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, यातायात को लेकर हो, सभी वर्ग से हम मिलते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। बहुत खुशी लगता है जब गांव और अंचल में जो मिलते हैं, तो एक अपनापन, उनको भी पूछने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन रेडियो मधुबन जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनका अंदर में जो विशेषता है, जो टैलेंट है, जो गांव का हित में, जनहित में और देश हित में जो करते हैं, वो सराहनीय है। उनको तो कोई मंच नहीं मिलता, लेकिन सरकार का जो मंच है रेडियो मधुबन, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर में जो रेडियो मधुबन चलता है, उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है और आसपास को सशक्त समृद्ध खुशी मनाने के लिए एक मंच है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हमें गुलजार उपवन में पहुंचे, जो कि भीमाना का पास ही ये पंचायत आता है, जो कि खेती है, खासकर जो कुआं है, जो फार्म हाउस है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गुलजार खेती का नाम से प्रसिद्ध है। बहुत वेराइटी सब्जियां, फल फ्रूट सब लगे हुए हैं। कभी आपको मौका मिलेगा तो जरूर एक दो दिन पहले एक बार परमिशन लेकर आप पहुंचेंगे तो जरूर कुछ फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि जंगल का मंगल कैसे हुआ है देखना चाहिए। और इसी को देखभाल करने के लिए पूरा टीम है और उनका HOD भी है, और उनका अंडर में जो सेवा रहते सभी अपना जीत जान देकर ईश्वरीय सेवा में लगते हैं। और एक प्राकृतिक खेती का साथ साथ अपना शरीर को भी एक प्राकृतिक जैसे मिला हुआ है, पांच तत्व में बनता है, और उसको सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित रहते हैं। कभी घुटन का प्रॉब्लम होता है, कभी दांत का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीमारी आ जाता है, क्योंकि समय को देखते हुए और हम जो खान पान करते हैं उसका ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम खाएंगे उस तरह निकलता है, क्योंकि हमारा आँख खराब हो जाता है, कभी दांत खराब हो जाता है, कभी घुटन का प्रॉब्लम, कभी पेट का प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन उसको निवारण करने के लिए स्वास्थ्य संबंधित जो अनुभव भी वो बता पाएंगे। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर जब आए हैं, तो यहाँ के एक भाई साहब हैं जो कि उनसे हम मिलेंगे, रूबरू कराएंगे आपसे, और उनका प्रैक्टिकल अनुभव सुनेंगे, किस तरह वो अपना स्वास्थ्य, इतना उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने अभी जो देखा है गन्ना खा रहे थे, इतने उम्र में गन्ना खा, मतलब आश्चर्य लगा रहे, हम नहीं खा पाते, हम आज का युवा नहीं खा पाते और ये गन्ना पूरा खा पा रहे हैं इस समय में भी। तो मुझे आश्चर्य लगा, फिर मैंने रुका अपना गाड़ी को, बोले चलो पूछते हैं इसका राज क्या है। लेकिन सस्पेंस तो है, लेकिन सब कुछ जानेंगे उनसे। पहले मैंने सर जी को स्वागत करते हैं, सर जी आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए।
1: मेरे शरीर का नाम सुखलाल भाई।
0: अरे वाह, क्या नाम है।
1: जैसा नाम है वैसा मैं काम करता रहता हूँ, बाबा कराता रहता है, मैं करता रहता हूँ।
0: बाबा मतलब शिव बाबा।
1: शिव बाबा कराता रहता
0: हूँ, क्योंकि हमारे ये जो चैनल है सब बाहर लोग भी सुन रहे हैं और बिकल लोग भी सुन रहे हैं, नॉन बिकल। तो जहाँ बाबा शब्द आप बोल रहे हैं उसमें प्रभु बा, ईश्वर बा, शिव बाबा कह सकते।
1: तो मुझे परमात्मा करा रहा है।
0: अच्छा।
1: और मैं करता जा रहा हूँ, इसी उम्र मेरी 66 साल से ज्यादा हो गई है।
0: क्या बात। आप कहाँ तक पढ़ाई किए और कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कैसे परमात्मा का जो बात करे उसका परमित्रा बताइए।
1: और मैं मानसरोवर में रहता था।
0: नहीं, पढ़ाई कहाँ तक किया।
1: और मैंने पढ़ाई 10वीं पास किया था।
0: कहाँ से।
1: मध्य प्रदेश सागर से।
0: अरे वाह, मध्य प्रदेश पूरा हार्ट है पूरा देश का।
1: तो मैंने वहाँ पढ़ाई किया था।
0: हाँ।
1: फिर इसके बाद में मैं आर्मी में भर्ती हो गया था।
0: क्या बात है, देखो राज खोला ना।
1: आर्मी में भर्ती हो गया तो मैं फर्स्ट यूनिट तो मेरे अहमदाबाद और जामनगर था।
0: हाँ।
1: इसके बाद में जब लद्दाख में गया, लद्दाख से मेरे को भेजा गया, पोस्टिंग हुआ तो मुझे पटियाला भेजा, पंजाब। पटियाला में मैं जाकर के रुका तो मेरे को बोला गया कि तुम मंदिर में पूजा करना है। मंदिर में पूजा करना शुरू किया मैंने, तो वहां पर मैं सभी धर्म गुरुओं से जाके मिलता था। तो एक दिन लोगों ने कहा कि तुम अब नहीं आ पाओगे, कल से तुम्हारे पास में ऐसी चीज आ गई है कि जो हमारे पास नहीं है।
0: क्या बात।
1: और मैं ब्रह्मा कुमारी की आश्रम के साइड से गुजर रहा था साइकिल से, तो साइकिल खड़ी की, एक ब्रह्मा कुमारी बहन झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने बोला आप कौन हैं, तो उसने मुझे एक ही जवाब दिया कि आप कल 8 बजे आओगे तब मैं बताऊंगी कि मैं कौन है।
2: सस्पेंस रख दिया आपने क्या बात है, एक सेकंड का काम है फिर भी नहीं बताया, मैंने उसमें आपको पता चला कुछ है।
1: तो दूसरे दिन जब मैं गया तो 8 बजे पहुंच गया, तो
2: विश्वास लग गया जैसे 8 बजे।
1: उनने मुझे पहले ही दिन ही बताया आत्मा का और परमात्मा का जो पाठ पढ़ाया, मैंने कहा बस मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया।
2: क्या आप ढूंढते थे
1: परमात्मा? कुछ नहीं मुझे चाहिए।
2: अच्छा, एक दिन में ही कुछ नहीं,
1: एक ही दिन में ढक।
2: कौन सा साल होगा लगभग?
1: वो था 88
2: 1988 का बाद देखो उसका अभी याद आ गया। और सही में एक जो फौजी का काम किया था सिक्योरिटी में, शायद आज भी उसका अभी जांच मिल रहा है भगवान का घर में।
1: तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, शौक से करता हूँ।
2: जी जी जी, ऐसे तो ये आपका थोड़ा सा परिचय हुआ जो कि एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कैसे आए हैं और आज उसी ड्यूटी को ही निभा रहे हैं, क्योंकि पहले भी वो बॉर्डर में लद्दाख क्या क्या नाम बोल रहे जामू में गए थे, इस सेक्टर में आर्मी में थे, लेकिन आज कार्य, लेकिन इतना 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद उनको मिल गया था जब, और वो पढ़ाई का समय उसमें स्वास्थ्य आपका ठीक रहा तब तो आर्मी में गए होंगे, अभी तो हट्टा-कट्टा दिखाई दे रहे हैं, तो जानेंगे उसका राज को हट्टा-कट्टा क्या, और इतना 66 उम्र में भी गन्ना खा पा रहे उसका राज भी बताएंगे क्यों खा रहे। तो सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल, और ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

तेजा जी के रे वो प्यारा बारी ना निमड़ली घेर घुमियार और न सुने जगह निमड़ली घेर घुमियार तेजा जी को शास

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमें खुशी लग रहा है क्योंकि एक अनुभव ही अनुभव बता सकता है और कैसे परमात्मा को पाने के लिए लोग क्या क्या कर नहीं करते, लेकिन सहज से सहूलियत से जो मिल जाता है वो तो परमात्मा ही उसको ढूंढ रहा था, हम तो ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे हमें शुक्लाल खुशी और सुख की जैसे ये तो शुक्लाल भाई जैसे ने बताया जिस तरह, तो सही में और हमें पीछे भी देखो जहाँ पर वो बैठे हैं तो पूरा शांत परिवेश है, प्रकृति का गोद में बसा हुआ जैसे लग रहा है और हमें खुशी लग रहा है इस तरह कार्यक्रम का, क्योंकि गांव और अंचल में ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य का साथ साथ तो जो नेचुरल मिलता है तो बहुत खुशी लगता है। तो आज इस कार्यक्रम को आपके पास हम पहुंच रहे हैं, हमारे श्रोता मित्र ध्यान से सुन रहे क्योंकि आप भी गाँव और अंचल में रहते हैं, लेकिन अनुभव ही अनुभव को अच्छी तरह से बता पाता है और हृदय स्पर्शी होता है और परमात्मा तक उनका जाता है खबर। तो हमारा शुक्लाल भाई को पुनः स्वागत करते हैं और खास कर जब इस तरह प्रोग्राम मिलता है तो गुहे गुहे राज निकलता है। तो इस तरह आप ईश्वर विश्वविद्यालय में जुड़े हैं और 1988 से आज तक चल रहे हैं और निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, बहुत कुछ समस्या आया होगा लेकिन उसको पार करके अपना निश्चय आधार से निश्चिंत होकर सेवा कर रहे हैं। तो और क्या श्रोता मित्र को बताएंगे, आपका एक अनुभव सुनाओ जो ईश्वर विश्वविद्यालय में पहुंचकर आपका स्वास्थ्य संबंधित, आपको स्वागत है।
1: जब इस विश्वविद्यालय में मैं आया, इधर मुझे रखा गया एक मानसरोवर में, जब उस टाइम पर नदी बोलते थे उसके लिए, मानसरोवर तो बाद में बना है।
0: कौन से साल में लगभग?
1: वो 2006 में।
0: 2006 ओके,
1: 2006 में टैंकर चलाता था मैं पानी का और मैं अपना सेवा करता रहता था। इस हिसाब से चलते चलते फिर कुछ दिन के बाद में मेरा आंखों का ऑपरेशन होना था, बताया तो एक भाई आया कोई, तो उसने बोला मैं ऑपरेशन नहीं कराना आपको, मैं एक दवाई लेके आता हूँ। तो उनने मुझे 2 रुपए की शीशी ला के दिया, सुरमा था, और मैंने उसको लगाना
0: शुरू। क्या लगता है आपको सुरमा लगाने के पहले, आप जो दिखाने के लिए डॉक्टर को सोचे तो आपका क्या क्या लग रहा था आंख में?
1: आंखों में
0: जलन हो, पानी निकल रहा है, कुछ तो होगा,
1: आंखों में जाली सी हो रही है और कचरा हो गया है बहुत,
0: डॉक्टर
1: इसलिए बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा आंखों का। मगर वो जब उसने, वो भाई ने शीशी ला के दिया और मैंने लगाना शुरू किया, मेरी उम्र अभी कितना 20-25 साल हो गए, अभी तक मेरी आंखें ऐसी हैं कि बिल्कुल 4x4, मतलब कैसे भी छोटे से छोटे अक्षर पढ़ सकता हूं मैं।
0: तो ये राजयोग का ना मेडिसिन का कमाल, किसका कमाल है ना, बाबा का कमाल, परमात्मा का कमाल,
1: ये है
0: तीनों का,
1: ये परमात्मा का कमाल है क्योंकि इन्हीं आंखों से उस बाबा को देखता था, योग करता था, शिव बाबा को देखता था कि ज्योति बिंदु है और मैं ज्योति बिंदु बिंदु के पास जा रही हूँ, उसकी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, तो मेरे अंदर जो भी बीमारी है बुराइयां हैं जो जल जल करके भस्म हो रही, तो देखता था कि जल रही है, धुआं निकल रहा है और मैं पेवर बनती जा रही हूँ, तो ऐसे मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है अभी भी।
0: अब जो कुछ मेडिसिन लगाए
1: उसका सुरमा है, आंखों को लगाने वाला जो सुरमा यूज करने से क्या है कि जो आंखों का कचरा है वो साफ होता है।
0: लेडीज लोग तो हमेशा लगाते हैं।
1: हाँ, सबको लगाना चाहिए,
0: पुरुष को भी।
1: हाँ, सबको लगाना चाहिए, आंखों की सफाई तो होती है ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: कोई शौक के लिए थोड़ी के दिखाने के लिए,
0: भले दिन में भले औरत लोग तो लगाएं चले, लेकिन जेंट्स लोग लगाएंगे तो उनको थोड़ा शर्म लगता है, मैंने ऐसे मान्यता है।
1: हाँ।
0: जो रीति रिवाज है, तो भले रात को लगा दो सो जाओ, मेडिसिन हिसाब से सुबह निकाल दो,
1: सुबह वो साफ हो जाता है, मुंह धोते हैं।
0: हाँ, तो उससे क्या निकलता है?
1: कचरा निकलता है आंखों का।
0: अच्छा,
1: आंखों का कचरा साफ जितना होता जाएगा तो आंख साफ रहेगी, मोतिया बिंद नहीं होगा।
0: इसलिए मैंने कभी कभी कोई लड़का को मैं देखता है। हाँ। तो सुबह में तो उसका काजल लगा हुआ देखता है, मैं पूछता नहीं भाई, पूछ के तो भाई कुछ उनको भी खराब नहीं लगे, लेकिन वो रात को लगाता होगा, सुबह में निकलता है फिर भी रह जाता है।
1: और नाइट में लगाना चाहिए सोते समय, अच्छा रहता है।
0: आग के लिए मैंने ऑपरेशन करना नहीं पड़ा आपको?
1: नहीं, ऑपरेशन आज तक हुआ ही नहीं, मतलब ही नहीं है ऑपरेशन का।
0: तो अभी छोटी अक्षर भी पढ़ सकते हैं?
1: अभी भी समय कैसे भी पढ़ लेता हूं मैं तो, छोटी
0: दृष्टि का कोई बाधित नहीं,
1: कोई नहीं, ना आंखों में सिर दर्द ना कुछ नहीं होता, मेरी आंखें बिल्कुल सही हैं।
0: क्या बात है, तो कमाल है ये तो। राज्यों का साथ साथ जो थोड़ा बहुत मेडिसिन लिए है, जो सुरमा जो बता रहे, ये कितने दिन तक आपको याद है, कितने दिन तक लगा है?
1: मैं तो उसको लगाता रहता हूँ कितने सालों से, कभी भी तो आंखें खराब ही नहीं होती। वो कितने लाखों लोगों को लिए भी फायदा कराया, सबको शीशी खरीद खरीद दिया।
0: क्या बात,
1: और वो लोग बोलते कि हमारी तो आंखें ठीक हो गई। एक तो ऑपरेशन कराने जा रहा था इसमें ट्रोमा में, और 2700 की दवाई लेके आया था, तो मैंने बोला नहीं मैं 5 रुपए की शीशी ला के देता हूँ, उसको ला के दिया। उसने उसी दिन लगाया, दूसरे दिन बोला मैं ये दवाई वापस करने जा रहा हूँ, और उसने ट्रोमा में दवाई वापस कर दी।
0: क्या बात,
1: और कितनी शीशी थी, जितनी वो दुकान में शीशी थी सारी खरीद के ले गया वो अपने हरियाणा।
0: कमाल है। और आप उसमें कोई भी बीमारी, आग का कोई भी बीमारी निकल जाएगा,
1: ठीक हो जाता है।
0: मैंने डॉक्टर पूछना नहीं पड़ा, ग्लोकोमा है, एक ग्लोकोमा है कि ये है वो है, वो सब कुछ नहीं है।
1: डॉक्टर से पूछने जाओगे तो फिर तो वो डॉक्टर अपनी बताएगा ना, इसलिए मैं डॉक्टर, सबसे बड़ी मेरी बात है मैं डॉक्टरों की सलाह नहीं देता,
0: अपना अनुभव से बताए। हाँ,
1: मैं कोई डॉक्टरों की बात को ज्यादा मानता नहीं, जाता ही नहीं ज्यादा, तो मानने की बात ही नहीं है मुझे।
0: चलो आपका मान्यता है।
1: दूसरा है दांतों का इलाज,
0: सुनेंगे दांतों का भी बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले क्या करना है, इसमें आपको जो अनुभव आधार से आपने बताया आग के बारे में, जैसे एक जनरल आग में लोग के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, समीप दृष्टि और दूर का भी दिखाई नहीं देता, ये दोनों चीज प्रॉब्लम होता है। और जिसका नस वगैरह सूख जाता है, ग्लोकोमा जिसको कहते हैं, आग पूरा डेड हो जाता है, जो जिसका तो दृष्टिहीन होता है, तो शुरू से मैं दृष्टि होना उसको मैंने कुछ नहीं कर सकते,
1: उसको कुछ नहीं।
0: जो बीच में इनका जो तकलीफ आता है, पानी आता है कभी, बहुत खुजलाती है, तो वो सब बीमारी के लिए आपने बताया रामबाण है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये करेंगे तो थोड़ा एक बार देखे आपको अच्छा लगेगा तो हम जबरदस्त नहीं,
1: आप तो यूज करके देखिए आपको फायदा नहीं हो,
0: ये साइड इफेक्ट होगा नहीं इसमें,
1: कुछ नहीं होगा।
0: काजल कुलर्स क्या साइड इफेक्ट होगा?
1: कुछ नहीं होता।
0: आप तो अंदर तो नहीं लगाना, बाहर में लगाना पड़ता, कैसे लगाते हैं?
1: अंदर लगाते उसमें सलाई होती है लगाने की, कांच की सलाई होती है, उसको लगा करके अंदर उसको ऐसे घुमा दीजिए,
0: आंख बंद, इसे बंद रहेगा?
1: हाँ नहीं बंद नहीं, आंख ऐसी थोड़ी सी खोल के ऐसे ऐसे लगा दीजिए, वो लग जाता है, वो तुरंत लगना शुरू होता है, आंसू आ जाते हैं।
0: जो काला है, जो पॉइंट है, उसमें लगना चाहिए,
1: वो सब में लग जाएगा आंख में, पूरा नीचे नीचे इधर
0: जलन नहीं होगा,
1: वो जलन थोड़ा सा होगा, थोड़ी देर को, सेकंड भी नहीं लगेगा, और आंखों में से आंसू निकल जाएंगे, कचरा निकल जाता है,
0: वो तो अंदर लगे तो निकलेगा ही आंसू, है ना? तो ये एक फायदा है, बाहर लगाने से कुछ नहीं होगा,
1: बाहर लगाने से वो तो दिखाने के लिए है।
0: ओके, मैं तो बाहर है, लेकिन आप बोलो भाई उसका अंदर में लगाना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत जाना चाहिए।
1: हाँ,
0: तो उसके लिए पूरा थोड़ा ध्यान से करना चाहिए।
1: हाँ, उसमें सलाई होती है कांच की,
0: कांच उसी में लगाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और हमें खुशी लगा, जिससे आंख जो अमूल्य संपद है, बिना आंख जान है तो भाई आंख होना चाहिए, और आंख से ही हम सब कुछ जान को देख सकते हैं, इसलिए आंख को सही तरीका से उसको संभाल करना चाहिए। और क्या क्या खाद्य खाना चाहिए आग के लिए?
1: हाँ,
0: जैसे हरी सब्जियां, जैसे क्या क्या पत्तेदार सब्जी आप लेते थे उस समय? हाँ, जब आग का बीमारी होता है तो कौन सा पत्तेदार सब्जी है?
1: पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, जैसे कोई साग होती है, ये होती है कच्ची कच्ची, जैसे
0: सहजन
1: सोजा, हाँ
0: शिमला मिर्ची
1: आती है, ऐसी चीजों को कच्चा खाना चाहिए।
0: कच्चा खाना?
1: हाँ, कच्चा खाने से बहुत फायदा होता है,
0: विटामिन
1: वगैरह, और आंखों के लिए तो बहुत फायदा करता है।
0: तो श्रोता मित्र, हमारा जो कोई पेशेंट है, जो थोड़ा बहुत है नुस्खा जो बता है, उसको आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपका भी बीमारी ठीक हो जाए। ज्यादा जाएंगे डॉक्टर के पास, जाते तो है बहुत पैसा खर्च, कोई कोई अच्छा हो जाता है, उसका भी नहीं हो पाता, पैसा भी जाता है, लेकिन ये छोटा सा नुस्खा है, आप जैसे अपना शुक्लाल भाई अपना अनुभव आधार से बताए, तो और कुछ टिप्स हम लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सब सुन पा रहे, ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हम स्वास्थ्य संबंधित बात करें और वे कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन खुद अपना जो प्रयोग किया है वो प्रयोग से जो लाभ हुआ है, एक योगी और प्रयोगी दोनों हो गया। राजयोगी तो है ही है और राजयोग का साथ राजयोग के साथ भी भोजन करते हैं, इसका भी एक फायदा ही होता है क्योंकि मुझे मालूम है जो सात्विक भोजन करते हैं शाकाहारी है तो कोई भी मेडिसिन थोड़ा बहुत लेंगे तो उनका काम में आता है, तो इसका भी राज सुनेंगे। लेकिन उनको पुनः स्वागत करते हैं शुक्लाल भाई को। शुक्लाल भाई आपको स्वागत करते हैं, आज हमें खुशी मिल रहा है, आप देखो योद्धा है क्योंकि बॉर्डर में रहकर आए हैं तो ये भी अपना खेती का जो हम जहाँ से बात कर रहे हैं आपका पास पहुंचा पा रहे हैं, वो भी एक शांत परिवेश में पूरा निर्जन स्थान है लेकिन गुलजर खेती गुलजर उपवन से हम आपको लाइव दे रहे हैं, तो पुनः स्वागत करते हैं। और खासकर जैसे हमारा आंख और दांत इतना संबंध है, दांत थोड़ा बहुत दर्द होता है तो हम सो नहीं पाते, इतना दर्द होता है जो नींद नहीं आता है और कोई भी काम करने से मन नहीं लगता, सबको मालूम है दांत का बीमारी, दांत को थोड़ा बहुत कुछ होता है, कुछ थोड़ा सा एक दाना लग जाता था हमें वहीं पर जाता हमारा हाथ, तो दांत बहुत सभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शरीर का सभी अंश आवश्यकता है और थोड़ा भी गलती होता है तो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए निरोगी तन में निरोगी मस्तिष्क का मन रहता है। तो पुनः स्वागत करते हैं और दांत का बारे में क्या बताएंगे आपका अनुभव आधार से, आप तो अनुभव भी है क्योंकि आग का प्रॉब्लम कब सॉल्व किए, अभी दांत का प्रॉब्लम कभी हुआ था आपको?
3: हुआ था दांत का दर्द,
2: क्योंकि हमारा जो दांत का बीमारी लोग सुन रहे होंगे तो उनको भी फायदा हो, ये हमारा भावना है।
3: हमारा दांत का दर्द 2-3 बार हुआ था और एक दिन तो इतना रात भर में सो नहीं पाया और मैं मानसरोवर से शांतिवन 6 बजे पहुंच गया, 6 बजे पहुंचा और बाबा से मैं ये कह रहा हूँ, बाबा
2: शिव बाबा से,
3: हाँ शिव बाबा से बोल रहा हूँ, परमात्मा से मैं कह रहा हूँ कि बाबा परमात्मा मेरा ये दांत दर्द कर रहा है और मैंने हॉस्पिटल में बात किया है पालनपुर जाने के लिए,
2: जी जी,
3: तो मैंने कहा बाबा इसमें बहुत पैसा लगेगा भंडारी का पैसा, तो थोड़ी देर के बाद में एक भाई साइड में से आया सामने, मैं निकल रहा था बाबा के कमरे से, वो बोला भाई आपका दांत दर्द कर रहा है, मैंने कहा हाँ मेरा दांत दर्द कर रहा है, बोला मेरे साथ चलो, तो जो वहाँ बाबा का वो अभ्यक्त लोक बना हुआ है उसके साइड में ले गया,
2: तलहटी दान बाग में,
3: तलहटी में वो बना है जो, तो वहाँ साइड में ले गया, उधर पीपल का पेड़ लगा था और उसने थोड़ा सा रुई मंगाया, बगल हॉस्पिटल है एवर हेल्दी से रुई दिया और काली मिर्ची का पाउडर, तो उसने वो पीपल का पेड़ लगा उसको टेढ़े कर करके डाली, उसमें दूध भर दिया उसका और काली मिर्ची उस पर डाल करके छिड़क के और बोला आपका जो दांत दर्द करता है उसके ऊपर आप दबा लो, मैं उसको दबाया और मेरा तो दांत बहुत दर्द कर रहा था, उसी टाइम दर्द खत्म हो गया, बोला आध घंटा इसको आप दबा के रखना, जब कोई चीज खा लोगे इसके बाद पानी पीना, आपका इलाज हो गया, सारी जीवन में कभी भी तुम्हारा दांत दर्द नहीं होगा, और 2 साल हो गया आज तक वो दांत दर्द हुआ नहीं, ये सब चीजें ये नुस्खा मैंने कई बात बहन भाइयों को बताया है, सबको फायदा हुआ है, कोई पैसा नहीं लगता इसमें, कहीं कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टरों के पास जाओ 5-5, 10-10 हजार रुपया दो, सिर्फ दूध किसका, पीपल का दूध निकाल करके उसके पत्ता तोड़ के नहीं फेंकना है, उसकी डाली को टेढ़ी कर करके उसका दूध निकाल करके रुई में भरना है, काली मिर्ची छिड़क के जो दांत दर्द करता उसमें दबा लेना, दोबारा कभी दर्द ही नहीं करेगा जीवन में।
2: अच्छा,
3: ये नुस्खा ये उस परमात्मा ने, वो ईश्वर ने ही ये मेरे को उस भाई को भेजा, उसके द्वारा मुझे ये चीज प्राप्त।
2: कितने दिन से चल रहा था आपका बीमारी?
3: वो दांत का दर्द मेरा पहले से चल रहा था, तो मैं हर जाता था इलाज करा के आ जाता था,
2: कुछ काम नहीं होता,
3: कुछ
2: वो थोड़ा बहुत होता फिर निकल
3: जाता, कभी ये दांत करता तो कभी दूसरा करने लगता, कभी दूसरा, तो मैंने फिर उस बार परमात्मा को ये कहा कि मैं आपकी भंडारी के पैसा इतना खर्च हो रहा है बाबा, मैं एक पैसा भी मैं खर्च नहीं करना चाहता हूँ मेरे स्वास्थ्य के लिए, तो बाबा ने उस भाई को भेजा और उसने बोला तुम्हारे दांत दर्द कर रहा है, उसको क्या पता था, तो उसने मुझे ये नुस्खा जो करवाया इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, लाखों लोगों को फायदा है इससे, मैं सबको बताया हूँ।
2: बाप रे। तो श्रोता मित्र, ग्रामवासी और खासकर हमारे जो सुन रहे, जो इस तरह बीमार में ग्रसित है, उनको ये रामबाण जैसे काम हो और उसको सही तरीका से, जैसे भाई ने अपना अनुभव से बताया, तो आप भी अपना स्वास्थ्य को देखते हुए अपने जितना हो सके उतना करें, ये हमारा भावना है। क्योंकि स्वास्थ्य ही संपद का, जैसे स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। जैसे डॉक्टर का सलाह करते और अनुभव भी अपना अनुभव आधार से बताए उनको सूट क्या, और उसका राज भी सूट और राजयोग का चलते उनको और फायदा होता है। क्योंकि राजयोग जो करते हैं, जो कि परमात्मा का शक्ति लेते हैं, जो अपना ऊर्जा को परमात्मा से बात करते हैं, क्यों परमात्मा को अपना संकल्प ध्यान लगाते हैं, उनसे जो ऊर्जा मिलता है उससे भी कुछ फायदा हो जाता है। भले उनको पता नहीं चलता लेकिन उसमें कुछ काम वो भी होता है। लेकिन इसका साथ साथ जिस तरह हमें खुशी मिलेगा, अपना संतुष्टि होगा और आपको विश्वास होगा कि हाँ ये हो सकता है, तब करिए। विश्वास नहीं होगा तो नहीं करिए, क्योंकि ये विश्वास का ही खेल है। विश्वास परमात्मा के साथ और खुद का विश्वास, ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास फेथ होना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। जो आपका पॉजिटिव संकल्प आया जो जल्दी हो जाएगा, जो नेगेटिव संकल्प आया तो नेगेटिव में कुछ होगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक आपका सुनाए और एक अनुभव आधार से दांत का भी इलाज, मैं भी जब सुना भाई मेरा भी ऐसे दर्द कर रहा, मैं भी एक बार देखूंगा फिर मेरा ठीक हो जाएगा तो मैं फिर अनुभव आधार से मैं भी सुनाऊंगा।
3: तो तुरंत ही ठीक हो जाना है,
2: अभी हम पीपल का पेड़ है ही है लेते हैं, आप प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि मैं खुद पहले प्रैक्टिकल करेंगे तब हमारा श्रोता मित्र को विश्वास आधार से मुझे विश्वास हुआ। क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर को देखा है, तब भी उसको जैसे भाई ने बताया शुक्लाल भाई, ये दांत ठीक हो जाता फिर दूसरा भी निकल जाता है, फिर युवा निकलता, अरे ये तो साइड इफेक्ट जैसे ही है। करेंगे, मैं भी अपना अनुभव आधार से भी कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये था कुछ टिप्स जो घरेलू नुस्खे जिसको कहते हैं, जो कि अनुभवी अपने जो जड़ी बूटी से बा प्राकृतिक जो वृक्ष से, जो जैसे हमारा पीपल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अमृत का पेड़ है, तुलसी का पेड़, सीताफल का भी पेड़, उससे बहुत कुछ फायदा, पत्ता से बहुत फायदा होता है, और करके देखें। और बेल पत्र तो सबको मालूम, नीम पत्र सबको मालूम, ये तो जनरल है, इसको कोई विश्वास, लेकिन ये जो पीपल का पेड़, जो अमृत का पेड़, ये हमें लोग जो प्रयोग करेंगे तो हमें भी खुशी लगेगा। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक अंतिम, जो कि हमारे घुटन का दर्द बहुत लोग का परेशान होता है, हम भी उसमें जड़ित है। क्योंकि मैं जब सुना मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरा भी तो ये हो रहा, मैं उसको भी प्रैक्टिकल में लाएंगे। घुटन का भी कभी कभी दर्द होता है, सभी को भी होता होगा, क्योंकि घुटन का तो अपना समय अनुसार प्रॉब्लम देता ही है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आप कहीं ना मत जाइए, अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए अभी गए, फिर हम आएंगे ब्रेक के बाद, एक अच्छा से गीत सुनिए।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी, और खासकर हमें खुशी है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर हमें चिंतित रहता है। कौन सा डॉक्टर को देखाओ, कहाँ देखाओ, और मन में बहुत प्रकार देखते रहते हैं और हॉस्पिटल को देखते हैं। और जब जाते हैं कोर्ट और हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसा जेब में पहले देखना पड़े कितना, पहले देना पड़े कितना है क्योंकि जेब में जाएंगे तो उसका फीस जो है कभी कुछ भी आ सकता है। तो उसी को देखते हुए जो प्राकृतिक जो खेती जैसे करते, प्राकृतिक जो जड़ी बूटी जिसको आयुर्वेदिक कहते हैं, बा घरेलू नुस्खे जो कहते हैं, जो आसपास इर्द गिर्द आपको मिल जाएगा, जहाँ रहते हैं आसपास वो ढूंढने से मिल जाएगा। जो हम सुनते थे भाई वो जड़ी बूटी का ही काम होता था, कितना बड़ा, जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जैसे को बचा दिया था भगवान, सुने है ना, तो हनुमान को जो लेकर आए थे। तो ये भी जड़ी बूटी आपका आसपास मिल जाएगा, लेकिन जड़ी बूटी का भी कभी कभी नुकसान भी करता है, कभी फायदा भी करता है, क्योंकि उल्टा दिशा में लेंगे तो भाई नुकसान करेगा ही। तो उसको नुकसान मतलब जैसे हम नीम का पत्ता को जैसे लगाना चाहे तब उसको उल्टा दिशा में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो कहना मतलब भले साइड में थोड़ा बहुत के लिए ध्यान देना पड़ता है, बाकी कुछ इतना हानिकारक नहीं है जड़ी बूटी में। तो सुनते हैं अभी हमारा जो अंतिम प्रस्तुति की और अंतिम लिंक में हम पहुंचे शुक्लाल जी से, एक अनुभव है जैसे आँख का कैसे वो ठीक करा, दांत को कैसे ठीक करा, और शरीर का बहुत सारे तो बीमारी आता है, हम सबको तो आज नहीं ले पा रहे, लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम जैसे घुटन का दर्द होता है, कहीं उम्र होने के बाद दर्द होता है, चलते फिरते हमारा जो बढ़ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: साठिका
2: का प्रॉब्लम है, उसका भी बारे में बताएंगे। तो बताइए साहब हमारा श्रोता मित्र को।
3: ओम शांति।
2: ओम शांति।
3: मैं जितना भी नुस्खा आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। आप सुनिए कि जी चार पत्ते जो है ना, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता और सीताफल का पत्ता, चार पत्तों का आप काढ़ा बना करके सवेरे सवेरे पियोगे, अगर आपके लिए शुगर है तो ये शुगर 10 दिन में कंट्रोल में आ जाएगी, और इसको काढ़े को आप पीते रहेंगे हमेशा तो आपके लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए
2: ये तो कोई नुकसान का नहीं। ये पत्ते जितना करेंगे, क्या भाई जो इंग्लिश दवाई लेंगे तब इधर भी सोचना पड़ता है, फिर भी उसको आग बंद कर हम खाते हैं क्योंकि मान्यता है, प्रिंटर बोला उसको साइड इफेक्ट होता है तब भी लेते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटी जिसने आपने बताया चार पत्ते उसको कोई नुकसान नहीं होगा,
3: इसलिए खुद के डॉक्टर खुद ही बनी है, ज्यादा डॉक्टरों के पास नहीं जाना है
2: भाई हमारा डॉक्टर।
3: इसके बाद आपको बताता हूँ मैं कि मेरे लिए साठिका थी दाहिने पांव में, अभी एक महीना हुआ है,
2: क्या बात,
3: साठिका हो गई थी और मेरा पांव इतना दर्द करता था कि मैं

0: करता हूँ, सभी बहनों ने बोला जो डॉक्टर हैं कि आप कम से कम एक टाइम खाना खाइए सुकैल भाई। तो मैं फिर दोपहर में खाना हल्का खा लेता हूँ, साग के साथ खा लेता हूँ, थोड़ा चावल दे दो, एक रोटी बस, बाकी सुबह शाम में यही जो चीज मिलती है खाने के लिए, खरबूजा खा लूंगा, पपीता खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, और अपना स्वास्थ्य बिल्कुल स्वयं इसको ठीक खुद रखता हूँ मैं। मेरे लिए डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं सलाह लेने के लिए नहीं जाता किसी के पास। ये मेरे आप सबके प्रति शुभभावना शुभकामना है, आप भी ऐसा कीजिए। दूसरा, अगर मेरे घुटने में दर्द होता था, इतना जोर से दर्द करता था कि एक बैदा आया था इधर, तो उसने देखते देखते ऐसा नस देखते देखते मेरे अंगूठा के लिए ऐसे दबाया तो वो दर्द कम हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, उस अंगूठे में धागा बांध दिया, तो जो वो दर्द होता था घुटने में, आज तक घुटने में दर्द नहीं होता। ये मैं प्रैक्टिकल किया हुआ हूँ।
1: ये तो आपका चमत्कार है, जैसे आपने कुछ गॉड गिफ्ट भगवान आपका कर देता होगा।
0: इससे मैं क्या करता हूँ कि उस परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस राम से ये कहता हूँ, ये भगवान से ये कहता हूँ, तुम मेरे जुम्मेवार हो, तो मेरी जुम्मेवारी तुमने ली है कि मैं तेरे जुम्मेवार हूँ, तो मेरे स्वास्थ्य के भी जुम्मेवार तुम हो। तो मुझे तकलीफ होगी मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे बताओगे, तो वही मुझे बताता है।
1: सुप्रीम सर्जन तो वही है,
0: हाँ, तो वही जो सुप्रीम सर्जन है वही मुझे बताता है कि अब बेटे अब ऐसा करो,
1: और आपका विश्वास भी हो जाएगा।
0: और मेरा विश्वास रहता है कि मैं उसने जो बताया और मैं करता हूँ, तो पहले यही हो जाता है अच्छा हो गया मैं, और मैं अच्छा हो जाता हूँ।
1: सही बात। लेकिन देखिए, दुआएं और दवाई दोनों आवश्यकता पड़ता है, चाहे आप एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, चाहे आयुर्वेदिक लो, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। और विश्वास का जो मूल आधार है आपका मन बुद्धि, एक निश्चिंत एक जो शक्ति, दुआओं को भी जिसको आप मानते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी नाम से आप पुकारते, तो उनको भी साथ रखते, तो कुछ ना कुछ आपका मैंने स्वास्थ्य प्रति, क्योंकि बड़ा डॉक्टर तो वही है, डॉक्टर का भी डॉक्टर भी कभी बोल देते भाई ये मेरा तो इलाज का काम है, लेकिन ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा बोलते हैं ना। तो ऊपर वाला मतलब कौन है, आपका भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा जो भी नाम से आप पुकारते हैं, आप इष्ट देवी भी देवता भी हो सकता है। इसलिए हमें प्यार से हम बाबा कहते हैं, क्योंकि गॉडफादर कहते हैं, शुक्लाल भाई बाबा शब्द बार बार आता है, क्योंकि बाबा मन से हम प्यार से बाबा कहते हैं, परमात्मा को परम पिता है ना, तो आत्मा का पिता को परम पिता परमात्मा निराकार कहते, तो जिसका चलते वो बाबा शब्द हम बार बार यूज कर लेते हैं। लेकिन बाबा का कोई देहधारी नहीं है, निराकार कहते तो आप इसको नहीं समझा, कोई देहधारी बाबा है, लेकिन एक परम पिता परमात्मा जो आत्मा का आत्मिक पिता है, वो भी बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, शिव बाबा हम प्यार से कहते। तो बहुत अच्छा लगा, आध्यात्मिकता का साथ साथ आज भौतिक जो शारीरिक भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी और ड्राइवर दोनों आवश्यक, तो गाड़ी का तो हमको जतन लेना पड़ता, उससे पहले हम ड्राइवर को भी अच्छा से रखना पड़ता, क्योंकि गाड़ी का जो चालक है ड्राइवर है, कहने मतलब शरीर तो आपका गाड़ी है, और ये गाड़ी को देखभाल भाई कभी पंचर हो जाता है, कभी बोनेट खराब हो जाता है, तो आप तो एक ड्राइवर भी है ना शुक्लाल भाई, तो गाड़ी और ड्राइवर का कहानी आपको तो फिट बैठेगा, और जो सभी एक एक ड्राइवर है भले उनके पास साधन हो कि नहीं।
0: मैं प्रैक्टिकल में भी ड्राइवर ही हूँ, गाड़ी चलाता था पहले, टैंकर से पानी भरता था।
1: हाँ, बोल रहे थे एक बार पानी टैंकर,
0: पानी की बहुत कमी थी 6-7 उसमें 2000, तो मैं पानी भरता था, रात भर टैंकर चलाता था, और मैं ये सोचता था कि मेरे भाई बहन जो आए हैं, एक टैंकर ज्यादा भर के डाल दूंगा, तो हमारे भाई बहन अच्छे से नहाएंगे, कपड़ा धोएंगे, और बाबा से मिलन मनाएंगे, भगवान से मिलेंगे, तो ये सब चीज की खुशी रहती थी, और आज तक वो खुशी खत्म नहीं हुई। इतनी शौक है सेवा करने की कि करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें, और सभी सुखी हो जाएं।
1: दादी जी ऋषि जी हड्डी हड्डी सेवा, हाँ। चाहे धूप, अभी हम धूप से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा भाई हमारा शरीर जो तन है परमात्मा का काम में लगे, इससे और कुपुनित काम नहीं हो सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अचानक में पहुंचा, हमें सोचा नहीं था, हम तो थोड़ा घूमने के लिए आए, तो देखे तो रास्ता में जी मिल गए, और साइड में जब गन्ना खा रहे, तो गन्ना का जो इतने उम्र में भी गन्ना जो दांत उनका पूरा मौजूद है, इसका राज पूछते पूछते उनका शरीर का पूरा आज पता चला। तो हमारा श्रोता मित्र भी अपना को ध्यान दे, अपना शरीर को जितना आवश्यकता है, खुद का डॉक्टर खुद से बड़ा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आप जैसे आपको चलाना है, जिसे आप जैसे खाएंगे उस तरह निकलेगा, जैसे इनपुट वैसे आउटपुट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत शुक्लाल भाई को, और हमें फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, और किसी बात को लेकर आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर स्वास्थ्य संबंधित अनुभवी ही अनुभव आधार से आज बताए शुक्लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे परिवार की तरफ से, रेडियो मधुबन परिवार की, और हमारे श्रोता मित्र के परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को, और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं, और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम, बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर, पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: और
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया। तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहां से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक की, एल्जेब्रा, जो ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: देखो।
0: में ही?
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो जो बस गया ना इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस विजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे, और उसका
0: जी
1: साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है वाह।
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट को
0: प्लस टू का
1: देख
0: बता रहे हैं आप,
1: करके।
0: 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने टॉप किया है
1: 12th का
0: ना?
1: बता रही हूँ जी, 12th में मैंने
0: क्या
1: फर्स्ट डिविजन
0: सब्जेक्ट उस
1: के,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में
1: जी,
0: सब्जेक्ट क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी जो
0: मीडियम या इंग्लिश
1: पास्ट
0: मीडियम?
1: में हिंदी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय। तो
0: जी
1: इसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के
0: जी
1: लिए, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और
0: जी
1: तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मैनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर 1 साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माई लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पाया, तो आई वॉज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि
0: जी
1: भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझ आए आप। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का क्या
1: मतलब
0: ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंख का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था।
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं,
0: लग गई थी?
1: रोशनी
0: ओ
1: नहीं, रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था,
0: ओके, टेढ़ा
1: तिरछापन जो था पुतलियां, वो अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे,
0: था। ओके
1: हाँ,
0: ओके
1: वो सही हो रहा था। तो बस
0: अच्छा
1: वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके, तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द ईयर,
0: एंगेजमेंट आपके जैसे व्यक्ति
1: जी
0: से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: लिखा था
0: स्थिति
1: कहीं
0: में
1: का
0: नहीं रहे
1: सर।
0: कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ बिल्कुल
0: परिवार
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धराकटता रह गया, वो हम दे नहीं पाए। जी तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे
1: अनलकी
0: दिन
1: रही
0: बीते रे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर लो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी,
1: कुछ नहीं था सर,
0: कुछ
1: अपने
0: भी नहीं
1: फैमिली
0: था?
1: के टुकड़ों पर,
0: ओके
1: हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं नहीं कोई बात
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे भी
1: भी
0: पर्सनल,
1: भाग
0: हाँ,
1: गए।
0: वो वैसे भी पर्सनल लाइफ है, रही है आपकी, तो कोई बात नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माय सन वाज बोर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो
1: 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता, आप
0: एक
1: इंग्लिश
0: ऐसी
1: के सारे
0: परेशानी से आप
1: और
0: जूझ रहे हैं जो
1: कई
0: ठीक
1: सालों
0: नहीं हो
1: से,
0: सकता।
1: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ, तो
0: हुआ है
1: बोले
0: जो।
1: कि हाँ, वो कहते हैं ना यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू, मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूं और मैं आराम से खाना पका लूं या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूं, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके, फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन, सर वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। आई वॉज इन डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
0: और
1: एंड
0: उन्हें बेटे
1: है नहीं।
0: की
1: हाँ

0: का लालन पालन भी साथ में चल
1: वो
0: रहा
1: सब
0: है
1: तो
0: ये
1: मैं, हाँ
0: सब।
1: वो सब तो देखिए, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हमको और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी। खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को, और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला, जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने, और
0: आपने
1: उन्होंने
0: ब्रेल लिपि
1: मुझे
0: भी सीखी
1: काफी,
0: मैडम?
1: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल हैं, उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना। कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया। फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था, और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ, और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई। थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे, कुछ 2-3 लाख रुपए, वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो
0: नहीं
1: ये
0: लटक रही,
1: चीज जब
0: सही
1: दूर
0: बात
1: हो
0: है।
1: गई ना, तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की, जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कांटेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी, मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है, कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया, मैंने इतना सीखा, है ना, उन्होंने चीटी बताया, मैंने हाथ ही सीखा, कहते हैं ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी
0: ओ
1: जितनी
0: क्या
1: इंग्लिश
0: बात
1: की
0: है।
1: किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट। तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी, तो हर जगह पे मेरे को ले जाना, झारसुगड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग इट एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को,
0: आपके जीवन
1: और
0: में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में
1: बहुत
0: आ रहा
1: बड़ा
0: है।
1: रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया, अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
0: हम समझ रहे
1: सबको
0: हैं कि
1: एक
0: आप
1: मेंढक बन के रहते हैं जी
0: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए
1: जी
0: निश्चित रूप
1: तो
0: से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
1: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूँ तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना, तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं,
0: हाँ वाह क्या
1: रहते
0: बात
1: हैं, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी
0: है।
1: हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे। डर, तो
0: जी
1: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
0: जी
1: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब।
0: जी
1: मैं
0: बिल्कुल
1: आपको
0: मैम,
1: बताऊं, हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने, क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
0: जी
1: आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं है, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर,
0: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: जी, है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी, और बहुत नाम तो मैं है सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
0: जी।
1: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा,
0: वाह
1: और भगवान
0: क्या बात है,
1: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
0: क्या
1: ट्रेनिंग
0: बात
1: दी
0: है,
1: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
0: बहुत
1: स्टाफ पढ़ाया है, कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे जो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाई अप किया, टाई अप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना, एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है, उन लोगों ने टाई अप किया, तो
0: जी
1: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रही है, और बाकी दिन उनके सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
0: उस समय
1: टू
0: मतलब आपने यही लक्ष्य बना
1: हाँ
0: लिया कि
1: नाइन टू
0: बस अब तो
1: लंच,
0: मुझे।
1: यस हाँ, पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो दो मैंने
0: अरे वाह
1: कोर्स बुक लिखी सर, और दो लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे
0: क्या,
1: जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहूजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो दो कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और दो हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें
0: अच्छा
1: हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के, तो
0: जी
1: मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री
0: जी
1: ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा
0: क्या
1: एक
0: बात है,
1: रहा था
0: वाह
1: जी।
0: वाह
1: और
0: बहुत खूब,
1: कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारे एरिया था ना, वहां पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले, है इस तरह के, तो ये चीजें हमने की। उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को, तो उस समय पे। और तो
0: क्या बात।
1: काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा, इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी,
0: आपने कहा
1: ये
0: होगा
1: भी
0: भाई ये गलती
1: हुआ।
0: दोबारा नहीं करनी है।
1: नहीं, सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना, हमारे समाज में हम
0: ठीक
1: जिस
0: बात
1: तरह
0: है।
1: के माहौल में
0: और फिर क्या
1: रहे,
0: होता है
1: परिवेश
0: ना
1: में
0: कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में
1: जी
0: फिर सोचने का कोई मतलब भी
1: नहीं
0: नहीं है।
1: सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फिनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 ईयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन
0: बहुत
1: करेगा
0: गुड,
1: अभी और
0: बहुत
1: स्टार्टअप है उसका
0: गुड,
1: अभी। हाँ
0: वेरी
1: जी,
0: गुड।
1: तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन
0: क्या बात
1: मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, दैट्स। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे, सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन, अध्यापन, लेखन, ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि
0: जी
1: 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया, इट वॉज
0: अच्छा
1: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया, और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड, तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था, एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022, 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना, तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो के, फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए, और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ दैट इज, तो ये
0: छत्तीसगढ़ में कौन से
1: रहा
0: शहर में आप?
1: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
0: अच्छा
1: पे
0: अच्छा
1: मैं
0: अच्छा
1: वहां
0: हाँ
1: जी।
0: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
1: जी हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया,
0: ओके
1: एंड उन्होंने
0: ओके
1: ही
0: ओके
1: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर, फिर जमीन वगैरह खरीद
0: 2008
1: के
0: से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में
1: जी
0: ही आपने आपको
1: बचपन से
0: मतलब
1: ही पूरा
0: सरवाइव
1: मतलब,
0: भी किया,
1: हाँ बिल्कुल,
0: फ्लरिश भी
1: हाँ
0: किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर
1: बिल्कुल
0: वहीं देखे आपने।
1: सब सब
0: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
1: जी,
0: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
1: जी,
0: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए, और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
1: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन किया।
0: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है।
1: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए, क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी, देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है, इनके पास जाओ। सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था, और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला, उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ, बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से।
0: आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
1: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
0: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
1: हाँ, बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
0: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू,
1: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ, ये बिल्कुल राउर किला के नजदीक है सर, और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
0: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
1: जी,
0: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
1: सर कोशिश किया था, बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा।
0: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
1: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया, है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात देखने को पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर, सबका अपना अपना संघर्ष होता है।
1: अब इस
0: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही बहुत अच्छी, और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
1: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
0: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर। तो
1: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा।
0: जी आप बताइए।
1: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
0: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
1: जी बिल्कुल सर होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
0: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
1: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा, और चूंकि मेरे ताऊजी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
0: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो तब ये हाल है ना,
1: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
0: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
1: जी
0: जी,
1: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना, तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने आई, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में, स्टूडेंट्स को भी जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर, मतलब मैं आपको बताऊं मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे, और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है, तो कल्पनावादी संसार होता है ना उसमें बस उड़ रहे थे कि
0: उसमें बस
1: उड़ान,
0: तो बस एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
1: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के, तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें
0: सिखाया।
1: क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना, जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, तो मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे। मैं बोली नहीं, मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े, जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी, इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां
0: बिल्कुल।
1: पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है। ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी, क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में, 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक
0: अरे वाह,
1: आर्टिकल
0: क्या
1: आता
0: बात
1: था
0: है।
1: पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने
0: जी
1: वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी, जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी, इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा, तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं, जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी, देखने से
0: जी
1: पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है। तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं, आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं, मैं सच में ब्लाइंड हूँ,
0: बिल्कुल।
1: मुझे नहीं दिखता है। ओके, तो ये रही। तो उसपे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए। तो चलो, प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से,
0: जी
1: और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो
0: जी
1: मैंने इनके एक पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
0: अच्छा
1: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे, तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में। तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना, एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग विम्स की स्थापना करने के लिए।
0: जी,
1: जी,
0: यानी
1: तो
0: अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक
1: जी
0: कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है
1: सोशल
0: कनेक्टिंग
1: वेंचर
0: विम्स
1: शुरू
0: के नाम।
1: किया, जिसका नाम कनेक्टिंग लिंक्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित है, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ग्रेट पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई, तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब सब लोग बोलते थे कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इशू होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ, और ओम वेनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम्स हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है, तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं, तो कोई लोग ऐसे नहीं, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया, के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई, इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया, और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
0: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है,
1: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें, तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
0: जी,
1: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है, यस आई एम 40, आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर, हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये

0: तीन ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट
1: हाँ
0: लिखी गई, उसके बाद तीन हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जोश पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, कहानियां कविताएं तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: और
0: खत्म करने
1: उपन्यास
0: का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम क्या नहीं हो जाए और हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके तीन सीजन है सर, तीन वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी,
1: एक
0: डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी, तो
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी
0: भी
1: बात है। एक
0: ब्लाइंड,
1: मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो कभी
0: जी।
1: अगर
0: इनका हमारे साथ टाई अप
1: अवसर
0: है कोलैबोरेशन
1: अवसर
0: करने
1: मिला
0: के
1: तो
0: लिए
1: उनके साथ भी हम मन की आंखों से
0: जी,
1: कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की
0: ही
1: कोशिश
0: वेल,
1: करेंगे।
0: हाँ वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान
1: अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी, अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है, और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी,
1: बहुत
0: कुछ
1: बहुत
0: काव्य गोष्ठियां हमने की हैं कनेक्टिंग ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भागों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट, कॉम्पिटिशन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए, या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था, या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे? क्योंकि ब्रेल लिपि तो
0: नहीं
1: आपने
0: नहीं
1: बहुत ज्यादा सीखी नहीं।
0: नहीं सीखी लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी हुआ
1: ओके ओके,
0: सब
1: अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा
0: जी।
1: और उसी का बहुत जबरदस्त
0: हाँ
1: इस्तेमाल भी
0: बिल्कुल,
1: किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती, गूगल
1: बहुत
0: इनपुट टूल के थ्रू से
1: बहुत
0: मैं सीख
1: जबरदस्त
0: रही
1: आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस
0: जी।
1: कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है,
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल,
1: ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो
1: वाह,
0: अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं

0: से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आप उठिए, चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा। एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश खून है या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी परीक्षाएं लेती है, तो सुकून भी जिंदगी के पास है। आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है। इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।

मन की बस्ती और मन की गलियां आपके बिना बिल्कुल सूनी सूनी रहती हैं। तो आइए ना इस सूनापन को हटाएं, क्योंकि हम सब एक साथ जुड़ चुके हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। 7 दिन बाद इस 7 सुरों के अनोखे सफर पर बिल्कुल लहराते हुए खिलखिलाते हुए हम सब पहुंच गए हैं। तो आप सब आज फिर से पूरे 10 बजे तक होंगे रेडियो मधुबन पर और कार्यक्रम है गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है वैरायटी विषय, वैरायटी थीम, जिसमें हटके गीत आप सुनते हैं, सुरीले नगमे आप सुनते हैं, बेजोड़ तरानों से हम भर देते हैं, आपकी जिंदगी को खुशनुमा बना देते हैं। तो इस खुशनुमा सफर पर आप सब हैं स्वर्णलता के साथ हर सप्ताह की तरह। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

संगीतकार आरडी बर्मन साहब का यह गीत सदाबहार है और इस सदाबहार गीत का आज हमने रीमेक वर्शन सुना। ओरिजिनल वर्शन को गाया था किशोर कुमार साहब ने और लता जी ने, तो इन दोनों को तो हम याद करते ही हैं जब इस गीत को सुनते हैं। तो आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसी कलाकार को, एक ऐसी गायिका को जिन्होंने अपनी वॉइस की वर्सटैलिटी और आवाज को बदलने में जो वो माहिर हैं, जिससे अलग अलग मूड्स वो हमारे सामने रखती हैं और उसमें हमें खुश करती हैं। तो आज ऐसी ही एक गायिका के बारे में हम बातें करेंगे और खासकर वो जो एक वैरायटी पेश करती है उस पर ज्यादा बातें होंगी, क्योंकि इस गायिका पर हम बहुत साल पहले, जहां तक मुझे याद है 2016-17 में हमने इस गायिका पर एक खास प्रोग्राम किया था। तो आज उसी आवाज को हम रीइन्वेंट करेंगे और आज के प्रोग्राम का नाम हम क्या दें बताएंगे, गायिका का नाम बताएंगे और गीतों का परिचय भी देंगे और साथ में इस थीम का नाम भी आप तक पहुंचाएंगे चुपके चुपके।

0: थैंक यू।
1: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
2: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
1: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
2: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फिर से आपके जीवन में एक जादुई आवाज से नयापन भरने आ गई हूँ मैं स्वर्णलता कार्यक्रम गुलदस्ता में। प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, चुपके से हमें बहुत साल पहले हमें माना हम श्रोताओं को आपकी आवाज से दीदार हो गया था। दोस्तों आज हम आपको बताएं कि आज हम कविता जी की वॉइस में, कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी की वॉइस में हम सुन रहे हैं उन्हीं के द्वारा गाए हुए गीतों को एक रीमेक तरीके से। न सिर्फ हम आज उनके गाए हुए फिल्म के गीत सुनेंगे बल्कि हम गैर फिल्मी गीत एल्बम के गीत भी सुन रहे हैं, उनकी आवाज में हम बंगाली गीत भी सुनेंगे। तो हम ऐसी आवाज की मल्लिका को सुनते हुए आज के प्रोग्राम में छाए रहेंगे। तो बने रहिए आज के प्रोग्राम में जिसका हमने थीम का नाम रखा है कविताज वॉइस एंड डिफरेंट मूड्स ऑफ कविता। तो कविता जी की जो वॉइस है उसमें आपको तरह तरह की मूड्स की जो स्विंग है उसे देखने में और उसे महसूस करने में बहुत मजा आएगा। बने रहिएगा अंत तक।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: काजी नजरुल इस्लाम जी का लिखा गीत हमने सुना कविता जी की वॉइस में आज रेडियो मधुबन 107.8 एफएम कार्यक्रम गुलदस्ता में। हम कविता जी की वॉइस को री इन्वेंट कर रहे हैं। कविता जी इन दिनों कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के नाम से भी जानी जाती हैं। तो उनके द्वारा गाए हुए गीतों को वे खुद ही री इन्वेंट कर रही हैं, है ना, बहुत ही सुंदर बात। तो उन्होंने डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जो उनके जीवन साथी हैं, उनके वायलिन वादन को भी इंक्लूड किया है इन गीतों में। तो आज के प्रोग्राम को हम बहुत ही दिल से सुनेंगे, क्योंकि हमने अधिकतर गीतों में डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी की जो वायलिन वादन है, वो जो सुरीला समा बांध देते हैं अपने वादन से, इस सुरीले वादन को हमने इंक्लूड किया है आज के कार्यक्रम में। तो आज हम कविता जी को भी सुन रहे हैं और ग्रेट वायलिनिस्ट की वायलिन की सुर भी सुन रहे हैं। तो इन दोनों का जो फ्यूजन है बहुत ही सुंदर है। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत, राह निहारू। यह है एल्बम हम दोनों से।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

राह निहारू पिया घर आजा, बहुत ही सुंदर और मनमोहक गीत सुना हम सभी ने कविता जी की मेलोडियस वॉइस में। तो आज के प्रोग्राम में हम शामिल किए हैं उन्हीं की आवाज में उन्हीं के द्वारा रीइन्वेंट किए हुए गीत, तो हम भी रीइन्वेंट कर रहे हैं उनकी आवाज को। यह एक एल्बम सॉन्ग है, एल्बम का नाम है हम दोनों। इसे भी तैयार किया है उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति जी, इन दोनों ने इस एल्बम को साथ मिलकर बनाया है। बहुत ही मनमोहक बातें हैं जिसे हम एक प्रेरणा के तौर पर ले सकते हैं अपने जीवन में, कि कैसे दोनों मिलकर सभी को खुशी बांट रहे हैं, खुशी दे रहे हैं अपने आर्ट द्वारा। क्योंकि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी जो हैं वो एक वायलिन वादक हैं और कविता कृष्णमूर्ति, जिनके बारे में हम सभी को मालूम है कि शी इज अ मेलोडी क्वीन, शी इज अ प्लेबैक सिंगर और वो बहुत सारे गीत गा चुकी हैं हम सभी के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम गुलदस्ता में हमने सुना कविता जी की वॉइस में एक बंगाली गीत, और उसी गीत का हमने एक हिंदी वर्शन भी सुना। आपको बता दें कि इन गीतों को बनाया था बरसों पहले गायक कलाकार हेमंत मुखर्जी ने। हेमंत दा न सिर्फ गायक कलाकार थे बल्कि वे एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। आपको बताएं, इस गीत को कविता जी ने उनके प्रति ट्रिब्यूट के तौर पर गाया। आपको साथ ही साथ यह भी बताएं कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, उन्हें एक सफल प्लेबैक सिंगर बनाने में हेमंत मुखर्जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, सहयोग था। और इस गीत को भी हमने एक रीइन्वेंट तरीके से सुना, क्योंकि इसमें कविता जी के जो जीवन साथी हैं डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी, उन्होंने भी इस गीत को रीइन्वेंट किया अपने वायलिन के सुरों द्वारा। तो आज लगभग सभी गीत को हम एक नए तरीके से सुन रहे हैं, उन्हीं गीतों को एक नए तरीके से भी सुन रहे हैं और कुछ अलग गीतों को भी सुन रहे हैं कविता जी की बेजोड़ आवाज में। और अगले गीत को आपने बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम सुन रहे हैं कविता जी की वॉइस में, और इसे उन्होंने मन्नादा के प्रति ट्रिब्यूट के तौर पर गाया है, क्योंकि मन्नादा ने भी उनके जीवन को बहुत आगे बढ़ाने में सहयोग दिया।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

बहुत ही फेमस सॉन्ग हमने सुना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कविता जी की वॉइस में। कविता जी एक दिग्गज पार्श्व गायिका रही हैं, मुख्य रूप से 90 और 2000 के दशक में अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाती रही। कविता जी आप एक शानदार गायिका हैं और अपने शानदार करियर में 4 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2005 में पद्मश्री से भी आप सम्मानित हुई। आपका वास्तविक नाम, एक्चुअल नाम शारदा कृष्णमूर्ति है। आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो हमें ज्ञात हुआ कि आप शारदा कृष्णमूर्ति हैं और आपका जन्म 25 जनवरी 1958 में नई दिल्ली में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए और मुझे उम्मीद है जाते जाते जो लास्ट सॉन्ग आपके लिए आ रहा है वह भी आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। बहुत दिनों बाद हम इस गीत को सुनेंगे, तो अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नवीनतम रिजुविनेटिंग विषय के साथ। तब तक दिल थाम कर बैठिए और स्वर्णलता का इंतजार कीजिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर छाए रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम का नाम है नई दुनिया नया जमाना। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सतत विकास के बारे में बात करेंगे। कई बार सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सुन करके हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके बीच कभी कभी हम चाहते हैं कि इन चेंजेस को अपनाएं। हम सोचते हैं कि प्लास्टिक फ्री दुनिया बने तो बेहतर होगा, लेकिन इस दुनिया को कैसे बनाया जाए, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या योगदान है, या फिर जो जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले चीजें हैं वो कैसे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमें जो चीजें अच्छे भी लगती हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि छोड़ो, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने, तो एक दिन तो संसार से जाना है, लेकिन संसार को दे के क्या जाना है? क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की दुनिया देना चाहते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें आसपास प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड प्लास्टिक दिखाई दे हो? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूथ हैं जो इस संसार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों ना हम और आप मिलकर के उन्हें सुने, उनके बारे में जाने, और वो हमें गाइड करेंगे कि कैसे हम इस प्रकार की दुनिया बेहतर बना सकते हैं और चीजें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ को सस्टेनेबल बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, प्रकृति को कुछ अच्छा दे सकते हैं। तो आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदुला जोशी जी हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, इसके साथ साथ आप उड़ीसु एक प्लेटफॉर्म का फाउंडर हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे आपको उनके बारे में और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ वो इस जीवन को कैसे जी रहे हैं आज उनके मुख से हम जानेंगे नई दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन।
1: शुक्रिया शुक्रिया हमें बुलाने के लिए।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक और श्रोता बंधु अभी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें बताइए कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब क्या है।
1: सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मेरे लिए इसका मतलब ये है कि हम जैसा भी जीवन जिए, हम इस तरह जिए कि हम अपने पीछे जितना कम प्रदूषण और कचरा और जितना भी कम नेगेटिव इम्पैक्ट हम छोड़ पाए उतना कम करें, ताकि हमारे जाते हुए बस हमारी हमारा शरीर और बस कुछ ही चीजें हों जो हमारे आगे की पीढ़ी को जाएं, लेकिन हमारे वजह से कोई प्रदूषण ना फैले या फिर कोई बुरा ना हो हमारी वजह से। इसका मतलब मुझे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल लगता है। और ये भी कि हम इस तरह जिए कि हम कम से कम रिसोर्सेस को यूज करें ताकि आगे की पीढ़ी के लिए और भी बचा रहे।
0: जी, जैसे आप जब आप अभी भी यूथ हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में एंटर किए होंगे तभी आप सब इसके बारे में आपने पढ़ा है, या फिर आपको कैसा लगा, मतलब क्यों लगा कि आपको ये जीवन जीना है और लोगों को भी प्रेरित करना है?
1: तो जब मैं कॉलेज में थी 5 साल पहले, सस्टेनेबिलिटी इतना बड़ा शब्द नहीं बना था, तब बहुत ही नया था। और मैं एक्चुअली निफ्ट मुंबई से हूँ, तो उन फैशन में मेरा पढ़ाई था, और आपको पता होगा फैशन इंडस्ट्री में कैसा कितना खरीदारी होता है, कितना कंज्यूमरिज्म होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब बेचना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहां पे। तो ऐसी दुनिया में मुझे इंटरेस्ट था कि इसे हम सबसे अच्छे तरीके में कैसे बनाएं, फैशन कैसे हम ऐसे तरीके में बनाएं कि ये लोगों के लिए अच्छा हो। और मैं जिस जॉब में काम कर रही थी वहां पे मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा था, तो मैं अपने हिसाब से ही यूट्यूब में वीडियोस देखने लगी, लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत होती है ताकि अपना इम्पैक्ट हम कम कर पाए। और इसी तरीके से मुझे कुछ वीडियोस ऐसे दिखाई दिए जहाँ पे कुछ लोग जीरो वेस्ट रह रहे थे, बेसिकली वो इस तरह से जी रहे थे कि उनके घर पे कोई डस्टबिन नहीं था, उनके घर से कोई कचरा नहीं जाता था। और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये काफी मुश्किल चीज लगी मुझे, क्योंकि हमारे जीवन में तो हम रोज रोज कचरा बाहर फेंकते हैं, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनका 4-4 साल से कचरा एक छोटे से डब्बे में फिट हो जाता है। तो मैं सोचने लगी, पहले तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने ये सोचा भी नहीं कि मैं कभी कर पाऊंगी ये, लेकिन मैं बस सोचने लगी ये छोटी छोटी चीजें ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी से मैं और देखने लगी और इंफॉर्मेशन गैदर करने लगी और मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो छोटी एक्शंस है ये काफी ही छोटे एक्शंस हैं। मतलब हम सब कर सकते हैं, हम सब एक बैग उठा के जा सकते हैं, हम सब कुछ प्रोडक्ट चेंजेस ऐसे कर सकते हैं घर पे, कॉम्पोस्ट कर सकते हैं, और वो थोड़ा ही टाइम लगता है और थोड़ा ही स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन हम सब कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक एक से शुरू करते हैं और फिर आगे देखते हैं ये कैसे बनता है, और 4 साल बाद हम भी काफी हद तक हम जीरो वेस्ट रहने लग गए हैं अभी। तो हमारा इंटरेस्ट भी ऐसे ही कुछ शुरू हुआ, कॉलेज के टाइम शुरू नहीं हुआ था लेकिन कॉलेज के बाद ये इंटरेस्ट डेवलप होने लगा।
0: जी, तो क्या स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स आपने लिया था अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने?
1: सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये लिया था कि घर, मतलब मुंबई में तब हम रहते थे और वहाँ पे हमें 2 डस्टबिन दिए गए थे हर घर को अपार्टमेंट में कि आप अपना गीला कचरा और सूखा कचरा सेपरेट कीजिए, और मैं काफ़ी रिलीजियसली उसे मतलब सेपरेट करने लगी, मुझे ठीक से करना था, लेकिन मैंने देखा वो लोग वो दोनों डब्बा लेते थे और एक ही ट्रक में फेंक देते थे साथ में। फिर तो तब मुझे लगा कि मुझे अपने घर पे ही कुछ करना चाहिए या कि अपने घर पे ही कुछ करने की आदत डालनी चाहिए ताकि जहां भी रहूं मेरे पे डिपेंड हो कि मेरा कचरा कहाँ जाता है। तो मैं कॉम्पोस्ट करना शुरू किया, मैंने वेट वेस्ट को बेसिकली ऐसे एक डब्बे में जिसमें होल होता है हवा पास होने के लिए, नॉट लाइक आर डस्टबिन, डस्टबिन में हम जब वेट वेस्ट डालते हैं तो वहां पे बहुत गंदगी मतलब स्मेल आता है, फ्लाइज आते हैं, लेकिन कॉम्पोस्ट में क्या होता है जैसे एक फॉरेस्ट में आप अगर बनाना पील फेंकते हैं तो वो जैसे रॉट हो जाता है सेफली, वैसे कॉम्पोस्ट में रॉट होता है। तो वो मैं कॉम्पोस्ट बनाने लगी जिससे मुझे खाद मिलने लगा अपने घर पे, उस खाद से मैं हाउस प्लांट्स लगाने लगी अपने घर पे, और इससे मेरा घर का ऑलमोस्ट आधा 50% मतलब वेस्ट कम हो गया इमीडिएटली। उसके बाद मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढने लगी जहाँ पे मैं अपना प्लास्टिक भेज सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जो ट्रक में हमारा प्लास्टिक या ड्राई वेस्ट भी फेंकते हैं वो लैंडफिल में जाता है, और लैंडफिल आपने देखा है कैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, दिल्ली में भलसवा लैंडफिल आग लग गया था वहाँ पे, एंड आते जाते वहाँ के गाँव के लोगों को बहुत ही प्रदूषण के इम्पैक्ट्स झेलने पड़ते हैं। तो मैंने डिसाइड किया मेरा ड्राई वेस्ट भी बाहर नहीं जाएगा, तो ड्राई वेस्ट को मैंने ये सीखा कि अगर ड्राई वेस्ट गंदा होता है तो वो रिसाइकलिंग के लिए नहीं जाता है, अगर साफ होता है आप स्वच्छ करके रखते हैं तभी वो रिसाइकलिंग के लिए जाता है। तो मैं कबाड़ी वाले ढूंढने लगी अपने एरिया में, और मैंने रियलाइज किया कि आजकल कबाड़ी वाले बहुत कम लोग ढूंढते हैं, तो मैं रिसाइकलिंग ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढने लगी और वहां पे मेरा ड्राई वेस्ट देने लगी। तो अभी आधे प्रतिशत से ऑलमोस्ट 80-90% मेरा वेस्ट सब मैनेज होने लग गया। तो वैसे मैं जीरो वेस्ट रहने लगी, अपने डे टू डे लाइफ में भी मैंने काफी सारी चीजों में बदलाव लाई, मैंने लिक्विड शैम्पू बॉटल्स के जगह शैम्पू बार्स यूज करना शुरू किया, चीजें जो पेपर पैकेजिंग में आती हैं ताकि मैं उसे कॉम्पोस्ट कर सकूं, बैम्बू टूथब्रश, मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड जो फेंकना पड़ता है उसके जगह सैनिटरी कप, मेंस्ट्रुअल कप यूज करना शुरू किया मैंने। तो ऐसे काफी सारे चेंजेस थे जिसके वजह से मेरा घर से कचरा निकलना काफी कम हो गया, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जब मैं भी कलेक्ट करके दिखा सकती थी कि मेरा 1 साल का कचरा सिर्फ एक ही बैग में फिट होता है। तो लेकिन ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, और वो भी ठीक है, ये एक चैलेंज है जो मैं हमेशा डे टू डे ट्राई करती हूँ, अगर परफेक्ट नहीं है तो चलता है, इस दिमाग से मैं रहती हूँ बस।
0: मैम, जैसे आपने कहा कि आप गीले कचरे और सूखे कचरे को फिर आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको अलग किया और कबाड़ी वाले को आपने ढूंढा, तो क्या हर कोई व्यक्ति अभी जो आपको सुन रहा है इससे शुरुआत कर सकता है?
1: डेफिनेटली आप अपने एरिया में ढूंढिए कि ये रिसोर्सेस है कि नहीं। हाँ, काफी बार हमारे एरिया में है कबाड़ी वाला, कुछ लोग इसे भंगार वाला बोलते हैं, रद्दी वाला होते हैं, जो आजकल मुश्किल से ये सब ढूंढ पाते हैं ये रिसोर्सेस, क्योंकि हम सारा अपना कचरा मिक्स करके फेंक रहे हैं आजकल। तो उनके लिए भी वो वैल्यूबल नहीं होता है, वो भी वो उसमें से निकाल नहीं पाते हैं. और ये भी काफी अनडिग्निफाइड है, मतलब वो अपना हाथ हमारे कचरे में डाले और ये सब चीजें निकाले. इससे अच्छा ये है कि हम साफ करके उन्हें अपने हाथों से ही दें. तो ये चीज आई थिंक हम सब कर सकते हैं. उनके पास नंबर भी होता है, आप कॉल करके भी बुला सकते हैं जब आपके घर में आप सब कलेक्ट करके रख सकते हैं. तो ये प्रैक्टिस हमें डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए. एक टाइम पे इस प्रैक्टिस करने का हमें जो थोड़ा सा यू नो चेंज 20 रुपए या 50 रुपए देते थे, इससे लोग खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल उसका वैल्यू भी नहीं है किसी को. लोग समझते हैं कि फेंकना ज्यादा आसान है और यू नो इसलिए हम फेंक देते हैं अभी. तो ऐसी छोटी चीजें हम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं. छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी हम खरीद सकते हैं अगर हमें इतना मेहनत करने का इमीडिएटली मन नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेट करना है. तो काफी बार ये भी होता है कि अगर आपके बाथरूम में कुछ प्रोडक्ट्स जीरो वेस्ट आपने खरीद लिए हैं, आपको देखने से पता चलता है जैसे प्लास्टिक कम हो गया है आपके बाथरूम में. अभी आपने शैम्पू बार ले लिया, बैम्बू टूथब्रश ले लिया, तो आपको रोज सुबह वो एक यू नो उत्साह आता है कि हाँ मुझे और कुछ करने का मन है, मैं और कुछ टिप्स देखूंगी और कुछ ट्राई करूंगी. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप डेफिनेटली ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि आपको दूसरे लोगों को देखना चाहिए जो इस तरह रह रहे हैं, क्योंकि हम इंस्टाग्राम में हमेशा ऐसे लोगों को देखते हैं जो यू नो खा पी रहे हैं यू नो प्लास्टिक कंटेनर्स में, या फिर यू नो ऐसा कुछ यू नो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है. और हम ऐसे लोगों को कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, इनसे इंस्पायर होते रहते हैं. इससे अच्छा अगर हम ऐसे कुछ यू नो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जो जीरो वेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छे प्रैक्टिसेस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में आ जाता है. और इनसे हम सीख भी लेते हैं, इनसे हमारे दिमाग में नॉर्मल भी हो जाता है ये सब प्रैक्टिस. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टिप है अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट करने के मन में अभी नहीं है तो.
0: आपने एक बात कही मृदुला जी कंपोस्ट के बारे में कि खुद कैसे खाद बना सकते हैं और खुद अपने घर पर प्लांट्स आप उगा सकते हैं. तो क्या ऐसे बेसिक प्लांट्स हैं जो बहुत सहज तरीके से हम अपने घर पे उसे उगा सकते हैं, और सहज तरीका क्या है कंपोस्ट बनाने के?
1: प्लांट्स का क्या है ना, एस्पेशली ऐसे उगने लगे क्योंकि कॉम्पोस्ट में हम जो खाते हैं अपने लंच डिनर या जो भी हम पकाने के लिए सीड्स हमारे कॉम्पोस्ट में चला जाता है, वही सीड्स प्लांट्स में उगने लग जाते हैं हमारे कॉम्पोस्ट से. तो काफी बार ऐसा हुआ है कि टोमेटो के प्लांट्स उग गए हैं, पपाया के प्लांट्स उग गए हैं, क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले मैंने टोमेटो या पपाया के यू नो मतलब फ्रूट्स खा के मैंने उसके सीड्स फेंक दिए थे कॉम्पोस्ट में. तो प्लांट्स ऐसे हैं जो वो खुद अपने मन से ही उगने लग जाते हैं. आपको बस पानी देना है और धूप में रखना है और वो आराम से अपना काम कर लेगा. कॉम्पोस्ट बनाना अगर आपको कोई उसमें डिफिकल्टी होती है तो आप हमेशा हमारे पेज पे आ सकते हैं और हम हेल्प करते हैं इन सब चीजों में. उलिसू का के माध्यम से मेरा यही मकसद था कि जितना टाइम मुझे लगा, 1 साल ऑलमोस्ट लगा सीखने में जीरो वेस्ट जाने में, उतना टाइम किसी और को नहीं लगना चाहिए अगर उन्हें इंटरेस्ट है कि उनका लाइफ भी जीरो वेस्ट हो. अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे आज से कचरा कम करना है और मुझे सीखना है कैसे करना है, तो उलिसू के माध्यम से आप वो कर पाएंगे. हमारे वेबसाइट में सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं है, हमारे वेबसाइट में आप वर्कशॉप के सजेशंस भी ढूंढ सकते हैं, आप रिसाइकलिंग सेंटर्स भी ढूंढ सकते हैं. एक मैप प्रोजेक्ट है पैकेज फ्री मैप करके, जहां पे हम इतने सारे रिसोर्सेस पिन करते हैं हर शहर में कि आप यहां जाके अपना रिसाइकलिंग कर सकते हैं, आप यहां जाके पैकेज फ्री बिना प्लास्टिक पैकेट के सामान खरीद सकते हैं. और हम लोगों से भी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं इन सब शॉप्स के. अगर आपके घर के पास कोई किराना शॉप है जहाँ पे बिना पैकेजिंग के खुले में चीजें बिक रही हैं, तो हम वो चीजें भी पिन कर सकते हैं इस मैप पे. तो हमारे वेबसाइट का यही मकसद है कि आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आगे की पीढ़ी के लिए ईजी हो जाए और आपके लिए भी ईजी हो जाए. और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आदत हो गई है और हमें भी काफी सारे टिप्स और एक्सपीरियंस से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं.
0: मैम उलिसू ही क्यों नाम आपने रखा? और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के उच्चारण करने में भी प्रॉब्लम है. क्या मकसद है इसका?
1: हाँ, हिंदी बोली के लोगों को काफी मुश्किल होता है उड़ीसू बोलने में, क्योंकि उड़ीसू मेरा मदर टंग कन्नड़ा का वर्ड है। उड़ीसू का मतलब ये है कन्नड़ा में बचाना। अगर आपको पैसे भी बचाने हैं क्योंकि आप सस्टेनेबली रह रहे हैं, अगर आपको रिसोर्सेस बचाना है, पृथ्वी बचाना है, पानी बचाना है, जो भी सीखना है आपको बचाने का, कचरा बचाना है, तो आप सीख सकते हैं उड़ीसू से। तो इसलिए इस मकसद से मैंने उड़ीसू करके नाम रखा था। और मुश्किल होती है कुछ लोगों को बोलने में, लेकिन आई थिंक मराठी में भी ळ करके काफी लोग प्रोनाउंस कर पाते हैं, तो वो आसानी से बोल लेते हैं।
0: आपने कहा कि जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, सतत विकास को अपनाना सहज है ना? लेकिन देखा जाता है कि जो सतत विकास के प्रोडक्ट्स हैं, वो के जो रेट्स हैं, वो बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। तो लोगों को लगता है कि हम क्यों ना वो प्लास्टिक यूज कर ले इसके बदले, या दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कर ले, ये क्यों?
1: तो अगर आप देखा जाए तो जो भी सुपरमार्केट में ब्रांड्स हमें मिलते हैं वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और काफी लाखों पीसेस में बनाए जाते हैं, तो उस वजह से उनका प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा लोग खरीदते हैं उतना ज्यादा पीसेस बनते हैं, और उसके वजह से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि

0: उतना आप बल्क में इंग्रेडिएंट्स खरीद पाते हैं। अभी सस्टेनेबल क्योंकि कम लोग खरीद रहे हैं, कम लोगों को इंटरेस्ट है, कम लोगों का डिमांड है, इसके वजह से छोटे छोटे बैचेस बनते हैं इन प्रोडक्ट्स के। लेकिन हमने देखा है 4 साल में, जैसे बैम्बू टूथब्रश बहुत ही महंगा हुआ करता था, 250 रुपए का हुआ करता था, लेकिन अभी आप देखे तो अभी वो काफी पॉपुलर हो चुका है और अभी आपको 60 रुपीज में मिल जाएगा, 70 रुपीज में भी मिल जाएगा। हालांकि प्लास्टिक टूथब्रश आपको 20 रुपए में भी मिल जाएगा, लेकिन ये डिमांड सप्लाई का ही खेल है मोस्टली। और फ्यूचर में जैसे ज्यादा ज्यादा लोग खरीद पाएंगे, जिनकी खरीदारी का शक्ति है वो खरीद पाएंगे, तो वैसे वैसे ज्यादा लोगों के लिए ये आसान होता जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है, अगर आपके बजट में है तभी आप इसके बारे में सोचें, अगर बजट में बिल्कुल भी नहीं है और ये आपको बहुत ही सिवियरली इम्पैक्ट हो सकता है कि इतनी महंगी चीज आप खरीद ही नहीं सकते हैं, तो ये आपका टेंशन नहीं है, ये किसी और का काम है कि वो डिमांड ज्यादा करे ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए एक दिन। तब तक आप ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपका पैसा बच सकता है। जैसे कि माना गया है कि बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, बहुत ज्यादा कपड़े खरीदना, बाहर से खाना मंगवाना जो डब्बे में आते हैं, ये सब से भी काफी प्रदूषण फैलता है। तो आप ज्यादा चलिए, ज्यादा बसेस लीजिए, कार में कम जाइए या कार शेयर कीजिए, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे आपका पैसा कम पैसा बच सकता है। जैसे कि फास्ट फैशन एक चीज है जिससे बहुत प्रदूषण फैलता है, हमें महीने महीने खरीदने का मन करता है, हम अपने कपड़ों से बोर हो जाते हैं, और आजकल शॉपिंग जरूरत के हिसाब से लोग बहुत कम करते हैं, आजकल लोग शॉपिंग मूड के हिसाब से करते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हमें कम करनी चाहिए, हमें साल में 1 या 2 बार सिर्फ हमारे नीड्स के हिसाब से ही खरीदना चाहिए। और इस चक्कर में अगर आप अपने बहन से कोई कपड़ा ले या भाई से ले या बोरो कीजिए, सेकेंड हैंड लीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि फेंकने के जगह आप वो रिसोर्स ज्यादा साल तक चला रहे हैं, इसका मतलब उसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा। तो मैंने 4 साल से ब्रांड न्यू कपड़े मैंने खरीदे नहीं है, मैंने सिर्फ सेकेंड हैंड शॉपिंग की है, तो इसकी वजह से मेरा बहुत सारा पैसा बच जाता है। जो अगर 20-30 रुपए एक्स्ट्रा अगर मैं अपने शैम्पू बार्स या इसमें भी खर्च कर लूँ तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता। तो आप इस हिसाब से देखिए, पहले आप ऐसी चीजें कीजिए कि अपना लाइफ का जो कंज्यूमरिज्म है आप थोड़ा कम कीजिए, जितना कम हो सके, मिनिमलिस्टिक रहिए, तो ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ये ट्रू सस्टेनेबिलिटी इसी में है कि घर पे जो है उस चीज को पहले इस्तेमाल कीजिए और खरीदारी के बारे में बाद में सोचिए, बस जब जरूरत पड़े तभी खरीदारी कीजिए।
1: जी मैम, एक महिला अगर अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में, और जैसे आपने कहा कि मिनिमलिज्म, लेकिन बच्चे जिद करेंगे कि फ्रेंड्स के पास इतने सारे कपड़े हैं और मेरे पास भी होना चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट ये उनके लिए शायद टेक्निकल होगा, तो उन्हें कैसे समझाएं?
0: आपने ऐसे सिचुएशंस तो देखा होगा जहां पे घर वेजिटेरियन है लेकिन बच्चे बाहर जाके नॉन वेजिटेरियन खा के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं कि इस घर में तो नहीं चलेगा, आप बाहर कुछ भी कर लीजिए लेकिन घर आएंगे तो घर के रूल्स फॉलो करेंगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फैमिलीज देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स मिनिमलिस्टिक होते हैं और उन्होंने अपने बच्चों को वो बचपन से सिखाया होता है कि जरूरत से ज्यादा खिलौने नहीं रखने चाहिए। अगर आपके पास कोई खिलौने हैं जो आप अभी उसके साथ खेल नहीं रहे हैं तो हमारे साथ बैठिए, चलो निकालते हैं, जो खिलौने आपको पसंद है वो रखिए, जो पसंद नहीं है वो हम डोनेशन के लिए दे देते हैं या फिर किसी और को दे देते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिसेस रखने वाले फैमिलीज मैंने देखे हैं जहाँ पे बच्चों को आदत पड़ जाती है कि हाँ इस महीने हम हमारे वार्डरोब से कुछ खिलौने जाने वाले हैं। तो जब वो वैसे बड़े हो जाते हैं उनके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। अगर वो दूसरे बच्चों से कुछ सीख भी ले नया या फिर कुछ कर भी ले, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे उन्हें समझ में आ जाता है खुद से कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया था वही ठीक था। तो बच्चों को जो करना है हमें उन्हें करने देना चाहिए जरूर, लेकिन घर पे हम जितना उन्हें सिखा सकें हमें सिखाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के मामले में नहीं, जैसे मैंने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का भी एग्जांपल दिया, काफी लोग ऐसी चीजों में भी सिखाते हैं। हर घर के अपने अपने नियम होते हैं और अपने अपने घर के नियम आप बना सकते हैं, लेकिन फोर्स तो जरूर हम किसी को भी नहीं कर सकते हैं। मैं खुद जब सस्टेनेबली रह रही थी और मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे थे मेरी बात, तो मैं भी उन्हें फोर्स नहीं कर पाई, लेकिन देखते देखते एक दो साल बाद वो भी समझने लगे और वो भी प्रैक्टिस करने लगे। तो आपको बस भरोसा रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए कि आपने अपना ड्यूटी किया है और आपने अपने तरफ से जितना समझाने की कोशिश की है की है। आगे उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपनी दुनिया को कैसे परखेंगे और क्या समझेंगे।
1: बिल्कुल, और आपने ये सही कहा कि बचपन से वो संस्कार अगर वो प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में है तो हमें बहुत इजी होगा वो चीजें अडॉप्ट करने के लिए। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि एक व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक अपने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को कैसे फॉलो करना है, मतलब क्या क्या रिप्लेस करना होगा अभी?
0: सुबह से लेकर रात तक तो मैं सोचती भी नहीं हूँ आजकल, लेकिन मैं ये चीजें आदतें बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि मुझे सस्टेनेबल बनना है तो मतलब आप अभी नए हैं और आप शायद सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखते देखते ये आपकी आदतें बन जाएगी। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है तो काफी बार मैं अपना मोबाइल निकाल के स्विगी मार्ट क्लिक करने से पहले मैं सोचती हूँ मेरे घर के नीचे क्या ये चीजें मिलती हैं, या क्या मुझे सिर्फ थोड़ा सा वॉकिंग करके ही एक नियर बाय दुकान से अगर मैं खरीद के ला सकती हूँ तो क्या ये आसान हो सकता है। काफी बार उस डिलीवरी बॉय का आना जाना में का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है हमारी जनरेशन का। तो ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस जो शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स फॉलो करते थे ऑटोमेटिकली, हमें सोच सोच के फॉलो करना पड़ रहा है। शायद वो एक एक डिफिकल्ट चीज है जो हमें आदतों में लानी पड़ेगी। बाकी चीजें प्रोडक्ट्स में आसानी से चेंजेस हो जाती है। मुझे अभी जब भी मैं सब्जी काटती हूँ तो डस्टबिन में डालने की आदत नहीं है क्योंकि घर पे कॉम्पोस्ट है, तो मैं एक छोटा सा कलेक्शन बोल में डालती हूँ और जैसे ही मेरा खाना पकाने का काम कंप्लीट हो जाता है मैं सारे वेट वेस्ट जाके कॉम्पोस्ट में डाल के आ जाती हूँ। तो वही प्रैक्टिस है, वही टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है और बस उसके वजह से मेरा दिन शायद वैसे ही दिखता है जैसे बाकी लोगों का दिन दिखता है, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ चीजें अलग कर दी है उसके वजह से इम्पैक्ट कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। अगर मुझे शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो मैं मिंत्रा पे नहीं जाती हूँ, मैं ये रिलायंस या जियो वेबसाइट्स पे नहीं जाती हूँ, मैं शायद एक सेकेंड हैंड स्वॉपिंग ऐप पे जाती हूँ जहाँ पे पूरे भारत के कई कई महिलाएं अपना वार्डरोब्स डालते हैं और मैं उनके ऑप्शन से देखती हूँ मुझे क्या खरीदने का मन कर रहा है। तो ऐसे एक ऐप है दिस फॉर दैट क्लोजेट, ये जरूर चेकआउट कीजिए। मैं वही लाइफ जीती हूँ जो बाकी युवाएं जीते हैं, लेकिन शायद हम जिस माध्यम से मैं ये करती हूँ वो अलग है। तो मेरा दिन काफी ऐसे ही दिखता है
1: जी। तो सुबह उठ के हम अपने ब्रश से लेकर, जैसा आपने कहा कि आप सब्जी बना रहे हैं तो उसे आप कंपोस्ट के लिए डाल दीजिए, तो इस प्रकार चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स, आपके लंच बॉक्स, सब आप रिप्लेस कर सकते हैं धीरे धीरे। स्टील पर आ ही सकते हैं आई थिंक।
0: हाँ, तो जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं अपना बॉटल, बैग, हैंडकरचीफ, ये सब चीजें रख के रेडी होती हैं। तो मेरे डोर के पास ये सब बैग्स रेडी होते हैं ताकि मैं कभी भूल ना जाऊं बाहर निकलने से पहले कि मुझे ये चीजें लेकर जानी थी। तो ऐसे सेटअप कर दिया है कि ताकि मेरे आदतों में ही आ जाए कि जब भी मैं कुछ भी करती हूँ तो ये सब पकड़ के ही निकल जाती हूँ मैं।
1: जी जी, अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कैसे लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं।
0: तो हमारे वेबसाइट में हमने सबसे पहले ये प्रायोरिटाइज किया कि आपको मतलब रोजाना क्या जरूरत पड़ सकता है, किचन में साफ सफाई के लिए कैसी चीजें जरूरत पड़ सकती है, पॉलिएस्टर स्क्रब के जगह कॉयर वेसल स्क्रब बर्तन धोने के लिए जो कोकोनट कॉयर से बना है ताकि वो कॉम्पोस्ट में इजिली जा सके, नहीं तो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, जो स्कॉच ब्राइट यूजली होता है वो प्लास्टिक का होता है। केमिकल क्लीनर्स जो हम यूज करते हैं जिसमें ब्लीच होता है, फिनाइल होता है, ये सब चीजें ड्रेनेज में जाके हमारे लेक्स और रिवर्स में जाके काफी प्रदूषण फैलाता है और इसके वजह से फिशेस हार्म होते हैं और काफी एक्वेटिक एनिमल्स का डेथ होता है। तो इसके जगह क्या नेचुरल क्लीनर्स है जो हम यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाथरूम के लिए ऑब्वियसली शैम्पू, बॉडी सोप, कंडीशनर, ये सब भी मिल जाएगा। पेट प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कैट लिटर होता है जिसमें जो लोग खरीदते हैं वो कैट्स के लिए अच्छा नहीं होता है और वो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है, तो बायोडिग्रेडेबल कैट लिटर भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर पे प्लास्टिक जिसमें होता है या फिर केमिकल्स या टॉक्सिक केमिकल्स जिसमें होता है। और प्लास्टिक भी आपको सोचना चाहिए, ये फॉसिल फ्यूल से डेराइव्ड है, बेसिकली ये पेट्रोलियम से डेराइव्ड है। तो हम जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं उतना ज्यादा हम पेट्रोलियम पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारे वेबसाइट्स पे आपको ऐसी सारी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिससे आप पेट्रोलियम से भी मुक्त हो सकते हैं। और आप इस सोच से चलिए कि क्योंकि आप वो चीजें यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका प्रदूषण का इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। और अभी हमने एसेंशियल्स सब रख दिए हैं, तो डिटर्जेंट, यू नो, क्लीनर्स, हाइजीन के लिए जो भी चाहिए सब है। ट्रैवल, आउटडोर ट्रैवलिंग आइटम्स भी है, तो अगर आपको बाहर जाके चाय कॉफी ऑर्डर करना है तो पेपर कप में लेने से अच्छा आप अपना एक स्टील कप दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं हमारे स्टील कप में आप हमारा ऑर्डर दीजिए, ताकि आपके हर ऑर्डर पे डिस्पोजेबल कप्स ना फेंके जाए। तो वैसे रियूजेबल आइटम्स हैं हमारे वेबसाइट पे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए कॉयर स्क्रब्स हैं। अगर आपको प्लास्टिक ब्रशेस है घर पे क्लीन करने के लिए तो आपको कॉयर ब्रिसल्स के यू नो ब्रशेस मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं और अब हम धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा मजा भी आए। हम गेम्स ऐड कर रहे हैं, हम डेकोर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये था कि सबसे पहले एसेंशियल्स ऐड हो जाए ताकि हमारी जरूरत की जो चीजें हैं वो सब लोगों को मिले। तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी oliso.com
1: जी। मैम, यूथ का कुछ सवाल होता है कि मान लीजिए हमने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना लिया तो बाकी लोग नहीं अपना रहे हैं, तो क्या हमारे अपनाने से क्लाइमेट चेंज में कुछ इम्पैक्ट आएगा कुछ ही लोग अपनाने से?
0: मैं आपको ये बताना चाहूंगी, 4 साल से लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और 4 साल में काफी लोगों ने अपना लिया है, तो यही इम्पैक्ट है लोगों का। अब हम सब सोचते हैं हम बहुत ही छोटे हैं और हमारे अपनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि हमारे एक एक के अपनाने से काफी सालों बाद काफी इम्पैक्ट हो जाता है। आपको लगता होगा आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस वाले आपको देख रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, वो चाहे ही आपका थोड़ा मजाक उड़ाए, लेकिन क्योंकि वो आपको देख रहे हैं उनके मन में विश्वास होगा कि ये कोई कर सकता है। जब उन्हें पहले विश्वास नहीं था, अब उनके मन में विश्वास होगा कि ये कोई कर सकता है। तो आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं जब आप ऐसे रहने लगते हैं। मेरे घर में कोई भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सीखता अगर मैं नहीं रहती तो। क्या मेरे घर में सब सस्टेनेबली रह रहे हैं? नहीं, लेकिन अभी उन्हें पता है और मेरे वजह से वो ऐसी चीजों से ज्यादा ओपन अप हो जाएंगे, ऐसी चीजें ज्यादा ट्राई करेंगे, शायद वो एक प्रोडक्ट ट्राई करेंगे क्योंकि उन्हें पता है उनके घर में कोई है जो ऐसे रह रहा है। तो उनके पास भी, उनके सर्कल में भी कोई है जिनसे वो क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, जिनसे वो डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो सब जो भी कन्वर्ट होता है, जो भी सस्टेनेबली रहने की कोशिश करता है, सबका एक वैल्यू होता है। तो आप खुद को कभी भी छोटा मत समझिएगा क्योंकि हर व्यक्ति एटलीस्ट 100 लोगों को जानता है। आप शायद 100 लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 लोग जानेंगे आपके वजह से कि सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। तो हाँ, जरूर
1: जी, बिल्कुल। और जैसे आज से 50 साल पहले भी अगर हम देखें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन, तो वो काफी मतलब सतत विकास को अपनाते थे, प्लास्टिक फ्री ही रहते थे, लेकिन हम धीरे धीरे इसको अपना अपना के अभी आज हम पछता रहे हैं कि क्यों हमने इसे अडॉप्ट किया, और उम्मीद है कि जो इसे सुन रहे हैं सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस अपने लाइफ में करने की कोशिश करेंगे, शुरुआत करेंगे। एक क्वेश्चन महिलाओं के साथ, महिलाओं के हाइजीन के साथ मैं पूछना चाहूंगी। आपकी वेबसाइट पर मेंस्ट्रुएशंस के दौरान जो हम पैड्स यूज करते हैं वो एक सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्ट्स भी वहां पर उपलब्ध है, क्या वो उतना हाइजेनिक है जितना हम वो पैड्स यूज करते हैं, कमर्शियल पैड्स?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मेंस्ट्रुअल कप काफी डॉक्टर रेकमेंडेड भी है, और हाइजीन हमारे हम पे डिपेंड होता है हम कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं उन्हें। लेकिन मेंटेन करना अभी मुश्किल भी नहीं है, ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे हम कप को अगर बॉइलिंग वाटर भी नहीं है सैनिटाइज करने के लिए तो एक कप का यू नो सोप क्लेंजर भी मिलता है जो आपके लिए सेफ है अंदर और यू नो कप के लिए भी, तो आप उससे साफ कर सकते हैं इजिली और फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसे सिचुएशंस कैंपिंग या फिर बाहर आउटडोर ट्रेकिंग भी जब मैं गई हूँ तब भी मैंने कप को यूज किया है और वो काफी सेफ और हाइजीनिक भी रहा है मेरे लिए। इनफैक्ट जो हाइजीन के इश्यूज होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट से आते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके आपके बॉडी के पास बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा हाइजीन इश्यूज होते हैं। वेर एज अगर आप कप को देखें तो बस कलेक्ट करता है एंड यू कैन एम्प्टी इट वेरेवर, खाली करके वापस आप यूज कर सकते हैं, तो हाइजीन में इश्यू नहीं है। अगर किसी को भी डाउट है तो वो काफी सारा इंफॉर्मेशन भी है यूट्यूब पे, वो सीख भी सकते हैं इससे। और मेंस्ट्रुअल का आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन आपके कचरे के थ्रू हाथ डाल के यू नो साफ कर रहा है, बाहर कोई है जो इस सब कचरे के थ्रू अपना हाथ डाल के साफ कर रहा है, और उनके हाइजीन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ऐसी चीजें किसी के भी हाथ में नहीं आनी चाहिए, यू नो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना भी हो सके कि हम ये शिफ्ट करें कि हमारा मेंस्ट्रुएशन भी जीरो वेस्ट हो और हम अपने बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए।
1: जी, कपड़े के भी पैड्स आपके उस वेबसाइट पे मैंने देखा था, तो उसे कैसे यूज करना होता है, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे शायद हम उसे यूज नहीं कर सकते।
0: यूज कर सकते हैं, वैसे एक पाउच भी होता है, आप पाउच भी खरीद सकते हैं और उसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं, जो ओडर फ्री पाउचेस होते हैं, मतलब वो स्मेल भी बाहर नहीं आता है, और फिर घर आके आप सब सोख करके उसे साफ कर सकते हैं। माना कि वो थोड़ा मेंस्ट्रुअल कप से थोड़ा ज्यादा काम लगता है, लेकिन ये भी मुमकिन है, काफी लोग जो कप यूज नहीं करना पसंद करते हैं वो क्लॉथ पैड ऐसे यूज करते हैं, लेकिन वो आदत आदत की यू नो चीज है, हमें हमें फेंकने की आदत है तो हम सोच नहीं पाते हैं हम ऐसे कैसे पकड़ के घर आए, ये तो बहुत ज्यादा काम लग रहा है, लेकिन ये बस एक आदत है जो यू नो 2-3 महीने में हो जाती है और आप सीख सकते हैं। हमें हाइजीन का इशू मेनली इसीलिए लगता है क्योंकि पुराने जमाने में जब लोग क्लॉथ यूज करते थे तब काफी शर्माते थे लोग, और यू नो काफी टैबू भी था, मतलब छुपा के रखो, किसी के आगे मत दिखाओ, तो उसे सनलाइट नहीं मिलता था, क्लीन कपड़ा नहीं यूज किया जाता था, गायनोकोलॉजिस्ट से किसी का यू नो संबंध नहीं था तब, तो काफी गंदी तरीके से मेंटेन किया जाता था तब, इसलिए हाइजीन प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन आज के जमाने में हमें ये प्रॉब्लम्स कम होते जा रहे हैं, हम युवा पीढ़ी काफी बोल्ड हैं, हम अपने पेरेंट्स को समझा देते हैं कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यू नो क्लॉथ पैड्स क्लीन होने चाहिए ठंडे पानी में, मतलब साफ करके क्लीनर्स के साथ साफ करके, आप सनलाइट में अगर उसे ड्राई करने रखे तो वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज हो जाता है, कोई जर्म्स नहीं होते हैं और उसे रियूज आराम से कर सकते हैं। जैसे हमारा यू नो इनरवेयर भी हम साफ करते हैं या फिर बेडशीट भी साफ करते हैं, वापस यूज तो करते ही हैं हम बेडशीट तो फेंक नहीं देते हैं हमेशा, तो वैसे ही ये भी यूज हो जाता है, और काफी लोग 5 साल 4 साल 6 साल से यू नो क्लॉथ पैड्स यूज कर रहे हैं एंड उनका हेल्थ कम्प्लीटली नॉर्मल है, तो ये गारंटी तो है, हाइजीन तो है, हमें हाइजीन का बस ख्याल रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बस शुरुआत करना है और आदत धीरे धीरे आपकी।
0: डर नॉर्मल है, डर सबको लगता है, अगर आपको किसी से बात करना है इसके बारे में तो आप हमारे पास आ सकते हैं और मैं भी काफी लोगों को कांटेक्ट दे सकती हूँ जो इसके बारे में आपके साथ बात कर सकते हैं।
1: आगे बढ़ते हुए आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ऑफिसेस को ग्रीन कैसे बनाया जाए, क्या ऐसे और आदत डाल सकते हैं
0: ऑफिसेस में? सेम जैसे हम घर पे अपना वेट वेस्ट कॉम्पोस्ट करते हैं, ड्राई वेस्ट रिसाइकल करते हैं, वैसे ऑफिसेस में भी ये रूल्स बनाए जा सकते हैं. ऑफिसेस में पेपर काफी वेस्ट हुआ जाता है, तो जितना डिजिटाइज हो सके उतना अच्छा होता है. अपने ईमेल बॉक्सेस चेक कीजिए, अगर कोई ईमेल नेसेसरी नहीं है तो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इनबॉक्स में जितना ज्यादा ईमेल बैठता है उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट सर्वर्स यूज करते हैं. और अपने कॉफी स्टेशन में जहां भी डिस्पोजेबल पेपर कप्स है उसे एक रियूजेबल मग से कन्वर्ट कीजिए, या फिर आप खुद का एक रियूजेबल मग रखिए अपने डेस्क पे और सिर्फ उसी को यूज कीजिए अपने पूरे दिन के कॉफीज या ड्रिंक्स के लिए, ताकि आपके ड्रिंक्स की वजह से कोई डिस्पोजेबल कचरे में ना जाए. तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हैं. अपना हैंकरचीफ यूज कीजिए, अपना वाटर बॉटल यूज कीजिए, और ऑफिसेस को प्लास्टिक बॉटल्स या फिर यू नो टिश्यू पेपर्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपने एचआर से बात कीजिए और उन्हें हमारे संपर्क में रखिए, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि वो चेंजेस कैसे ला पाएंगे. और ऑफिसेज में मैं एक वेबिनार भी कंडक्ट करती हूँ, जहाँ पे मैं सारे एम्प्लॉयज को जीरो वेस्ट के बारे में सिखाती हूँ, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सिखाती हूँ, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम बताते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है, और उन्हें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी के थ्रू भी ले जाते हैं, जिससे वो सोच पाते हैं हर वेस्टफुल यू नो प्रॉब्लम का एक जीरो वेस्ट सोल्यूशन खुद वो सोच पाएंगे. तो हम ऐसी एक्टिविटीज भी कंडक्ट करते हैं ऑफिसेज में, जिससे सारे एम्प्लॉयज को हेल्प होता है.
1: जी, और जैसे आप लाइफस्टाइल्स की भी बात कर रहे हैं, और महिलाओं को ज्यादा अपने सौंदर्य का ख्याल रखना पसंद है, अपने बॉडी का ख्याल रखना पसंद है, आप अगर शैम्पू की बात करें, आप सोप्स की बात करें, इवन अभी जो SPF क्रीम्स है, तो वो उसके चलन ज्यादा बढ़ चुका है, तो उससे क्या उसका भी कुछ रिप्लेसमेंट्स है क्या, क्योंकि हम भी प्लास्टिक की बॉटल्स में वो सब खरीदते हैं.
0: नहीं, मतलब हर इसका रिप्लेसमेंट तो अभी तक हमने सुना नहीं है. हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न क्या होता है, पैकेजिंग कैसा है. अगर पैकेजिंग एक ट्यूब में है, इसका मतलब वो ट्यूब हम वापस कभी उसे यूज नहीं कर पाएंगे. हमें एक बार वो प्रोडक्ट खत्म हो गया तो हमें वो फेंकना ही पड़ेगा. लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स जब ऐसे डब्बे में खरीदते हैं जिसका लिड होता है, आप उसे खोल सकते हैं और वो खत्म होने के बाद अपने किचन में मसाले के डब्बे जैसे भी यूज किया जा सकता है, तो ऐसे चीजें ज्यादा रियूजेबल होती है और इससे वेस्ट नहीं आता है घर पे. तो आप जब भी सामान खरीद रहे हैं तो ऐसे पैकेजिंग प्रैक्टिसेस देख के शायद आप खरीदने की कोशिश कीजिए. SPF का ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है. अगर आपको आपने SPF प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आपका क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में आप खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट, वो क्वांटिटी ज्यादा हो ताकि वो ज्यादा देर तक चले. छोटे छोटे सैशेज में खरीदना या सिर्फ छोटे छोटे ट्रायल्स में खरीदना ये कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ज्यादा यू नो मतलब एडअप हो जाता है और ये रिसाइकल ईजिली नहीं होता है. तो ऐसी छोटी टिप्स है जो आप शायद देख सकते हैं, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं है. लॉट ऑफ टाइम्स हमारा स्किन हैज यू नो मतलब वो अपना ख्याल खुद रख सकता है. हम कुछ ज्यादा ही उस पे डालते रहते हैं. अगर आप मिनिमली अपना स्किन का भी ख्याल रखें तो वो खुद खुद अपना यू नो करेक्ट भी कर लेता है. मेरा पर्सनल रूटीन, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल यूज करती हूँ. तो ये पर्सनल यू नो मतलब हर हर व्यक्ति के प्रकार ये चेंज हो सकता है, तो मैं इस पे ज्यादा एडवाइस नहीं दे सकती. तो हाँ
1: बिल्कुल. और जैसे आयुर्वेदा और नेचर क्योर में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हैं. अगर आप पे वो सूट होता है तो आप जाकर के डॉक्टर्स को भी, नेचुरोपैथ या फिर डॉक्टर्स को पूछ के भी आप यूज कर सकते हैं.
0: अगर आपको बस मतलब घर पे थोड़ा फेस पैक से ऐसा कुछ करना है तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप घर पे ही कुछ बनाइए. लेकिन अगर कुछ स्किन सीरियस स्किन इश्यूज है जिससे डॉक्टर रेकमेंडेशन की जरूरत है तो प्लीज आप डॉक्टर की ही सुनिए. लेकिन अगर बस आपको यू नो थोड़ा सुंदर लगने का मन कर रहा है, कुछ यू नो क्रीम लगाना है, कुछ फेस पैक लगाना है, तो आप घर पे काफी सारे नुस्खे हैं जो आप यू नो ट्राई कर सकते हैं। हमारे दादी दादियां भी ये सब बनाती थी घर पे, तो आप वैसी चीजें ज्यादा ट्राई करें, क्योंकि आप घर के किचन के इंग्रेडिएंट से कुछ बना के अगर आप लगाएंगे तो कुछ वेस्ट भी नहीं होगा। आजकल लोगों को ये कोरियन शीट मास्क का बहुत ही ट्रेंड लग रहा है, आपको ये सही समझना चाहिए वो शीट मास्क लगाने के बाद एक बार हमें फेंकना पड़ेगा, और उसके बाद वो शीट मास्क जिस पैकेट में आता है वो भी फेंकना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम खरीदते हैं, वो उसका जब काम हो जाता है, काम होने के बाद क्या मुझे उस चीज को फेंकना पड़ेगा, या फिर काम होने के बाद कोई वेस्ट बचा नहीं है, यू नो। तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम कुछ करते हैं, क्योंकि एंड में हमारा मकसद बस यही है कि हमें त्वचा थोड़ा मॉइस्चर चाहिए और थोड़ा सुंदर लगना है, और इसके तरीके हजार हैं, तो उस हजार तरीकों से कुछ कुछ और ट्राई कर लीजिए जिससे
1: उस तरीके ट्राई करें।

0: आगे मृदुला जी आपका क्या प्लान है, आगे क्या?
1: आगे का प्लान हमारा ये है कि मैं चाहूंगी कि जैसे 20 साल में लोगों को जिम जाने की ट्रेंड बन गया है और लोगों को बहुत इजी हो गया है अपने हेल्थ का ख्याल रखने का, या फिर कहीं भी जाके अपने सुंदरता का ख्याल रखने का, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सर्विसेज अवेलेबल हैं लोगों को इन चीजों में हेल्प करने के लिए. उसी प्रकार मुझे सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी इतने सारे सर्विसेज शुरू करने हैं, जिससे अगर कोई एक व्यक्ति डिसाइड करे कि मुझे सस्टेनेबली रहना है तो वो एक सेंटर आ सकते हैं, एक कोर्स ले सकते हैं और आसानी से 3 महीने में वो खुद को सस्टेनेबल बुला सकते हैं. तो हमारा एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं जिससे आपके लाइफ के हर एरिया में आप सस्टेनेबल चेंजेस कैसे बना सकते हैं और धीरे धीरे कैसे बना सकते हैं, ताकि आपकी लाइफस्टाइल को भी ज्यादा इम्पैक्ट ना हो और अपने लेवल पे आप जितना कर सकते हैं उतना आप उस वहां से शुरू किया जा सकता है. वैसा एक प्रोग्राम हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं. और हाँ, हम आशा है कि जितने लोग इंटरेस्ट दिखाए उन उतने लोगों के लिए ये इजीली अवेलेबल.
0: एक और क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जो हमारे यूथ के हैबिट्स अभी है, पार्टी करना, अल्कोहल लेना, स्मोक करना या कैफीन इस्तेमाल करना, ये भी एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है?
1: बताया गया है कि लाइक दुनिया का काफी सारा ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है. और ये इस चीज से मैं काफी डर गई थी, लेकिन इससे मेरा खुद का बियर कंजम्पशन तो कम नहीं हुआ फिलहाल. लेकिन मैं इस चीजों के बारे में सोचती तो हूँ काफी. लेकिन हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप जहां पे चेंजेस ला पाएंगे चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए. शायद हम ये चीज कंप्लीटली स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये कम कर पाएंगे. और इससे मतलब लाइफ तो एंजॉय करना है, और लोग शायद लाइफ एंजॉय करना बंद तो नहीं करेंगे, तो ऐसी चीजों पे रोक डालने से शायद दंगे हो जाएंगे. लेकिन जिस चीज पे रोक डालना सही है, जिस चीज पे आप रोक डाल सकते हैं अपने लाइफ में, जिससे अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए. छोटी छोटी चीजें जो ट्राई कर सकते हैं जरूर ट्राई कीजिए. तो यही यही इम्पैक्ट है. सिगरेट स्मोकिंग से एक बहुत ही हानिकारक प्रदूषण फैलता है, जो ऑब्वियसली स्मोक से तो फैलता ही है. और सिगरेट बट दुनिया का सबसे ज्यादा लिटर्ड आइटम है, मतलब ये सबसे ज्यादा फेंकी हुई चीज है सिगरेट बट. और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है, पानी में चला जाता है, पानी में टॉक्सिसिटी फैल जाता है, फिशेस भी खा सकते हैं. तो सिगरेट बट रिसाइकल करने का एक यूनिट नोएडा में है, जहां पे वो सिगरेट बट्स को रिसाइकल करके उसे प्योरीफाई करके सारे टॉक्सिन्स रिमूव करके उसे गद्दे के स्टफिंग के जैसे यूज करते हैं. तो हम ये वाले गद्दे भी बेचते हैं अपने वेबसाइट पे. तो अगर आपको सिगरेट एडिक्शन है, आप क्विट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन और या फिर आपके आपके दोस्त हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उन्हें प्लीज बताइए कि सिगरेट बट्स वो सेव करके रखें, कलेक्ट करके रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे हम वो भेज सकते हैं और हम उस चीजों का लिटर भी कम कर सकते हैं. तो ये दो चीजें मुझे याद आ रही हैं जो इस चीज से हो सकता है. तो शायद पार्टी कम ना हो, लेकिन अगर पार्टी के बाद जो कचरा बचता है वो आप अगर साफ कर पाएंगे तो वो अच्छा होगा. ये मेरा ख्याल है.
0: सस्टेनेबल पार्टी रखें आप, जैसे आपने कहा कि आप एंजॉय करें, लेकिन उससे सही जगह पे पहुंचा है जो भी
1: हाँ,
0: कचरा वहां उससे निकल रहा है।
1: प्रकृति में जाके बियर पी के कैन फेंकना, ये सब चीजें करना, ये काफी काफी गंदी लगती है, क्योंकि वहां पे और लोग आते हैं, और लोग भी प्रकृति एंजॉय करना चाहते हैं. तो बुरा लगता है जब लोग इस तरह से पार्टी करते हैं बाहर जाके. तो जो भी आप करते हैं आपके साथ आप हमेशा वापस लेकर आइए ये.
0: यहाँ पर माउंट आबू में हम देखते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर आते हैं, अल्कोहल्स के बॉटल्स पहाड़ियों में आपको हर जगह आप देखेंगे, तो वो बहुत बुरा लगता है। और जानवरों के लिए तो क्षतिकारक ही है, हम हमारे खुद के लिए ही है, हम जब दोबारा आएंगे तो हमें ही एंजॉय करने को नहीं मिलेगा, हमें ही अच्छा नहीं लगेगा वो जगह। तो इन सब बातों का ख्याल रखें, और आज आपने बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारी हम तक पहुंचाया, और जरूर जो इस वक्त श्रोता सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका फायदा उठाएंगे और आपकी वेबसाइट पर जाकर के भी वो और इस चीजों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे और आपके साथ भी बात कर सकते हैं। और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे एक घंटे के लिए हिंदी में बात करवाने के लिए। मेरी भी आदत काफी निकल गई थी, हम बचपन में नोएडा में रहा करते थे, तो मेरा बस यही बोलना है लोगों के लिए कि आप जब सस्टेनेबली रहना चाहते हैं, दुनिया भर का पीढ़ा अपने कंधे पर ना उठाएं, बस खुद के बारे में सोचें, खुद की आदतों के बारे में ही सोचिए, और बस अपने आदतों पे ही काम कीजिए। अगर आप रोज उठ के बिना सोचे कोई सस्टेनेबल काम कर पाते हैं तो वो आपका सक्सेस है, और बस उसी के तरफ आप ध्यान दें। लोग आपको देख रहे हैं, सब लोग आपसे सीख रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली, जैसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट होता है, फैलने लग जाएगा। तो ज्यादा यू नो एंजाइटी या फिर ज्यादा टेंशन ना ले सस्टेनेबिलिटी के बारे में,
0: बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, जितना हो सके उतना अपनाने की कोशिश।
1: हाँ बिल्कुल,
0: आप हमारे बीच आए आज, बहुत सारी चीजें आपने शेयर की, और आप खुद एक प्रेरणा स्रोत हैं सभी यूथ के लिए। थैंक यू, और आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी आप आते रहेंगे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच रूपा
0: जी। तो हमारे बीच थे आज मृदुला जोशी जी, और उन्होंने काफी बहुत अच्छे अच्छे जानकारी उन्होंने दिया। वो प्रयास कर रहे हैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, और वो 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ और चीजें भी आप ऐड करिए और हमें बताइए कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और आज के कार्यक्रम से आपने क्या सीखा, क्या एक चीज जो आप आज से शुरू करेंगे और अपने जो प्रतिदिन के बिहेवियर्स है, या कह सकते हो जो लाइफ स्टाइल है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आएंगे, तभी हम सब मिलकर के इस दुनिया को नई दुनिया और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते नई दुनिया नए जमाना कार्यक्रम में एक और नए गेस्ट के साथ, उनसे भी कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन, नमस्ते।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और राम राम सा शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? राजी खुशी हैं? चलिए भाई, प्रभा पंडिताइन आप सबके प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमेशा हम आपको कोई कहानी बताते हैं और कहानी में कोई ना कोई शिक्षा होती है। आज भी एक ऐसी कहानी घमंडी मगरमच्छ और शांत कछुआ की सुना रहे। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता रहा, वही नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ जानता रहा कि वो कछुए को खा नहीं सकता, कहे कि उसका खोल बहुत मजबूत था। कछुआ भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि मगरमच्छ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए से कहा, ना तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ और ना ही तुम मुझे नुकसान पहुँचा सकते हो, इसलिए काहे ना हम दोनों मित्र बन जाए। कछुए ने शांत स्वर में कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है, हम दोनों में बहुत अंतर है। ये सुनकर मगरमच्छ को बहुत क्रोध आया। वो बोला, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें नदी से बाहर फेंक दूंगा, फिर देखूंगा तुम वापस कैसे आते हो। कछुआ चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर बोला, लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी, घमंड करे वाला अंत में हार जाता है। इस सुनकर मगरमच्छ और अधिक क्रोधित हुई गवा। उसने कछुए को धक्का दिया, कछुआ तुरंत अपनी खोल में चिप गया। मगरमच्छ उसे उठाकर नदी से बहुत दूर मैदान में फेंक आया। जब कछुआ अपने खोल से बाहर निकला तो उसने स्वयं को मैदान में पाया। मगरमच्छ बोला, यदि फिर कभी नदी में आए तो दोबारा फेंक दूंगा। कछुए ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, दूसरी नदी बहुत दूर है, तुम वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। अब या तो मुझसे क्षमा मांगो या नदी में लौटने का विचार छोड़ दो। कछुए ने कहा, मैं धीरे धीरे सही पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर मगरमच्छ वहां से लौट पड़ा। रास्ते में वो भटक गया और एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गया जहां बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी, और जैसे ही वो वहां पहुंचा मिट्टी में धंसे लगा। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना प्रयास करता उतना ही अधिक धंसता जाता। अब उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी उसे मगरमच्छ की पूंछ की आवाज़ सुनाई दी। वो पलट कर वापस आया और मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ विनती करते हुए बोला, भाई मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। कछुए ने कहा, तुम्हें तो अपने बल और घमंड पर बहुत अभिमान रहा, फिर मैं तुम्हारी सहायता काहे करूँ। मगरमच्छ ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगे लगा। तब कछुए को ऊपर दया आ गई, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। बहुत देर तक मेहनत करे के बाद मिट्टी धीरे धीरे बह लगी और मगरमच्छ बाहर निकल कर पानी तक पहुँच गया। मगरमच्छ भावुक होकर बोला, भाई मुझे क्षमा कर दो, आज से हम सच्चे मित्र बनकर रहेंगे। कछुए ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली और इसके बाद मगरमच्छ कछुए को अपने पीठ पर बैठाकर नदी में घुमाता और दोनों नदी किनारे पेड़ की छाया में बैठकर प्रेम से बतियाते रहते। इस कहानी से आपको शिक्षा का मिली, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। कहे कि घमंडी व्यक्ति अंत में स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाता है। हमें हमेशा विनम्र, दयालु और सहायक बनकर रहना चाहिए। सच्ची मित्रता प्रेम, सम्मान और अच्छे व्यवहार से बनती है, साथ ही क्षमा और दया का भाव दुश्मन को भी मित्र बना सकता है। तो देखिए भाई, यही बात हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है, जबकि हमारे जीवन में ज़्यादा होती है, क्योंकि मनुष्य के पास छोटी छोटी बातों के लिए बहुत घमंड है और वो घमंड कभी ना कभी हमें ही मुसीबत में डाल देता है, जैसे मगरमच्छ को। लेकिन वहीं पर कछुआ प्रेम भाव का प्रतीक उसने उसको निकाल दिया। लेकिन हम तो देखते हैं कि किसी ने मुझे दो बात सुनाई और अब वो मुसीबत में है तो बहुत खुश होते हैं, कहते देखा उसको उसके कर्म का फल मिल गया। ये नेगेटिव भाव कहीं ना कहीं इंसान को इंसान नहीं रहने देता। जानवर एक बार भूल जाए लेकिन मनुष्य नहीं भूलता और दूसरे की पराजय पर बहुत खुश होता है। और मैं समझती हूँ कि इंसानों वाली सोच तो नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य समझ आ गया उस दिन के बाद किसी की प्रशंसा या निंदा तुम्हें हिला नहीं पाएगी। खुशी उड़ती हुई तितली की जैसे है जिसे पकड़ने के लिए आप जितना दौड़ेंगे ये उतना ही आपसे दूर चली जाएगी। यदि आप शांत मुद्रा में एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद आपके कंधे पर आके बैठेगी। खुशी के पीछे मत भागो, उसे महसूस करो। भले ही कोई आपको कम आके, अगर आप अपनी स्वाभाविक शक्तिशाली मानसिकता में दृढ़ रहते हैं वही आपकी सुपर पावर है। ना संघर्ष कम होता है, ना संघर्ष खत्म होता है और ना ही शिकायतें। धीरे धीरे जो खत्म हो रही है वो उम्र है और हमें उसका कहीं से अंदाजा ही नहीं है। हर साल एक कम होता जीवन से लेकिन फिर भी हम बड़े धूमधाम से केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं। अरे जिंदगी का एक साल कम हो रहा भाई। जीवन की सबसे महंगी वस्तु है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। इसीलिए कहते वर्तमान में जियो जियो। जो वर्तमान की वैल्यू को समझ जाता है उसका आने वाला कल भविष्य भी संवर जाता है, क्योंकि जो आज है वो कल पास्ट होगा और कल प्रेजेंट होगा और परसों फ्यूचर होगा। तो आज का दिन हमने अच्छी तरह बिता लिया तो कल हम क्या कहेंगे, कल हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। और कल बहुत अच्छा बीता और आज की कीमत हमको है तो आज का दिन भी मेरा अच्छा होगा, और कल और आज अच्छा था तो भविष्य भी बहुत अच्छा होगा। कहे का मतलब हमें वर्तमान में रहना है। कहते हैं बीत गया वो सपना है, आने वाला कल कल्पना है, लेकिन आज तो अपना है। जो अपना है उसको तो संजो लीजिए, उससे तो जीवन में जो कार्य करना चाहता है वो कर लीजिए। तो जीवन की सबसे महंगी वस्तु है आपका वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, मैं दिखता तो नहीं हूँ पर हर पल आपके साथ रहता हूँ। जब आप खुश होते हो तो मैं वजह बनता हूँ, जब आप उदास होते हो तो मैं हिम्मत बनता हूँ, और जब आप कुछ नहीं समझ पाते तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। दुनिया हमेशा साथ छोड़ देती है लेकिन मैं कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। और ये बात सही में एकदम सही है, और दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, शायद ये एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। रिश्ते अगर जरूरतों से जुड़े हो तो कभी खुशी नहीं देते, और रिश्ते अगर जज्बातों से जुड़े हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे किसी ने हाथ पकड़ कर सहारा दे दिया हो। इस अदृश्य ताकत को हम परमात्मा कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते और हमें कभी अकेला भी नहीं छोड़ते। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उपहार दे जाती हैं जो उन कष्टों दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। है कि नहीं सही बात? अरे भाई हम तो कभी गलत नहीं न करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी आंखें जहां बंद है वहां खुल जाएं। निरंतरता बनाए रखे, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही सफलता की असली कुंजी है। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अपनी नई नवेली दुल्हन किरण को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में मिली नई चमचमाती गाड़ी से शाम को दिनेश लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था। किरण ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जानी मन, मजे लेने दो। आज तक दोस्तों की गाड़ी चलाई है, आज अपनी गाड़ी है। सालों की तमन्ना पूरी हुई। मैं तो खरीदने की सोच भी नहीं सकता था, इसलिए तुम्हारे डैड से मांग करी थी। किरण बोली, अच्छा म्यूजिक तो कम रहने दो। आवाज़ कम करते हुए किरण ने कहा। तभी अचानक गाड़ी के आगे एक भिखारी आ गवा। बड़ी मुसीबत से ब्रेक लगाते पूरी गाड़ी घुमाते हुए दिनेश ने बचाया। फिर तुरंत उसको गाली देकर बोला, अरे मरेगा क्या भिखारी, इस देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। किरण गाड़ी से निकलकर उस भिखारी तक पहुंची तो देखा बेचारा अपाहिज था। उससे माफ़ी मांगते हुए पर्स से 100 रुपये निकाल कर उसे दिए और बोली, माफ़ करना काका, वो हम बातों में कहीं चोट तो नहीं लाई। ये लीजिए, हमारी शादी हुई है, मिठाई खाइएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। उसे साइड में फुटपाथ पर ले जाकर बिठा दिया। भिखारी दुआएं देने लगा। गाड़ी में वापस आकर जैसे ही किरण बैठी, दिनेश बोला, तुम जैसों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। किरण मुस्कुराते हुए बोली, भिखारी तो मजबूर था, इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर। जानते हो, खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का इस दहेज में। आपने भी तो पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन भिखारी हुआ, वो मजबूर अपाहिज या एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 सालों तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े और किसी की नई गृहस्थी शुरू हो। उस पर दहेज मांगना भीख नहीं तो का है, बोलो। दिनेश एकदम खामोश, नीची नजर किए शर्मिंदगी से सब सुनता रहा, क्योंकि

किरण की बातों से पड़े तमाचे ने उसे बता दिया था कि कौन है सचमुच का भिखारी। जी हाँ, ये रोग, ये बीमारी कैंसर की तरह हमारे पूरे समाज में घर घर में फैल रही है। हर रोज हम टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, दहेज के कारण कितनी अबोध कन्याओं की बलि दी जा रही है। बाद में सुसाइड का नाम दे देते हैं या कुछ और कर देते हैं और मरे के बाद भी उसको छोड़ते नहीं, उसके चरित्र पर कुठाराघात करते हैं। ये हमारे समाज में एक कैंसर के रूप में फैल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आपकी बेटी को तो आपने दे दिया, लेकिन आपके घर आपने ले भी लिया, लेकिन आपके घर में भी तो बेटी होगी। अगर उसके साथ ऐसी ही कोई घटना हो, आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्यों ना हम अपने भाग्य का और अपने आत्मबल पर विश्वास रख के अपने पैरों पे खड़े होके अपनी इच्छाओं को पूरी करें। जो बाप अपनी बेटी को देता है, उसके पास होगा तो वो क्या नहीं देगा, लेकिन उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। पिता को भी अच्छा लड़का चाहिए, बेटी सुखी रहे, यही सोचते हैं। लेकिन कई पढ़े लिखे मूर्ख आज भी इस का कहेंगे अंधविश्वास की नगरी में ये हो रहे हैं, डूब रहे हैं कि वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। अरे वो दे रहे हैं, लेकिन आप काहे मांग रहे हो? वो जो दे रहे हैं वो प्रेम से ले लीजिए, अपनी किस्मत से कमाइएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमें बहुत दुख होता है जब इस ऐसी घटना पढ़ते हैं या ऐसी बातें जो होती हैं। और आजकल तो हर दिन में दो चार ऐसी खबर आ ही जाती है और सुन के दिल को बहुत आघात पहुंचता है कि कहाँ हम समझदार विवेक वाले बुद्धि वाले जिसको भगवान ने समझ दी, वो इंसान आज जानवर की तरह बिहेव कर रहे हैं, चंद सिक्कों की खातिर, चंद सुखों की खातिर। लेकिन वो सुख परमानेंट कहाँ रहता है? आखिर कानून के हाथ तो बड़े हैं, वो तो किसी न किसी तरह पकड़ ही लेता है ना, और आपका समाज में फिर नामकार हो जाता है। तो सबसे निवेदन करेंगे, दहेज मत मांगिए, बेकारी मत बनिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो रूखी सूखी है वो सम्मान के साथ खाए। जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र रहना सीखो, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के नीचे दबना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। कर्म परछाई की तरह होता है जो आपके साथ साथ चलता है, इसलिए शुभ कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं, इही में कल्याण है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उही प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतः फल देने आते रहते हैं। शब्दों का जाल मन को प्रभावित कर सकता है, पर सत्य का स्पर्श अक्सर मौन के निकट होता है। जिंदगी में इतनी गलतियां भी मत करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना भी मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। बहुत गहरी बात है, इसको सोचिएगा। जो चीज आपके मन की शांति छीन ले, उसे छोड़ देना ही समझदारी है, चाहे वो आदत हो, सोच हो या कोई रिश्ता हो। क्योंकि रिश्ता भी बराबरी में होता है। बराबरी का मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि धन दौलत से, एक वेवलेंथ होती है, हर एक इंसान की एक सोच होती है। जब सोच एक दूसरे की मिलती है तो वो प्रॉपर होती है। हम कोशिश करें कहीं ना कहीं इन बातों में गहरा जो अर्थ छुपा उसे समझने की। परमात्मा कहते, मेरे लाडले बच्चों, आपके द्वारा कमाई हुई जायदाद का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश न करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश न करो। दिल खोल कर सांस लो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो।
कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न करो। कहे कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, हमारे पास्ट के कर्म बोलिए, हमारे कोई संस्कार बोलिए, कहीं ना कहीं सब कुछ हम नहीं कर सकते, तो परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए और अपने मन से खुद ही प्रतिज्ञा करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम जो कुछ करेंगे उसमें अन्याय नहीं होगा। भगवानुवाद किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। लेकिन अगर आप किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करना, वो परमात्मा हमारी गारंटी ले रहा है। और फिर भी हम जानबूझ के भी कई बार गलत कर लेते हैं। आपका छोटा सा श्रेष्ठ कर्म किसी का जीवन बदल सकता है। एक पानी रख दो, गर्मी के दिन है, पक्षियों को बोलना तो आता नहीं, लेकिन वो पानी पी के हो सकता है उसकी प्यास बुझ जाए, हो सकता है उसका जीवन बदल जाए। सकारात्मक माहौल बनाएं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें। कुछ बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अगर न समझ पाए तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, अगर वो भी न हो पाए तो छोड़ दीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हर चीज़ का अपना समय होता है, हर फसल का अपना समय होता है, तो जीवन में कुछ चीज़ भगवान पे छोड़ें। जीवन बहुत ही छोटा है, जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ करो। दूसरों की वजह से स्वयं को कभी दुखी मत होने दो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो लेकिन नींद जरूर पूरी होती है। कहे कि उनको कोई फिक्र नहीं होती, हमने कोई गलत किया ही नहीं है, अदरवाइज अंतरात्मा कचोटती है, आज हमने ये गलत किया, हमने उनको ये गलत बात कही, हमने उनका दिल दुखाया। तो ईमानदारी से काम करिए, अच्छी नींद आएगी। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हर एक के पास मन मन का ईगो है। छोटी सी सच्ची बात भी कहोगे तो ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं और कई सवाल खड़े हो जाएंगे, मन मुटाव हो जाएगा, आपस में दुश्मनी हो जाएगी। हर चीज़ ताज़ी अच्छी होती है, इसीलिए वो आप सुने होंगे एक मंत्र, सर्वत्र नूतनम सस्ततम सेवकान्ने पुरातने, यानी हर चीज़ ताज़ी अच्छी होती है लेकिन सेवक मित्र और चावल पुराने ही अच्छे होते हैं। पुराना सेवक है हमको अच्छे से जानता है क्या चीज़ की ज़रूरत है, मित्र पुराने जितने होंगे उतनी आत्मीयता होगी, और पुराने चावल बहुत अच्छे खिलते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। संबंधों की यही सुंदरता है, नए सुख देते हैं और पुराने जीवन को स्थिरता और मिठास देते हैं। इरादे, जीवन है, गलतियां होती रहती हैं, बस इरादे गलत नहीं होने चाहिए, बाकी तो सब ऊपर वाला संभाल लेगा। चलिए भाई एक गीत और सुनते हैं, ओके बाद फिर आपसे बताएंगी। बहन जी को निकवा सा गीतवा सुना दीजिए ना, सुनिए गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक छोटे से गांव में राम सेवक नाम का दूध वाला रहता रहा। उसके पास चार गाय थी और उन्हीं के दूध को बेचकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। हर सुबह वो ताजा दूध लेकर नाव से नदी पार करता और शहर जाकर लोगों को दूध बेचता। शुरुआत में वो बहुत ईमानदारी से काम करता रहा, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और कमाई भी अच्छी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद राम सेवक के मन में लालच आ गया। वो सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूँ तो ज़्यादा मुनाफा होगा और कोनो पता भी नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, रोज नदी पार करते समय दूध में नदी का पानी मिलाए लगा। लोग उसके व्यवहार पर भरोसा करते थे, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। राम सेवक की आमदनी बढ़ने लगी और वो खुद को बहुत चतुर समझे लगा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में उसने काफ़ी पैसा जोड़ लिया। उसी दौरान उसकी बेटी की शादी तय हो गई। राम सेवक बहुत खुश था। उस शहर गया, बेटी की शादी के लिए महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, बर्तन और कई कीमती सामान खरीद लाया। खरीदारी करते करते शाम हो गई रही। वो जल्दी जल्दी सामान नाव में रखकर गांव लौटने लगा। नाव में सामान बहुत ज़्यादा था और नदी के बीच पहुँचते ही नाव डगमगाए लगी। राम सेवक घबरा गवा, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी रही। नाव अचानक पलट गई और उसने किसी तरह तैर कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सारा सामान नदी की तेज धारा में बह गवा। उसकी बरसों की जमा पूंजी देखते ही देखते पानी में समा गई। राम सेवक नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोए लगा। वो बार बार भगवान को दोष दे रहा था, तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज गूंजी, जिस धन में बेईमानी मिली हो वो टिकता नहीं। तुमने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया था, आज यूं ही पानी तुम्हारी कमाई बहा कर ले गया। ये बात राम सेवक के दिल को छू गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन प्रण किया कि अब वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। अगले दिन से उसने शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौट आया। अब उसकी कमाई भले थोड़ी कम थी, लेकिन मन में सुकून था। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वो दुख और पछतावा ही देता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत, सच्चाई और विश्वास शामिल हो। हम अपने आप से पूछें, हम दुनिया में जी रहे हैं, कितने ईमानदारी से जी रहे हैं? काहे कि कई बार हम कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें, लेकिन जो सब कर रहे हैं उनको तो भुगतना पड़ेगा ना। सभी को जो कर रहे हैं गलत, उनको और जो बो रहे हैं वो वापस रिटर्न तो मिलेगा ना। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख हो? नहीं ना। ईमानदारी से जितने हम जीते हैं रहते हैं, वही हमारे जीवन में वैसे ही प्रकार के लोग आते हैं। वो हमारे साथ ईमानदारी रखते हैं, वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। काहे कि जो बोया वही तो काटिएगा ना। तो आप सब से ही कहते हैं, कहानी सिर्फ सुनाए के लिए, कनरस के लिए नहीं है, मनरस के लिए है। मन में लगना चाहे कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और सुन के वो चीज को, उस आदत को, वो व्यवहार को हम चेंज कर लें। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ करो। हम पहले भी आपको ये बात सुनाए हैं, कहे कि जीवन में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने दूसरों के लिए सोचा। अब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, ज्ञान और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक श्री हरि के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। भगवान को सच्चे दिल वाले अच्छे लगते हैं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, का पता यही समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। और अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी तो बड़ी ही मिलेगी, इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ा धीरज। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो अपने आसपास हो रही उन चीजों को उनके हाल पर छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सभी दुनिया को चाहते हैं कि सब हमारी बात माने, लेकिन हम अपने आप से पूछें हम किस किस की बात मानते हैं। तो हम दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं। और जिसने स्वयं का परिवर्तन कर लिया वो सही में कहीं ना कहीं निमित्त बन जाता है औरों को परिवर्तन का भी। जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है, जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। थोड़े समय अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश तो करें। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए, समुंदर खारा है, खारा ही रहेगा। कई लोगों की आदतें कितना भी धोखा खाए के बाद चेंज नहीं होती, उनको फिर समय ही ठीक करता है। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है और नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती हैं। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मीलों दूर काहे ना हो। जैसे आप हम कभी साल दो साल में मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर शनिवार रविवार आप प्रोग्राम सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मिले हुए ही तो हैं ना। जैसे ही हम किसी के बारे में बात करते हैं या फुनवा आता है तो उसका चेहरा सामने आ जाता है ना। तो जरूरी नहीं है कि पास हो, जरूरी है भावनाएं सच्ची हो। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को दो हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, मजबूर भी टूटते हैं, मशहूर भी टूटते हैं, वक्त की चोट के आगे गुरूर भी टूटते हैं। किसी चीज़ का गुरूर मत करिए, ऊपर वाले की मेहरबानी जो हमें उस काबिल बनाया। महाभारत में सबसे बड़ा अपराध हथियार उठाना नहीं, गलत समय पर मौन रहना बताया गया है। अब ये बहुत बड़ी कला है कि हमें कब मौन रहना है और कब बोलना है। अगर ये हम समझ गए जीवन में महाभारत कभी नहीं होगी। समस्याओं को देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए, का पता ही समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी तो बड़ी ही मिलेगी, है कि नहीं। चलिए भाई और एक गीत सुन लेते हैं। ओके, बस फिर आपसे बताएंगे, सुनिएगा ये गीत।

0: रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: देखिए भाई, आपसे हम अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, तो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि बात को कहीं ना कहीं दूसरों से भी बतियाएं। कई भाई बहन हैं वो सुनाते हैं, आपने दीदी ये कहानी सुनाई ना, ये बात सुनाई ना, बहुत अच्छी लगी, और हम दूसरों को सुनाते हैं। ज्ञान जितना बांटा जाए, जितना प्रेम बांटा जाए, जितनी शांति बांटी जाए, उससे ज़्यादा कीमती धन नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमसे अगर कहीं गलती हो रही है या अनजाने जाने में, वो हम इन बातों को सुन के भूल जाए यानी सुधार ले, तो जरूर औरों को भी बताइएगा। चार अमूल्य रत्न। एक शांत गांव में एक वृद्ध संत रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास जीवन की समस्याओं का समाधान पाने आते थे। संत का जीवन बहुत सादा रहा, लेकिन उनके विचार अनमोल थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उन्हें महसूस हुआ कि अब उनका समय अधिक शेष नहीं है। उन्होंने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चार बेटे पिता के चरणों में बैठ गए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे पास धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें चार ऐसे रत्न देना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुख शांति और आनंद से भर देंगे। बेटों ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी वो कौन से रत्न हैं? संत ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। संत बोले, पहला रत्न माफी। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, बुरा कहे या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे, तो उसके प्रति मन में बदले की भावना मत रखना, उसको क्षमा कर देना। क्रोध मन को जलाता है, जबकि माफी आत्मा को शांति देती है। फिर उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार गांव का एक व्यक्ति संत को बहुत अपशब्द कह रहा था, लेकिन संत शांत रहे। लोगों ने पूछा, आपने उसे जवाब काहे नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई हमें उपहार दे और हम उसे स्वीकार न करें, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उही प्रकार मैंने उसके कटु शब्द स्वीकार ही नहीं किए। चारों बेटे पिता की बात ध्यान से सुनते रहे और वो बोले, दूसरा रत्न है भूल जाना। संत ने आगे कहा, यदि तुम किसी की मदद करो तो उसे भूल जाओ। कभी ये उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारा उपकार लौटाएगा। सच्चा उपकार वही है जिसमें प्रतिफल की इच्छा ना हो। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने एक गरीब किसान की सहायता की थी। बरसों बाद वो किसान बड़ा व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी संत को याद नहीं किया। फिर भी संत के मन में उसके लिए कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि संत बोले, जिस उपकार को बार बार याद किया जाए वो व्यापार बन जाता है, सेवा नहीं। तीसरा रत्न विश्वास। संत ने अपने बेटों का हाथ पकड़कर कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। अपनी मेहनत और परमात्मा पर अटूट भरोसा रखो, कठिन समय में यही विश्वास तुम्हें संभालेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन में कई बार इंसान मेहनत करता है, लेकिन सफलता देर से मिलती है, और ऐसे समय में जौन व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। ईश्वर कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। संत ने कहा, चौथा रत्न है वैराग्य। अब संत की आंखों में गहराई उतर आई। उन्होंने कहा, यह संसार नश्वर है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, इसलिए धन मोह और लोभ में इतना मत उलझो कि जीवन का आनंद ही खो दो। उन्होंने आगे कहा, जिस व्यक्ति का मन संतोष से भरा होता है, वही वास्तव में सबसे धनी होता है। चारों बेटे भावुक हो उठे। उन्होंने पिता के चरणों में सिर रख दिया। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक तुम इन चार रत्नों माफी, भूल जाना, विश्वास और वैराग्य को अपने जीवन में संभाल कर रखोगे, तब तक कोई भी दुख तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। उस दिन के बाद चारों बेटों ने पिता की सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया।

आए ही हैं। तो जीवन में कोशिश करें जो अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहें। हमें अच्छी अच्छी बातें ऐसा लगता है कि रिपीट करके आपको सुनाएं, ताकि अगर आपने नहीं सुना हो तो फिर याद सुन लें। और कभी अच्छी बात दो बार भी कही जाए तो उसमें बुराई नहीं है। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है, आपको कहा। नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वे मिलो दूर का ही ना हो। और ये बात जे के समझ में आ गई, समझ लो उसके जीवन में सब कुछ आ गया। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर भगवान मानते हैं, जबकि जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ की हम कद्र नहीं करते हैं। इन छोटी छोटी बातों को भी जीवन में धारण करिए। हमारे जीवन का आखिरी समय कैसा बीतेगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्म तय करेंगे। असंतुष्ट मन की मुख्य वजह परिस्थिति नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति के बारे में लगातार सोचते रहना होता है। प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, प्रश्न पत्र सी है जिंदगी, जस की तस स्वीकार, कुछ भी वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य। जिंदगी परीक्षा, और परीक्षा में जो भी पेपर आएंगे उसका जवाब आपको देना ही देना है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अगर तुम आम की प्रतीक्षा कर रहे हो मित्र, तो समस्या मेहनत में नहीं दिशा में है। और इंसान की दशा और दिशा तब सुधरती है जब जिंदगी में उसकी सोच सकारात्मक होती है। कभी भी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और हर व्यक्ति अपने समय पर सफलता प्राप्त करता है। धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और स्वयं पर विश्वास रखिए। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। विश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता की सच्ची कुंजी है। और जो व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया फिर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है। बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बराबरी वालों के साथ दोस्ती निभाइए। कहे का मतलब, हमारे को मालूम होना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करें। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता साहब। कुदरत चिड़िया को दाना जरूर देती है, लेकिन घोंसले में नहीं, उसको भी उड़कर जाकर ढूंढना पड़ता है। मनुष्य के पास सबसे अच्छी पूंजी है उनके अच्छे विचार। कहे कि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकता है, किंतु अच्छे विचार सदैव ही अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। आपको किसी भी परिस्थिति में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कौशल को दिन ब दिन बढ़ाते रहें। जिनके स्वभाव में प्रेम बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियाँ खुद चलकर आती हैं। वैचारिक मतभेद भले ही कितने हो जाएं, लेकिन उम्र का लिहाज और शब्दों की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। खुद को समझ लेने के बाद दूसरों से शिकायत धीरे धीरे अर्थहीन लगने लगती है। जब तक आत्मबोध ना हो तब तक ये बातें जीवन में घटित नहीं होती। कोशिश करें आत्मबोध को बढ़ाने की। आप जो अच्छी चीज़ें चाहते हैं उन्हें सुबह जल्दी मन से कहें। ऐसा करें से उन्हें पाने के लिए जरूरी सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचेगी। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो माली बनकर संभालो जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जाता हो। अंत में यही कहेंगे, रहम दिल वो व्यक्ति नहीं बन सकता, वो व्यक्ति बन सकता है जिनकी नज़र सदा दूसरों की विशेषताओं पर हो, उनकी कमियों पर नहीं। दूसरे की बुराई देखना जैसे दूसरों की फेंकी हुई गंदगी को उठाना है। अतः बुराई को न देख सबकी अच्छाइयों को देखिए। अंत में टाइम हुई गवाह है। आप सबसे विनती करते हैं कि जो बात कही है उन्हें जीवन में उतारिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार
फिर मिलेंगे, तब तक

0: के लिए नमस्कार।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माई गॉड इट वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ये ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, and that is what is very very important.
1: अभी बजे हैं रात के 12, एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को, और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं, और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम, बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर, पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो, एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ, ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं, या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया। तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है, वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई एम सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक की, एल्जेब्रा, जो ज्योमेट्री की बात आती थी, तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि सेवेंथ में आते आते जैसे कोई नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें, और स्क्विंट भी आई मेरा। हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार
1: लोग,
0: में
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो जो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय में नहीं करेंगे लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे, कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्या चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका
0: जी
1: साइड इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है वाह
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट को
0: प्लस टू का
1: देख
0: बता रहे हैं आप,
1: करके।
0: 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: जी
0: टॉप किया
1: ट्वेल्थ
0: ना,
1: का
0: क्या
1: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने फर्स्ट डिविजन
0: सब्जेक्ट उस
1: स्टेट,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में सब्जेक्ट
1: जी,
0: क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: पास्ट
0: मीडियम?
1: में हिंदी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए
0: मीडियम।
1: मैं, 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो
0: जी
1: उसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के
0: जी
1: लिए, फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और
0: जी
1: तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मैनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर 1 साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माई लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पाया, तो आई वॉज सो हैप्पी, लेकिन सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ तो मेरी जो ग्रैंडमदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझ आया आप। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का
1: मतलब
0: क्या ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आपका जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी।
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं
0: लग गई थी?
1: रोशनी,
0: ओ
1: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था,
0: ओके, टेढ़ा
1: तिरछापन जो था पुतलियां, वो अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे,
0: था। ओके
1: हाँ
0: ओके
1: हाँ वो सही हो रहा था। तो बस
0: अच्छा
1: वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके, तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द ईयर
0: एंगेजमेंट आपके जैसे
1: जी,
0: व्यक्ति से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: था
0: स्थिति
1: कहीं
0: में
1: था
0: नहीं रहे
1: सर।
0: कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ बिल्कुल
0: परिवार
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए जी। तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
0: हाँ
1: तो यहां भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे दिन
1: अनलकी
0: भी
1: रही
0: तेरे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई। ठीक है, वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी?
1: कुछ नहीं था सर,
0: कुछ
1: अपने
0: भी नहीं
1: फैमिली
0: था?
1: के टुकड़ों पर,
0: ओके
1: हाँ अपने भाइयों के कहते हैं ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं, कोई बात
1: क्योंकि
0: नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे
1: भी
0: भी
1: भाग
0: पर्सनल,
1: गए
0: हाँ वो वैसे भी
1: जी
0: पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है
1: जी।
0: उसकी, तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया। ठीक है, देन माई सन वॉज बॉर्न इन द ईयर 2000। यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
0: ओहो
1: टू
0: ओहो
1: थाउजेंड फोर में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता। आप
0: एक
1: इतनी
0: ऐसी
1: मुश्किल
0: परेशानी
1: अरे
0: से आप
1: सर,
0: जूझ रहे हैं जो
1: कई
0: ठीक
1: सालों
0: नहीं हो
1: से,
0: सकती।
1: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
0: अच्छा।
1: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
0: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या
1: हाँ, तो
0: हुआ है
1: बोले
0: जो।
1: कि हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू, मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूं और मैं आराम से खाना पका लूं या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूं, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया।
0: तो
1: I was in, you know, depression, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस।
0: और उन्हें बेटे की बेटे का लालन पालन भी साथ में चल रहा है।
1: सब तो मैं हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। Yes. और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे व्हाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में। फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
0: और आपने ब्रेल लिपि भी सीखी मैडम?
1: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें। और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है। सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ में सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज अ लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ हूँ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेन एंड मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झाझुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो नहीं है बट व्हाटएवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
0: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है।
1: रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया, अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
0: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी जी। भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
1: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो। तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से, वो कहते थे यू नो मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते। मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहा मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर अजीबो गरीब। मैं आपको बताऊं हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है, है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है, है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर।
0: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
1: आप, है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी, मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारे, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे जो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल, है ना, एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपर्णा एक है, उन लोगों ने टाइप किया, तो इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
0: उस समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे,
1: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिसके मैं पढ़ाती हूँ, जिसके और 2 हमारी वर्कबुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो
0: जी
1: मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से। ये मेरा
0: क्या
1: एक
0: बात,
1: रहा था
0: वाह
1: जी।
0: वाह,
1: और
0: बहुत खूब,
1: कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है। जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया, कोशिश की। लेकिन बट चूंकि वो जो हमारे एरिया था ना, वहां पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले, है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी। और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को, तो उस समय पे। और तो
0: क्या
1: काफी
0: बात,
1: मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी,
0: आपने कहा
1: ये
0: होगा
1: भी
0: भाई ये
1: हुआ
0: गलती दोबारा नहीं करनी है।
1: नहीं, सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना, हमारे समाज में हम
0: ठीक
1: जिस
0: बात
1: तरह
0: है।
1: के माहौल में
0: और फिर
1: रहे
0: क्या
1: हैं,
0: होता है
1: परिवेश
0: ना
1: में
0: कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में
1: जी
0: फिर सोचने का कोई मतलब भी
1: नहीं
0: नहीं है।
1: सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना। क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फिनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना। और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 ईयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन
0: बहुत
1: करेगा
0: गुड,
1: अभी और
0: बहुत
1: स्टार्टअप है उसका
0: गुड,
1: अभी। हाँ
0: वेरी
1: जी,
0: गुड।
1: तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन
0: क्या बात
1: मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, दैट्स। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा। तो भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बात हुई। लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि
0: जी
1: 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया, इट वॉज
0: अच्छा
1: ओरल कैंसर जी। तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड। तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर फैमिली, तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने से रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड, इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा, तो मदर को संभाला। मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। तो ये
0: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
1: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा,
1: जी।
0: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
1: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ है ना एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह
0: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही अपने आपको मतलब
1: बचपन से ही पूरा
0: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने।
1: सब सब।
0: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में
1: जी,
0: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
1: जी,
0: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
1: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है। पहली बात तो ये, तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना जिसने एक प्लस एड ऑन किया।
0: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है।
1: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके, और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से।
0: वहाँ आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी या अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
1: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी, तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा
0: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट।
1: हाँ, बस एक हॉल जैसे था तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है, देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी, तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे। तो
0: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं? जादू
1: झारसुगुड़ा जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा। हाँ, ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
0: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
1: जी,
0: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
1: सर कोशिश किया था बट कभी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा
0: ये, क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
1: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात देखने को भी पता है बहुत अच्छी तरह से जी।
0: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर, सबका अपना अपना संघर्ष होता है।
1: अब इस
0: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से। और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो है ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर, तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
1: जी, मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने एक रुख फोकस इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
0: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है, कुदरत भी चाहती थी कि आप जाए उस ओर तो।
1: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा।
0: जी आप बताइए।
1: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
0: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
1: जी बिल्कुल सर, होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
0: बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत
1: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊ जी की किताब की दुकान थी, तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
0: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो तब ये हाल है ना,
1: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही हो, लेकिन पढ़ना है।
0: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
1: जी
0: जी,
1: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से बहुत अच्छे से रख के, किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना इन लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है, जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं है ना, तो हाँ तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने आई, मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम ट्रस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई। मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, क्योंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन में बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
0: उसमें बस उड़ान, तो बस हाँ। एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
1: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही है, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र है, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आया कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी, क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल आता था पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, उससे मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी, चूंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके, तो ये रही। तो उस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोएट्री कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
0: अच्छा।
1: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में। तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा, तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग रिम्स की स्थापना करने के लिए।
0: जी
1: जी।
0: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है, कनेक्टिंग रिम्स के नाम,
1: जिसका नाम कनेक्टिंग रिम्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं। तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी के किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ग्रेट पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब लोग बोलते थे कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कम्प्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग रिम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ, और ओम वेनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं, जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारी टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लो विजन है, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई, इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
0: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है,
1: विधवा पुनर्विवाह पर कैनई होल योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
0: जी,
1: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, बहुत सुंदर। इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर
0: हो जाएगी, आज कल बिल्कुल, आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
1: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द सन,
0: एक के अनेक जीरो लग जाएंगे
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
0: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

0: तो भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: और
0: करने
1: उपन्यास?
0: का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम क्या नहीं हो जाए और हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी।
1: एक
0: डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी, तो
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी
0: भी
1: बात है। एक
0: ब्लाइंड,
1: मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है
1: वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो कभी
0: जी।
1: अगर
0: इनका हमारे साथ टाई अप
1: अवसर
0: है, कोलैबोरेशन
1: अवसर
0: करने
1: मिला
0: के
1: तो
0: लिए
1: उनके साथ भी हम मन की आंखों से
0: जी,
1: कार्यक्रम जरूर करने
0: बिल्कुल
1: की
0: ही
1: कोशिश
0: वेरी
1: करेंगे।
0: गुड। हाँ वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान
1: अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना?
0: जी, अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है, और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है। और गोष्ठी,
1: बहुत
0: कुछ
1: बहुत
0: काव्य गोष्ठियां हमने की हैं कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावु की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट, कॉम्पिटिशन, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए, या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था, या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे? क्योंकि ब्रेल लिपि तो
0: नहीं
1: आपने
0: नहीं
1: बहुत ज्यादा सीखी नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं सीखी लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी हुआ
1: ओके ओके,
0: सब
1: अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा
0: जी।
1: और उसी का बहुत जबरदस्त
0: हाँ
1: इस्तेमाल भी
0: बिल्कुल,
1: किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती गूगल
1: बहुत
0: इनपुट टूल के थ्रू
1: बहुत
0: से।
1: जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है,
0: जी जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी। मैं इसमें 4 पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा, और हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आईआईएस के जीवन में।

0: है, तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश खून है या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी
1: वाह
0: इच्छाएं
1: वाह,
0: लेती है तो सुकून भी जिंदगी के पास है। आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया। तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ ना कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत।
0: जी, बहुत शुक्रिया।
2: अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

जो हम सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा ये जहां मिलकर जो ये।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और हर हफ्ते शनिवार के दिन आप ये कार्यक्रम सुनते हैं जिसमें आपको अलग ट्रेड के बारे में हम लोग बात करते हैं। आजकल हमने पिछले कुछ समय से आपको जो है नए ट्रेड्स के बारे में बात करने की कोशिश की है, जिसमें अलग अलग ट्रेड जैसे कि मशीन लर्निंग के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बातें की थी। अब उससे आगे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे यूनिक जो है UI UX डिज़ाइनर के बारे में। UI UX डिज़ाइनर ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है करियर का विकल्प है और जिसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और ये डिजिटल दुनिया के अंदर तेज़ी से डिजिटल होते समय में हर कंपनी, स्टार्टअप या सरकारी संस्था हो या ऑनलाइन माध्यम का उपयोग कर रही है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल और स्मार्ट डिवाइस, इन सभी को उपयोग करने के लिए अनुकूल जो चीज़ें हैं यूज़र फ्रेंडली बनाने में जिस बात की भूमिका होती है, सबसे अधिक आवश्यक होती है, वो होता है UI UX डिज़ाइनर की। साथियों, आप नाम सुन के थोड़ा चौंक तो गए होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है UI UX डिज़ाइन की। आज के समय का सबसे लोकप्रिय क्रिएटिव और हाई डिमांड करियर है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन का काम नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता की मनोविज्ञान, व्यवहार, रुचियों और आवश्यकताओं को समझकर बेहतर डिजिटल अनुभव एक्सपीरियंस तैयार करने की कला है। तो डिजिटल एक्सपीरियंस करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं UI UX डिज़ाइनर। तो आइए UX UI डिज़ाइनर क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। UI का मतलब है वो दृश्य, विजुअल इंटरफेस जो उपयोगकर्ता देखता है, जैसे बटन है, रंग है, फॉन्ट है, लेआउट है, आइकॉन है, मेनू है, नेविगेशन है, आदि UI डिज़ाइनर का मुख्य काम है। स्क्रीन का सुंदर व प्रभावी डिज़ाइन ही लोगों को आकर्षित करता है। ब्रांड के अनुसार रंग और स्टाइल, उपयोगकर्ता को आकर्षित करने वाला इंटरफेस जिसको UI कहते हैं। दूसरी बात इसमें, जैसे कि UX बोला था मैंने, यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर आता है। UX का अर्थ है उपयोगकर्ता का अनुभव। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि किस वेबसाइट या ऐप को इस्तेमाल करते समय यूज़र को कोई परेशानी ना हो, इसके काम में शामिल है यूज़र रिसर्च, यूज़र की ज़रूरतों को समझना, वायर फ्रेम और प्रोटोटाइप बनाना, यूज़र टेस्टिंग, आसान और सामूद नेविगेशन डिज़ाइन करना। UI जहां सुंदरता, ब्यूटी की बात करता है, वहीं UX प्रक्रिया, प्रोसेस और अनुभव की बात करता है। दोनों मिलकर एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए UI UX डिज़ाइनर की बात हम लोग आज कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और एक नए करियर के बारे में सुन रहे हैं। शायद आप सभी को इसके बारे में अभी ही जानकारी मिल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो आईटी सेक्टर में है या इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये शायद पुराना शब्द हो गया होगा। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का काम क्या होता है, आइए इस बारे में अभी बात करते हैं। एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के दायित्व तो बहुत ही अलग अलग होते हैं। देखने में बिल्कुल ये बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका काम बहुत विस्तार से है। जैसे कि यूज़र के व्यवहार का अध्ययन करना, माना जो भी मोबाइल का या एप्लीकेशन को या वेबसाइट को यूज़ करता है तो उसका व्यवहार, माना वो क्या क्या कर रहा है, उसका अध्ययन करना। डिज़ाइन समस्या की पहचान करना, लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम बनाना, प्रोटोटाइप तैयार करना, वेब और मोबाइल दोनों के लिए लेआउट डिज़ाइन करना, डेवलपर के साथ मिलकर काम करना, यूज़र से टेस्ट कराना और सुधार करना, डिज़ाइन सिस्टम और स्टाइल गाइड बनना। ये एक रचनात्मक क्रिएटिव वर्क है और विश्लेषणात्मक एनालिटिक दोनों कौशल का मिश्रण है। अब देखेंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनने के लिए ज़रूरी कौशल है, स्किल रिक्वायर्ड जो है, एक डिज़ाइन थिंकिंग, समस्या को समझकर समाधान केंद्रित डिज़ाइन बनाना। दूसरा है क्रिएटिव और विजुअल सेंस, रंग फॉन्ट लेआउट टाइपोग्राफी की अच्छी समझ होना, प्रोटोटाइपिंग टूल्स का ज्ञान जैसे कि फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच, इनविजन, कैनवा, बेसिक डिज़ाइनिंग। चौथा है यूज़र रिसर्च, लोग किस तरह ऐप का उपयोग करते हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या सुधार चाहिए। पांचवी बात आती है HTML, CSS, JavaScript, बेसिक। डेवलपर से बातचीत और डिज़ाइन की समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। और छठवा आता है कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट या टीम को अपने डिज़ाइन की रीजनिंग समझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिज़ाइन के माध्यम से जटिल समस्याओं को सरल बनाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये है ख़ास जो एक UI UX डिज़ाइनर को समझना। तो ये अगर स्किल्स आपके पास हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर का रास्ता खुला हुआ है। UI UX डिज़ाइनर बनने का रास्ता, पहला है स्टेप वन जिसको कहते हैं, डिज़ाइन फाउंडेशन सीखे, रंग सिद्धांत को समझे, टाइपोग्राफी को समझे, ग्रीड और लेआउट को समझे, दृश्य संतुलन विजुअल बैलेंस रखने का तरीका आ जाए। सेकेंड स्टेप में आता है कोर्स करें आप इससे रिलेटेड, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जिसके बारे में हमने पिछले बार भी बताया था, वही क्यूरोसेरा कोर्सिया, गूगल UX सर्टिफिकेट, यूडेमी, इंटरेक्शन डिज़ाइन फाउंडेशन, ये सारे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जो डिज़ाइनिंग कोर्स को सिखाते हैं। तीसरा स्टेप आता है टूल्स सीखे, क्योंकि फिग्मा और एडोब XD मुख्य है। चौथा है स्टेप फोर, पोर्टफोलियो बनाए, 3 से 5 अच्छे केस स्टडी, मोबाइल ऐप और वेब डिज़ाइनिंग, रीडिज़ाइनिंग, यूज़र रिसर्च के स्क्रीनशॉट, ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में रखिए। स्टेप 5 इंटर्नशिप या फ्रीलांस काम, छोटे प्रोजेक्ट ले और अनुभव बढ़ाए और काम करना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका अनुभव बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस तरह के काम या किस जगह पे आप बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे, आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप किस जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर एक जगह भी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरा जगह आप सपोर्ट ले सकते हैं जो अच्छा करने वाले हैं, तो एक टीम वर्क के साथ ये पूरा काम बढ़िया बन जाता है। तो हमेशा अपनी टीम को बना के रखिए, टीम से आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, लेकिन आपको काम पहले करना होगा, है ना। कई लोग डायरेक्टली काम करते हैं, वो मैनेजर का काम करते हैं, अपने काम को समझ नहीं पाते तो बाद में मुश्किल आती है। तो इसीलिए A to Z आपके पास जानकारी हो, ये कैसे किया जाता, ये कैसे होता है, तो चीज़ें आसान हो जाए।
अब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यूआई डिज़ाइनर, यूएक्स डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, इंटरेक्शन डिज़ाइनर, विजुअल डिज़ाइनर, यूज़र रिसर्च, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, यूएक्स राइटर, तो ये जॉब प्रोफाइल में आता है। तो जब आप इन चीज़ों को ले लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर चीज़ें आपके लिए, आपका रास्ता और अच्छी तरह से आप उड़ान भर सकते हैं इस करियर में। तो चलिए आप थोड़ी देर में बात करते हैं स्टार्टअप कौन कौन से हैं, कितनी सैलरी मिलेगी और कैसे आप अपने करियर को चुन सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, जीवन कौशल, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। बात कर रहे हैं हम लोग यूआई यूएक्स डिजाइनर के बारे में। चलिए बात करते हैं करियर स्कोप किन किन जगह पे आपके लिए मिल सकता है, कहाँ कहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, कौन सी कंपनी आपकी लिए वेट कर रही है। तो आज हर कंपनी को यूआई यूएक्स डिजाइनर की आवश्यकता तो है ही है। सबसे पहला आता है आईटी कंपनियां, दूसरा आता है मोबाइल ऐप बनाने वाली कंपनियां, ई कॉमर्स वाली कंपनियां, स्टार्टअप नए जो हो रहे हैं, मार्केटिंग एजेंसी, गेम डेवलपमेंट, सास कंपनियां और सरकारी डिजिटल भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। भारत में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये सारे जो अलग अलग मैंने स्टार्टअप्स बताए हैं, कंपनियां बताई हैं और विभाग बताएं जहां पर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। भारत में औसत सैलरी 25,000 से 50,000 रुपये हर महीने की फ्रेशर के लिए है। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है और 1-2-3 साल का अनुभव होने के बाद ये सीधा दुगना हो जाता है, 50,000 से 90,000 रुपये हर महीने आपको मिल सकते हैं। फिर अगर आप सीनियर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बन जाते हैं तो भैया आपको 1,00,000 से 2,00,000 हर महीना आपको पेमेंट मिल सकता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर की बात करें तो फिर वो अलग पैसे कमाते हैं और एक पूरे पैकेज में आता है, तो 1 साल का 2 साल का, तो साल का पैकेजिंग ईयरली पैकेजिंग होता है जो 15,00,000 से 25,00,000 तक होता है। और आप फ्रीलांसर है तो फिर आप जो है ज़्यादा कमा सकते हैं, है ना। हर प्रोजेक्ट के लिए आपको जैसा प्रोजेक्ट होगा वैसे आप उसको फ्रीलांसर के रूप में पूरा प्रोजेक्ट आप लेके उनको फाइनल करके डिज़ाइन बना के दे देना होता है। तो इसमें 50,000 से लेकर 2 या 20 लाख तक का प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसा भी। अब ये तो कोई लिमिटेशन नहीं है।

के ऊपर, जितना आपका स्तर है, आपका टीम कितना बड़ा है, आप कितना अच्छी तरह से काम फ्रीलांसर बन के करके दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए बढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं करियर के बारे में, तो युवा यूएक्स डिज़ाइनर में करियर क्यों चुने? आप अगर सोच रहे होंगे कि इसमें ही क्यों जाए, तो क्योंकि भैया अब ये लगातार बढ़ता हुआ क्षेत्र है। दूसरा, शानदार क्रिएटिव फील्ड है, वर्क फ्रॉम होम के अवसर इसमें ज़्यादा है, हाई पैकेज है, फ्रीलांस और ग्लोबल जॉब्स यहाँ पर मिलते हैं, टेक प्लस क्रिएटिविटी का मिश्रण है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिएटिविटी का मिश्रण बहुत सुंदर है, समाज के लिए उपयोगी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ये समाज के लिए भी आपका एक सहित दायित्व बनता है, तो इसमें समाज सेवा भी जुड़ा हुआ है। ये करियर उन लोगों के लिए है जिन्हें डिज़ाइन कला, क्रिएटिव सोच और तकनीक, इन सब का संयोजन पसंद हो, है ना? तो इसीलिए भी आपके लिए ये करियर बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर स्कोप बहुत है, जैसे कि AI, AR, VR, स्मार्ट डिवाइस और मेटावर्क्स के आने से UI UX डिज़ाइन की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले वर्षों में एक्सपीरियंस डिज़ाइन XD, वॉइस UX, मोशन डिज़ाइन और AI असिस्टेंट डिज़ाइन की भी मांग बढ़ेगी। तो ऐसे में डिज़ाइनर बनना आज के समय का सबसे बड़ा स्मार्ट और रचनात्मक करियर विकल्प है, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि लोगों के जीवन को डिजिटल रूप से आसान बनाने की कला भी है। यदि आप क्रिएटिव हैं तो लोगों के व्यवहार को समझना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, तो UI UX आपके लिए एक बेहतरीन और उभरता हुआ करियर है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद फिर बातें करेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे थे खास युवा यूएक्स डिज़ाइनर के बारे में। कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस करियर में किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जोनाथ आइव, ये जो है एक व्यक्ति है जोनाथ, इनके बारे में बात करते हैं। एप्पल के जादुई डिज़ाइनर कहते हैं इनको। जोनाथ आइव दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट डिज़ाइनर में से एक है। एप्पल के लगभग सभी बड़े प्रोजेक्ट, आईफोन हो, आईपैड हो, आईमैक हो और एप्पल वॉच हो, इन सभी का डिज़ाइन इनके द्वारा ही बनाया गया। जोनाथ छोटे थे तब उन्हें चीज़ों को खोलकर समझने की आदत थी। अक्सर रेडियो, पेन, खिलौने खोल देते और फिर उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ कर एक नई चीज़ बना देते। उनके पिता वुड वर्किंग और डिज़ाइनर सिखाते थे, इसलिए बचपन से ही डिज़ाइन की समझ उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। करियर का मोड़ तब आया, उन्होंने डिज़ाइन में पढ़ाई की और कई सालों तक छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन असली सफलता तब मिली जब वे एप्पल कंपनी से जुड़े। उस समय एप्पल मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन स्टीव जॉब ने जॉन एलन की प्रतिभा को पहचान लिया था और फिर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। डिज़ाइन फिलोसफी, जोनाथ हमेशा कहते थे सबसे अच्छा डिज़ाइन वही है जो देखने में जितना सुंदर हो, इस्तेमाल में उतना आसान भी हो। अब बात करते हैं उपलब्धियाँ इनकी, तो उन्होंने आईफोन का यूआई इतना सरल बनाया कि कोई भी बिना सीखे इस्तेमाल कर सके। एप्पल के स्मूथ, सिंपल और क्लीन इंटरफेस को विश्व भर में पसंद किया गया। उनकी वजह से यूआई यूएक्स दुनिया में मिनिमलिज्म सबसे बड़ी डिज़ाइन ट्रेंड बन गया है। सी जोनाथन आइव की कहानी बताती है कि रचनात्मकता और सरलता सबसे बड़ी ताकत है। उपयोगकर्ता की ज़रूरत को समझकर ही महान डिज़ाइन पैदा होते हैं। तो ये थी कहानी जोनाथन आइव की, एप्पल में जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर है। अब बात करते हैं एक और शख्सियत की, जूली जो। जूली जो दुनिया की सबसे सफल यूएक्स लीडर में से एक है। वो फेसबुक, अब मेटा में 25 साल की उम्र में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मैनेजर बनी और फेसबुक के यूआई यूएक्स को दुनिया का सबसे इस्तेमाल होने वाला इंटरफेस बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जूली एक साधारण परिवार से जन्मी थी। उन्हें बचपन में ड्राइंग और लिखने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डिज़ाइन में करियर बनेगा। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ते समय उन्हें पता चला कि यूआई यूएक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रचनात्मकता का और टेक्निक दोनों का मेल है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको अच्छी तरह से सीखा। फेसबुक उस समय एक छोटी सी कंपनी थी। इंटरव्यू में जूली ने यूआई यूएक्स के बारे में गहरी समझ दिखाई और उन्हें नौकरी मिल गई। शुरू शुरू में उन्हें बहुत कुछ सीखना पड़ा और कई गलतियां भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गलतियां करते हुए सीखते गए और आगे बढ़ते गए। सबसे बड़ा योगदान तब आया जूली ने फेसबुक के न्यूज़ फीड और प्रोफाइल पेज के यूआई यूएक्स को नया रूप दिया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था ऐसा डिज़ाइन बनाना जिसे दुनिया का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके। उनके नेतृत्व में फेसबुक का इंटरफेस सरल, तेज और यूज़र फ्रेंडली बन गया। लेखन और अनुभव साझा जो है उनको अच्छा लगता था। जूली ने अपने अनुभवों पर एक मशहूर किताब लिखी और दी मेकिंग ऑफ ए मैनेजर, जिसे दुनिया के यूएक्स डिज़ाइनर आज भी गाइड की तरह पढ़ते हैं। तो बात आती है कि जब आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल करते हैं तो उसी महारत को आप बुक में कंपाइल करते हैं, तो लोग जो आपकी तरह वो डिज़ाइन सीखना चाहते हैं उनके लिए उनका किताब एक मास्टर गाइड बन जाता है। और मेकिंग ऑफ ए मैनेजर ये उनका मास्टर गाइड यूएक्स डिज़ाइनरों के लिए है। जूली की कहानी हमें ये बताती है कि चाहे पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लगन और सीखने की इच्छा आपको बहुत आगे ले सकती है, ले जाती है। यूआई यूएक्स में सफल होने के लिए उपयोगकर्ता के अनुभव को समझना सबसे ज़रूरी है। साथियों, इन दोनों कहानियाँ बताने का मतलब यही था कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन सिर्फ तकनीक नहीं, एक कला, शोध और मनुष्य को समझने की क्षमता है। जोनाथन आइव और दुनिया के सबसे सुंदर इंटरफेस बनाए, जबकि जूली जोहा ने अरबों लोगों के लिए फेसबुक का अनुभव आसान बनाया। दोनों ने साबित किया कि इस क्षेत्र में रचनात्मक सोच, उपयोगकर्ता की समझ, मेहनत बहुत मिलाकर एक असाधारण सफलता को हासिल करती है। तो साथियों, ये थी कुछ खास बातें दो विशेष व्यक्तियों की कहानी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर की आपके लिए, ताकि आप इस फील्ड में कहाँ पहुँच सकते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। मेरी शुभाशाओं के साथ छोटा नहीं बड़ा सोचिए और मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि आप सफलता उसको सफलता आपको मिल सके और आपकी सफलता दुनिया के जितने भी यूज़र हैं उन सब की सफलता हो सके। इन्हीं शुभाशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर को लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 31 मई 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 मार्च 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर ही तुम अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते, अगर आपसे कोई पूछे कि परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? मेरे दिल में रहते हैं। आपको इस प्यार का अनुभव

है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते हैं। बाप की हर एक बच्चे के प्रति अब यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। इस बात में बाप समान बनना है तो बाबा कहते बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने, ये बाबा की चाहना है। और वो स्थिति है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। फिर बाबा कहते समय की समीपता के अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति चाहिए तो समय की समीपता के अनुसार अभी बाबा कहते व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। बाबा कहते चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषता को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मैं अभिमान माना मैं या मेरेपन के अशुभ संकल्प यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश रह तो नहीं गया है। अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो और निमित्त आत्माओं के वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण ही अपवित्रता। सेवा तो चारों ओर धूमधाम से चल रही है, ये भी बाबा देख रहे हैं, लेकिन बाबा कहते आवश्यकता है पवित्रता के वाइब्रेशन की। अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए, वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। क्यों क्यों हमें देना है? क्योंकि बाबा कहते इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देना है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। दो काम बाबा ने दे दिया, एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी एक सेवा रही हुई है। कौन सी सेवा रही हुई है? अभी तक ये आवाज तो हुआ कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रहे हैं, मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप के तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अभी बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ और चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। बाप दादा ने देखा कि जो भी प्लान बाबा ने समय प्रति समय दिया वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया और कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को
पदम पदम गुना मुबारक भी दे रहे हैं। अभी सिर्फ एडिशन करो तो कौन सी बात की, ये भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख शांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और यह अति में जाना ही है दुख शांति, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी? ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन, दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। बाप ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए, क्यों रुकी हुई क्यों है? पूछते बाबा, क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्प की क्यों में लगे हुए हैं, इसलिए ये क्यों रुकी हुई है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है, व्यर्थ जो है समर्थ बनने नहीं देता। बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं, अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो कि समर्थ बनाओ, व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। आजकल के जमाने के हिसाब से बाबा के बातें बहुत बदलती जाती है, गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्य की वृत्ति भी बदलनी है, जीवन में व्यर्थ बातें आनी ही है। हाँ, ये दुनिया में सब कुछ होना ही है, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। अच्छा, ये व्यर्थ को समाप्त कैसे करेंगे, उसकी विधि बाबा बताते। रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो, ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, व्यर्थ को समर्थ कैसे करें, तो बाबा कहते जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कहावत है ना कि सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है, तो अच्छे से अच्छा कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया, यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। इतना ही कर लिया तो भी बाबा कहे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, सहज योगी बनो। बाप दादा को यह संकल्प देंगे कि अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। दो काम करना है, एक है सदा समर्थ बनना और दूसरा है समर्थ समय को समीप लाना। बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है, तो अब बाबा कहे बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना है। इतना प्यार से बाबा कहते हे बाप दादा के सिकिलधे, पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ, कर्म योगी बनो। अभी अपना कृपालु दयालु दुखहरता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो,
बाबा कहते अभी बाप दादा का आना जाना भी कब तक, अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पाठ बजाओ। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की कुय गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। क्या देखा? जमा होता है लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता है। अभी बाप दादा एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया, अभी आज बाबा ने व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने के लिए व्यर्थ की मुक्ति कैसे हो उस पर दृढ़ संकल्प करा रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा विशेष परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया। आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। बाबा का भी बच्चों से इतना प्यार, बच्चों का भी बाबा से इतना प्यार। जानते हो कि यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा प्यार का नशा ऐसा है जिसका अनुभव करने का भाग्य हमें ही मिला है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना, न्योछावर हो जाना, कुर्बान हो जाना, यही उसकी निशानी है। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं, वह तो आप सभी जानते हो। बाबा की चाहना क्या है, बाबा कहते ये तो आप जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। बाप समान बने अर्थात बच्चों की भी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बने। और वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। बाप समान बनना अर्थात संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। बाबा कहते ऐसी पवित्रता हो जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में
अपवित्रता का नाम निशान नहीं। बाबा कहे ऐसी पवित्रता की स्थिति बना रहे हो। पवित्रता की परिभाषा बाबा और क्लियर करते हैं, वर्तमान समय समीप आने के कारण, वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। मन में व्यर्थ संकल्प चलना यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। इस बात का अभिमान, क्योंकि बाबा कहे क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। बाबा की दी हुई विशेषता को अपनी विशेषता समझ लेना यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ, और मेरेपन के अशुभ संकल्प में मैं कम नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है, यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो मैंपन अभिमान के वश ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ, और मेरेपन का अशुभ संकल्प यह भी बाबा कहे सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा बच्चे निमित्त हो। समय को समीप लाने वाले हम बच्चे ही हैं निमित्त। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। चारों ओर अपवित्रता का, अशांति का, दुख का वाइब्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए बाबा कहे अब पवित्र दुनिया पवित्र राज्य समीप आ रहा है तो पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है। वाणी की सेवा तो बड़ी धूमधाम से चल रही है। अपना उलहना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना। सकाश देना अर्थात हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। इतने दुखी हो गई है, हिम्मतहीन हो गई है, ना उम्मीद हो गए हैं, जो बाबा कहे मनसा सेवा द्वारा आप सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। मैं पूर्वज आत्मा हूं। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन
पूर्वज और पूज

आप आत्माएं हो। बाबा कहते आपको ये डबल सेवा करनी है, क्यों? क्योंकि आप बच्चे ही सारे कल्प वृक्ष के फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं, आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी है, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। सुख शांति और संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। समय की समीपता के हिसाब से बाबा कहते ये दो बातें करनी है, एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है। अब तक जो सेवा हुई है उससे तो बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। कौन सी सेवा रही हुई है? अभी तक ये आवाज तो हुआ है, कौन सा? कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है, मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, बाबा तो उसके लिए शाबाशी देते। लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप के तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, ब्रह्मा कुमारी अच्छा है, ये तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो भी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं वो ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है, तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो भी यह आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो। अब तक जो सेवा के प्लान दिए वो तो बाबा कहे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए बाबा पदम पदम गुना मुबारक भी दे रहे हैं। अभी एडिशन करो। कौन सी एडिशन करो? कि भगवान वर्षा दे रहे हैं, ये उनके मुख से निकले, अभी भगवान वर्षा दे रहे हैं। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख शांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है। और बाप और आप जानते हो,
कि यह तो अति में जाना ही है, समय अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। बाबा कहते हैं, बच्चे भी बाबा से पूछते हो ना कि बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन है? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? समाप्ति के समय को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूं। बाप ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो, आप सब ने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चे बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? समय के हिसाब से तो अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं, इसलिए ये क्यों रुकी हुई है। क्यों, क्या, कैसे, अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। व्यर्थ क्या करता है? समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। बाबा के काले संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। बाबा कहते हैं अभी व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ, हो सकता है। तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं। चेहरे पर सदा खुशनुमा, खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। अभी व्यर्थ को समाप्त करके समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। बाबा पूछते आपको ना। जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे व्यर्थ, स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसी हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं कि हम ऐसे व्यर्थ का नाम निशान मिटा देंगे, ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना। बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो? जो मन का हाथ उठा रहे हैं, वह हाथ उठाओ। मन का हाथ यानी दृढ़ संकल्प करना। मन का हाथ उठाना माना दृढ़ संकल्प करना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहा है। जिन्होंने भी ये दृढ़ संकल्प किया, उनको बाबा
वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाले